किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। आज सोमवार है, शक संवत 1948 की वैशाख माह की 28वीं तिथि, तदनुसार 18 मई सन 2026। इस समय सुबह के 5:55 हुए हैं। अब हमारी आज की प्रातःकालीन सभा आरंभ हो रही है।

हर सुबह भगवान का एक संदेश है, उठो, मुस्कुराओ और अपने सपनों को फिर से आवाज दो। आज का ये दिन किसी और जैसा नहीं, क्योंकि आज कल से बेहतर बनने का निर्णय जो लेंगे हम। नमस्कार, लखनऊ में मैं अंजलि श्रीवास्तव भोर की सुहानी बेला में आप सभी श्रोताओं का स्वागत करती हूँ। सुबह के 6 बजने वाले हैं, समय है समाचारों का। आइए चलते हैं दिल्ली के इन।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। भारत और स्वीडन ने आपसी साझेदारी को बढ़ाकर व्यापक रणनीतिक साझेदारी करने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वीडन यात्रा की ये ऐतिहासिक उपलब्धि है। श्री मोदी ने कल रात गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री

उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत की। वे कल स्वीडन की दो दिवसीय यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचे। भारत स्वीडन संबंधों में असाधारण योगदान और दूरदर्शी नेतृत्व की पहचान के रूप में श्री मोदी को रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार डिग्री कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया। प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के दौरान दोनों नेताओं ने व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार, हरित बदलाव, अंतरिक्ष, उभरती प्रौद्योगिकियों, रक्षा सुरक्षा, SME, अनुसंधान और जनता के बीच संबंधों में सहयोग को प्रगाढ़ करने के तरीकों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री क्रिस्टर्सन ने डिजिटल बदलाव और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में भारत की प्रगति की सराहना की। उन्होंने स्वीडन में भारतीय समुदाय के सकारात्मक योगदान का भी जिक्र किया। क्राउन प्रिंसेस विक्टोरिया ने भी इस बैठक में हिस्सा लिया और स्वीडन के राजा और रानी की ओर से शुभकामनाएं दीं। प्रधानमंत्री मोदी ने आतिथ्य सत्कार के लिए अपने मेज़बानों को धन्यवाद दिया और राजा कार्ल 16वें गुस्ताव के 80वें जन्मदिन पर शुभकामनाएं दीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वीडिश कंपनियों को मेक इन इंडिया, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन और नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन जैसी योजनाओं के तहत भारत में निवेश बढ़ाने का निमंत्रण दिया है। श्री मोदी ने गोथेनबर्ग में स्वीडन की चुनिंदा कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बातचीत की। प्रधानमंत्री ने स्वीडिश कंपनियों से विनिर्माण, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, स्वच्छ ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में निवेश की अपील की। प्रधानमंत्री पांच देशों की यात्रा के चौथे चरण में आज नॉर्वे जाएंगे। वे तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे और द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। ये श्री मोदी की नॉर्वे की पहली यात्रा होगी। 43 वर्ष बाद भारत के कोई प्रधानमंत्री नॉर्वे जा रहे हैं। श्री मोदी राजा हेराल्ड पंचम और रानी सोनिया से मिलेंगे और प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोर के साथ बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री नॉर्वे के प्रधानमंत्री के साथ भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। ये यात्रा भारत नॉर्वे संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा करने और उन्हें तथा मजबूत बनाने के तरीकों को खोजने का अवसर प्रदान करेगी। इसमें व्यापार और निवेश पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन कल होगा। कांग्रेस नेता VD सतीशन आज केरल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। मुख्यमंत्री पद के लिए नामित सतीशन ने कल 21 सदस्यीय UDF मंत्रिमंडल की घोषणा की। 21 मंत्रियों में से सतीशन सहित 14 पहली बार मंत्री बन रहे हैं। कांग्रेस को मुख्यमंत्री पद के अलावा 11 मंत्री पद मिले हैं, जबकि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को 5 पद आवंटित किए गए हैं। भारत ने संयुक्त अरब अमीरात में बरका परमाणु संयंत्र पर हमले पर गहरी चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय ने इस तरह की कार्रवाई को अस्वीकार्य बताया है, क्योंकि इससे और खतरनाक स्थिति पैदा हो सकती है। भारत ने संयम बरतने का आह्वान करते हुए बातचीत और कूटनीति से समाधान निकालने की बात कही है। रूस में ड्रोन हमले में एक भारतीय मजदूर सहित 4 लोगों की मौत हो गई है। पिछले एक वर्ष में मॉस्को और करीबी इलाकों पर यूक्रेन का ये सबसे बड़ा ड्रोन हमला है। मॉस्को के मेयर सर्गेई सोब्यानिन ने बताया कि इन हमलों में 12 लोग घायल हुए। रूस के अधिकारियों ने दावा किया कि मॉस्को को निशाना बनाने वाले 81 ड्रोन को रोक दिया गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने हमलों की पुष्टि करते हुए इन्हें पूरी तरह से सही ठहराया है। इस बीच रूस में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि मॉस्को क्षेत्र में ड्रोन हमले में एक भारतीय मजदूर की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हुए। IPL क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे चेन्नई में सनराइजर्स हैदराबाद और चेन्नई सुपर किंग्स आमने सामने होंगे। प्ले ऑफ में बने रहने के लिए ये मैच दोनों टीम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अंक तालिका में हैदराबाद तीसरे और चेन्नई 6ठे स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आप सुन रहे हैं मीडियम वेव की फ्रीक्वेंसी 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर हमारा मॉर्निंग प्रोग्राम नमस्कार लखनऊ। किसान अपनी मेहनत से न केवल अपने परिवार का पालन करते हैं बल्कि देश को भी आत्मनिर्भर बनाते हैं। अपने किसान भाइयों के लिए कृषि चर्चा कार्यक्रम में आज हम लेकर आए हैं धान की नर्सरी प्रबंधन विषय पर डॉक्टर नगेन्द्र सिंह रघुवंशी द्वारा

0: दी गई ये जानकारी। आइए सुनते हैं।
1: शुभ प्रभात। धान की नर्सरी का समय चल रहा है, ऐसे में आवश्यकता इस बात की है कि जो परंपरागत धान की नर्सरी उगाने का तरीका रहा है वह आज भी है, उसे अपनाएं। हम यह नहीं कहते कि उसे दूर हटें, हाँ उसमें जो वैज्ञानिक तथ्य हैं समाहित करना एक आवश्यक तथ्य हो गया है। इसलिए हम लोगों को चाहिए कि वैज्ञानिक तरीका अपनाकर धान की अच्छी नर्सरी तैयार करें। ऐसा करने से धान में कोई बीमारी नहीं आएगी और पैदावार भी अच्छी होगी। पौध तैयार करने में सावधानी बरतने की जरूरत है। हम लोग दो तरह से नर्सरी तैयार करते रहे हैं, शुष्क व गीली नर्सरी। इसको इस तरह से करना है कि धान के बीज का उपचार, एक एकड़ धान की रोपाई के लिए 100 वर्ग मीटर नर्सरी एरिया की आवश्यकता होती है, इससे हम सभी अवगत हैं और आज भी यही अपनाया जाता है, वैज्ञानिकों की सलाह भी यही है। 100 वर्ग मीटर एरिया के लिए 5 किलो धान बीज की जरूरत है। बीज उपचार के लिए 8 लीटर पानी में उसमें 8 ग्राम बेवेस्टीन व 1 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन दवाई डालकर उसमें 5 किलो बीज को 18 घंटे के लिए भिगो दें। कुछ समय बाद खाली व आधे भरे दाने पानी की सतह पर आ जाएंगे, उन्हें बाहर निकाल दें। 18 घंटे बाद बीज को पानी से बाहर निकालकर गीली बोरी में 24 घंटे के लिए अंकुरित होने के लिए रख दें। आधा किलो जिंक जुताई से पहले जरूर डालें। धान की नर्सरी तैयार करने के लिए विभिन्न चरणों से गुजरना पड़ता है, इसलिए इस प्रक्रिया को समझना जरूरी है। सबसे पहले खेत का चुनाव करना है। दोमट और चिकनी दोमट धान की नर्सरी के लिए उपयुक्त होती है। नर्सरी लगाने के पहले खेत की 2 से 3 जुताई करके मिट्टी को समतल और भुरभुरा बना लेना चाहिए। वहीं खेत में पानी की निकासी के लिए उचित इंतजाम भी करना आवश्यक है। धान की जो किस्में मध्यम से देर पकती हैं उनकी रोपाई जून के दूसरे सप्ताह में करना उचित होता है, वहीं देर से पकने वाली किस्मों की रोपाई जून के दूसरे से तीसरे सप्ताह तक करना चाहिए। यह एक अब पर्यावरणीय दृष्टिकोण से जो कुछ परिवर्तन आ रहे हैं के दृष्टिगत करते हुए कहा गया है। अब आती है बात क्यारियों को तैयार करने की। धान की नर्सरी की क्यारियां जो आप बनाएंगे इसके लिए 1 से 1.5 मीटर चौड़ी तथा 4 से 5 मीटर लंबी होनी चाहिए। क्यारियां तैयार करने के बाद उपचारित धान के बीज का प्रति वर्ग मीटर 50 से 80 ग्राम बीज का छिड़काव करना चाहिए। विभिन्न किस्मों के अनुसार प्रति हेक्टेयर 25 से 35 किलोग्राम बीज की जरूरत पड़ती है। नर्सरी में तय दर के हिसाब से बीज डालना चाहिए, इससे पौधे की ग्रोथ अच्छी होती है और पौध खराब होने की संभावना कम हो जाती है। हाँ, धान की फसल को विभिन्न रोगों से बचाने के लिए नर्सरी लगाने से पहले बीज को अनुशंसित दवाइयों से उपचारित कर लेना चाहिए। वहीं थोथे बीज को हटाने के लिए 2% नमक के घोल में बीजों को डालें और अच्छी तरह से मिलाएं। धान की बिजाई करने से पहले बीजों को अंकुरित कर लेना चाहिए, जैसी की विधि हमने आपको बताई ही। पौधे के अच्छे विकास के लिए धान नर्सरी में प्रति 100 वर्ग मीटर में 2 से 3 किलोग्राम यूरिया, 3 किलोग्राम सुपरफास्फेट और 1 किलोग्राम पोटाश प्रयोग करना चाहिए। कुछ दिनों बाद यदि पौधों में पीलापन दिखाई दे तो 1 किलोग्राम जिंक सल्फेट तथा आधा किलोग्राम चूना लेकर 50 लीटर पानी में घोल बनाकर पर्णीय छिड़काव कर देना चाहिए। यह एक विधि है इसकी और सुरक्षात्मक विधि बेहतर है यह। हाँ, सिंचाई पर भी ध्यान रखने की जरूरत होगी। नर्सरी में सारा कुछ आपने कर लिया तो यह भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है, इसी के आधार पर उसकी बढ़वार सुनिश्चित होगी। तो पौधों के अच्छे अंकुरण के लिए पानी की बेहद जरूरत होती है, यह तो है ही, लेकिन बिजाई के समय क्यारियों में पानी नहीं होना चाहिए। 3 से 4 दिनों बाद क्यारियों को तर करना चाहिए, यह एक तथ्य अब नया है और बेहतर है। हम लोग करते क्या है, पलेवा लगाते हैं और उसमें पानी रहता है थोड़ा, तभी बीज का छिड़काव कर देते हैं, वह एक पारंपरिक विधि है। लेकिन अब यह है कि सूखे में करते हैं और फिर पानी देते हैं। वहीं जब पौधा 5 सेंटीमीटर तक बढ़ जाए तब खेत में 1 से 2 सेंटीमीटर पानी भरकर रखना चाहिए।
0: अभी आप धान की नर्सरी प्रबंधन विषय पर डॉक्टर नगेन सिंह रघुवंशी द्वारा दी गई ये जानकारी सुन रहे थे। इसी के साथ कृषि चर्चा संपन्न हुई। आपने ट्यून किया है मीडियम वेव की फ्रीक्वेंसी 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज़ और कार्यक्रम चल रहा है नमस्कार।

0: सुविचार हमें स्मरण कराता है कि परिवर्तन बाहर नहीं बल्कि भीतर से शुरू होता है। अगर हम अपनी दिन की शुरुआत एक अच्छे विचार से करें तो धीरे धीरे वही विचार हमारी आदत बन जाते हैं। आज के सुविचार में सुनिए समय के बारे में, स्वर डॉक्टर हरिप्रसाद दुबे का है।
1: समय शाश्वत है, इसकी गति बड़ी विचित्र है। यह जिसे जहां पहुंचाना चाहता है उसी प्रकार की आधारभूमि बनाता है। नीर क्षीर में अंतर करने का हंस विवेक समय के पास रहता है। त्याग संस्कार और परोपकार समय की उर्वर भूमि में पनपता है। प्रतिकूलता को अनुकूलता की ओर मोड़ने की सामर्थ्य समय के पास है। बड़ी उड़ान भरने वाले रुकने का नाम नहीं लेते, पर उन्हें देखने वाले निराशा में डूबने लगते हैं। प्रयास सामान्य रहने पर समय नहीं रिझता, वह तो असंभव को संभव कर दिखाने वाले हीरों को तराशने में लगा रहता है। अभूतपूर्व कीर्तिमान रचने की अकूत शक्ति समय के पास है। नई राह बनाने में समय अद्भुत है। बार बार प्रयत्न करने पर भी जो उपलब्धि हाथ नहीं लगती, समय उससे उत्कृष्ट देने के लिए विलंब करता है। सार्वभौमिक समय अग्नि परीक्षा लेता है। संघर्ष की आग में समय स्वर्ण की तरह तपाकर खड़ा बनाता है। एक के बाद एक परीक्षा लेने में समय की कोई तुलना नहीं है। बाधाओं से डरने वालों की चिंता समय नहीं करता, समय इतिहास बनाता है। वही विचार सार्थक बनता है जो अपने समय की वेदना को नया अर्थ देता है। जीवन से जूझते हुए आत्मीय के मंगल में भविष्य की विनती करते हुए कहा जाता है, पता नहीं वह शुभ समय कब आएगा। समय सभी की मंगल कामना सुनता है, वह मूल्यांकन करना जानता है। समय कभी नहीं दिखता, वो संसार की लीला से अलग है। परिश्रम करना मनुष्य के वश में है, उसका फल देना समय के हाथ में है। वो प्रज्ञा की पहचान करता है, समय धैर्य को प्रतिभा बनाता है। हर अमूल्य पल अनूठे अवसर लाता है। समय का दूसरा नाम काल है, जो जीवन का नियंत्रक है। समय संयोग वियोग है। दीपक का तेल चुक जाने पर रूई की बाती जलकर मंद मंद प्रकाश बिखेर रही थी। एक गृहस्थ ने पूछा, तुम जीवन भर आलोक बिखेर कर दूसरों का पथ प्रदर्शन करते रहे, संसार के साथ इतनी भलाई करने पर भी तुम्हारा दुखद अंत देखकर मेरा हृदय विदीर्ण हो रहा है। बुझते दीपक ने अंतिम आभा बिखेरते हुए कहा, भौतिक जगत में जिसका जन्म होता है उसका अंत भी होता है। हर क्षण का उत्कृष्ट नियोजन करके जीवन की मूल्यवान घड़ियों को व्यर्थ होने से बचाना है। रचनाकार अपने समय की उपज होता है। परिवर्तन शिष्ट का शाश्वत नियम है। समय क्षमा नहीं करता, बीता समय फिर नहीं लौटता। बदलते समय को पकड़ने में प्रयोग का संसार मिलता है। समय की प्रतीक्षा सहनशीलता बढ़ाती है। रात बीतने के बाद सूर्योदय निश्चित है। दुख के बाद सुख आता है। समय अभाव पाने वाले को महापुरुष बनाता है। हर चीज के होने का समय होता है। परिश्रम समय के इतिहास में नया अध्याय जोड़ता है। विपरीत समय रहने पर अच्छाई से दूरी हानि कराती है। कभी कभी अभिशाप वरदान सिद्ध हो जाता है। भरतीहर का हार खूंटी निकल गई तो हरिश्चंद्र की सत्य परीक्षा गंगा तट पर हुई। समय के आगे किसी की नहीं चलती। दुख हर अंग में आंखें बनाता है। सफलता का उपाय समय जानता है। असाधारण उपलब्धि एक दिन में नहीं मिलती, इसके लिए सर्वोच्च साधना अनिवार्य है। संकल्प विकल्प तोड़ता है। समय दान सबसे बड़ा दान है। यह धैर्य का सूत्र है। आशा देकर किसी का समय गंवाना पाप है। किसी के पास समय नहीं रहता, समय निकालना पड़ता है। समय चुनौतियों को कसौटी पर परखता है। असमर्थता कुछ भी सुनने को विवश करती है। उचित समय पर किया गया थोड़ा कार्य बड़ा उपकारक सिद्ध होता है। असमय में बड़ा उपकार निष्फल चला जाता है। असाधारण लोग विपत्ति को लौटाकर नई राह बनाते हैं। अपने जीवित रहते वे अभूतपूर्व कार्यों से अमर हो जाते हैं। समय का अपना विधान है। मर्यादा न तोड़ने वाले को समय बचाता है, खेलने का अवसर और क्षेत्र देता है। समय के हंसने पर निर्बल हरा देते हैं। समय अखंड है, पल पल का सदुपयोग परम सत्य है। समय विधान में बड़े बड़े गिरते उठते हैं। उत्तम समय कभी नहीं आता, समय को उत्तम बनाना पड़ता है। जीवन का सर्वोच्च कवच समय की सच्चाई है। समय सकारात्मक संस्कार का शाश्वत मूल्य है। यह सत्य का साक्षात्कार करता है। लक्ष्य संधान की सार्थक भूमिका ही समय का मूल मंत्र है। समय आने पर जीवन अपना मार्ग पा जाता है।
0: आज के सुविचार में आप सुन रहे थे समय के बारे में, स्वर डॉक्टर हरिप्रसाद दुबे का था। प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान।

0: सुनेंगे हर मंगलवार को शाम 7:45 पर। NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे से।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
2: 8700001-4242।
0: प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान आप सुनेंगे हर मंगलवार को शाम 7:45 पर। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ, धड़कन देश की। आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
0: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
0: 8700001-4242।
2: प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान आप सुनेंगे हर मंगलवार को शाम 7:45 पर। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ, धड़कन देश की। आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना।

शिव का नाम जीवन की सबसे पावन मात्रा है। काशी को मोक्ष की नगरी कहा गया है और ये भजन उसी दिव्य भाव को स्वर देता है कि जहाँ शिव का वास है वहीं आत्मा को शांति और मुक्ति का मार्ग मिलता है।

मनुष्य चाहे कितना भी सक्षम क्यों न हो, जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब उसे किसी अदृश्य शक्ति के सहारे की आवश्यकता महसूस होती है, और तब वह ईश्वर की शरण में जाकर कहता है, तुम ही हमारे दुख हरने वाले हो, हमें सही रास्ता दिखाओ।

माँ अम्बे केवल शक्ति की ही देवी नहीं बल्कि करुणा, ममता और संरक्षण का स्वरूप भी हैं। जब भक्त जीवन की कठिनाइयों, भय और दुखों से घिर जाता है, तब वह माँ अम्बे के चरणों में जाकर सहारा खोजता है।

जीवन में शांति, सत्य और सदाचार पाने के लिए राम नाम और राम के आदर्शों का अनुसरण आवश्यक है। जब हम राम नाम का गुणगान करते हैं तो वास्तव में हम अपने जीवन में उन्हीं गुणों को अपनाने का प्रयास करते हैं।

आप सुन रहे हैं नमस्कार लखनऊ कार्यक्रम। भक्ति के रस का और आनंद लेने के लिए हम चलते हैं श्री रामचरितमानस से आज के प्रसंग की संगीतमय प्रस्तुति सुनने के लिए। आज आप सुनेंगे भाग संख्या 175।

ऋषि वाल्मीकि ने श्री राम लक्ष्मण तथा सीता को अपने आश्रम में पाकर स्वयं को धन्य माना। श्री राम ने ऋषिवर से किसी ऐसे ठौर का पता बताने का निवेदन किया जहां वे लोग कुछ समय के लिए निवास कर सकें। ऋषि के उद्गार इन शब्दों में फूट पड़े, जिनके हृदय में काम क्रोध मद मोह लोभ शोभ ना हो, जो राग विराग छल कपट दंभ और माया से परे हों, हे रघुनाथ आप उनके हृदय में निवास कीजिए। जो पराई स्त्री को अपनी माता के समान आदर देते हों, जिन्हें पराया धन विष से भी घातक लगता है, जो दूसरों की संपत्ति देख हर्षित होते हैं और दूसरों की विपत्ति जिन्हें विशेष रूप से दुखी करती है, उनके हृदय आपके निवास के लिए उपयुक्त भवन स्वरूप हैं। इस विनय के बाद ऋषि वाल्मीकि ने चित्रकूट पर्वत को निवास के सर्वथा योग्य बताया, जहां सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध थीं। ये ऐसा मनोरम स्थान है जहां तरह तरह के पशु पक्षी विचरण करते हैं, जहां अत्रि ऋषि की धारा ले आई थी, जहां अत्रि समेत अन्य ऋषि मुनियों के आश्रम हैं। हे राम, चित्रकूट को अपना निवास स्थान बनाकर उसे गौरव प्रदान कीजिए।

0: अभी आप श्री रामचरित मानस से आज के प्रसंग की संगीतमय प्रस्तुति सुन रहे थे। गायिका थी कविता कृष्णमूर्ति और संगीत संयोजन सतीश भाटिया का। एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे से।
1: फिल्म आकाश के रोशन सितारों की महफिल आज के मेहमान विविध भारती पर हर बुधवार शाम 4 बजे पिटारा में सुनिए। रहिए कहीं भी, सुनते रहिए विविध भारती। विविध भारती आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक।
2: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
3: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
2: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
3: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
0: मीडियम वेव पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ। सुबह के 6:55 होने को ही आइए सुनते हैं संस्कृत में समाचार हमारी दिल्ली केंद्र से।

एयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः सुरेश चंद शर्मा। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी गतरात्रौ गोथिनबर्ग इत्यत्र स्वीय स्वीडिश समकक्षेण उल्फ क्रिस्टर्सन इत्यमुना साकं संवादं विहितवान्। श्री मोदी द्विदिवसीय स्वीडन यात्रान्तर्गतं गतदिने गोथिनबर्ग इत्यत्र सम्प्राप्तवान्। भारत स्वीडन देशयोः सम्बन्धेषु मोदिनः असाधारण योगदानाय दूरदर्शी नेतृत्व सम्माने च प्रधानमंत्री श्री मोदी रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार डिग्री कमांडर ग्रेड क्रॉस इत्यनेन

0: मानेन सभाजितवान्। प्रधानमन्त्री मोदी सह प्रतिनिधिमण्डलस्तरीयवार्तान्तर्गतम् उभौ नेतारौ भारत स्वीडन सम्बन्धानां समेषां पदक्षेपाणां समीक्षामपि कृतवन्तौ। उभौ नेतारौ व्यापार निवेश प्रविधि नवाचार हरित परिवर्तनम् अन्तरिक्ष रक्षा अनुसन्धानं समेत्य नैकेषु विषयेषु चर्चितवन्तौ। स्वीय सम्बोधने श्रीमोदी आतंकवादम् आलोचयन् नैकेषु विषयेषु विस्तृतेण वक्तव्यं प्रकटितवान्। आतंकवादं विरुध्य संघर्षे स्वीडिश प्रधानमन्त्रिणः समर्थनाय आभारमपि श्रीमोदी प्रकाशितवान्।
1: आतंकवाद पूरी मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। पिछले वर्ष पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद हमें स्वीडन से मिले समर्थन के लिए मैं प्रधानमंत्री क्रिस्टर्सन का आभार व्यक्त करता हूं। हम आतंकवाद और उसके समर्थकों के विरुद्ध लड़ाई जारी रखेंगे।
0: प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना स्वीडिश समवायाः आमन्त्रिताः। गोथेनबर्ग इत्यत्र प्रमुख स्वीडिश समवाय प्रमुखैः सह वार्तान्तर्गतं श्रीमोदी स्वीडिश समवायान् विनिर्माण हरित हाइड्रोजन अभियानं स्वच्छोर्जा अन्येषु क्षेत्रेषु च स्वीयोपस्थिति संवर्धनाय आग्रहमपि कृतवान्। प्रधानमन्त्री श्रीनरेन्द्र मोदी अद्य स्वीय यात्रायाः चतुर्थे चरणे नॉर्वे इत्यत्र सम्प्राप्येत। भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलने भागग्रहणाय अथ द्विपक्षीय वार्ताभ्यः श्रीमोदी अद्य नॉर्वे इत्यत्र सम्प्राप्येत। प्रधानमन्त्रिणः मोदिनः नॉर्वे इत्यत्र एषा प्रथमा यात्रा स्यात्। श्रीमोदी राजा हेराल्ड पंचम इत्यमुना अथ रानी सौम्या इत्यनया साकं च मेलनं कुर्यात्। श्रीमोदी तत्रत्य प्रधानमन्त्रिणा जोनास गहरस्टोरे इत्यमुना साकं द्विपक्षीयां वार्तां कुर्यात्। कांग्रेस दलस्य नेतृत्वे केरलं शासनस्य शपथग्रहणम् अद्य स्यात्। कांग्रेस दलस्य नेता वीडी सतीशन अद्य तिरुवनन्तपुरम् इत्यत्र शपथवचनं स्वीकुर्यात्। कांग्रेस दलेन सतीशन इत्यसौ केरल प्रदेशस्य अग्रिम मुख्यमंत्री रूपेण समुद्घोषितः। कांग्रेस दलस्य नेतृत्व युतेन यूनाइटेड डेमोक्रेटिक ग्रंथि युतेन तत्र शासन विरचनं स्यात्। केन्द्रीयः गृह सहकारिता मंत्री अमित शाहः गुजरात प्रदेशस्य गांधीनगरे 700 कोटि मितानां विकास परियोजनानां उद्घाटनं शिलान्यासं च कृतवान्। स्वीय द्विदिवसीय यात्रावधौ गतदिने गांधीनगर नगर निगमस्य 100 कोटि मितानां विकास कार्याणां शुभारम्भमपि श्रीशाहः विहितवान्। एतत् पूर्वं प्रथमे दिने श्रीशाहः सूचना केन्द्रस्य उद्घाटनं च कृतवान्। श्रीशाहः एआई तथा डीपटेक इत्येतौ भविष्यस्य अर्थव्यवस्थायाः मुख्य स्तंभौ इति वर्णितवान्।
2: आने वाले 25 साल में जो सेक्टर विश्व की अर्थनीति को, विश्व के अर्थतंत्र को दिशा देंगे, वो सभी क्षेत्र में आज भारत फाउंडर बनकर अपनी मजबूत उपस्थिति को दर्ज करा रहा है और यही बता रहा है कि भारत का भविष्य बहुत सुनहरा है। एआई और डीप टेक के जो भविष्य है, इसके लिए इसके जैसे टेक पार्क बहुत बड़ा काम भी करेंगे और इसको आगे भी बढ़ाएंगे।
0: अन्ते च क्रीडा वार्तासु आईपीएल इत्येतस्यां क्रिकेट लीग प्रतिस्पर्धायाम् अद्य चेन्नई सुपर किंग्स सनराइजर्स हैदराबाद इत्यनयोः दलयोः मध्ये द्वन्द्वं स्यात् इति वार्ताः।
3: मीडियम वेव पर यह आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। नमस्कार, लखनऊ में आप सभी श्रोताओं का एक बार फिर से स्वागत है। स्वस्थ शरीर में ही सपनों को पंख मिलते हैं और स्वस्थ मन में ही जीवन की राहें आसान बनती हैं। स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में आज हमारे श्रोता सुनेंगे गुड़ों से भरपूर पार्सली विषय पर नीना सोनकर की ये जानकारी।
4: श्रोताओं नमस्कार, मैं हूं नीना सोनकर और स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में एक बार फिर आप सबका स्वागत करती हूं। श्रोताओं, आज हम जिस हरे पौधे की बात करेंगे वो दिखने में तो सादा सा लगता है, एक सजावट की तरह सलाद या सूप के ऊपर पड़ा हुआ, लेकिन जब इसके गुणों में उतरते हैं तो समझ में आता है कि प्रकृति ने इसे एक औषधीय रत्न की तरह हमें सौंपा है। हम बात कर रहे हैं पार्सली की, जिसे हिंदी में कई लोग अज

0: मोद भी कहते हैं। पार्सले आमतौर पर यूरोपीय और भूमध्य सागरीय देशों में बहुत उपयोग होता आया है, लेकिन अब भारत में भी ये रसोई और स्वास्थ्य जगत दोनों में ही अपनी जगह बना रहा है। देखने में तो ये धनिया जैसा लगता है और कई बार लोग इसे सिर्फ गार्निशिंग के लिए ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन श्रोताओं, पार्सले सिर्फ एक सजावटी पत्ता नहीं है। इसमें विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन ए, आयरन, कैल्शियम और एंटीऑक्सीडेंट्स की भरपूर मात्रा होती है, जो इसे सेहत के लिहाज से एक सुपर हर्ब बनाती है। सबसे पहले बात करें इसके विटामिन के की। ये एक ऐसा पोषक तत्व है जो हड्डियों की मजबूती के लिए जरूरी होता है और खून के थक्के बनने की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। पार्सले में ये विटामिन भरपूर मात्रा में होता है, जो हड्डियों को समय के साथ कमजोर होने से बचाता है। महिलाओं में हड्डियों से संबंधित समस्याएं जैसे ऑस्टियोपोरोसिस मेनोपॉज के बाद ज्यादा देखी जाती है। ऐसे में पार्सले जैसे छोटे लेकिन शक्तिशाली पौधे का नियमित सेवन लाभकारी हो सकता है। विटामिन सी की बात करें तो ये शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करता है और त्वचा को भी अंदर से पोषण देता है। पार्सले के पत्तों में मौजूद ये विटामिन न केवल आपको सर्दी खांसी से बचाता है, बल्कि शरीर की कोशिकाओं को भी फ्री रेडिकल्स से होने वाले नुकसान से बचाता है। यही नहीं, इसका उपयोग त्वचा की सफाई और चेहरे की चमक को बनाए रखने के लिए भी किया जाता है। पार्सले में एक विशेष यौगिक होता है जिसे हम एपिजेनिन के नाम से जानते हैं। ये सूजन को कम करने में सहायक होता है और कई अध्ययन बताते हैं कि ये शरीर की कोशिकाओं को कैंसर जैसी बीमारियों से लड़ने में मदद कर सकता है। पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों में भी पार्सले का उपयोग लीवर को डिटॉक्स करने, मूत्र मार्ग की सफाई और पाचन सुधारने के लिए किया जाता रहा है। अगर पेट फूला हुआ महसूस हो, गैस की समस्या हो या अपच की शिकायत, तो पार्सले का रस या इसका चूर्ण राहत दे सकता है। पार्सले एक बहुत अच्छा डाययूरेटिक यानी मूत्रवर्धक भी माना जाता है, जिससे शरीर में जमा अतिरिक्त पानी और विषैले तत्व बाहर निकलते हैं। ये उन लोगों के लिए विशेष रूप से उपयोगी हो सकता है जिन्हें पानी जमा होने की समस्या होती है या जिन्हें हाई ब्लड प्रेशर है। जब शरीर से अतिरिक्त सोडियम और टॉक्सिन्स बाहर जाते हैं तो किडनी भी बेहतर तरीके से काम करने लगती है। श्रोताओं, पार्सले का रस भी बहुत फायदेमंद होता है। आप इसे खीरे, नींबू, अदरक और धनिया के साथ मिलाकर एक डिटॉक्स ड्रिंक के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये न केवल शरीर को अंदर से साफ करता है, बल्कि ऊर्जा भी प्रदान करता है। गर्मियों में जब शरीर जल्दी थकने लगता है या भोजन भारी लगने लगता है, तब पार्सले जैसी हल्की और पाचन को बेहतर बनाने वाली चीजें बहुत कारगर साबित होती हैं। ये छोटा सा पौधा मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी बहुत उपयोगी है। इसकी हल्की सुगंध मन को शांत करने का काम करती है। इसके ताजे पत्ते जब सलाद या गर्म सूप में शामिल होते हैं तो न सिर्फ स्वाद में वृद्धि होती है, बल्कि ये खाने के अनुभव को भी ताजगी से भर देता है। ये एक प्रकार की हर्बल थेरेपी भी है, जिसमें पार्सले के तेल का उपयोग किया जाता है। ये सिरदर्द, थकान और स्ट्रेस में राहत देने वाला माना गया है। भारत में अब पार्सले की खेती भी होने लगी है और आप चाहें तो इसे घर में एक छोटे गमले में भी उगा सकते हैं। ये जल्दी बढ़ता है, कम जगह लेता है और नियमित तौर पर पत्ते देता है। खास बात ये है कि ये न केवल हरे रंग से आंखों को सुकून देता है, बल्कि जब इसका स्वाद भोजन में शामिल होता है तो वो साधारण भोजन भी खास बन जाता है। श्रोताओं, पार्सले केवल एक विदेशी पत्ता ही नहीं, बल्कि ये हमारे स्वास्थ्य की चाबी भी बन सकता है, बशर्ते हम इसे समझें, अपनाएं और अपने खानपान में धीरे धीरे शामिल करें। इसके छोटे छोटे पत्तों में जो गुण छुपे हैं, वे आधुनिक विज्ञान के भी पसंदीदा हैं। और याद रखिए, हर छोटा सा प्रयास बड़ी सेहत की ओर एक बड़ा कदम होता है। नीना सोनकर को दीजिए अनुमति। सभी को नमस्कार।
1: अभी आप गुणों से भरपूर पार्सले विषय पर नीना सोनकर द्वारा दी गई यह जानकारी सुन रहे थे। इसी के साथ स्वास्थ्य चर्चा संपन्न हुई। आकाशवाणी लखनऊ आज जिन कार्यक्रमों को आपके लिए ला रहा है, उनके बारे में आपको जानकारी दे दें। हिंदी कार्यक्रम के अंतर्गत रात 8 बजे नवीन जोशी की कहानी सुनिएगा, ठहरा हुआ मोबाइल युग। रात 10 बजे नाटक

प्रसारित होगा। शीर्षक है मोक्ष। आलेख जितेंद्र स्वामी का, निर्देशक एवं प्रस्तुतकर्ता अतीश कुमार श्रीवास्तव और प्रस्तुति सहयोग कीर्ति श्रीवास्तव। उर्दू कार्यक्रम में सुबह 9:30 पर समाप्त फरमाइएगा। आकाशवाणी लखनऊ मरकज की पेशकश सुनेगा क्विज प्रोग्राम की पहली किस्त akashvani@90। प्रेजेंटर हैं जमशेद सिद्दीकी और शमशुल आरफीन। जिले की हलचल कार्यक्रम में सुबह 9:15 पर आज बरेली और सीतापुर जिलों की हलचल प्रसारित होगी। सुबह 7:10 पर विविधा कार्यक्रम में आज का विषय है विश्व म्यूजियम दिवस। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुबह 7:31 पर पार्थ प्रतिम राय का सितार वादन प्रसारित होगा और इसी कार्यक्रम में रात 10:30 पर उस्ताद अली अकबर खान का सरोद वादन श्रोता सुनेंगे। घर आंगन कार्यक्रम में दिन में 1:15 पर डॉक्टर निशा गहलोत की कहानी रिश्ते की रजामंदी पहने सुनेंगी। विज्ञान और किसान कार्यक्रम में दिन में 2:30 पर समन्वित मत्स्य पालन की योजना और तैयारी विषय पर डॉक्टर शरद कुमार सिंह से की गई भेंटवार्ता किसान भाई सुनेंगे। भेंट करता है डॉक्टर सुशील कुमार राय। युवा साथी युवा तरंग कार्यक्रम सुनते हैं शाम 5:10 पर। नई उड़ान कार्यक्रम में शाम 5:45 पर सरोकार में स्मार्ट शहरों को स्मार्ट बनाए रखने में हमारी भूमिका ओबी पर आधारित यह कार्यक्रम आप सुनेंगे। शाम 6:30 पर लोकायतन कार्यक्रम में अर्ध कपारी कारण और निवारण विषय पर डॉक्टर अतुल अग्रवाल से की गई भेंटवार्ता सुनिएगा। भेंट करता है नीना सोनकर। खेती किसानी कार्यक्रम में शाम 6:50 पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से की गई भेंटवार्ता का विषय है पशुओं में संक्रामक रोगों से बचाव और टीकाकरण। वेट करता है डॉक्टर सुशील कुमार राय। शाम 7:31 पर स्वास्थ्य वार्ता कार्यक्रम का प्रसारण होगा। इसमें ब्रेन स्ट्रोक कारण लक्षण और उपचार विषय पर प्रोफेसर डॉक्टर नीरज कुमार से की गई भेंटवार्ता आप सुनेंगे। वेट करता है आशीष चतुर्वेदी। साथ ही कार्निया की समस्या और निदान विषय पर प्रोफेसर डॉक्टर अरुण शर्मा बताएंगे। इनसे भेंट की है सुरेंद्र राजेश्वरी ने। लोकगीतों के कार्यक्रम लोकरंग में सुबह 9:50 पर और लोक माधुरी कार्यक्रम में दिन में 2:45 पर शिवलाल के गाए अवधि लोकगीत आप सुनेंगे। सुगम संगीत कार्यक्रम में रात 8:10 पर रुबीना बनर्जी के गाए भजन आपको सुनवाए जाएंगे। पत्र व ईमेल पर आधारित कार्यक्रम फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी पसंद श्रोता सुनेंगे रात 9:30 पर। श्रोताओं के पत्र व ईमेल पर आधारित कार्यक्रम आपके मेल आपके गीत जरूर सुनिएगा सुबह 8:45 पर। फिल्म संगीत का फोन इन इंटरेक्टिव प्रोग्राम कुछ तुम कहो कुछ हम कहें सुनना ना भूलिएगा सुबह 11 बजे से। इसके अलावा समय समय पर प्रायोजित कार्यक्रम और चित्रपट से कार्यक्रम का प्रसारण होगा। ये थी संक्षिप्त रूपरेखा आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी लखनऊ और कार्यक्रम चल रहा है नमस्कार लखनऊ। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम विविधा।

विविध रंगों को समेटे कार्यक्रम विविधा में मैं अंजलि श्रीवास्तव आपको नमस्कार करती हूँ। कार्यक्रम में हमारा आज का विषय है विश्व म्यूजियम दिवस। विश्व म्यूजियम दिवस अर्थात वह अवसर जब हम अपने अतीत की धरोहरों को केवल देखते ही नहीं बल्कि उन्हें समझने, उनसे सीखने और आने वाली पीढ़ियों तक सुरक्षित पहुंचाने का संकल्प भी लेते हैं। हर वर्ष 18 मई को मनाया जाने वाला यह दिवस हमें याद दिलाता है कि संग्रहालय केवल पुरानी वस्तुओं का भंडार नहीं बल्कि सभ्यता की जीवित स्मृतियां हैं। यहाँ इतिहास बोलता है, संस्कृति मुस्कुराती है, कला सांस लेती है और मानव विकास की यात्रा हमारे सामने सजीव हो उठती है। आज जब हम दुनिया अत्याधुनिक तकनीक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और डिजिटल युग की

और तीव्र गति से बढ़ रही है, तब संग्रहालयों का महत्व और भी अधिक बढ़ गया है, क्योंकि यही वे स्थान हैं जो हमें हमारी जड़ों से जोड़ते हैं। संग्रहालय हमें बताते हैं कि हम कौन थे, कहां से आए और किन संघर्षों तथा उपलब्धियों से गुजरकर आज यहां तक पहुंचे हैं। संग्रहालय किसी राष्ट्र की सांस्कृतिक आत्मा होते हैं। इनमें सुरक्षित रखी गई प्राचीन मूर्तियां, ऐतिहासिक दस्तावेज, युद्ध से जुड़ी हुई वस्तुएं, लोक कलाएं, हस्तशिल्प, वैज्ञानिक उपकरण और दुर्लभ पांडुलिपियां मानव सभ्यता की अमूल्य धरोहर हैं। जब कोई बच्चा संग्रहालय में जाकर हजारों वर्ष पुरानी प्रतिमा को देखता है तो उसके मन में इतिहास के प्रति जिज्ञासा जागती है। जब कोई युवा स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े चित्र और वस्तुएं देखता है तो उसके भीतर राष्ट्र प्रेम की भावना प्रबल होती है, और जब कोई कलाकार चित्रकला या शिल्प कला को देखता है तो उसे अपनी रचनात्मकता के लिए नई प्रेरणा मिलती है। इस प्रकार संग्रहालय केवल ज्ञान का केंद्र नहीं बल्कि संवेदनाओं और प्रेरणाओं का स्रोत भी है। भारत जैसे विविधताओं से भरे देश में म्यूजियम की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमारा देश अनेक संस्कृतियों, भाषाओं, परंपराओं और ऐतिहासिक घटनाओं का संगम है। यहाँ के संग्रहालय इस विविधता को बहुत सुंदर ढंग से संजोए हुए हैं। कहीं सिंधु घाटी सभ्यता की झलक मिलती है तो कहीं मुगल कालीन कलाकृतियाँ दिखाई देती हैं, कहीं स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्ष की गाथा है तो कहीं जनजातीय जीवन की अनोखी परंपराएं सुरक्षित हैं। ये संग्रहालय हमें ये समझाते हैं कि भारत केवल एक भौगोलिक सीमा नहीं बल्कि हजारों वर्षों से विकसित होती हुई सांस्कृतिक चेतना का नाम है। आज के समय में जब पीढ़ी मोबाइल और इंटरनेट की दुनिया में अधिक व्यस्त होती जा रही है, तब संग्रहालयों की उपयोगिता और भी अधिक बढ़ जाती है। संग्रहालय बच्चों और युवाओं को वास्तविक ज्ञान से भी जोड़ते हैं। पुस्तकों में पढ़ा गया इतिहास जब आंखों के सामने सजीव रूप में दिखाई देता है तब सीखने की प्रक्रिया कहीं अधिक प्रभावशाली हो जाती है। यही कारण है कि आज अनेक विद्यालय और शिक्षण संस्थान विद्यार्थियों को संग्रहालय भ्रमण के लिए प्रेरित करते हैं। इससे विद्यार्थियों में जिज्ञासा, शोध की प्रवृत्ति और सांस्कृतिक समझ विकसित होती है।

विश्व म्यूजियम दिवस का उद्देश्य केवल संग्रहालयों का महत्व बताना ही नहीं बल्कि समाज को यह समझाना भी है कि सांस्कृतिक विरासत की रक्षा प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है। यदि हम अपनी ऐतिहासिक धरोहरों को सुरक्षित नहीं रखेंगे तो आने वाली पीढ़ियां अपने गौरवशाली अतीत से परिचित नहीं हो पाएंगी। आधुनिकता आवश्यक है परंतु अपनी परंपराओं और इतिहास को भूल जाना किसी भी समाज के लिए उचित नहीं कहा जा सकता। संग्रहालय हमें आधुनिकता और परंपरा के बीच संतुलन बनाना सिखाते हैं। आज दुनिया भर के संग्रहालय भी समय के साथ बदल रहे हैं। अब केवल कांच के पीछे रखी वस्तुओं को देखने तक की संग्रहालय सीमित नहीं रह गए हैं। डिजिटल तकनीक, वर्चुअल टूर, ऑडियो गाइड, 3D प्रदर्शन और इंटरैक्टिव प्रदर्शनी के माध्यम से संग्रहालयों को और भी अधिक रोचक तथा ज्ञानवर्धक बनाया जा रहा है। इससे युवा पीढ़ी की रुचि भी संग्रहालयों की ओर बढ़ रही है। यह परिवर्तन इस बात का प्रमाण है कि संग्रहालय केवल अतीत में नहीं जीते बल्कि वर्तमान और भविष्य के साथ भी कदम मिलाकर चलते हैं। संग्रहालय हमें सहिष्णुता और वैश्विक समझ का संदेश भी देते हैं। जब हम विभिन्न देशों और संस्कृतियों से जुड़ी वस्तुओं को देखते हैं तब यह अनुभव होता है कि पूरी मानवता एक साझा विरासत है। अलग अलग संस्कृतियों के बीच सम्मान और समझ बढ़ाने में संग्रहालय महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यही कारण है कि विश्व संग्रहालय दिवस अंतर्राष्ट्रीय भाईचारे और सांस्कृतिक संवाद का भी प्रतीक माना जाता है। यदि हम अपने आसपास देखें तो पाएंगे

कि अनेक छोटे संग्रहालय आज भी लोग की उपेक्षा का शिकार हैं। कहीं संसाधनों की कमी तो कहीं जागरूकता का अभाव। आवश्यकता इस बात की है कि सरकार, समाज और युवा मिलकर संग्रहालयों के लिए, संरक्षण के लिए आगे आएं। हमें अपने बच्चों को संग्रहालयों की सैर करानी चाहिए, स्थानीय इतिहास के बारे में बताना चाहिए और अपनी धरोहर पर गर्व करना सिखाना चाहिए, क्योंकि जो समाज अपने इतिहास को याद रखता है वही भविष्य को सही दिशा दे पाता है। विश्व संग्रहालय दिवस हमें यह प्रेरणा देता है कि हम केवल तकनीकी रूप से विकसित राष्ट्र ही न बने बल्कि सांस्कृतिक रूप से भी समृद्ध और जागरूक बने। संग्रहालय हमारी पहचान है, हमारी स्मृतियां हैं और हमारी सभ्यता के मौन प्रहरी हैं। वे हमें सिखाते हैं कि समय बदलता रहता है परंतु संस्कृति और इतिहास की नींव सदैव स्थायी रहती है। आइए इस विश्व म्यूजियम दिवस पर हम यह संकल्प लें कि अपनी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहरों का सम्मान करेंगे, उन्हें सुरक्षित रखने में अपना

स्मृतियाँ हैं और हमारी सभ्यता के मौन प्रहरी हैं। वे हमें सिखाते हैं कि समय बदलता रहता है, परंतु संस्कृति और इतिहास की नींव सदैव स्थायी रहती है। आइए इस विश्व म्यूजियम दिवस पर हम यह संकल्प लें कि अपनी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहरों का सम्मान करेंगे, उन्हें सुरक्षित रखने में अपना योगदान देंगे और नई पीढ़ी को भी इनके महत्व से परिचित कराएंगे, क्योंकि जब धरोहरें सुरक्षित रहेंगी तभी हमारी पहचान सुरक्षित रहेगी, और जब पहचान सुरक्षित रहेगी तभी किसी राष्ट्र की आत्मा जीवित रह सकेगी। इसी के साथ आज का विविधा कार्यक्रम समाप्त करने की मैं अंजलि श्रीवास्तव आपसे अनुमति चाहूंगी। नमस्कार। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। थोड़ी देर में आप प्रादेशिक समाचार सुनेंगे जिसे हम अपने गोरखपुर केंद्र से रिले कर रहे हैं।

0: मन का धर्म है मनन करना, मनन में ही उसे आनंद है, मनन में बाधा प्राप्त होने से उसे पीड़ा होती है। रविन्द्रनाथ ठाकुर।
1: अपने ज्ञान पर जरूरत से ज्यादा यकीन करना मूर्खता है। सबसे मजबूत कमजोर हो सकता है और सबसे बुद्धिमान गलती कर सकता है। APJ अब्दुल कलाम।
0: जैसे सूर्य सबको एक सा प्रकाश देता है, बरसात सबके लिए बरसती है, उसी तरह विद्या वृष्टि सब पर बरकरार होनी चाहिए। महात्मा गांधी।
1: आकाश की तरफ देखिए, हम अकेले नहीं हैं, सारा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है। और जो सपने देखते हैं, मेहनत करते हैं, उन्हें प्रतिफल देने की साजिश करता है। APJ अब्दुल कलाम। निरंतर विकास जीवन का नियम है, और जो व्यक्ति खुद को सही दिखाने के लिए हमेशा अपनी रूढ़िवादिता को बरकरार रखने की कोशिश करता है, वह खुद को गलत स्थिति में पहुंचा देता है। महात्मा गांधी।
0: मानव का दानव होना उसकी हार है, मानव का महामानव होना उसका चमत्कार है, और मनुष्य का मानव होना उसकी जीत है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन।
1: कोई त्रुटि तर्क वितर्क करने से सत्य नहीं बन सकती, और ना ही कोई सत्य इसलिए त्रुटि बन सकता है क्योंकि कोई उसे नहीं देख रहा है। महात्मा गांधी।

0: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सोनी निगम। पहले मुख्य समाचार। स्वीडन के सर्वोच्च सम्मान रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कहा, ये सिर्फ उनका नहीं बल्कि 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रिमंडल के नव नियुक्त और पदोन्नत मंत्रियों को किया विभागों का आवंटन। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी बने एमएसएमई विभाग के मंत्री। प्रदेश में अनुदेशकों को 5 लाख तक स्वास्थ्य बीमा कवर देगी सरकार। बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित अनुदेशक सम्मान समारोह और चेक वितरण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने की घोषणा। और प्रदेश के विभिन्न जिलों में हुए अलग अलग हादसों में 11 लोगों की मौत, 5 घायल। अब समाचार विस्तार से। स्वीडन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया। ये किसी भी राष्ट्राध्यक्ष को स्वीडन द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। इस अवसर पर अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वीडन का सर्वोच्च पुरस्कार मिलना सिर्फ उनका सम्मान नहीं बल्कि 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान है।
1: यह स्वीडन के हमारे उन सभी साथियों का भी सम्मान है जिन्होंने भारत स्वीडन संबंधों को समृद्ध किया, एक

0: मजबूत आधार दिया।
1: स्वीडन में मिला सम्मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, अब तक मिला ये 31वां वैश्विक सम्मान है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल अपने मंत्रिमंडल में नवनियुक्त और पदोन्नत मंत्रियों को विभागों का आवंटन कर दिया। नवनियुक्त मंत्रिमंडल मंत्रियों में भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी को सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम एमएसएमई विभाग सौंपा गया है। मनोज कुमार पांडे को खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग आवंटित किया गया है। मंत्रिमंडल विस्तार के दौरान राज्य मंत्री के तौर पर पदोन्नत किए गए अजीत पाल सिंह को खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग के साथ साथ राजनीतिक पेंशन विभाग की भी जिम्मेदारी दी गई है, जबकि सोमेंद्र तोमर को सैनिक कल्याण और प्रांतीय रक्षा दल विभाग का प्रभार सौंपा गया है। नवनियुक्त चार राज्य मंत्रियों को भी विभाग आवंटित कर दिए गए। कृष्णा पासवान को पशुपालन एवं दुग्ध विकास विभाग, सुरेंद्र दिलेर को राजस्व विभाग, हंसराज विश्वकर्मा को लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय और कैलाश राजपूत को ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग सौंपा गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल गोरखपुर दौरे के तीसरे दिन वहां के सहजनवा विधानसभा क्षेत्र में आयोजित पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण 2026 के तहत भाजपा के जिला प्रशिक्षण वर्ग के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी देश का ऐसा राजनीतिक दल है जो देश को सुरक्षा, संस्कृति, सुशासन और समृद्धि को जोड़ने का काम कर रही है। श्री योगी ने कहा कि केंद्र और भाजपा शासित राज्य सरकारों ने राष्ट्र प्रथम की भावना और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की अंत्योदय की संकल्पना के अनुरूप अपने कार्यक्रमों को तैयार किया है। इससे देश के अंतिम पायदान पर बैठे लोगों के जीवन स्तर में सुधार हो रहा है।
2: भारतीय जनता पार्टी ने देश के अंदर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के उन सपनों को भी साकार किया है, जो उन्होंने अंत्योदय की बात, अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को शासन की योजना का लाभ मिलना चाहिए। देश के अंदर 4 करोड़ गरीबों को एक एक आवास मिल जाना, 50 करोड़ गरीबों को 5 लाख रुपए की आयुष्मान भारत की सुविधा मिल जाना, 10 करोड़ किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ हो, ये समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को समृद्धि के शिखर तक पहुंचाने के अभियान का क्रम है।
1: कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री कमलेश पासवान और सांसद रवि किशन शुक्ल सहित कई पार्टी पदाधिकारी और प्रमुख जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और X हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित अनुदेशक सम्मान समारोह और चेक वितरण कार्यक्रम में हिस्सा लिया। विभाग द्वारा शैक्षणिक सत्र 2026-27 में समग्र शिक्षा अभियान के तहत 24,717 अंशकालिक अनुदेशकों का मानदेय 9,000 से बढ़ाकर 17,000 रुपये प्रतिमाह किए जाने के उपलक्ष्य में ये आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि मानदेय बढ़ाने के साथ ही राज्य सरकार अनुदेशकों को 5 लाख तक स्वास्थ्य बीमा कवर का लाभ देने जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा है हर बच्चा शिक्षा हासिल करे, ताकि विकसित भारत का संकल्प पूरा हो सके।
3: जब साफ नियत से कोई सरकार कार्य करती है, स्पष्ट नीति हो, तो परिणाम आने में देर नहीं लगती। प्रदेश के अंदर जो ड्रॉप आउट रेट था लगभग 17-18% के आसपास था, और आज हम इसको घटाते घटाते 3 तक पहुंचाने में सफल हुए हैं, और हमारा मानना है इसको 0 तक पहुंचाना चाहिए। हर बच्चा पढ़ेगा तब विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार हम कर पाएंगे।
1: केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेन्द्र प्रसाद और प्रदेश के राज्य मंत्री संजय गंगवार ने कल पीलीभीत में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों को स्मार्टफोन वितरित किए। इस अवसर पर अपने संबोधन में श्री प्रसाद ने कहा कि डबल इंजन की सरकार के कामों में हमेशा पारदर्शिता रही है, और सरकार ने जो कहा उसे करके दिखाया। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने कल से सीएनजी की कीमतों में 1 रुपये की बढ़ोतरी कर दी। अब दिल्ली में 1 किलोग्राम सीएनजी की नई दर 80.09 रुपये, जबकि गाजियाबाद और नोएडा में ये 88.70 रुपये हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 31 तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 134वीं कड़ी होगी। श्रोता टोल फ्री नंबर 1-800-11-7800 पर इस कार्यक्रम के लिए अपने विचार और सुझाव भेज सकते हैं।

0: हैं। मथुरा सहित समूचे ब्रजमंडल में एक माह तक चलने वाला पुरुषोत्तम मास मेला कल से शुरू हो गया। एक रिपोर्ट।
1: मथुरा समेत समूचे ब्रजमंडल में एक माह तक चलने वाला अधिक मास मेला शुरू हो गया है। चहु और 84 कोस परिक्रमा का उत्साह और राधे राधे की गूंज सुनाई दे रही है। आस्था और भक्ति में डूबे लाखों श्रद्धालु मथुरा, वृंदावन, गोकुल, बरसाना, नंदगांव और गोवर्धन में 84 कोसी परिक्रमा कर रहे हैं। SP ग्रामीण सुरेश चंद्र रावत ने बताया कि भीड़ और सुरक्षा को देखते हुए परिक्रमा मार्ग गोवर्धन, द्वारकाधीश और श्री कृष्ण जन्मस्थली समेत प्रमुख मंदिरों को सुपर जोन और सेक्टरों में कर भारी पुलिस बलों की तैनाती की गई है और पूरे क्षेत्र की CCTV कैमरों और ड्रोन से निगरानी की जा रही है। मोहम्मद उमर कुरैशी, आकाशवाणी समाचार, मथुरा।
0: प्रदेश के विभिन्न जिलों में कल हुए 3 अलग अलग हादसों में 11 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 अन्य घायल हैं। हमीरपुर के मौदहा क्षेत्र के छिरका गांव के पास हाईवे पर खड़े ट्रक और कार की टक्कर में हुई दुर्घटना में 4 लोगों की मौके पर मौत हो गई और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। ये सभी बागेश्वर से दर्शन कर घर वापस जा रहे थे। हमारे फतेहपुर प्रतिनिधि ने बताया कि वहां के रिंद नदी में नहाने गए 4 युवकों की डूबने से मौत हो गई, जबकि अन्य 2 को गोताखोरों ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया। वहीं शाहजहांपुर जिले के कांट इलाके में कल सुबह डंपर और ऑटो की टक्कर में दंपत्ति सहित 3 लोगों की मौत हो गई और 4 लोग घायल हो गए। मौसम विभाग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में 20 मई से कहीं कहीं बारिश और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना जताई है। साथ ही विभाग द्वारा कल और 20 मई को प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी हिस्से में दिन के समय कुछ स्थानों पर तेज लू चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इस बीच प्रदेश में लगातार बढ़ रही भीषण गर्मी और लू को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रशासन को पूरी सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा ऑरेंज अलर्ट जारी किए जाने के बाद मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि संवेदनशील जिलों में विशेष निगरानी रखी जाए। सरकारी अस्पतालों में हीट स्ट्रोक से प्रभावित मरीजों के इलाज के लिए पर्याप्त इंतजाम सुनिश्चित किए जाए। मुख्यमंत्री द्वारा अस्पतालों में दवाओं, बेड और डॉक्टरों की उपलब्धता बनाए रखने के साथ एम्बुलेंस सेवाओं को भी सक्रिय करने का निर्देश दिया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। स्वीडन के सर्वोच्च सम्मान रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कहा, ये सिर्फ उनका नहीं बल्कि 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रिमंडल के नवनियुक्त और पदोन्नत मंत्रियों को किया विभागों का आवंटन। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी बने MSME विभाग के मंत्री। प्रदेश में अनुदेशकों को 5 लाख तक स्वास्थ्य बीमा कवर देगी सरकार। बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित अनुदेशक सम्मान समारोह और चेक वितरण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने की घोषणा। और प्रदेश के विभिन्न जिलों में हुए अलग अलग हादसों में 11 लोगों की मौत, 5 घायल। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: जब तक अपनी तय की हुई जगह तक न पहुंच जाओ, यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम। असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
3: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा 3 आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन 3 आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।

मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ। नमस्कार, लखनऊ में अब समय है शास्त्रीय संगीत का। आज सुनिए पार्थ प्रतिम राय का सितार पर बजाया राग तोड़ी और राग भैरवी। पहले हम आपको सुनवा रहे हैं पार्थ प्रतिम राय का राग तोड़ी में सितार वादन।

अभी आपने पार्थ प्रतिम राय का राग तोड़ी में सितार वादन सुना। अब सुनिए पार्थ प्रतिम राय का ही सितार पर बजाया राग भैरवी।

अभी आप पार्थ प्रतिम राय का सितार पर बजाया राग भैरवी सुन रहे थे। इसी के साथ शास्त्रीय संगीत का एक कार्यक्रम समाप्त हुआ। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ, धड़कन देश की। नमस्कार लखनऊ कार्यक्रम भी यहीं समाप्त होता है। सुबह के 8 बजने वाले हैं। थोड़ी देर में आप दिल्ली केंद्र से समाचार सुनेंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत की। भारत और स्वीडन ने आपसी सहयोग को बढ़ाकर व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक करने का फैसला किया। प्रधानमंत्री ने स्वीडन की कंपनियों को मेक इन इंडिया, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन और नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन जैसी योजनाओं के तहत भारत में निवेश बढ़ाने का निमंत्रण दिया। केरलम में कांग्रेस नेता वीडी सतीशन आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। दक्षिण पश्चिम मानसून के सामान्य तिथि से 6 दिन पहले 26 मई को केरलम तट पर पहुंचने की संभावना। और आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। भारत और स्वीडन ने आपसी साझेदारी को बढ़ाकर व्यापक रणनीतिक साझेदारी करने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वीडन यात्रा की ये ऐतिहासिक उपलब्धि है। श्री मोदी ने कल रात गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत की। वे कल स्वीडन की 2 दिवसीय यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचे। भारत स्वीडन संबंधों में असाधारण योगदान और दूरदर्शी नेतृत्व की पहचान के रूप में श्री मोदी को रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार डिग्री कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया। प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के दौरान दोनों नेताओं ने व्यापार, निवेश

0: देश प्रौद्योगिकी, नवाचार, हरित बदलाव, अंतरिक्ष, उभरती प्रौद्योगिकियों, रक्षा, सुरक्षा, एसएमई, अनुसंधान और जनता के बीच संबंधों में सहयोग को प्रगाढ़ करने के तरीकों पर चर्चा की। दोनों नेता भारत यूरोपीय संघ रणनीतिक साझेदारी की भावना और हाल ही में संपन्न भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के अनुरूप जनहित के नए अवसरों की पहचान करने पर भी सहमत हुए। उन्होंने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा की। संयुक्त राष्ट्र और बहुपक्षीय संगठनों में सुधार की तात्कालिकता पर जोर दिया गया और बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग आगे बढ़ाने पर सहमति बनी।
1: यात्रा के दौरान दोनों देशों ने वर्ष 2026 से 2030 तक की संयुक्त कार्य योजना अपनाई, जिसका उद्देश्य अगले 5 वर्षों में द्विपक्षीय आर्थिक आदान प्रदान को दोगुना करना है। इंडिया स्वीडन स्ट्रॉन्गर टुगेदर टुवर्ड्स 2047 थीम के तहत दोनों देशों ने 2027 में भारत में द्विपक्षीय व्यापार एवं निवेश शिखर सम्मेलन आयोजित करने पर सहमति जताई। स्वीडन उद्योगपति और प्रमुख कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत में प्रधानमंत्री ने मेक इन इंडिया और मेड विद स्वीडन पहल के तहत निवेश बढ़ाने का आह्वान किया, विशेषकर राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन और क्रिटिकल मिशन मिनरल मिशन जैसे क्षेत्रों में। दोनों देशों की साझेदारी अब सेमीकंडक्टर और मजबूत सप्लाई चेन जैसे उच्च विकास वाले क्षेत्रों पर विस्तारित होगी। तकनीकी और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में भी यात्रा के दौरान कई महत्वपूर्ण समझौते हुए। प्रधानमंत्री ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत के प्रति समर्थन व्यक्त करने के लिए स्वीडन का विशेष आभार भी व्यक्त किया।
2: आतंकवाद पूरी मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। पिछले वर्ष पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद हमें स्वीडन से मिले समर्थन के लिए मैं प्रधानमंत्री क्रिस्टर्सन का आभार व्यक्त करता हूं। हम आतंकवाद और उसके समर्थकों के विरुद्ध लड़ाई जारी रखेंगे।
1: इस यात्रा में साझा बौद्धिक विरासत और व्यापक क्षेत्रीय सहयोग को भी नहीं पहचान दी। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
0: प्रधानमंत्री 5 देशों की यात्रा के चौथे चरण में आज नॉर्वे जाएंगे। वे 3रे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे और द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। ये श्री मोदी की नॉर्वे की पहली यात्रा होगी। 43 वर्ष बाद भारत के कोई प्रधानमंत्री नॉर्वे जा रहे हैं।
3: प्रधानमंत्री मोदी सम्राट हेराल्ड पंचम और महारानी सोनिया से मिलेंगे और प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोर के साथ बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी नॉर्वे के प्रधानमंत्री के साथ भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। यह यात्रा भारत नॉर्वे संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा करने और उन्हें मजबूत बनाने के तरीकों को खोजने का अवसर प्रदान करेगी। इसमें व्यापार और निवेश पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। 3रा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन कल होगा। इस सम्मेलन में श्री मोदी के साथ नॉर्वे, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड और स्वीडन के प्रधानमंत्री शामिल होंगे। साक्षी सिंह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा 79वें विश्व स्वास्थ्य सम्मेलन में भाग लेने के लिए स्विट्जरलैंड पहुंच गए हैं। सम्मेलन 18 से 23 मई तक चलेगा। इस वर्ष सम्मेलन का विषय है वैश्विक स्वास्थ्य को नया स्वरूप देना, साझा जिम्मेदारी। श्री नड्डा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये वैश्विक स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने में सामूहिक प्रयासों के महत्व को प्रदर्शित करता है। उन्होंने कहा कि ये सम्मेलन 165 से अधिक देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों, गणमान्य जनों और सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों को एक मंच पर लाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
4: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
5: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
4: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन आज केरलम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर आज सुबह 10 बजे तिरुवनंतपुरम में आयोजित समारोह में उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। मुख्यमंत्री पद के लिए नामित सतीशन ने कल शाम शपथ ग्रहण समारोह से पहले 21 सदस्यीय UDF मंत्रिमंडल की घोषणा की।
6: कांग्रेस के नेतृत्व वाली UDF सरकार आज केरलम में 10 साल के अंतराल के बाद शपथ ले रही है। मुख्यमंत्री और 20 अन्य मंत्री तिरुवनंतपुरम के सेंट्रल स्टेडियम में आयोजित समारोह में शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह को देखने के लिए UDF कार्यकर्ता कल दोपहर से ही बड़ी संख्या में राजधानी पहुंच रहे हैं। इस समारोह में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में

0: पक्ष के नेता राहुल गांधी, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना के मुख्यमंत्री, केरलम के निवर्तमान मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर सहित कई वरिष्ठ नेताओं के शामिल होने की उम्मीद है। तिरुवनंतपुरम से स्मिथ एम पल्लुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
1: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रिमंडल में नवनियुक्त और पदोन्नत मंत्रियों को विभाग आवंटित कर दिए हैं। 10 मई को हुए उत्तर प्रदेश सरकार के दूसरे मंत्रिमंडल विस्तार के बाद विभागों का आवंटन किया गया है। इस फेरबदल में 2 कैबिनेट मंत्रियों और 4 राज्य मंत्रियों को सरकार में शामिल किया गया, जबकि 2 राज्य मंत्रियों को स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री के पद पर पदोन्नत किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के 2 दिवसीय दौरे पर कल शाम रायपुर पहुंचे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री शाह रायपुर और बस्तर में कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे।
2: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज सुबह रायपुर में आपातकालीन सेवा डायल 112 के तहत नए वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इसके बाद वे बस्तर जाएंगे और जिले के नेतानार गांव में जन सुविधा केंद्र का शुभारंभ करेंगे। इस केंद्र से दूरस्थ इलाकों में रहने वाले लोगों को शासकीय और डिजिटल सेवाएं आसानी से मिल सकेंगी। इसके बाद श्री शाह जगदलपुर पहुंचकर अमर वाटिका में श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। शाम को वे बस्तर के संग लोक सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ के नक्सल मुक्त होने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री का यह राज्य का पहला दौरा है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
1: मौसम विभाग ने कहा है कि दक्षिण पश्चिम मानसून सामान्य तिथि से 6 दिन पहले 26 मई को केरलम तट पर पहुंचने की संभावना है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दक्षिण पूर्व अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और अंडमान सागर में अगले 2 से 3 दिन तक मानसून के आगे बढ़ने के लिए स्थितियाँ अनुकूल हैं।
3: मौसम विभाग ने अनुमान व्यक्त किया है कि आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, लक्षद्वीप, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में भारी बारिश हो सकती है। वहीं विभाग ने आज पश्चिम उत्तर प्रदेश में भीषण लू चलने की संभावना व्यक्त की है। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और विदर्भ के कुछ इलाकों में भी लू चल सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 से 4 दिनों में उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हो सकती है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में जनगणना के पहले चरण, मकान सूचीकरण और आवास गणना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम में गृह मंत्रालय के अंतर्गत भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त कार्यालय में उप रजिस्ट्रार जनरल V.A. वराडे स्टूडियो में मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम के दौरान श्रोता विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारे नंबर हैं 0112331 0481 और 0112371 71। व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भी सवाल पूछे जा सकते हैं। नीट UG प्रवेश परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले की जांच अब महाराष्ट्र के लातूर से नांदेड़ तक पहुंच गई है। एक अभिभावक पर अपनी बेटी के लिए प्रश्न पत्र 5 लाख रुपए में खरीदने का आरोप है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की टीम ने कल उस व्यक्ति से पूछताछ कर जांच के लिए पुणे कार्यालय में बुलाया है। इस मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने पुणे की आरोपी मनीषा मंधारे को 14 दिन की CBI हिरासत में भेज दिया। एजेंसी के अनुसार मंधारे नीट जीव विज्ञान परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक मामले में मुख्य षड्यंत्रकारी हैं। पश्चिम मध्य रेलवे ने तिरुवनंतपुरम सेंट्रल हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस में आग की घटना की जांच के लिए उच्च प्रशासनिक स्तर की जांच समिति गठित की है। मध्य प्रदेश के लूणी, रिच्छा और विक्रमगढ़ आलोट स्टेशनों के बीच रेलगाड़ी के एक यात्री डिब्बे, सामान रखने वाले डिब्बे और जनरेटर वाले डिब्बे में आग लग गई थी। समिति घटना के कारणों, तकनीकी पहलुओं और सुरक्षा मानकों की विस्तृत जांच करेगी, जिससे भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। चेन्नई में IPL क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने होंगे। प्लेऑफ में बने रहने के लिए ये मैच दोनों टीम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अंक तालिका में हैदराबाद तीसरे और चेन्नई छठे स्थान पर है। प्रतियोगिता में कल दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से हरा दिया। इससे पहले रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हराकर प्लेऑफ में जगह बनाई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्व प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने HD देवेगौड़ा को सही मायने में धरती का सपूत बताया।

0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
1: धन्यवाद विशाल। भारत और नीदरलैंड्स का द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक ले जाने का निर्णय आज के सभी अखबारों की पहली खबर है। अमर उजाला की सुर्खी है, रक्षा, खनिज और AI में मिलकर काम करेंगे भारत नीदरलैंड्स, 17 समझौते हुए, 5 साल का रोड मैप तैयार। होर्मुज जलमार्ग में जहाजों पर हमले और आवागमन को रोकना मंजूर नहीं, संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि का बयान जनसत्ता में है। सुरक्षित आवागमन से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय कानून का पूरी तरह से सम्मान किया जाना चाहिए। भारत को मिलने लगा निर्यात विविधता का लाभ, नए बाजार तलाशने की कवायद का दिखा नतीजा, अप्रैल में भी निर्यात 13% बढ़ा। दैनिक जागरण के अनुसार वैश्विक व्यापार में रुकावटों के बावजूद एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका को निर्यात में हुई मजबूत वृद्धि। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं के नतीजों पर छात्रों के विरोध के बाद बोर्ड के पुनर्मूल्यांकन फीस में बड़ी कटौती के फैसले को दैनिक भास्कर ने प्रमुखता दी है। बोर्ड ने कहा, दोबारा कॉपी जंचवाने में एक नंबर भी बढ़ा तो पूरी फीस लौटाई जाएगी। NDA सरकारों पर लोगों का भरोसा, गृहमंत्री का यह बयान हिंदुस्तान में है। गुजरात के दौरे पर गए गृहमंत्री ने हाल के विधानसभा चुनावों में भाजपा की जीत पर कहा, भाजपा और NDA की सरकारें आज देश के 80% भूभाग पर शासन कर रही हैं। दिल्ली में महिलाओं को मिलेगा 10 करोड़ का कर्ज, नहीं देनी होगी कोई गारंटी। पंजाब केसरी के अनुसार दिल्ली सरकार राष्ट्रीय राजधानी में महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप और स्वयं सहायता समूहों को बिना गारंटी देगी ऋण। तीसरे और चौथे बच्चे के जन्म पर परिवारों को आर्थिक प्रोत्साहन देने की आंध्र प्रदेश सरकार की घोषणा पर नवभारत टाइम्स संपादकीय में लिखा है, ऐसे प्रयोग दूसरी जगहों पर भी हुए लेकिन खास सफल नहीं रहे। दक्षिण भारत के राज्यों ने बहुत मेहनत से जनसंख्या नीति लागू की थी, शिक्षा और जागरूकता पर बाकी राज्यों के मुकाबले अधिक खर्च किया गया, यही कारण है कि आज दक्षिण के राज्य आगे खड़े दिखते हैं। पत्र लिखता है, आबादी को बढ़ाने की नाकाम कोशिशों के बजाय मौजूदा कार्य बल के बेहतर इस्तेमाल पर ध्यान देने होंगे।
0: धन्यवाद मनोज। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत की। भारत और स्वीडन ने आपसी सहयोग को बढ़ाकर व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक करने का फैसला किया। प्रधानमंत्री ने स्वीडन की कंपनियों को मेक इन इंडिया, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन और नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन जैसी योजनाओं के तहत भारत में निवेश बढ़ाने का निमंत्रण दिया। केरलम में कांग्रेस नेता VD सतीशन आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। दक्षिण पश्चिम मानसून के सामान्य तिथि से 6 दिन पहले 26 मई को केरलम तट पहुंचने की संभावना। और IPL क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Shagun Chopra. The headlines. Prime Minister Narendra Modi holds bilateral talks with his Swedish counterpart Ulf Kristersson in Gothenburg. India and Sweden decide to elevate their bilateral ties to strategic partnership. Prime Minister Modi invites Swedish companies to enhance their presence in India under Make in India, National Green Hydrogen Mission and National Critical Mineral Mission initiatives. Congress leader VD Satheeshan to be sworn in as Chief Minister of Keralam today. Southwest monsoon likely to hit Keralam coast on 26th of this month, 6 days ahead of its normal date. And in IPL cricket, Delhi Capitals beat Rajasthan Royals by 5 wickets in Delhi. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi held talks with his Swedish counterpart Ulf Kristersson in Gothenburg last night. Prime Minister Modi was awarded Sweden's highest honour, the Royal Order of the Polar Star, Degree Commander Grand Cross, in recognition of his exceptional contributions to bilateral ties and his visionary leadership. The award is the highest distinction that can be given to a head of government. This is Prime Minister Modi's 31st international honour. During the delegation-level talks, the two leaders reviewed the full spectrum of India-Sweden relations and agreed to elevate the bilateral relationship to a strategic partnership

0: 9404 or post your questions on X using the hashtag AskAIR. On to sports. In IPL cricket, Delhi Capitals defeated Rajasthan Royals by 5 wickets at Arun Jaitley Stadium, Delhi last night. Chasing a target of 194 runs set by Rajasthan Royals, Delhi Capitals scored 197 for 5 in 19.2 overs. KL Rahul was the top scorer with 56 runs. For Delhi Capitals, Mitchell Starc took 4 wickets, which was later adjudged player of the match. And now for a look at today's newspapers, it's over to Neera Arakul.
1: Thank you, Shagun. Sweden confers its highest honour on PM Narendra Modi. The Royal Order of the Polar Star Degree Commander Grand Cross is Prime Minister Modi's 31st international award, is the top headline in the Pioneer, while the Asian Age headlines trade to chips. India inks 14 Netherlands pacts, lifts ties, Modi jettin, hold talks, adopt strategic partnership roadmap. The statesman mentions metro to run extra rain train trips to encourage use of public transport. This capacity expansion aims to ensure uninterrupted service and efficient passenger management. UAE nuclear plant attacked by drone, testing Iran truce, writes the Hindustan Times. While the Times of India states drone attack sparks fire at UAE nuclear plant. In an editorial titled Diversification Gains, the Hindu commends India's export performance in April 2026, underscoring the attempts by the government and industry to diversify in terms of crisis. And finally, the Indian Express writes HPV vaccination sees uptake, 1,100 girls receiving the shot. The figure reflects a slow but steadily accelerating start to one of the country's most important public health drives in recent years in preventing cervical cancer. And with that, it's back to you, Shagun.
0: Thank you, Neera. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi holds bilateral talks with his Swedish counterpart Ulf Kristersson in Gothenburg. India and Sweden decide to elevate their bilateral ties to strategic partnership. Prime Minister Modi invites Swedish companies to enhance their presence in India under Make in India National Green Hydrogen Mission and National Critical Mineral Mission initiatives. Congress leader V.D. Satheeshan to be sworn in as Chief Minister of Kerala today. Southwest monsoon likely to hit Kerala's coast on 26th of this month, 6 days ahead of its normal date. And in IPL cricket, Delhi Capitals beat Rajasthan Royals by 5 wickets in Delhi. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की खास खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने स्वीडन के अपने हमनसब उल्फ क्रिस्टर्सन कोटनबर्ग से दोतरफा बातचीत की। भारत और स्वीडन ने अपनी दोतरफा ताल्लुकात को दिफाई शराकत दारी तक ले जाने का फैसला किया। वज़ीर-ए-आज़म ने स्वीडन की कंपनियों को मदऊ किया है कि वो मेक इन इंडिया, माहौल के लिए साजगार हाइड्रोजन के कौमी मिशन और अहम मादनियात के कौमी मिशन इकदाम के तहत भारत में अपनी सरमायाकारी में इजाफा करें। कांग्रेस रहनुमा वी डी सतीशन को आज केरलम के वजीर आला के ओहदे का हलफ दिलाया जाएगा। इम्कान है कि जुनूब मगरबी मानसून इस महीने की 26 तारीख को केरलम के साहिल पर पहुँच जाएगा, जो मामूल की तारीख से 6 दिन पहले है। और आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से शिकस्त दी। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कल रात गोटनबर्ग में स्वीडन के अपने हमनसब उल्फ क्रिस्टर्सन से बातचीत की। वो इस मुल्क के 2 रोजा दौरे पर कल गोटनबर्ग पहुंचे थे। जनाब मोदी को स्वीडन के आला तरीन एजाज रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार डिग्री कमांडर ग्रैंड क्रॉस से नवाजा गया। उन्हें यह एजाज दोतरफा ताल्लुकात में उनके गैर मामूली तआवुन और उनकी दूरंदेश क़यादत को तस्लीम करते हुए दिया गया है। ये अवार्ड आला तरीन इम्तियाज़ है जो किसी सरबराह हुकूमत को दिया जाता है। ये वज़ीर आज़म मोदी का 31वां बैन अल-अक़वामी एजाज है। वफ़द की सतह की बातचीत में दोनों रहनुमाओं ने भारत स्वीडन ताल्लुकात के पूरे मंजरनामे का जायज़ा लिया और दोतरफा ताल्लुकात को दिफाई शराकत दारी तक ले जाने से इत्तेफाक किया, जो इन

0: भारत 5G से 6G ट्रांजिशन, AI एनेबल्ड नेटवर्क्स, सिक्योर कनेक्टिविटी और डिजिटल इंक्लूजन में बड़ा पार्टनर बन सकता है।
1: वजारत खारजा ने कहा है कि स्वीडन में वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने वाले CEOs और कारोबारी रहनुमाओं ने भारत में काफी दिलचस्पी जाहिर की है और पिछले कुछ बरसों में पायदार इक्तसादी इस्लाहात के जरिए मुल्क में यकसर तब्दीली की सताइश की है। यूरोपी गोल में सनती मीटिंग के बाद नामनिगारों से खिताब करते हुए वजारत खारजा में मगरबी उमूर के सेक्रेटरी CB George ने बताया कि CEOs और कारोबारी रहनुमाओं ने हालिया बरसों के दौरान भारत में देखी गई काबिल जिक्र तब्दीलियों को उजागर किया। जनाब जॉर्ज ने मजीद कहा कि वजीर आजम मोदी और स्वीडन के वजीर आजम उल्फ क्रिस्टरसन ने रविन्द्रनाथ टैगोर की मुश्तरका सकाफती विरासत के जश्न के तौर पर खसूसी तोहफों का तबादला किया। वजीर आजम मोदी अपने दौरे के चौथे मरहले में तीसरी भारत नॉर्डिक समिट और दोतरफा सरगर्मियों के लिए आज नॉर्वे पहुंचेंगे। ये वजीर आजम मोदी का नॉर्वे का पहला दौरा तो है ही, अलबत्ता पिछले 43 साल में भारत के किसी वजीर आजम का नॉर्वे का पहला दौरा भी है। जनाब किंग हेराल्ड 5 और जनाब मोदी किंग हेराल्ड 5 और क्वीन सोंजा से मुलाकात करेंगे और वजीर आजम जोनास गहर स्टोर के साथ दोतरफा बातचीत करेंगे। जनाब मोदी नॉर्वे के वजीर आजम के साथ साथ भारत नॉर्वे तिजारत और तहकीक की सरबराह कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। कांग्रेस रहनुमा VD सतीशन को आज केरलम के वजीर आला के तौर पर हलफ दिलाया जाएगा। केरलम के गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर उन्हें तिरुवनंतपुरम में एक तकरीब में आज सुबह 10 बजे ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाएंगे। नामजद वजीर आला ने कल शाम UDF की 21 रुकनी काबीना का ऐलान किया था। तफसील हमारे नमा निगार से।
2: कांग्रेस की क्यादत वाली UDF वजारती काबीना को आज केरलम में 10 साल के वक्फे के बाद हलफ दिलाया जा रहा है। वजीर आला और 20 वजीर तिरुवनंतपुरम के सेंट्रल स्टेडियम में मुनक्किद एक तकरीब में हलफ लेंगे। वजीर आला VD सतीशन समेत नई वजारती काबीना के 16 अराकीन पहली बार वजीर का ओहदा संभालेंगे। UDF कारकुन हलफ बर्दारी की तकरीब में शिरकत के लिए बड़ी तादाद में कल दोपहर से ही रियासत की राजधानी पहुंच रहे हैं। उम्मीद है कि कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना के वज़ीरे आला, सुबुकदोश वजीर आला पिनराई विजयन और BJP के रियासती सदर राजीव चंद्रशेखर इस तकरीब में शिरकत करेंगे। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पल्लुरुथी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए जमीर रजवी।
1: ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह छत्तीसगढ़ के 2 रोजा दौरे पर कल शाम रायपुर पहुंचे। रियासत के अपने दौरे में जनाब शाह रायपुर और बस्तर में कई प्रोग्रामों में हिस्सा लेंगे। पेश है एक रिपोर्ट।
3: मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह अपने छत्तीसगढ़ दौरे के पहले दिन आज सुबह रायपुर में हंगामी खिदमात डायल 112 के तहत नई गाड़ियों को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इसके बाद वो बस्तर के लिए रवाना होंगे, जहां जिले के नेतानार गांव में अवामी सहूलत मरकज के इफ्तिताह करेंगे। इस मरकज का मकसद दूर दराज के इलाकों में रिहाइश पजीर लोगों की हुकूमत और डिजिटल खिदमात तक रसाई को आसान बनाना है। इसके बाद जनाब शाह जगदलपुर पहुंचेंगे और अमर वाटिका पर शहीदों को खराज अकीदत पेश करेंगे। जनाब शाह का जगदलपुर की बादल एकेडमी में दोपहर में शहीदों के अफराद खानदान, हिफाजती अहलकारों, माओनवाजों के तशद्दुद से मुतासर अफराद और मुख्तलिफ मकामी बिरादरियों के नुमाइंदों से मुलाकात का भी प्रोग्राम है। वजीर दाखला शाम को लोक सकाफती प्रोग्राम बस्तर के संघ में मौजूद रहेंगे। मरकजी वजीर दाखला कल 19 मई को जगदलपुर में वस्ती जोनल काउंसिल की 26वीं मीटिंग की सदारत करेंगे। इस मीटिंग में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के वजीर आला शिरकत करेंगे। छत्तीसगढ़ को माओनवाजों से पाक करार दिए जाने के बाद जनाब शाह का रियासत का यह पहला दौरा है। रायपुर से विकल्प शुक्ला की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फैसल खान।
1: सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू इस महीने की 25 तारीख को साल 2026 के लिए पद्म अवार्ड अदा करेंगी। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर वजारत दाखिला ने कहा कि सदर जमहूरिया राष्ट्रपति भवन में मुनक्कद होने वाली पहली शहरी एजाज से मुतालिक तकरीब के दौरान सिविल इन्वेस्टिचर तकरीब में पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री अवार्ड अदा करेंगी। इस साल भारत सरकार ने मजमूई तौर पर 131 पद्म अवार्ड्स का ऐलान किया है। सेहत और खानदानी बहबूद के मरकजी वजीर जगत प्रकाश नड्डा 79वीं आलमी सेहत

0: असेंबली में शिरकत के लिए स्विट्जरलैंड पहुंच गए। ये 6 रोजा तकरीब आज से जिनेवा में शुरू होगी। सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब नड्डा ने कहा कि यह असेंबली 165 मुल्कों के वज़राए सेहत, मुअज्ज़ज़ अफराद और अवामी सेहत माहिरीन को यकजा करेगी, जहां मुस्तहकम ज्यादा शमूलियाती और लचकदार सेहत देखभाल निज़ाम के तहत मुश्तरका आलमी अज़्म की यकीन दहानी कराई जाएगी। मगरिब वस्ती रेलवे ने तिरुवनंतपुरम सेंट्रल हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस में कल आग लगने के वाकये की जाँच के लिए आला इंतजामी ग्रेड सतह की इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी है। आग लगने का वाकया ट्रेन के एक मुसाफिर कोच और एक लगेज ब्रेक और जनरेटर कार में उस वक्त पेश आया जब ट्रेन मध्य प्रदेश के लूनी, रिचा और विक्रमगढ़ अलौत स्टेशनों के दरमियान थी। भारत ने मुत्तहिदा अरब अमारात के बारख न्यूक्लियाई मरकज को निशाना बनाकर किए गए हमले पर गहरी तश्वीश का इजहार किया है। एक बयान में वजारत खारजा ने कहा है कि इस तरह की कार्रवाइयाँ नाकाबिल कबूल हैं और कशीदगी के खतरनाक फैलाव की नुमाइंदगी करती हैं। नई दिल्ली ने सब्र तहम्मुल की अपील करते हुए बातचीत और सिफारतकारी की फौरी ज़रूरत पर जोर दिया है। इससे पहले कल मुत्तहिदा अरब अमारात के अज़दफरा के बारख न्यूक्लियाई मरकज के अहाते में ड्रोन हमला किया गया, जिससे मरकज की अंदरूनी हदूद के बाहर इलेक्ट्रिकल जनरेटर में आग लग गई। भारत के महकमा मौसमियात ने कहा है कि जुनूब मगरबी मानसून के 1 जून की मुकर्रर तारीख से 6 दिन पहले 26 मई को केरलम पे आ जाने का इम्कान है। हमारे नामा निगार ने खबर दी है कि जुनूब मगरबी मानसून की अगले 2 से 3 दिन के दौरान जुनूब मशरकी बहरे अरब, खलीज बंगाल, अंडमान जजायर और अंडमान समंदर के हिस्सों में आगे बढ़ने के लिए मौसमी हालात साजगार हैं। एक रिपोर्ट।
1: भारतीय महकमे मौसमियात ने कहा है कि अंडमान और निकोबार जजायर, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, साहिली कर्नाटक, केरलम और माहे में आज शदीद बारिश हो सकती है। महकमे मौसमियात ने मजीद कहा कि लक्षद्वीप, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, जुनूबी अंदरूनी कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में भी इसी तरह के मौसमी हालात रह सकते हैं। महकमे मौसमियात ने मगरबी उत्तर प्रदेश में आज गर्मी की शदीद लू चलने की पेशगोई की है। दिल्ली से अमन यादव की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए जमीर रजवी।
0: आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से हरा दिया। नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में कल शाम खेले गए इस दिलचस्प मैच में जीत के जरिए दिल्ली कैपिटल्स ने प्लेऑफ की अपनी उम्मीदें बरकरार रखी हैं। इससे पहले बल्लेबाजी करते हुए राजस्थान रॉयल्स ने मुकर्रर 20 ओवर्स में 8 विकेट के नुकसान पर 193 रन बनाए। जवाब में दिल्ली कैपिटल्स ने 194 रन के निशाने के लिए खेलते हुए 19 ओवर्स और 2 गेंदों में 197 रन बनाए। इस जीत के साथ दिल्ली कैपिटल्स आईपीएल पॉइंट्स टेबल में 8वें मकाम से 7वें मकाम पर पहुंच गई है और प्लेऑफ की दौड़ में शामिल है। एक दीगर मैच में धर्मशाला में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हरा दिया। इस तरह रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली टीम बन गई है। पहले बल्लेबाजी करते हुए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने मुकर्रर 20 ओवर्स में 4 विकेट के नुकसान पर शानदार 222 रन बनाए। जवाब में 223 रन के लिए खेलते हुए पंजाब किंग्स मुकर्रर ओवर्स में 8 विकेट खोकर 198 रन ही बना सकी। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं फैसल खान।
2: शुक्रिया असलम। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाली आज की तकरीबन सभी उर्दू अखबार ने वजीर आजम के नीदरलैंड्स दौरे की खबर को अव्वलियत के साथ शाये किया है। रोजनामा इनकलाब ने सुर्खी लगाई है, भारत और नीदरलैंड्स के दरमियान दो तरफा तालुकात को मजीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक हुआ। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के स्वीडन पहुंचने पर उन्हें आला तरीन एजाज से सरफराज किया गया। रोजनामा प्रताप ने जजों की तादाद बढ़ाने की खबर को नुमाया तौर पर शाये करते हुए सुर्खी लगाई है, सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जजों की तादाद 34 से बढ़ाकर 38 करने की मरकजी काबीना के फैसले को मंजूरी दे दी है। रोजनामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने वजीर दाखिला अमित शाह के गुजरात दौरे की खबर को सुर्खी बनाया है। अमित शाह ने कहा कि गुजरात टेक्नोलॉजी के मैदान में भी मुल्क की क्यादत करेगा। अखबारात की कुछ अहम खबरें, बेंगलुरु मुंबई वंदे भारत स्लीपर सर्विस जल्द शुरू होगी, अश्विनी वैष्णव का बयान। अमरीका से चीन 200 से ज्यादा तैयारी खरीदेगा। मुत्तहिदा अरब अमारात के जौहरी पावर प्लांट पर ड्रोन हमला। ईरान ने अब नए हुरमुज से गुजरने वाले बहरी जहाजों के लिए टोल लगाने का मंसूबा बनाया।
0: और आखिर में खास खास खबर एक बार फिर, वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने स्वीडन के अपने हमनसब उल्फ क्रिस्टरसन गोटनबर्ग से दोतरफा बातचीत की। भारत और स्वीडन ने अपने दोतरफा ताल्लुकात को दिफाई शराकत दारी तक ले जाने का फैसला किया। वजीर आजम ने स्वीडन की कंपनियों को मदऊ किया है

वो मेक इन इंडिया, माहौल के लिए साजगार हाइड्रोजन के कौमी मिशन और अहम मादनियात के कौमी मिशन इकदाम के तहत भारत में अपनी सरमायाकारी में इजाफा करें। कांग्रेस रहनुमा वी डी सतीशन को आज केरलम के वजीर आला के ओहदे का हलफ दिलाया जाएगा। इम्कान है कि जनूब मगरबी मानसून इस महीने की 26 तारीख को केरलम के साहिल पर पहुंच जाएगा, जो मामूल की तारीख से 6 दिन पहले है। और आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से शिकस्त दी। इसी के साथ ये खबरनामा खत्म हुआ।

मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। प्रस्तुत है श्रोताओं के पत्र व ईमेल पर आधारित कार्यक्रम आपके मेल आपके गीत, और इस कार्यक्रम में मैं अंजलि श्रीवास्तव आज आपके साथ हूँ। कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले हम अपने श्रोताओं को इस कार्यक्रम का ईमेल एड्रेस बता देते हैं, आपके पत्र आपके मेल @gmail.com। आप इस ईमेल एड्रेस पर हमें मेल भेजिए और सुनिए अपनी पसंद के गीत।

और श्रोताओं, हमारे पास मेल आने शुरू हो गए हैं। पहला मेल आया है हमारे पास मेरठ कैंट से, दिग्दर्शन कविता, राधा नामदेव, संजय ढींगड़िया, संदीप मक्कड़, अनिल जैन और दर्शन भाई का। और ये सुनना चाहते हैं सफ़र फिल्म का गीत मुकेश की आवाज़ में। इसके अलावा हमारे पास इसी गीत को सुनने के लिए मेल भेजा है दतरंगी से भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा और रुद्र वर्मा ने। शंभाजी नगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश, श्रीमती शीतल राजेश जी ने। आप सभी सुनना चाहते हैं सफ़र फिल्म का ये गीत।

0: सुनो सुनो सुनो गांव वालों, केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
1: आरबीआई कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए। जनपद हरदोई से विजय लक्ष्मी कुशवाहा सुनना चाहती हैं धड़कन फिल्म का गीत उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजों में। और इसी गीत को सुनने के लिए हमारे पास मेल भेजा है लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाब साबिर राही, मेहराज जहानी, और जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र चंसोलिया, आदर्श सार्थक और आलोकिक चंसोलिया जी ने। आप सभी सुनिए अपनी पसंद का ये गीत फिल्म धड़कन से।

0: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

हमारे पास मेल है यवतमाल महाराज से, राहुल मनवर, सल्ला मनवर, विशाल और चेतन मनवर, रोशनी मनवर और बेबी प्रियांशी का। और एक मेल है हमारे पास पाटन दुर्ग से, देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव तामुरिया, डॉली और बेबी पूजा तामुरिया का। आप सभी सुनना चाहिए।

0: अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
1: और अब जो मेल हमारे पास है, लखीमपुर खीरी से विजयपाल यादव, शुभम यादव, शिखा यादव और ऋचा यादव का, ये लिखते हैं कि इन्हें आकाशवाणी लखनऊ से प्रसारित सभी कार्यक्रम बहुत अच्छे लगते हैं। नमस्ते लखनऊ के कार्यक्रम नियमित सुनते हैं। आज का विविधा कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा और ये सुनना चाहते हैं तहलका फिल्म का गीत कुमार सानू, अनुराधा पौंडवाल और बाबला मेहता की आवाज़ों में।

0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए।

आकाशवाणी लखनऊ से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपके मेल आपके गीत, और इस कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति में हम आपको सुनवाते हैं चंडीगढ़ सिटी से मेल भेजा है हमारे पास सतीश अनेजा, विमला अनेजा ने, और मुंगिसापुर से मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरून निशा, शाबिस्ता, मोहम्मद नसीब, पलक लुबना और यश मंसूरी। आप सभी सुनना चाहते हैं किस्मत फिल्म का गीत आशा भोसले की आवाज़ में।

श्रोताओं, इस गीत के साथ ही कार्यक्रम आपके मेल आपके गीत अब यहीं समाप्त हो रहा है। दीजिए इस कार्यक्रम से अंजलि श्रीवास्तव को अनुमति। नमस्कार।

0: हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। जिले की हलचल।
1: जिले की हलचल आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए बरेली और सीतापुर जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं बरेली जिले की हलचल। आलेख और स्वर है नाजिया अंजुम का।
2: बरेली में अब कोई भी फरियादी अपनी समस्या का समाधान पाए बिना वापस नहीं लौटेगा। ये संभव हुआ है ऑनलाइन मॉनिटरिंग के माध्यम से। बरेली जिले में सभी तहसीलों की 10 से 12 के बीच जनता दर्शन की लाइव मॉनिटरिंग की जा रही है, जिसमें सभी तहसीलदारों BDO SDM को 10 से 12 के बीच अपने दफ्तर में बैठना है, जिसकी मॉनिटरिंग जिला अधिकारी बरेली अपने ऑफिस से करते हैं। यही नहीं, अगर जिला अधिकारी कार्यालय में किसी तहसील का कोई मामला आता है तो जिला अधिकारी बरेली संबंध अधिकारी से सीधे जुड़कर उस व्यक्ति की समस्या का समाधान करते हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय से जनता दर्शन की लाइव मॉनिटरिंग के आदेश को बरेली जिले में बखूबी पूरा किया जा रहा है। जिलाधिकारी कार्यालय की भी मॉनिटरिंग लखनऊ से की जाती है। इसके साथ ही बरेली जिले की सभी तहसीलें बरेली जिला मुख्यालय से जुड़ती हैं, जिसमें हर फरियादी को अपनी समस्या का समाधान मिलता है। जनता दर्शन के दौरान 10 से 12 के बीच जिलाधिकारी सहित संबंधित विभागों के अधिकारी जनसुनवाई में मौजूद रहते हैं। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्या अधिकारियों के सामने रखते हैं। जिलाधिकारी बरेली का कहना है कि जनता दर्शन का उद्देश्य आम आदमी की समस्याओं का समयबद्ध और निष्पक्ष समाधान करना है, ताकि लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर ना काटने पड़े। लाइव मॉनिटरिंग के चलते अधिकारियों की जवाबदेही तय की जा रही है और हर शिकायत की प्रगति पर नजर रखी जा रही है।
3: मुख्यमंत्री कार्यालय से यूपी के 75 जिलों के जो जिलाधिकारी के कार्यालय में जो जनता दर्शन कार्यक्रम संपन्न हो रहा है, उसकी लाइव मॉनिटरिंग की जाती है, जिसमें सचिव और प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारी ये देखते रहते हैं कि जनता दर्शन में आने वाले जो हमारे फरियादी हैं, शिकायतकर्ता हैं, उनकी शिकायतों का किस प्रकार से सुनवाई हो रही है, किस प्रकार से आम जनमानस के प्रति व्यवहार है और किस प्रकार से उनकी उचित गुणवत्ता के साथ उनकी समस्याओं का समाधान किया जा रहा है, उसी को ध्यान में रखते हुए और उससे जो रिजल्ट हो रहे थे उसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने जिला प्रशासन कह सकते हैं कि एक नया नवाचार किया है। हम लोगों ने अपने यहाँ भी एक बड़ी स्कीम के माध्यम से जितने भी हमारे 6 तहसीलों के SDM हैं, उनके कार्यालय, जो हमारे पास 15 विकास खंड हैं, उनके विकास खंड अधिकारी के कार्यालय और 19 हमारे पास जो है वो नगर पालिका और नगर निगम के EO के कार्यालय हैं, उन सभी को हमने अपने यहाँ जोड़ते हुए उनकी भी लाइव मॉनिटरिंग प्रारंभ किया है। तो लाइव मॉनिटरिंग के दौरान कार्य के जो आम जनमानस के प्रति उनकी किस प्रकार का व्यवहार है, किस प्रकार से शिकायतों को सुन रहे हैं, किस प्रकार से समस्या का समाधान कर रहे हैं, इस पे लगातार हम लोग नजर रख रहे हैं और यही वजह है कि कार्य की जो गुणवत्ता है लगातार उच्चतर होती जा रही है।
2: बरेली में धार्मिक पर्यटन को नई ऊंचाई मिलने जा रही है। गत दिनों उत्तर प्रदेश के पर्यटन एवं सांस्कृतिक मंत्री जयवीर सिंह ने नाथ कॉरिडोर में कराए जा रहे कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। जिले में 98 करोड़ की लागत से सभी नाथ मंदिरों का कायाकल्प कराया जा रहा है, जिसमें त्रिवटी नाथ, धुपेश्वर नाथ, अलकनाथ विशेष रूप से शामिल है। इन मंदिरों में सरकार द्वारा निर्माण कार्य कराया जा रहा है, ताकि

0: किया। जिले में 98 करोड़ की लागत से सभी नाथ मंदिरों का कायाकल्प कराया जा रहा है, जिसमें त्रिवटी नाथ, धुपेश्वर नाथ, अलकनाथ विशेष रूप से शामिल है। इन मंदिरों में सरकार द्वारा निर्माण कार्य कराया जा रहा है ताकि धार्मिक पर्यटन को एक नई दिशा मिल सके। एक कार्यक्रम में पहुंचे पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि पर्यटन को प्रदेश में नई ऊर्जा मिल रही है। वहीं उन्होंने मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री द्वारा ईंधन बचाने की अपील पर बोलते हुए कहा कि ये राष्ट्र हित का काम है। बरेली जिले में जल्द ही इको फ्रेंडली नगर वन बनने वाला है, जिसका शिलान्यास गत दिनों वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री अरुण कुमार सक्सेना ने किया। ये नगर वन शहरवासियों के लिए एक प्राकृतिक रमणीय स्थल बनने जा रहा है, जिसमें प्रकृति का खास ध्यान रखा जाएगा। इस नगर वन में बच्चों के लिए किड जोन भी विकसित किया जाएगा, जिससे बच्चे यहाँ आकर प्रकृति को समझ सके। सबसे बड़ी बात यह है कि इस इको फ्रेंडली नगर वन में सब कुछ प्राकृतिक ही प्रयोग किया जाएगा, कॉन्क्रीट और ईंट का प्रयोग नहीं किया जाएगा। रोहिलखंड विश्वविद्यालय द्वारा गोद लिए गए दिव्यांग विद्यालय दिशा पब्लिक स्कूल में गत दिनों गुजरात दिवस का आयोजन धूमधाम से किया गया। स्कूली बच्चों ने रंगारंग प्रस्तुति देकर कार्यक्रम को और भी शानदार बनाया। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल एवं कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल ने शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि बड़े बड़े विश्वविद्यालय बनाना आसान है, लेकिन बच्चों को सही दिशा देना, हुनर सिखाना और आत्मनिर्भर बनाना सबसे बड़ी चुनौती है। उन्होंने विश्वविद्यालयों को समाज जोड़ते हुए कम से कम 5 गांव गोद लेकर उन्हें विकसित करने का आह्वान किया। राज्यपाल ने कहा कि यूनिवर्सिटी की जिम्मेदारी केवल किताबों तक सीमित नहीं है, उन्हें गांव में जाकर महिलाओं, बच्चों और किसानों की समस्याएं सुननी चाहिए, उनके समाधान में भागीदारी निभानी चाहिए। टीबी मुक्त भारत अभियान का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में अब तक 4 लाख से अधिक मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। राज्यपाल ने कहा कि हर विश्वविद्यालय को राज्यों की स्थापना दिवस मनाने चाहिए, जिससे छात्रों को देश की विविधता और विकास मॉडल की जानकारी मिले। उन्होंने अपने गुजरात कार्यकाल का अनुभव साझा करते हुए बताया कि ग्रामीण महिलाओं बड़े स्तर पर परीक्षण अभियान चलाया गया, जिसमें 1.5 करोड़ महिलाओं की स्क्रीनिंग हुई और हजारों को समय से इलाज मिला।
1: बरेली जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं सीतापुर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है दीपक श्रीवास्तव का।
2: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशन में सीतापुर स्थित पवित्र तीर्थ स्थल नैमिषारण्य को भव्यतम स्वरूप प्रदान किया जा रहा है। इसी क्रम में पौराणिकता और नवाचार को समाहित करते हुए नैमिष स्थित पुरानी धर्मशाला को आधुनिक शिल्प ग्राम इंटीग्रेटेशन सेंटर के रूप में विकसित किया जाएगा। खास बात यह है कि विरासत भवन की मूल संरचना को सुरक्षित रखते हुए उसे आधुनिक सुविधाओं से जोड़ा जाएगा। प्रदेश सरकार ने इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए 372 करोड़ रुपए की मंजूरी देते हुए पहली किस्त के रूप में 2.98 करोड़ रुपए जारी किए हैं। उत्तर प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि नैमिषारण्य के इस इंटरप्रिटेशन सेंटर में श्रद्धालुओं को स्थानीय इतिहास, धार्मिक महत्व और सांस्कृतिक विरासत की विस्तृत जानकारी मिलेगी। इसके लिए भवन के भीतर अलग अलग थीम पर आधारित गैलरियां बनाई जाएंगी, जिनमें कॉस्मिक ऑर्डर, जीवन का विकास, सभ्यता का उदय, महाकाव्य और ज्ञानोदय जैसे विषयों को रोचक रूप से प्रस्तुत किया जाएगा। परियोजना के तहत पूरे परिसर का समग्र विकास किया जाएगा, जिससे यहां आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं मिल सके। योजना अंतर्गत आधुनिक प्रवेश लाबी, आकर्षक एम्फी थिएटर, मूर्ति कला मार्ग और स्वच्छ शौचालय ब्लॉक विकसित किए जाएंगे। इसके साथ ही मौजूदा भवन का नवीनीकरण और नई इमारत का निर्माण किया जाएगा, जिससे इस तरह डिजाइन किया जाएगा कि पूरे क्षेत्र का सांस्कृतिक और आध्यात्मिक वातावरण और अधिक सजीव व आकर्षक बन सके। अपर मुख्य सचिव पर्यटन, संस्कृत एवं धर्मार्थ कार्य विभाग अमृत अभियान ने बताया कि नैमिषारण्य जैसे पवित्र तीर्थ स्थल का समग्र विकास प्रदेश सरकार की शीर्ष प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने बताया यहाँ श्रद्धालुओं आधुनिक और समग्र सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ इसकी समृद्ध ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण पर विशेष जोर दिया जा रहा है। प्रस्तावित इंटरप्रिटेशन सेंटर के जरिए श्रद्धालुओं और पर्यटकों को एक ही स्थान पर इस पावन स्थल के धार्मिक महत्व, परंपराओं और इतिहास की व्यापक जानकारी मिल सकेगी। इससे न केवल धार्मिक पर्यटन को नई गति मिलेगी, बल्कि क्षेत्र में सांस्कृतिक जागरूकता बढ़ेगी और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती प्राप्त होगी। सीतापुर के अपर जिलाधिकारी नीतीश कुमार सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में स्वगणना 2027 के तहत सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रशिक्षण देकर सेल्फ सर्वे कराया गया। साथ ही सभी विभागों व विकास खंडों में विशेष अभियान चलाकर अधिकाधिक सेल्फ इन्यूमरेशन

0: सुनिश्चित कराने तथा अधीनस्थों को प्रेरित करने के निर्देश दिए गए। नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरु एवं विधायक मिश्रित रामकृष्ण भार्गव ने आम जनमानस से अपील की कि जनगणना 2027 में अपनी जनगणना संबंधी सूचनाएं डिजिटल माध्यम से निःशुल्क दे सकते हैं, जिससे जनगणना का कार्य सुचारू रूप से सम्पन्न हो सकता है। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का आयोजन बहुत ही हर्ष उल्लास और उत्साह के साथ बाबा जंडली नाथ मंदिर के प्रांगण में आयोजित किया गया। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा गुजरात के सोमनाथ मंदिर में रुद्राभिषेक किया गया, जिसका सजीव प्रसारण सभी आगंतुकों ने देखा। महामहिम राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना कर इस पर्व को समारोह पूर्वक मनाया। जनपद सीतापुर में पुलिस लाइन परिसर से कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा बाबा जंडली नाथ मंदिर में समाप्त हुई, जहां सभी गणमान्य जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों को बाबा जंडली नाथ का अभिषेक एवं पूजन अर्चन सम्पन्न कराया गया। सभी अतिथियों ने श्रद्धालुओं को संबोधित करने के साथ सजीव प्रसारण का अनुसरण किया। अंत में जिलाधिकारी द्वारा सभी अतिथियों का धन्यवाद ज्ञापित किया गया। संचालन राज शर्मा जिला व्यायाम शिक्षक ने किया। इस अवसर पर अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद सीतापुर वैभव त्रिपाठी एवं बड़े संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे।
1: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
2: जिले की हलचल कार्यक्रम समाप्त हुआ।
3: अब वक्त है उड़ान का, अब वक्त है पहचान का, अब वक्त है अपने हुनर को आवाज देने का। जुड़िए नई उड़ान से, जहां सपनों को मिलता है आगाज और मेहनत को मिलती है आवाज।
4: तुमने दी आवाज लो मैं आ गया।
3: हर शाम 5:45 से 6:15 तक सिर्फ आकाशवाणी लखनऊ पर। नई उड़ान, आगाज हर हुनर का, आवाज हर मेहनत की।
5: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
6: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। आइए सुनते हैं देशगान।

0: अभी आप देश गान सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। पेश खिदमत है उर्दू प्रोग्राम।
1: सामईन, आज का उर्दू प्रोग्राम लेकर हाजिर है आपका मेजबान आसिफ इकबाल। सलाम कबूल फरमाएं। आज हम पेश करते हैं आकाशवाणी के 90 साल होने पर इरम मेडिकल यूनानी कॉलेज कैंपस में हुए क्विज प्रोग्राम की पहली किस्त।
2: आकाशवाणी एट 90 क्विज प्रोग्राम में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेजबान शम्सुल आरफीन और मेरे साथ हैं।
3: मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त जमशेद।
2: सलाम कबूल फरमाइए।
3: सामईन, आकाशवाणी के 90 साल पूरे हो रहे हैं। इस मौके पर आज हम मौजूद हैं इरम यूनानी मेडिकल कॉलेज में, जहां पर हम आकाशवाणी एट 90 क्विज प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं।
2: तो सबसे पहले हम खैर मकदम करते हैं कॉलेज के प्रिंसिपल मोहतरम जनाब प्रोफेसर अब्दुल हलीम साहब का और मोहतरम जनाब डॉक्टर जुबैर खान साहब का। हकम के फराइज अंजाम दे रहे हैं मोहतरम जनाब सुभाष खन्ना साहब और मोहतरम जनाब डॉक्टर जुबैर खान साहब।
3: तो इस क्विज में कॉलेज की चार टीमें हिस्सा ले रही हैं। चार टीमों के नाम आकाशवाणी के मशहूर प्रोग्राम्स के नाम पर हैं, जो कि इस तरह है। टीम हवा महल, जिसमें दो लोग मौजूद हैं, हबीबुल्ला और उबैदुर रहमान। जोरदार तालियां। साथ में है टीम छाया गीत, अब्दुल्ला सिद्दीकी और फजील हाशिम की शक्ल में। तीसरी टीम है हमारी आबशार, जोया आलम और तभी नाज है मौजूद इसमें। और टीम है रजनीगंधा, तहसीन और शाइमा है मौजूद इस टीम में। तो आइए शुरू करते हैं आकाशवाणी एट 90 क्विज प्रोग्राम।
2: तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि हमारे इस क्विज प्रोग्राम में चार राउंड होंगे और चारों के नाम होंगे। पहला राउंड होगा बूझो तो जाने, जिसमें जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन किए जाएंगे। हमारा दूसरा राउंड होगा आवाज की दुनिया, जिसमें हम आपसे रेडियो से जुड़े हुए सवाल पूछेंगे, आकाशवाणी से जुड़े हुए सवाल। तीसरा हमारा राउंड होगा स्टेथोस्कोप राउंड, जिसमें मेडिकल साइंस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और फाइनल राउंड हमारा होगा जो जीता वही सिकंदर, जिसमें बॉलीवुड और उर्दू अदब के क्वेश्चन किए जाएंगे। हम आपको एक बात और बता दें कि इस पहले राउंड और तीसरे राउंड में नेगेटिव मार्किंग होगी। तो चलिए हम पहला राउंड शुरू करते हैं बूझो तो जाने। पहला राउंड शुरू करते हैं बूझो तो जाने। बूझो तो जाने का हमारा पहला सवाल है, अमृतसर के प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर की नींव किस मुस्लिम सूफी संत ने रखी?
4: ऑप्शन ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ऑप्शन नंबर दो मियां मीर और ऑप्शन नंबर तीन बुल्ले शाह। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, श्योर हैं आप? हम लॉक कर दें इसे। इन्होंने जवाब दिया ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी,
2: जो कि सवाल सही नहीं है
4: जी।

0: यानी जवाब इन्होंने गलत दिया है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं, और अगला सवाल जो है टीम छाया गीत के लिए है। साल 1919 में किस कानून को काला कानून कहा गया है जो पारित हुआ था?
1: आपके ऑप्शन है रॉलेट एक्ट, ऑप्शन बी है माउंटबेटन प्लान, और ऑप्शन सी है विधवा विवाह कानून।
2: सर ऑप्शन ए रॉलेट एक्ट।
0: ऑप्शन ए रॉलेट एक्ट, आप लोग क्या कहते हैं, सही है? नहीं, ऑडियंस ने मोहर लगा दी है।
1: हाँ।
0: तो आपका ये सवाल का जवाब पूरी तरह से सही है।
1: जोरदार तालियां होनी चाहिए।
0: अब हम चलते हैं टीम आबशार की तरफ। सवाल बहुत बढ़िया है, आजादी से रिलेट करता हुआ सवाल है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा नारा किसने दिया था?
3: सुभाष चंद्र बोस।
1: ऑप्शन देने की बारी नहीं आ रही है, वो बोल रहे हैं सुभाष चंद्र बोस।
0: जवाब बिल्कुल सही है।
1: टीम आबशार का यह जवाब बिल्कुल सही है।
0: 10 पॉइंट मिलते हैं आपको। और टीम रजनीगंधा, आपके लिए भी सवाल बड़ा खूबसूरत सा है। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए?
1: ऑप्शन आपके हैं 30 साल, 35 साल या 40 साल।
3: 35 ईयर
1: बता रहे हैं जमशेद।
0: 35 साल, आप लोग क्या कहते हैं, सही है गलत है? और अब बारी आती है फिर एक बार टीम हवा महल की तरफ, एक बार फिर चलते हैं। टीम हवा महल, आपका सवाल स्टेट से है, राजनीति से है। राज्यसभा में सीटों की संख्या कितनी है?
1: आपके ऑप्शन है 243, 243, 245, 245 या 250, 250।
4: सर 243।
1: 243 बता रहे हैं।
0: अब आप क्या कहेंगे,
1: सही जवाब है या गलत, आप लोग बताएं।
0: देखिए हमने तो कुछ नहीं कहा, आपके साथियों ने कहा ये जवाब गलत है। भाई सही जवाब जो है वो है 250।
1: टीम हवा महल नेगेटिव में।
0: और हम आगे बढ़ते हैं, सवाल आता है टीम छाया गीत की तरफ। और सवाल ये है कि देश के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? और ऑप्शन आपके पास हैं जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ या जस्टिस बी आर गवई।
2: सर फर्स्ट।
1: फर्स्ट जस्टिस सूर्यकांत।
2: जी।
1: क्या लगता है आप लोगों को, है सही है? ऑडियंस को,
0: ऑडियंस ने जो है मोहर लगा दी तो मानना पड़ेगा
1: जी।
0: तो ये जवाब पूरी तरह से है सही। और एक बार फिर चलते हैं टीम आबशार की तरफ। और टीम आबशार, आपसे सवाल है, हवा की शुद्धता यानी प्योरिटी, इसको प्रदूषण मापने का इंडेक्स क्या है?
1: ऑप्शन ए AQI, दूसरा ऑप्शन है AIQ या ऑप्शन सी है PQI।
3: AQI।
0: AQI, एयर क्वालिटी इंडेक्स,
1: बिल्कुल सही है जवाब।
0: और आप चलते हैं टीम रजनीगंधा की तरफ। इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा जीरो पर आउट होने का रिकॉर्ड किसके नाम पर है?
1: ऑप्शन ए है सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन बी है रिकी पोंटिंग और ऑप्शन सी है मुथैया मुरलीधरन।
0: जी
5: सर ऑप्शन बी।
1: ऑप्शन बी है रिकी पोंटिंग। क्या लगता है ऑडियंस को, गलत है? आप में से कोई जवाब देना चाहेगा?
6: मुथैया मुरलीधरन।
1: मुथैया मुरलीधरन, बिल्कुल सही जवाब है आपके लिए। टीम रजनीगंधा के लिए माइनस पॉइंट।
0: और अगला सवाल एक बार फिर टीम हवा महल से है, और सवाल है कि इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहां पर है?
1: आपके ऑप्शन है मुंबई, ऑप्शन बी है चेन्नई या ऑप्शन सी है बेंगलुरु।
4: बेंगलुरु।
1: बेंगलुरु, अहो जोरदार तालियां होनी चाहिए। टीम हवा महल,
0: इसी तरह से आगाज हो गया टीम हवा महल का।
1: टीम छाया गीत की तरफ चलते हैं हम लोग।
0: और टीम छाया गीत, आपके लिए सवाल है, ओलंपिक खेलों में भारत को सबसे ज्यादा मेडल किस खेल में मिले हैं?
1: आपके ऑप्शन है कुश्ती, आपके ऑप्शन बी है बैडमिंटन या ऑप्शन सी है हॉकी।

0: सर ऑप्शन सी हॉकी।
1: तो ये जवाब पूरी तरह से है सही।
2: बिल्कुल सही जवाब,
1: क्योंकि अकेले हॉकी में इंडिया को 8 गोल्ड मेडल, 1 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज, यानी कुल 13 मेडल मिले हैं हॉकी में। अब आप पूछेंगे अगला सवाल, टीम आबशार से क्या कहते हैं आप?
2: लखनऊ का फेमस सिकंदराबाग जो आपका बना हुआ है, इसको किस नवाब ने बनवाया था?
1: ऑप्शन है
2: आसिफुद्दौला, नवाब शुजाउद्दौला या वाजिद अली शाह।
1: वाजिद अली शाह। ऑडियंस क्या कहती है? और ये जवाब पूरी तरह से सही है।
2: जी बिल्कुल, अगला सवाल आप ही के सब्जेक्ट से है
1: और टीम रजनीगंधा से।
2: रजनीगंधा के लिए
1: जी,
2: प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए पैनक्रियाटिक जूस में जो एंजाइम पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन है लाइपेज, ऑप्शन बी है एमाइलेज और ऑप्शन सी है ट्रिप्सिन।
3: ऑप्शन सी ट्रिप्सिन।
2: क्या लगता है जमशेद भाई, सही है?
1: हाँ, सवाल का जवाब तो बिल्कुल सही है। और अगले सवाल की तरफ हम चलते हैं। टीम हवा महल से है अगला सवाल, और सवाल है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा में सीटों की संख्या कुल कितनी है? और आपके ऑप्शन है
2: 400, 402 या 403।
1: 403 और सही जवाब है 403। और उसके बाद हम चलते हैं एक बार फिर टीम छाया गीत की तरफ कि इनमें से उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है,
2: क्लासिकल डांस कौन सा है इनमें से उत्तर प्रदेश का?
1: कुचिपुड़ी, कथकली या फिर कथक?
2: सर कथकली।
1: जवाब आया है कथकली। सही जवाब है कथक। फिर हम पहुंचते हैं टीम आबशार की तरफ। इनमें से भारत के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कौन है? मनसुख मांडविया, जगत प्रकाश नड्डा या फिर राजनाथ सिंह?
3: बी।
1: बी यानी जेपी नड्डा सही जवाब। और आपको मिलते हैं 10 नंबर।
2: जोरदार तालियां होनी चाहिए टीम आबशार के लिए अगेन।
1: और अब हम आखिरी सवाल की तरफ चल रहे हैं साहब, यानी बूझो तो जाने राउंड का
2: आखिरी सवाल।
1: आखिरी सवाल है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार है? और ऑप्शन आपके हैं 14 या फिर 15 में या फिर अनुच्छेद 16 में।
4: सर ऑप्शन ए आर्टिकल 14।
2: आर्टिकल 14 टीम रजनीगंधा ने जवाब दिया है।
1: बिल्कुल सही जवाब, आर्टिकल 14। इस राउंड के बाद हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस टीम को कितने मार्क्स मिले हैं।
5: टीम हवा महल को मिले हैं 10 नंबर, छाया गीत को 25 और आबशार को 40 सबसे ज्यादा, और रजनीगंधा को 25।
1: और अभी टीम हवा महल के पास चांस है, और अगला राउंड हमारे पास आ गया है, और आवाज की दुनिया में आपको बताना है कुछ सवाल आकाशवाणी से रिलेट करते हुए होंगे।
2: अच्छी बात यह है कि इस राउंड में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी।
1: तो शुरुआत फिर एक बार हम हवा महल टीम से करें।
2: जी सर, करिए आप।
1: आकाशवाणी की स्थापना कब हुई थी?
2: ऑप्शन ए 1936 या ऑप्शन बी 1938।
6: 1936।
2: क्या कहेंगे आप लोग?
1: और सही जवाब है 1936। अभी एक स्लोगन था आकाशवाणी का, अभी आपने डॉक्यूमेंट्री देखी। और टीम छाया गीत के लिए सवाल है कि आकाशवाणी का स्लोगन क्या है?
2: आपके ऑप्शन ए है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, या ऑप्शन बी है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय।
0: सर पहला ऑप्शन।
2: पहला ऑप्शन बता रहे सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। क्या कहेंगे आप लोग? गलत है। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय।
1: और अगला सवाल टीम आबशार के लिए, आप बताइए किस साल में ऑल इंडिया रेडियो को आकाशवाणी नाम दिया गया? और ऑप्शन है 1947 या फिर साल 1957।
3: 1957।
2: 1957।

0: 57
1: बिल्कुल सही जवाब।
0: राइट,
1: आकाशवाणी लखनऊ एफएम का जो चैनल है उसका स्लोगन क्या है? धड़कन लखनऊ की या फिर शान लखनऊ की?
2: सर बी ऑप्शन।
0: ऑप्शन बी,
2: शान लखनऊ की।
1: यहां पर हम आपसे कहेंगे धड़कन लखनऊ की। अगला सवाल है टीम हवा महल से। टीम हवा महल, हमारा चैनल है प्राइमरी चैनल। आपको बताना है कि हमारा प्राइमरी चैनल किस फ्रीक्वेंसी पर सुना जाता है, मीडियम वेव 747 किलोहर्ट्ज या फिर मीडियम वेव 750 किलोहर्ट्ज?
0: 750 का ऑप्शन चुना है टीम हवा महल ने।
1: तो सही जवाब क्या है शम्स साहब?
0: 747 किलोहर्ट्ज।
1: यहाँ पर
0: मीडियम वेव 747 किलोहर्ट्ज इज द राइट आंसर।
1: आपका जवाब गलत होता है। विविध भारती चैनल को सुनने के लिए कौन सी फ्रीक्वेंसी बैंड का इस्तेमाल करते हैं, एम मोड पर या फिर एफएम मोड पर?
3: एफएम मोड पर।
0: एफएम मोड पर। टीम छाया गीत का ये जवाब एफएम मोड पर।
1: विविध भारती चैनल सुनने के लिए हम इस वक्त एफएम मोड पर जाते हैं, यानी फ्रीक्वेंसी मोड पर। विविध भारती को किस फ्रीक्वेंसी पर सुना जा सकता है, 98.6 या 101.6?
2: सब बी,
0: 101.6।
1: ऑडियंस, सही जवाब। और अब टीम रजनीगंधा के लिए सवाल है कि आकाशवाणी लखनऊ के एफएम चैनल का नाम क्या है?
0: आपके ऑप्शन है एफएम रेनबो या ऑप्शन बी है रेडियो मिर्ची?
2: सर ऑप्शन ए।
0: ऑप्शन ए, एफएम रेनबो।
1: बिल्कुल सही जवाब, एफएम रेनबो। टीम हवा महल की तरफ चल रहे हैं। एफएम रेनबो के गजलों के प्रोग्राम का नाम क्या है?
0: ऑप्शन है आपके आबशार या कहकशां।
3: आबशार।
0: आबशार।
1: तो बिल्कुल सही जवाब है
0: जी,
1: आबशार। टीम छाया गीत, प्राइमरी चैनल पर उर्दू प्रोग्राम का वक्त क्या है?
0: आपके ऑप्शन है सुबह 9:30 पर और बी है ऑप्शन रात में 9:30 पर।
4: रात में 9:30।
0: रात में 9:30 का जवाब, सुबह 9:30 पर प्राइमरी चैनल पर आप आकाशवाणी का उर्दू प्रोग्राम सुन सकते हैं। तो आपका यह जवाब गलत है।
1: हम एक बार फिर चलते हैं टीम आबशार की तरफ। एफएम रेनबो की फ्रीक्वेंसी क्या है?
0: 98.7 या 100.7?
2: बी 100.7।
0: बी 100.7। राइट,
1: 100.7।
0: यस।
1: टीम रजनीगंधा, आकाशवाणी एक संस्था होती है, जैसे आपका चल रहा है कॉलेज, वैसे आकाशवाणी का एक पेरेंट संस्था है जिससे आकाशवाणी चलती है।
0: ऑप्शन
1: प्रसार भारती या फिर NSD?
2: सर ए, प्रसार भारती।
1: ए, प्रसार भारती। बिल्कुल सही जवाब है ये,
0: राइट आंसर,
1: प्रसार भारती। और एक बार फिर टीम हवा महल,
0: आकाशवाणी के प्रोग्राम को रेडियो पर सुनने के अलावा आप अपने स्मार्टफोन पर किस ऐप के जरिए सुन सकते हैं, आकाशवाणी AIR या न्यूज ऑन AIR?
2: न्यूज ऑन AIR।
1: न्यूज ऑन एयर, सही जवाब, न्यूज ऑन एयर।
0: सही जवाब है टीम हवा महल के लिए, न्यूज ऑन AIR ऐप पर आप रेडियो के प्रोग्राम सुन सकते हैं, हमारे आकाशवाणी लखनऊ के प्रोग्राम सुन सकते हैं।
1: और अब सवाल है टीम छाया गीत के लिए, क्या प्राइवेट चैनल FM में न्यूज का प्रसारण कर सकते हैं या न्यूज ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं?
0: सवाल है, ऑप्शन है हाँ कर सकते हैं, ऑप्शन बी नहीं कर सकते हैं।
4: जी सर कर सकते हैं,
1: प्राइवेट FM चैनल न्यूज को प्रसारित कर सकते हैं, उनको अनुमति है, और आपने कहा हाँ,
0: यानी कि गलत जवाब।
1: टीम आबशार, सवाल है
0: आकाशवाणी का सबसे लंबा चलने वाला प्रोग्राम कौन है? ऑप्शन ए है माटी की सुगंध, ऑप्शन बी है मन की बात।
2: मन की बात।
1: सही जवाब है मन की बात।
0: मन की बात, जोरदार तालियां।
1: और माइक टीम रजनीगंधा की तरफ, सवाल है आकाशवाणी लखनऊ की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है
0: 1938 और 1947।

0: 1938
1: तो बिल्कुल सही जवाब। और इसी के साथ हमारे दो राउंड खत्म होते हैं, बूझो तो जाने और राउंड आवाज की दुनिया।
2: अब हम अपने जजेस से कहेंगे कि यहाँ पर टोटल स्कोर करके आप बता दें और एक टीम यहाँ से एलिमिनेट की जाएगी। मैं चाहता हूँ मोहतरम जनाब सुभाष खन्ना सर आएं और टीम का रिजल्ट बताएं।
1: और आपको बता दें कि इस राउंड के बाद जिसके मार्क्स सबसे कम होंगे वो टीम यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगी।
3: जो हमारी हवा महल है उन्होंने टोटल 40 अंक अर्जित किए हैं, उन्होंने पहले में भी 40 यानी चारों सही और दूसरे राउंड में भी आपने चारों सही जवाब दिए हैं। और अगली टीम है रजनीगंधा, उसने सेकंड राउंड में 30 अंक अर्जित किए हैं और पहले में 25, टोटल 55 आपके हैं। और आबशार ने टोटल 80 अंक अर्जित किए हैं, आपको बहुत बधाई, आपने सबसे बेहतरीन खेला। तो ये तो रहे अंक। और सर्वप्रथम मैं आप सभी का धन्यवाद देता हूं कि आपने यहां सहभागिता की। तो बड़े दुख के साथ मैं बता रहा हूं कि यहां जो एलिमिनेट टीम हो रही है वो है छायागीत टीम। आपने टोटल 35 अंक अर्जित किए हैं लेकिन आपने पार्टिसिपेशन किया और लगातार आपने जवाब दिया और बहुत बेहतरीन।
1: तो ये दो राउंड के बाद जो बताया हमारे सुभाष खन्ना सर ने, तो यानी एक टीम हमसे अलग होगी, वो टीम है छायागीत, और बाकी के तीन टीमें हमारे साथ रहेंगी, टीम हवा महल, टीम आबशार और टीम रजनीगंधा।
4: सामईन, ये थी क्विज प्रोग्राम की पहली किस्त, अगली किस्त जल्द ही आपके सामने होगी। फिलहाल इजाजत दें, आसिफ इकबाल को आदाब।
5: आकाशवाणी के लखनऊ मरकज से उर्दू प्रोग्राम नशर किया जा रहा था। मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है लोकगीतों का कार्यक्रम लोक रंग। इसमें आज हम आपको सुनवा रहे हैं शिवलाल के गाए भोजपुरी लोकगीत। इनके स्वर में सबसे पहले हम आपको सुनाते हैं ये लोक भजन।

शिवलाल के स्वर में अभी आपने ये लोक भजन सुना और इन्हीं की आवाज़ में अब हम आपको सुनवाते हैं मेला गीत।

0: अभी आप शिवलाल के स्वर में ये मेला गीत सुन रहे थे, संगत कर रहे थे ढोलक पर नरेंद्र सिंह, हारमोनियम पर संतोष तिवारी, बांसुरी पर थे दिगंत सैकिया और साइड रिदम पर आशीर्वाद कठेरिया। इसी के साथ लोकगीतों का कार्यक्रम लोक रंग अब समाप्त हुआ।
1: जोश को मिले दिशा, मेहनत को मिले मान, कला को विस्तार मिले, परंपरा को मिले नई उड़ान।
2: कुछ करिए बस बस बड़ा पौधे, अब कुछ करिए।
1: सुनिए नई उड़ान, जहां गाने हो, बातें हो, योजनाएं हो और हर खबर लाए विकास और अवसर की जानकारी। श्रोताओं के दिल कहे नई उड़ान निभाएगा असली यारी। हर शाम 5:45 से 6:15 तक सिर्फ आकाशवाणी लखनऊ पर गूंजे सफलताओं की आवाज़।
3: मैं डॉक्टर राजेश हर्षवर्धन, चिकित्सा अधीक्षक SJPGIMS और संयुक्त निदेशक राज्य अंग एवं उत्तक प्रत्यारोपण संगठन उत्तर प्रदेश, आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में अंग जैसे किडनी, लीवर, हार्ट, कॉर्निया, इनकी वैसे रोगियों की संख्या काफी ज्यादा हो रही है, बढ़ रही है, जिनके केस में ये अंग काम नहीं कर रहे हैं और उन्हें अंग प्रत्यारोपण की आवश्यकता है। आप एक मुहिम के रूप में आगे आकर SOTOUP के वेबसाइट पे होम पेज पे प्लीज नाउ बटन क्लिक करें और QR कोड स्कैन करके अंग दान करने का शपथ लें, क्योंकि अंग दान महादान है। आपके इस निर्णय से किसी की जिंदगी बच सकती है। दान जगत का नियत धर्म है, व्यर्थ मनुष्य डरता है, एक दिवस तो स्वयं उसे सब कुछ देना पड़ता है। बचते वही समय पर जो सर्वस्व दान करते हैं, इतु का ज्ञान रहा न जिन्हें वो देकर भी मरते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप यही मैसेज अपने सभी संपर्क में फैलाएंगे। धन्यवाद।
0: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है फिल्म संगीत कार्यक्रम का पहला गीत सुनिए आखिरी फिल्म से, आवाज है लता मंगेशकर की।

फिल्म संगीत के बाकी नगमे हम आपको सुनवाएंगे सुबह 10:20 से। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। आइए सुनते हैं न्यूज़ बुलेटिन विश्व दर्पण हमारी दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वीडन की कंपनियों को मेक इन इंडिया, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन और नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन जैसी योजनाओं के तहत भारत में निवेश बढ़ाने का निमंत्रण दिया। ईरान द्वारा अमेरिका की प्रमुख शर्तों को मानने से इनकार करने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को फिर चेतावनी दी। भारत ने संयुक्त अरब अमीरात के बराकाह परमाणु संयंत्र पर हमले पर गहरी चिंता व्यक्त की। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज जिनेवा में 79वें विश्व स्वास्थ्य सम्मेलन में स्वास्थ्य देखभाल के भविष्य को दिशा देने पर वैश्विक संवाद में शामिल होंगे। और विश्व के नंबर एक खिलाड़ी यानिक सिनर ने इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट का खिताब जीता। अब समाचार विस्तार से। भारत और स्वीडन ने आपसी साझेदारी को बढ़ाकर व्यापक रणनीतिक साझेदारी करने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वीडन यात्रा की ये ऐतिहासिक उपलब्धि है। श्री मोदी ने कल रात गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत की। वे कल स्वीडन की 2 दिवसीय यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचे। भारत स्वीडन संबंधों में असाधारण योगदान और दूरदर्शी नेतृत्व की पहचान के रूप में श्री मोदी को रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार डिग्री कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया। प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के दौरान दोनों नेताओं ने व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार, हरित बदलाव, अंतरिक्ष, उभरती प्रौद्योगिकियों, रक्षा, सुरक्षा, एसएमई, अनुसंधान और जनता के बीच संबंधों में सहयोग को प्रगाढ़ करने के तरीकों पर चर्चा की। दोनों नेता भारत यूरोपीय संघ रणनीतिक साझेदारी की भावना और हाल ही में संपन्न भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के अनुरूप जनहित के लिए नए अवसरों की पहचान करने पर सहमत हुए। उन्होंने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा की। संयुक्त राष्ट्र और बहुपक्षीय संगठनों में सुधार की तात्कालिकता पर जोर दिया गया और बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग आगे बढ़ाने पर सहमति बनी।
1: यात्रा के दौरान दोनों देशों ने वर्ष 2026 से 2030 तक के संयुक्त कार्य योजना अपनाई, जिसका उद्देश्य अगले 5 वर्षों में द्विपक्षीय आर्थिक आदान प्रदान को दोगुना करना है। इंडिया स्वीडन स्ट्रॉन्गर टुगेदर टुवर्ड्स 2047 थीम के तहत दोनों देशों ने 2027 में भारत में द्विपक्षीय व्यापार एवं निवेश शिखर सम्मेलन आयोजित करने पर सहमति जताई। स्वीडन उद्योगपति और प्रमुख कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत में प्रधानमंत्री ने मेक इन इंडिया और मेड विद स्वीडन पहल के तहत निवेश बढ़ाने का आह्वान किया, विशेषकर राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन और क्रिटिकल मिशन मिनरल मिशन जैसे क्षेत्रों में। दोनों देशों की साझेदारी अब सेमीकंडक्टर

0: और मजबूत सप्लाई चेन जैसे उच्च विकास वाले क्षेत्रों पर विस्तारित होगी। तकनीकी और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में भी यात्रा के दौरान कई महत्वपूर्ण समझौते हुए। प्रधानमंत्री ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत के प्रति समर्थन व्यक्त करने के लिए स्वीडन का विशेष आभार भी व्यक्त किया।
1: आतंकवाद पूरी मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। पिछले वर्ष पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद हमें स्वीडन से मिले समर्थन के लिए मैं प्रधानमंत्री क्रिस्टर्सन का आभार व्यक्त करता हूँ। हम आतंकवाद और उसके समर्थकों के विरुद्ध लड़ाई जारी रखेंगे।
0: इस यात्रा में साझा बौद्धिक विरासत और व्यापक क्षेत्रीय सहयोग को भी नहीं पहचान दी। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
2: स्वीडन के प्रधानमंत्री क्रिस्टर्सन ने डिजिटल बदलाव और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में भारत की प्रगति की सराहना की। उन्होंने स्वीडन में भारतीय समुदाय के सकारात्मक योगदान का भी उल्लेख किया। क्राउन प्रिंसेस विक्टोरिया ने भी इस बैठक में हिस्सा लिया और स्वीडन के राजा और रानी की ओर से शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री मोदी ने आतिथ्य सत्कार के लिए अपने मेजबानों को धन्यवाद दिया और राजा कार्ल 16वें गुस्ताव के 80वें जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि स्वीडन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने वाले उद्योगपतियों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने भारत में गहरी रुचि दिखाई है। उन्होंने पिछले कई वर्षों में निरंतर आर्थिक सुधारों के कारण देश में हुए परिवर्तन की सराहना भी की है। यूरोपीय उद्योगपतियों के गोलमेज सम्मेलन के बाद पत्रकारों से बातचीत में विदेश मंत्रालय के पश्चिमी मामलों के सचिव सिबी जॉर्ज ने कहा कि मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और वरिष्ठ उद्योगपतियों ने हाल के वर्षों में भारत में हुए महत्वपूर्ण परिवर्तन का जिक्र किया।
3: Which was attended by a large number of key companies in Europe. I would like to highlight that in his meetings today with the CEOs and other senior leaders from the business, they all highlighted about their interest. You know, they have been observing India for last few years. They have been investing in India for last few years. What they have seen is a complete transformation in India in the last few years. They emphasized that.
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के चौथे चरण में आज नॉर्वे जाएंगे। वे तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे और द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। ये श्री मोदी की नॉर्वे की पहली यात्रा होगी। 43 वर्ष बाद भारत के कोई प्रधानमंत्री नॉर्वे जा रहे हैं।
4: प्रधानमंत्री मोदी सम्राट हेराल्ड पंचम और महारानी सोनिया से मिलेंगे और प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोर के साथ बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी नॉर्वे के प्रधानमंत्री के साथ भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। यह यात्रा भारत नॉर्वे संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा करने और उन्हें मजबूत बनाने के तरीकों को खोजने का अवसर प्रदान करेगी। इसमें व्यापार और निवेश पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन कल होगा। इस सम्मेलन में श्री मोदी के साथ नॉर्वे, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड और स्वीडन के प्रधानमंत्री शामिल होंगे। साक्षी सिंह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
2: विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम एशिया में महीनों से जारी अशांति के बाद यूरेनियम भंडार, प्रतिबंधों में राहत और युद्ध से संबंधित नुकसान के मुआवजे पर वार्ता ठप होने के कारण ईरान को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नई चेतावनी के बाद अमेरिका और ईरान के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ गया है।
5: राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि समय बीत रहा है। उन्होंने ईरान से समझौते की दिशा में तेजी से आगे बढ़ने का आग्रह किया। अमेरिका के राष्ट्रपति की तीखी टिप्पणी, ईरान की मीडिया द्वारा अमेरिका की वार्ता फिर से शुरू करने की मुख्य शर्तें उजागर करने के कुछ ही घंटों बाद आई हैं। ईरान की मीडिया रिपोर्टों के अनुसार अमेरिका चाहता है कि ईरान 400 किलोग्राम संवर्धित यूरेनियम अमेरिका को सौंप दे और केवल एक परमाणु संयंत्र को सक्रिय रखे। अमेरिका युद्ध मुआवजे की मांग को भी छोड़ना चाहता है और ये स्वीकार करना चाहता है कि ईरान की अधिकांश जब्त संपत्तियां अवरुद्ध रहेंगी। अमेरिका ये भी चाहता है कि क्षेत्रीय संघर्ष वार्ता पूरी होने के बाद ही समाप्त हो। इस बीच ईरान ने इन शर्तों को खारिज कर दिया है और वार्ता फिर शुरू करने के लिए शर्तें रखी हैं। ईरान ने कहा कि क्षेत्र में विशेष रूप से लेबनान में सैन्य अभियान बंद होने चाहिए, प्रतिबंध हटाए जाने चाहिए और ईरान की जब्त संपत्तियां जारी की जानी चाहिए। ईरान ने युद्ध में हुए नुकसान के मुआवजे और होर्मुज जल डमरू मध्य पर अपने नियंत्रण की मान्यता की भी मांग की। विश्व दर्पण के लिए मैं मृगनयनी पांडे।
2: भारत ने संयुक्त अरब अमीरात में बराकाह परमाणु संयंत्र पर हमले पर गहरी चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय ने इस तरह की कार्रवाई को अस्वीकार्य बताया है क्योंकि इससे और

खतरनाक स्थिति पैदा हो सकती है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा 79वें विश्व स्वास्थ्य सम्मेलन में भाग लेने के लिए स्विट्जरलैंड पहुंच गए हैं। सम्मेलन 23 मई तक चलेगा। इस वर्ष सम्मेलन का विषय है वैश्विक स्वास्थ्य को नया स्वरूप देना, साझा जिम्मेदारी। श्री नड्डा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये सम्मेलन वैश्विक स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने में सामूहिक प्रयासों के महत्व को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि ये सम्मेलन 165 से अधिक देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों, गणमान्य जनों और सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों को एक मंच पर लाएगा।

0: के महत्व को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि ये सम्मेलन 165 से अधिक देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों, गणमान्य जनों और सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों को एक मंच पर लाएगा। यानिक सिनर ने इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। रोम में कल फाइनल में सिनर ने नॉर्वे के कैस्पर रूट को 6-4, 6-4 से हराया। इस जीत के साथ सिनर 1976 में एड्रियानो पनाटा के बाद ये टूर्नामेंट जीतने वाले इटली के पहले पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं। भारत ने गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026 में 1 रजत और 9 कांस्य पदक सहित कुल 10 पदक जीते हैं। जियांगशान में छठे संस्करण की तुलना में भारत की ये एक बड़ी उपलब्धि है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वीडन की कंपनियों को मेक इन इंडिया, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन और नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन जैसी योजनाओं के तहत भारत में निवेश बढ़ाने का निमंत्रण दिया। ईरान द्वारा अमेरिका की प्रमुख शर्तों को मानने से इनकार करने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को फिर चेतावनी दी। भारत ने संयुक्त अरब अमीरात के बराकाह परमाणु संयंत्र पर हमले पर गहरी चिंता व्यक्त की। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज जिनेवा में 79वें विश्व स्वास्थ्य सम्मेलन में स्वास्थ्य देखभाल के भविष्य को दिशा देने पर वैश्विक संवाद में शामिल होंगे। और विश्व के नंबर एक खिलाड़ी यानिक सिनर ने इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट का खिताब जीता। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: मीडियम वेव पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ, धड़कन देश की।
2: जुड़ रहा है हर कोना, हर दिल में पल रहा मंजिलों का ख्वाब।
3: एक ऐसा कार्यक्रम
2: जहां मिलती है सरकारी योजनाओं की सीधी जानकारी,
3: विकास की बातें, संगीत की मिठास
2: और एक नए भारत की आवाज।
3: जुड़िए हर शाम 5:45 पर,
2: सुनिए बदलते भारत की धड़कन नई उड़ान के साथ आकाशवाणी लखनऊ के विशेष कार्यक्रम में।
4: मैं डॉक्टर राजेश हर्षवर्धन, चिकित्सा अधीक्षक SJPGIMS और संयुक्त निदेशक राज्य अंग एवं उत्तरपत्तरोपण संगठन उत्तर प्रदेश, आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में अंग जैसे किडनी, लीवर, हार्ट, कॉर्निया, इनकी वैसे रोगियों की संख्या काफी ज्यादा हो रही है, बढ़ रही है, जिनके केस में ये अंग काम नहीं कर रहे हैं और उन्हें अंग प्रत्यारोपण की आवश्यकता है। आप एक मुहिम के रूप में आगे आकर SOTOUP के वेबसाइट पे, होम पेज पे प्लीज नाउ बटन क्लिक करें और QR कोड स्कैन करके अंग दान करने का शपथ लें, क्योंकि अंग दान महादान है। आपके इस निर्णय से किसी की जिंदगी बच सकती है। दान जगत का नियत धर्म है, व्यर्थ मनुष्य डरता है, एक दिवस तो स्वयं उसे सब कुछ देना पड़ता है। बचते वही समय पर जो सर्वस्व दान करते हैं, ऋतु का ज्ञान रहा न जिन्हें वो देकर भी मरते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप यही मैसेज अपने सभी संपर्क में फैलाएंगे। धन्यवाद।
5: आइए जुड़िए विज्ञान जगत के साथ, जहां हर जटिल सवाल का जवाब मिलता है रोचक अंदाज में। क्या है आपके जीवन में विज्ञान की भूमिका, कैसे बदल रही है तकनीक आपकी दुनिया, जानिए विशेषज्ञों से, सुनिए रोचक चर्चाएं और पाइए विज्ञान से जुड़े ताजा अपडेट्स। तो सुनना न भूलें
6: विज्ञान जगत हर शनिवार शाम 7:30 बजे आकाशवाणी लखनऊ पर।

घर आंगन में है बाहर कहानी कविता और बतकही के फुहार आपन बोली बानी संग लोकगीतन के बहे बयार खान पान संग सेहत के और स्वावलंबन के बहचली है बयार घर आंगन संग होई के तैयार चलो विकास के रफ्तार सोम बृहस्पति और साथे है दिन शनिवार ईमेल और पाती के होए भरमार।

आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है फिल्म संगीत। इसमें सुनिए कुछ नए तराने। कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया है धुन की फिल्म से, आवाज है अरिजीत सिंह की। इस गीत को संगीत दिया है प्रीतम ने और शब्द रचना इशाद कामिल की है।

0: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह,
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: पुलिस।
1: मिस सीमा
0: जी,
1: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए, वरना घर आ जाएंगे।
0: क्यों, लेकिन मैं
1: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
0: डिजिटल अरेस्ट?
1: 1 लाख दो, बच जाओगे।
0: इतने पैसे?
1: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
0: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
2: हेलो मम्मा।
3: RBI कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: विशाल मिश्रा का स्वरबद्ध किया हुआ गीत सुनिए, सैयारा फिल्म से। आवाजें हैं विशाल मिश्रा और हंसिका पारिक की।

0: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह,
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: तड़प फिल्म के इस गीत के साथ ही आज का ये चित्रपट से कार्यक्रम अब समाप्त होता है। मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। 11 बज चुके हैं और शुरू हो गया है फिल्म संगीत का फोन इन इंटरैक्टिव प्रोग्राम कुछ तुम कहो कुछ हम कहें। हमारा फोन नंबर है 0522-223-8845। जी हाँ, याद रखिएगा 223-8845। तो इस नंबर पर हम आपसे बात करेंगे, कुछ आप कहेंगे और कुछ हम कहेंगे, और सुनवाएंगे आपके पसंदीदा फिल्मी नगमे। तो जानते हैं, हमारे साथ त्रिपुरा से जुड़ गए हैं आशुतोष जी। हेलो।
1: बिल्कुल सही पहचाना मैम आपने, मैं त्रिपुरा से आशुतोष देवनाथ बोल रहा हूँ।
0: जी, स्वागत है आपका।
1: और आप जब आते हैं तब फोन लगाने का इच्छा बढ़ जाता है।
0: लेकिन एक बार बताएं, आप फोन तो पहले ही से मिला रहे थे, आपको कहाँ पता था कि हम आ रहे हैं।
1: नहीं, मैं आज क्या बोलो, लॉटरी खेला था मैंने कि डिप्टी जो।
0: अच्छा, आज इंट्यूशन हो रहा था आपको। चलिए, आपका आपका जो सोच थी, आपके दिल में जो भावनाएं थी वो पूरी हो गई। तो
1: आजकल मैं प्रयास बहुत कम करता हूँ मैम जी। आज मैं बैठ गया हूँ कि आज फोन लगाना है।
0: अच्छा। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपने फोन लगाया। और आप बड़े अच्छे से, आपकी एक खासियत है कि आप जो भी गाना बताते हैं तो उसको, उसकी पूरी डिटेल्स आप बताते हैं, वर्णन करते हैं, बड़ा अच्छा लगता है वो सुन के।
1: चलिए मैम जी, ये गाना तो सिर्फ सिंगर से नहीं बनता।
0: हाँ, सही बात है। हाँ, ये बात बिल्कुल,
1: उनका साथ बहुत बड़ा बड़ा रोल।
0: जब तक गीत ना हो, लिखने वाले ना हो,
1: लोग तो हम लोग का जैसा साधारण इंसान नहीं है।
0: धुन बनाने वाले ना हो तो गाने वाला गाएगा क्या, ये भी तो है।
1: लेकिन कुछ श्रोता को बुरा लगता है कि अननेसेसरी बातचीत करता है, टाइम वेस्ट करता है, लेकिन ये महान लोगों को याद करना चाहिए।
0: हाँ, बिल्कुल याद करना।
1: गाना कभी बनेगा ही नहीं।
0: हाँ, सही बात है, इसमें बुरा मानने की कोई बात ही नहीं भाई, ये तो अभिन्न अंग है ना, सब गीतकार, संगीतकार और जो गायक है, तो जब तीनों मिल के बनाएंगे।
1: बचपन का ही आदत है। अच्छा, बचपन में जब घर में टेप रिकॉर्डर होता था, तो कैसेट बाजार से खरीद के लाता था और कैसेट में डिटेल्स लिखा होता था।
0: हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ,
1: लिरिक्स कौन है। हाँ। और म्यूजिक डायरेक्टर कौन है। हाँ। मैं पहले ये देखता हूँ, लिरिक्स कौन है, सिंगर कौन है। हाँ। और म्यूजिक डायरेक्टर कौन है।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: तो ये आदत अभी भी है मैम।
0: और एक बात ये भी है, सबकी अपनी खासियत होती है, लिरिसिस्ट की भी।

0: अपनी खासियत होती है और जो संगीतकार होते हैं उनका भी अपना एक तरीका होता है गाने बनाने का, धुन बनाने का, सबका अलग होता है। सही बात,
1: सही बोला आपने। और मैम के आप जब आते हैं भीड़ ज्यादा लग जाता है, मिलना मुश्किल।
0: चलिए कोई बात नहीं, और लोग भी इंतजार कर रहे होंगे, अब जल्दी से बता दीजिए अपने गाने की डिटेल्स।
1: आज मुझे सुना दीजिए, 1986 में रिलीज हुआ, फिल्म का नाम है सरक सिकंदर, गाने का बोल है देवी माता रानी तुम्हें सबको जानी, लता जी किशोर दा, और इस गाने को लिखा है संगीत का सबसे बड़ा राइटर आनंद बख्शी जी, और सुरों का जादूकर लक्ष्मीकांत चारेला जी ने सबसे सजा इस गाने।
0: बढ़िया, तो सुनवाते हैं आपकी पसंद का गीत।
1: मैं सिर्फ दो चार
0: जल्दी से
1: आपको सुनाना चाहता हूँ।
0: धन्यवाद
1: जी, पुरा जी, प्रेमराज बाबा जी और भगवान सिंह परमार, और त्रिपुरा से मेरे धर्मपत्नी संगीता दत्तनाथ और अविनाश तेली मेरा छोटा भाई।
0: ये दो नाम तो बहुत जरूरी है त्रिपुरा से। ठीक है, चलिए धन्यवाद कॉल करने के लिए। सुनिए अपनी पसंद का गीत। नमस्कार।
1: नमस्कार मैम।

0: हम भी यही मनाते हैं कि देवी माता रानी सब पर कृपा करें, सबकी बात सुनें, सबके कष्ट हरें, सबके दुख हरें और मिलाएं हमको हमारे श्रोताओं से। तो आइए मिलते हैं उज्जैन से प्रेम सिंह सिसोदिया जी से। उज्जैन से बोल रहे हैं ना
1: जी? बिल्कुल दीप्ति जी, मैं ग्राम बछोड़ा तहसील नागदा जिला उज्जैन से प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ।
0: स्वागत है आपका, कैसे हैं आप?
1: मैं बहुत अच्छा हूँ और आपसे बात करके और भी अच्छा लग रहा है मुझे।
0: हमको भी अच्छा लग रहा है, तो बताइए।
1: क्योंकि मैं बताऊँ दीप्ति जी, काफी गर्मी है यहाँ पे अभी 45 डिग्री के करीबन।
0: एक बार बताइए आज कौन सा महीना चल रहा है?
1: जी मई का महीना चल रहा है, इसमें तो काफी गर्मी होती
0: है। मई अंग्रेजी में और हिंदी में जेठ का महीना।
1: जी बिल्कुल,
0: है ना? तो इसमें तो गर्मी होनी ही होनी है नहीं?
1: जी बिल्कुल होती है दीप्ति जी, लेकिन हर साल क्या होता है ना हमारे यहाँ पे 40 मतलब 45 के करीबन पारा नहीं जाता है, 36-37 के करीबन रहता है।
0: तो ये तो पता ही आपको, ग्लोबल वार्मिंग है, हम लोग खुद ही नेचर से खिलवाड़ कर रहे हैं, ये सभी जानते हैं इस बात को। तो इसीलिए तो जो जैसे जंगल वाली जगहें होती हैं हरी भरी, क्यों हम लोग जब गर्मी की छुट्टियां होती हैं या कोई भी हमको मौका मिलता है तो हम लोग ऐसी ही जगह जाना पसंद करते हैं, क्यों? क्योंकि हम

0: वो माहौल चाहिए, तो क्या वो माहौल, क्या वो वातावरण हम अपने आसपास नहीं कर सकते हैं, बना सकते हैं? कोशिश तो कर सकते हैं ना,
1: जी बिल्कुल बना सकते
0: बस।
1: हैं दीप्ति जी। आपको बताओ, मैंने खुद अपने घर के पास में बगीचा लगा रखा है,
0: वाह, अरे
1: उसमें कम से कम 10 पेड़ लगा रखे हैं। उसमें
0: वाह,
1: आपको बताऊं, पपीते के पेड़ है, अमरूद के पेड़ है और ऑरेंज के पेड़ है,
0: क्या
1: और
0: बात है,
1: ऐसे मतलब काफी पेड़ लगा रखे हैं, और जो मैं उनको सिंचाई भी करता हूँ।
0: बहुत अच्छी बात है, उनकी देखभाल करके। और फिर क्या है ना, ये सब जो पेड़ है ना, जो हम मेहनत करेंगे ना, तो हमको मेहनत का जो फल मिलेगा, वो एक्चुअल में जो फल मिलेगा, आपने संतरे के लगाए हैं, आपने और चीज़ों के जो भी लगाए हैं, तो वो फल जब मिलते हैं ना, अपने घर के पेड़ों के फल खा के कितना स्वाद आता है, कितना मज़ा आता है ना,
1: जी बिल्कुल
0: है ना।
1: जी। और एक बात बताऊँ आपको, जैसे मैं सिंचाई करता हूँ ना उन पेड़ पौधों की, तो साथ में मेरा लड़का कृष्णा वो भी करता है,
0: बहुत
1: साक्षी भी
0: अच्छी
1: करती
0: बात
1: है।
0: है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपको देख के, देखिए घर में बच्चे क्या सीखते हैं, बच्चे पढ़ने से नहीं सीखते हैं, या आप कोई उपदेश देंगे उससे नहीं सीखते हैं, बच्चे सीखते हैं जब माँ बाप जो काम करते हैं ना, उसको देख के बच्चे सीखते हैं। आप
1: जी
0: सींच
1: बिल्कुल।
0: रहे हैं,
1: और दीप्ति
0: आप
1: जी, एक
0: ध्यान
1: बात
0: रख
1: और
0: रहे
1: है,
0: हैं।
1: जैसे कि मैंने कुछ पौधे लगाए हैं ना, तो कृष्णा बोल रहा कि इस बार मैं भी 10 आम के पौधे लगाऊंगा
0: बहुत
1: और उनकी
0: अच्छी बात
1: देखभाल
0: है,
1: करके
0: वाह,
1: उनको बड़ा करूंगा।
0: आप जो है जो विरासत दे रहे हैं ना बच्चे को, ये बहुत
1: जी
0: अच्छी बात है, आपके लिए भी, बच्चों के लिए भी, और उनके आगे आने वाली पीढ़ी के लिए भी, और
1: जी
0: यही
1: बिल्कुल
0: चाहिए हमको। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपकी भावनाएं जान के, आपके विचार जान के, और अब गाना सुनवाते हैं आपकी पसंद का।
1: जी बिल्कुल दीप्ति जी। उससे पहले मैं अपने एक दोस्त है, मेरे बहुत ही दिल के करीब है, उनका नाम लेना चाहूंगा जी,
0: जरूर ले लीजिए।
1: आकाशवाणी लखनऊ के दीप्ति जोशी जी।
0: अरे बहुत
1: जी
0: बहुत धन्यवाद आपका।
1: जी दीप्ति जी, तो
0: तो
1: फिल्म करा में कुछ कुछ होता है और गाने के बोले उसका
0: कुछ
1: टाइटल
0: कुछ
1: सॉन्ग
0: होता
1: सुनना
0: है,
1: चाहूंगा।
0: ठीक है, तो सुनवाते हैं आपको आपकी पसंद का ये गीत। धन्यवाद कॉल करने के लिए, नमस्कार।
1: जी थैंक यू सो मच।

0: कार्यक्रम में मिलते हैं हमारी अगली कॉलर से, नाम है साहिबा अंसारी। हेलो।
1: हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं साहिबा जी, कहाँ से बोल रही हैं, जरा हमारे सभी श्रोताओं को बता दीजिए।
1: हम बहुत अच्छे हैं, अपना बताइए, आप कैसे हैं?
0: बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे, हम भी। बताइए कहाँ से बोल रही हैं आप?
1: साहिबा अंसारी मेहवागंज जिला लखीमपुर खीरी से बोल रही हूँ।
0: अच्छा, उत्तर प्रदेश से ही बोल रही हैं आप, कैसी हैं?
1: जी हम बहुत अच्छे हैं।
0: और क्या करती हैं साहिबा जी?
1: मैं मिस तो हम लेस बना रहे थे।
0: लेस, क्या क्रोशिया से की वो टैटिंग की?
1: जी लेस, वो वाली जो सूटों में।

0: लगाई जाती है लाचे में, जो
1: हाँ, किस में लगाते हैं?
0: लाचे में लेस लगाई जाती है
1: अच्छा, तो वो किससे बनती
0: दुपट्टे में
1: है?
0: लगाई।
1: क्रोशिया
0: जी
1: से बनती है कि टैटिंग वाली लेस होती है?
0: जी मैम, नग लगाए जाते हैं।
1: नग लगा रहे हैं?
0: जी
1: अच्छा, अरे वाह, बड़ा सुंदर काम कर रही हैं आप, तो आपके हाथों में तो हुनर है।
0: जी हमारी तरफ यही काम होता है।
1: अच्छा, ओ
0: एक
1: तो एक दिन में कितनी लेसेस लगा लेती हैं आप?
0: बना लेते हैं
1: एक लेस पूरी बना लेते
0: ये
1: हैं
0: मैम,
1: नग?
0: 18 मीटर की होती है ना मैम, होती बहुत
1: अच्छा,
0: ज्यादा है।
1: ओ तो उसमें नग लगाते हैं और मोती
0: और
1: मोती भी लगाते हैं, नग भी लगाते हैं?
0: जी मैम,
1: अच्छा वाह, बड़ा मतलब काम में बड़ा मतलब आंखें भी मतलब कंसंट्रेशन, पूरा फोकस बड़ा अच्छा होना चाहिए इसमें ना, तभी
0: जी
1: उसमें
0: कभी
1: सब।
0: कभी हम कपड़े भी, क्योंकि मैम दिल्ली से माल आता है
1: हाँ
0: तो कभी
1: हाँ
0: कभी कपड़े भी आते हैं, कपड़े में भी नग लगाए जाते हैं।
1: अच्छा,
0: जी
1: वाह बहुत सुंदर काम करती हैं।
0: जी मैम,
1: चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और
0: जी मैम, आपका नाम क्या है?
1: मेरा नाम है दीप्ति जोशी। ठीक है,
0: जी मैम,
1: तो गाना कौन सा सुनेंगी आप?
0: मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा
1: हाँ
0: के रखना।
1: जरूर जरूर, आपकी शादी हो गई?
0: नहीं मैम,
1: अरे हो जाएगी, फिर क्या है, आएंगे तेरे सजना। ठीक
0: जी
1: है।
0: मैम,
1: तो सुनवाए आपके पसंद का गीत?
0: जी मैम सुनवाइए।
1: ठीक है, अच्छा लगा आपसे बात करके,
0: जी मुझे भी
1: धन्यवाद।
0: बहुत अच्छा लगे मैम, आप जो हमारी पहली बार कॉल लगी है, हम
1: हाँ
0: लगा जी हम हमारे जो सुन रहे हैं रेडियो उस पर रतन सर बैठे हैं,
1: चलिए ठीक
0: हमने
1: है,
0: सोचा रतन सर से बात होगी, आपसे बात हो गई, आपसे बहुत अच्छा लग रहा है। जी
1: चलिए, बहुत अच्छा लगा हमें भी आपसे बात करके।
0: जी
1: अब सुनवाते हैं आपकी पसंद का गीत।
0: सुनाइएगा।
1: धन्यवाद
0: थैंक
1: कॉल करने के लिए, नमस्कार।
0: यू मैम।

0: कार्यक्रम में मिलते हैं हमारे बरेली के कॉलर से, झुमका सिटी है ना। हेलो
1: हेलो।
0: हाँ जी
1: जी, नमस्कार।

0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं बताइए।
1: मैं लाल मोहम्मद अंसारी, ग्राम करेली पुरानी मस्जिद, जिला बरेली से बोल रहा हूँ।
0: जी हमने सही कहा था ना, झुमका सिटी बरेली।
1: जी, क्योंकि झुमका हमारे यहाँ से 6-7 किलोमीटर पे झुमका चौराहा है, वहाँ पे बहुत बड़ा झुमका लगा हुआ है।
0: देखा है, देखा है,
1: झुमका चौराहे के नाम से मशहूर है।
0: हाँ देखा है, देखा है। तो लाल मोहम्मद अंसारी जी, स्वागत है आपका, कैसे हैं आप?
1: बहुत बढ़िया है मैम, बहुत लंबे समय के बाद इस कार्यक्रम में आज मेरी कॉल लगी है, कम से कम 1 साल से भी ज्यादा हो गया।
0: बहुत बहुत मुबारक,
1: आज मेरी इस कार्यक्रम में एंट्री हुई मैम।
0: बहुत बहुत मुबारक हो आपको। और
1: मैं कार्यक्रम तो आपका सुनता रहता हूँ, रोज ही कार्यक्रम आपका सुनता हूँ, यही नहीं बल्कि आपके केंद्र में और भी कार्यक्रम प्रसारित होते हैं।
0: बहुत अच्छी बात,
1: और बहुत अच्छे और मेहनत लगने के साथ आप लोग कार्यक्रमों को पेश करते हैं, जिससे बहुत जानकारियाँ भी मिलती हैं और अच्छा भी लगता है।
0: खुशी भी जान के, जब श्रोता ऐसी बात करते हैं ना, तो जो काम करने वाले होते हैं उनकी मेहनत सफल हो जाती है बस, और हमें क्या ही चाहिए ना। आप सबका प्यार और आपका एक ध्यान हमारे केंद्र की तरफ कि हाँ भाई आकाश

0: सभी कार्यक्रम प्रसारित होते हैं,
1: बहुत अच्छी बात,
0: और बहुत अच्छे और मेहनत लगने के साथ आप लोग कार्यक्रमों को पेश करते हैं, जिससे बहुत जानकारियां भी मिलती हैं और अच्छा भी लगता है।
1: खुशी भी जान के जब श्रोता ऐसी बात करते हैं ना, तो जो काम करने वाले होते हैं उनकी मेहनत सफल हो जाती है बस, और हमें क्या ही चाहिए है ना। आप सबका प्यार और आपका एक ध्यान हमारे केंद्र की तरफ कि हाँ भाई आकाशवाणी लखनऊ है, तो इसको जरा गौर से सुनो।
0: लखनऊ कार्यक्रम को मैम कम से कम 20-25 साल हो गए तब से मैं सुन रहा हूँ, और उस समय के कार्यक्रम और आज के कार्यक्रमों में बहुत बड़ा फेरबदल भी हुआ है, लेकिन उस समय के भी कार्यक्रम बहुत बड़े बेहतर थे और आज भी अच्छे कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: कोशिश यही रहती है हमारे कार्यक्रम जो भी बनाते हैं, जो भी प्रेजेंट करते हैं, सबकी कोशिश यही रहती है कि हमारे श्रोताओं को ज्यादा से ज्यादा हम नॉलेज भी, ज्ञान भी दें और उनका मनोरंजन भी करें ना, यही तो हमारा मकसद है। और अगर हम उसमें, अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो हमें कामयाबी मिल गई अपने मकसद में, है ना
0: जी। मैम एक बात और कहना चाहूंगा कि आकाशवाणी 90 वर्ष पूरे कर रहा है, इस मौके पर मैं आप सभी को और सभी सुनने वालों को दिल से बधाई देता हूं, और हमें खुशी है कि 90 वर्ष का जश्न मनाने का हमें मौका मिला, और हम ये उम्मीद करते हैं कि जब आकाशवाणी 100 साल का होगा तो वो भी जश्न।
1: बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग शतक भी मनाएंगे, और क्या, दूर कहाँ है, ज्यादा दूर नहीं है, साथ में मनाएंगे, ठीक है।
0: क्योंकि सुनने वाले और सुनाने वाले सलामत रहे तो
1: बिल्कुल सलामत रहेंगे, हमारी यही दुआ है, सब सलामत रहेंगे और सब ऐसे ही रहेंगे, हंसते बोलते आपस में प्रेम से रहेंगे। तो सुनवाएं आपकी पसंद का गीत
0: जी। फिल्म का नाम है कौन है जो सपनों में आया, इसका गीत सुनना चाहूंगा।
1: हाँ हाँ,
0: और अगर आप कहें तो 4 महीने
1: जल्दी से। हाँ हाँ, ले लीजिए ना।
0: कभी कभी दिल उदास होता है,
1: हाँ हाँ,
0: कभी कभी दिल उदास होता है, हल्का हल्का सा एहसास होता है, झलक आते हैं आंखों से आंसू जब तुम्हारे दूर होने का एहसास।
1: ओ हो, क्या बात कही, लेकिन आकाशवाणी लखनऊ के जरिए हम लोग बहुत पास हैं, दूर नहीं है, ठीक है। चलिए तो खुश रहिए, बस दुखी मत होइए। सुनिए अपनी पसंद का गीत, धन्यवाद कॉल करने के लिए, नमस्कार।
0: ओके।

0: फिर से बता दें 0522-223-8845। और जुड़ गए हैं हमारे साथ हमारे एक और श्रोता। हेलो, हेलो हेलो, कहाँ गए आप? हेलो, अरे भैया बोलिए।
1: हेलो,
0: हाँ जल्दी बोलिए, कहाँ चले गए थे?
1: जी मैम जी, संजू कुमार बोल रहे हैं, ग्राम सिकरौली जिला से, चंडी का थाना त्रोली से।
0: स्वागत है आपका, कहाँ चले गए थे बीच में?
1: जी मैम जी, वो जेब में रख लिया था ना थोड़ा।
0: अरे जेब में मत रखिए।
1: बताइए,
0: आप बताइए, आपने फोन किया है, क्या कहना चाहते हैं संजय कुमार जी?
1: जी मैम जी, आप लोग बताइए कैसे हैं?
0: हम लोग बहुत अच्छे हैं। आप क्या कर रहे हैं आजकल?
1: जी मैम जी, कुछ नहीं, सरकारी हैं, ब्लाइंड हैं ना, इसीलिए तो घर पे रहते हैं।
0: तो घर पे रहते हैं, ब्लाइंड हैं, कोई बात नहीं, लेकिन कुछ तो करते ही होंगे।
1: जी कुछ नहीं करते, घर पे ही रहते हैं।
0: तो कुछ करिए, घर पे ही कुछ करिए, थोड़ा बहुत घर वालों की सहायता करिए जो आप बैठ के कर सकते हैं, है ना? ऐसा नहीं है, अपने को असहाय नहीं बनाना चाहिए, ठीक है ना? कोशिश करनी चाहिए, ऐसा नहीं है हाथ पैर सब सही हैं तो उनसे भी कुछ काम लिया जा सकता है, है ना?
1: हाँ, हाथ पैर सब सही है जी।
0: हाँ, तो क्या होता है, आप आपके पास जो ये दृष्टि है वो नहीं है, लेकिन आपके पास एक दिव्य दृष्टि है, उसको ढूंढिए और उसके साथ में अपना जीवन बसर करिए, ठीक है ना? तो आपको अच्छा लगेगा, आप जब खुद से कुछ करेंगे ना, आपको लगेगा अरे मैं ये कर सकता हूँ, आत्मविश्वास बढ़ेगा, है ना? तो आगे कोशिश जरूर करिएगा, ये मत कहिएगा कि हम कुछ नहीं करते, ठीक है?
1: जी मैम, जी मैम।
0: तो गाना सुनवाएं आपकी पसंद। अब आपने फोन लिया, फोन में आपने नंबर लगाया, आपने बातें करी, कुछ किया ना, ऐसे ही कुछ भी कर सकते हैं आप, ऐसा नहीं है, बाकी चीजों से तो आप ठीक ठाक हैं, वो कर सकते हैं, ठीक है?
1: मैम कुछ लोगों का नाम लेना चाहता हूँ।
0: जल्दी से ले लीजिए
1: जी। हमारे सीतापुर सुनील भाई है, मोनू भाई है, विनीत भाई है और ओमकार भाई है, पिंकी पिंकी मेरी बहन है, और हमारे अरमान दोस्त वो भी सुन रहे हैं,
0: ठीक
1: है। और रामू दादा एक बाजार में रहते हैं, उन्हीं के लिए टिकट है।
0: ठीक है, तो सुनवाते हैं, ये आपने गाना पसंद किया है,
1: थैंक यू मैम जी, धन्यवाद।
0: तेरे बिन एक पल, है ना?
1: जी मैम।
0: ठीक है, तो सुनवाते हैं आपको, धन्यवाद कॉल करने के लिए, नमस्कार।

कार्यक्रम चल रहा है कुछ तुम कहो कुछ हम कहें आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से, और हमारा फोन नंबर है 0522 223 88 44।

0: जी, मिलते हैं हमारे कार्यक्रम में उन्नाव शहर के प्रहलाद कुमार जी से। हेलो
1: जी, नमस्ते बहन जी।
0: नमस्ते, आप बता दीजिए, पूरा परिचय दे दीजिए अपना।
1: जी, मैं प्रहलाद कुमार कुशवाहा, गनीपुर बहटा, बांगरमऊ डिस्ट्रिक्ट उन्नाव से बात कर रहा हूँ। आज बहुत दिनों के बाद में मैं बहन जी आपके कार्यक्रम में लाइव आया हुआ।
0: वाह, क्या बात है, मतलब आप सुनते रहते हैं कार्यक्रम?
1: अरे बिल्कुल, कार्यक्रम सुनते रहते हैं, बराबर सुनते रहते हैं, लेकिन कॉल्स नहीं लगाते हैं क्योंकि ना हमारे नए श्रोताओं को मौका मिलता रहे, इस वजह से हम कॉल नहीं मिलाते हैं।
0: अच्छा।
1: आज हमसे रहा नहीं गया कि हम जो है फोन मिला रहे थे।
0: हाँ। जी, और फोन लग भी गया, आज आपसे रहा नहीं गया तो ऊपर वाले ने भी आपकी सुनी ली, है ना?
1: जी बिल्कुल, लक की बात है। हाँ। आप आई और आपके कार्यक्रम में हमारा फोन लग गया, ये हमारे लिए सोने पे सुहागा हो गया।
0: हमारे लिए भी बहुत, हमारे सभी श्रोताओं का फोन लगता है, हमसे बात होती है तो हमें भी बहुत अच्छा लगता है। जब यहाँ पर घंटी नहीं बजती है ना तो हमारा भी दिल धड़कने लगता है कि अब क्या होगा। तो अच्छा लगा आपसे, और आप तो बहुत मेहनत करते हैं, आप कह रहे थे पहचानते नहीं, पहचानते हैं हम आपको, आप जो है बहुत मेहनत करते हैं।
1: मुलाकात हुई थी।
0: हाँ, आप आए थे कार्यक्रम में आकाशवाणी के, और आपने
1: तो
0: पूरा
1: कुछ कहना चाहूंगा।
0: हाँ हाँ, जरूर।
1: तपन बहुत हो रही है, मौसम बहुत खराब होता चला जा रहा है ये आपके कुछ सालों से, तो लोगों से कुछ कहना चाहूंगा। हमने कुछ लाइनें लिखी हैं,
0: जरूर
1: जल्दी से कोशिश करूंगा कि मैं सबको सुना दूं और उस पर गौर भी लोग फरमाएं और गौर भी करें। धूप से बचाएं, फल भी खिलाएं, धूप से बचाएं, फल भी खिलाएं, जरूरत पड़ने पर हम इसकी लकड़ी भी जलाएं। आओ फिर हम लोग भी, आओ फिर हम लोग भी ऐसा फर्ज निभाएं, ज्यादा नहीं तो दो ही तीन इस वर्ष पेड़ लगाएं।
0: बहुत अच्छी बात,
1: पेड़ लगाएं।
0: वाह, क्या बात कही आपने, बिल्कुल सही बात कही। सच्ची में हम अपनी बात बता रहे हैं, जब हम जहाँ अपने घर में, हम तो यहीं शहर में रहते हैं, लेकिन हम जब गमलों में भी अगर कोई पेड़ लगाते हैं और जब उसका फल हमको मिलता है ना, तो वो देख के, पहले तो हमें देख के ही अच्छा लगता है कि वो जो पेड़ बढ़ रहा है, उसको अपने सामने बड़ा होते देखो, उसके जो फूल निकलते हैं वो इतना सुंदर लगता है, और जो अपनी मेहनत होती ना थोड़ा सा, तो वो देख के बड़ी खुशी होती है, और जब फल मिलता है तो उसका स्वाद ही अलग होता है।
1: बिल्कुल,
0: है ना?
1: एक बात कहना चाहूंगा कि पेड़ लगाना तो आसान है लेकिन उनके फल खा पाना बहुत कठिन,
0: बहुत कठिन है, क्योंकि मेहनत करनी पड़ती है। जैसे बच्चे होते हैं ना, बच्चों को आप पालते हैं, बड़ा करते हैं, उनपे पूरा मतलब एक तरह से इन्वेस्ट करते हैं, तो जिसको आजकल की भाषा में कहते हैं ना कि इतना इन्वेस्ट किया है, तो वो जो इन्वेस्ट जो है वो ही हम अपनी प्रकृति में करें ना, तो वो अपनी मेहनत है, थोड़ा सा उसमें खाद अच्छी डालें, उसमें पानी लगाएं, टाइम टू टाइम उसको देखें, निराई गुड़ाई सब करें, तभी तो हमको अच्छी फसल मिलेगी, अच्छा जो है उपज मिलेगी, है ना? ये चीजें इसीलिए
1: हो सकता है कि कुछ लोग सुन रहे होंगे, कह रहे होंगे प्रहलाद जी बड़ी बड़ी बातें छांप रहे हैं, क्या आपने पेड़ लगाए हैं? तो आप लोग आके हमारे खेत में?
0: नहीं नहीं, बिल्कुल
1: 10 या 12 पेड़ लगा के तैयार किए हुए हैं।
0: बहुत अच्छी बात है,
1: फल देने लगे।
0: बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, और हम खुद बता रहे हैं क्योंकि हम भी इतनी बातें करते हैं लेकिन हम भी अपने घर में लगाते हैं, कोई आए देखे तो वाकई हमारे घर में उसको देखने को मिलेगा, हमें अच्छा लगता है, और ऐसा शहरों में भी बहुत लोग कर रहे हैं, तो हमें उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए और करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए।
1: मेरा एक और भी कहना है कि किसी को सीख देने से पहले खुद उसके ऊपर अमल करना चाहिए, उसके बाद में
0: बिल्कुल
1: सीख देनी चाहिए।
0: सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही बात। तो अब जल्दी से आप
1: हो गई है बहन जी, अब हम चाहेंगे हम अपनी वाड़ी को यहीं पर विराम दें और आप हमारी पसंद का गीत सुना दें।
0: बिल्कुल सुनवाते हैं,
1: जितने भी लोग सुन रहे हैं उन सभी लोगों के लिए डेडिकेट रहे।
0: तो ये आपने 20 साल बाद फिल्म का चुना है गीत, ठीक है,
1: अनुराधा विजय पांडे जी के लिए।
0: अरे वाह, क्या बात है। चलिए तो विजय पांडे जी आपके लिए गीत प्रस्तुत है, ठीक है, सुनवाते हैं। धन्यवाद कॉल करने के लिए। नमस्कार।
1: धन्यवाद, धन्यवाद बहन जी।

0: लोग हमें याद करेंगे, वाकई सही बात है। तो हम भी अपने श्रोताओं से उतना ही प्यार करेंगे, ठीक है। तो अब मिलते हैं राजस्थान के हमारे श्रोता से। हेलो।
1: हेलो, नमस्कार दीदी।
0: नमस्कार, अपना पूरा परिचय दे दीजिए।
1: मैं गिराम दिलवानी पटार, पोस्ट तेलनी, तहसील छबड़ा, जिला बार राजस्थान से अमर सिंह भील बोल रहा हूँ दीदी।
0: अमर सिंह जी, स्वागत है आपका। मेरे ख्याल में आपसे मेरी पहली बार बात हो रही है।
1: हाँ, पहली बार ही हो रही थी।
0: अच्छा लगा जान के।
1: ये दूसरी बार कॉल है मेरा।
0: अच्छा,
1: दूसरी बार ये।
0: चलिए, तो क्या करते हैं आप अमर सिंह जी?
1: खेती किसानी करते हैं वैसे तो।
0: आजकल तो राजस्थान में भी खूब गर्मी आपकी तरफ भी काफी हो रही होगी।
1: हाँ, काफी गर्मी है यहाँ पर। तो अभी तो कहीं बादल भी हो रहे हैं, गर्मी पड़ रही है।
0: अच्छा, बादल भी हो रहे हैं। चलिए, बादल देख के एक उम्मीद तो जगती है कि शायद कुछ छींटे आ जाएं, है ना
1: जी।
0: तो बस कैसे ख्याल रख रहे हैं अपना?
1: अपना ख्याल तो रख रहे दीदी के, सुबह शाम को ही निकलते हैं, मतलब कहीं बाहर नितर घर को ही रहते हैं।
0: ठीक, बहुत अच्छी बात है। ये तो अच्छा है ना। इतना तो हमको खुद ही समझ में आना चाहिए कि सुबह सुबह निकल जाओ, मौसम जिस समय ठंडा रहता है, और दिन में अपना घर में आराम करो, तो आपका काम भी होता रहे, उसमें भी कोई परेशानी ना हो, और
1: काम भी होता रहे दीदी, सब काम मतलब चलता रहे, मतलब
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: लेकिन गांव में नहीं निकलनी चाहिए, मतलब मैं ठंडा ही।
0: तो आजकल आपकी तरफ कौन सा क्या लगा है खेतों में? हेलो।
1: हाँ,
0: आपके खेतों में क्या लगा हुआ है?
1: अभी मूंग लगाओ दीदी।
0: मूंग लगा है, चलिए ठीक है। तो खूब अपना ध्यान रखिए और खूब मेहनत करिए, बढ़िया फसल हो आपकी।
1: कुछ दोस्तों के नाम देना
0: जल्दी
1: चाहता
0: हूं। से हाँ, जल्दी से ले लीजिए।
1: मांगीलाल डाकर, गजराज लोधी, नरेश प्रजापति, संदीप नामदेव, ये हमारे दोस्त है दीदी।
0: ठीक है, तो सबके लिए आपकी पसंद का
1: आपके लिए गाना सुनना चाहता हूँ दीदी। मैं राज हिंदुस्तानी,
0: राजा हिंदुस्तानी से। कितना
1: सबसे प्यारा मेरा यारा राजा हिंदुस्तानी,
0: कितना प्यारा तुझे रब ने बनाया, ये बना है ना। ठीक है, चलिए ये सुनवाते हैं आपको। धन्यवाद कॉल करने के लिए। नमस्कार।
1: नमस्कार।

0: कार्यक्रम में मिलते हैं इटावा से हमारे अगले श्रोता से। हेलो।
1: हेलो मैम जी।
0: जी नमस्ते।
1: नमस्ते साहब। नमस्ते
0: जी। पूरा परिचय दे दीजिए अपना।
1: हम इटावा से ओम नारायण कुशवाहा जी बोल रहे हैं।
0: स्वागत है ओम नारायण जी। आपसे पहले भी बात हुई है। आप हमारे
1: बहुत धन्यवाद मैडम जी। बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आप नियमित श्रोता हैं हमारे
1: जी। अरे हम कम से कम सन 80 से सुन रहे हैं।
0: हाँ ये तो आपने बताया था। हाँ चलिए बहुत अच्छा लगता है जब हमारे पुराने साथी लोग हमारे साथ जुड़े होते हैं तो खुशी।
1: अरे
0: हमें
1: बहुत खुशी। बहुत खुशी हुई।
0: चलिए तो और सब ठीक है आपकी तरफ?
1: हाँ और सब ठीक है मैडम जी।
0: तो आपकी पसंद का गीत सुनवाएं।
1: दो दो चार मित्र हैं हमारे।
0: जल्दी से बोल दीजिए। हाँ मित्रों को।
1: इटावा लालपुरा से राहुल जी है और फरकाबाद से सतीश जी है और अचल्ला और अय्या जिला से गगनदीप कमल है और सिसोदिया जी है।
0: ठीक है तो ये आपने पसंद किया है मेरा गांव मेरा देश फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज में, है ना?
1: जी हाँ जी हाँ।
0: तो किसको मारने जा रहे हैं? चलिए कोई नहीं है तो मजाक था। सुनिए अपनी पसंद का गीत। धन्यवाद कॉल करने के लिए। नमस्कार।
1: धन्यवाद आपको।
0: नमस्कार।

0: कार्यक्रम चल रहा है, कुछ तुम कहो कुछ हम कहें। हमारा फोन नंबर है 0522-223-8845, यानी 0522-2238-845। और अब हम मिलते हैं हमारे अगले कॉलर से। हेलो।
1: हाँ नमस्ते सर।
0: नमस्ते जी, आप अपना पूरा परिचय दे दीजिए।
1: सर श्रवण कुमार परिहार, ग्राम हसनापुर, लखीमपुर, जिला फतेहपुर, उत्तर प्रदेश, भारत।
0: वाह क्या बात है, आपने पूरा भारत तक का भी नाम दे दिया। अरे भारत से ही तो बोलेंगे यहाँ के नंबर पे।
1: नहीं सर, बाहर भी सही आवाज जा रही हो देश।
0: अच्छा, ये बहुत बढ़िया बात कही आपने, तो हम भी अब कहेंगे हम भारत से बोल रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। ये तो हमें अभिमान होना चाहिए अपने ऊपर ना, हमारे देश के लिए। कितना सुंदर, कितना बढ़िया। और आपने देखिए, आप तो वाकई देश प्रेमी है, क्योंकि आपने गाना भी देश प्रेमी फिल्म का ही सिलेक्ट किया है, ठीक है ना?
1: हाँ सर, उसी को सुना दीजिए।
0: तो आप पहले ये बताइए, आप करते क्या हैं?
1: सर हम महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार मंत्रालय में रोड बनाते हैं सर।
0: अच्छा, ओहो, तो आज
1: सारी काम करते हैं।
0: और बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं आप, क्योंकि इतनी सड़कें इतनी बढ़िया बन गई है ना, कि गाड़ी लेके कहीं भी निकलो तो मजा आ जाता है, कहीं भी पहुंच जाते हैं हम लोग, है ना? बहुत आसान हो गया है, इतनी सड़कें बन गई हैं, बहुत बढ़िया हो गया है, रोड नेटवर्क बहुत अच्छा है, ठीक है ना? आप भी मानते हैं इस बात को?
1: हाँ सर।
0: चलिए तो सुनवाएं आपकी पसंद का गीत।
1: हाँ सर
0: ठीक है, आप सुनना चाहते हैं देश प्रेमी फिल्म का ये गीत?
1: हाँ सर,
0: मोहम्मद रफी की आवाज में। धन्यवाद कॉल करने के लिए। नमस्कार श्रवण कुमार जी, नमस्ते।

0: आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों। और हमें इतना अच्छा लगता है कि हमारे इस कार्यक्रम में देश के हर एक अलग अलग जगह से लोगों के कॉल आते हैं और सभी आपस में बहुत प्रेम करते हैं क्योंकि सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं कार्यक्रम के माध्यम से भी। और उसके अलावा उनके अपने ग्रुप्स बने हैं जिसमें कि सारे श्रोता जो हैं वो अपना आपस में मिलते हैं, बात करते हैं। तो ऐसे ही हरियाणा से हमारे एक कॉलर का फोन आया है, उनसे बात करते हैं। हेलो।
1: हेलो
0: जी, अपना पूरा परिचय दे दीजिए।
1: नमस्कार मैडम जी।
0: नमस्कार जी।
1: जी मैं गांव बड़ौदा जिला दिन हरियाणा से बोल रहा हूँ, धर्मवीर
0: जी। स्वागत है आपका धर्मवीर जी, कैसे हैं आप?
1: हाँ ठीक। हाँ जी मैडम जी, आप सुनाओ कैसे हो?

0: हम भी बढ़िया हैं। और क्या करते हैं धर्मवीर जी?
1: मैं तो जी मैडम जी घर पे रहता हूँ,
0: अच्छा
1: कुछ नहीं करता, बस ये समझो फरी है।
0: हाँ,
1: अजी
0: क्या है
1: काम से फरी है ये समझ लो बस।
0: मतलब, आप क्या रिटायर हो गए हैं या क्या बात मतलब वो है,
1: हाँ
0: हम
1: जी
0: जानते?
1: वो ऐसे कोई सरकारी नौकरी तो किए नहीं, वैसे काम धंधा करते थे पहले मेहनत मजदूरी का, तो अब तो होता नहीं, बसे कर लेते हैं जी।
0: कोई बात नहीं। अरे तो आप, आपके बच्चे हैं ना घर में, वो लोग करते हैं। देखिए, एक उम्र तक ही तो आप कर सकते हैं ना। हाथ पैर शरीर जब तक अच्छे से चलेगा तभी हम चला सकते हैं। उसके बाद फिर जो समय होता है ना, आराम करने का होता है। और अगर
1: हाँ जी
0: बच्चे
1: वैसे
0: साथ
1: तो
0: हो,
1: थोड़ा बहुत काम करता हूँ जी,
0: हाँ
1: घर
0: हाँ
1: पे जैसा भी होता है काम करता
0: अच्छी
1: हूँ,
0: बात है,
1: लेकिन ज्यादा तो बच्चे करते हैं, बड़े बड़े
0: ठीक है,
1: बच्चे हो रहे हैं जी।
0: बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। आपका, आपकी छत्रछाया में बच्चों को अच्छी गाइडेंस मिल रही होगी। आप बताते होंगे उनको, दिशा निर्देश देते होंगे कैसे क्या करना है, उनको
1: हाँ जी
0: समझाते
1: और
0: होंगे।
1: ये रेडियो का शौक तो जी मुझे बचपन से ही है
0: बहुत
1: मैडम
0: अच्छा,
1: जी,
0: वाह,
1: आपके पास मेरा 3-4 बार फोन मिल चुका है, बहुत अच्छा लगता है आपका प्रोग्राम,
0: हाँ
1: मैं हर रोज सुनता हूँ जी।
0: हाँ हाँ हाँ चलिए, बहुत खुशी हुई। तो अच्छा है, अपने बच्चों को खूब गाइड करिए, खूब समझाइए। अपने जो आपके पास तो इतना एक भंडार होगा एक्सपीरियंस का, है ना?
1: हाँ जी जो कुछ है जी वो तो है ही जी, थोड़ा
0: बस
1: बहुत
0: वो ही
1: जैसा भी
0: बांटिए, वो बहुत बड़ी बात होती है, और क्या। ठीक है ना, तो
1: हाँ जी
0: सुनवाएं फिर आपकी पसंद का गीत। आपने गाना
1: हाँ
0: बहुत
1: जी
0: प्यारा सेलेक्ट किया है।
1: हाँ जी गाना की सोने के हाथ फिल्म का है, ले लो
0: हाँ,
1: चंपा चमेली गुलाब ले लो।
0: गुलाब ले लो। ये तो चंपा चमेली गुलाब सुन के ही लगता है बस आंख बंद करके कि सामने जो है वो पूरी टोकरी में भरे पड़े हैं फूल और पेड़ों में लदे हुए हैं। आहा, कितना अच्छा लगता है। तो सबको,
1: हाँ जी ये मैंने बचपन में सुनता था जी, मैं गीत ये बहुत सालों
0: हाँ
1: से सुना नहीं है मैंने जी,
0: चलिए
1: ये मैं
0: आज
1: सुना चाहता
0: सुनवाते
1: हूँ।
0: हैं आपको आपकी पसंद का गीत। ठीक है,
1: हाँ
0: धन्यवाद,
1: ठीक है जी
0: धन्यवाद कॉल करने के लिए।
1: धन्यवाद
0: नमस्कार,
1: जी।
0: अपना ख्याल रखिएगा, धन्यवाद।

0: कार्यक्रम में मिलते हैं हमारे अगले कॉलर से। हेलो
1: दीदी को नमस्कार।
0: नमस्कार जी।
1: दीदी ग्राम नरेला दामोदर भोपाल मध्य प्रदेश से रामबाबू शर्मा बात।
0: स्वागत है रामबाबू जी, आप भी नियमित श्रोता हैं हमारे।
1: हाँ जी दीदी बिल्कुल, लखनऊ प्रोग्राम जुड़े रहते हैं, कुछ तुम कहें कुछ हम कहें से भी जुड़े रहते हैं और उमंग है, लखनऊ आकाशवाणी सुनते रहते हैं।
0: बहुत अच्छी बात है, खुशी होती है जानकर जब हमारे श्रोता बताते हैं तो हमें भी बहुत अच्छा लगता है। और क्या होता है ना कि उत्साह बढ़ता है।
1: आठ में तो आई जाया करो, क्या है खुशी होती है जब आप आते हैं। वैसे सभी अनाउंसर अच्छे हैं लेकिन सभी को आना चाहिए, आठ दिन में तो ड्यूटी लगवा ही लिया करो।
0: ड्यूटी लगती रहती है, ऐसा नहीं है। और लेकिन कभी क्या होता है कोई विशेष कार्यक्रम दिल्ली वगैरह से आता है तो फिर वो ये कार्यक्रम कट जाता है ना, कभी ऐसा भी होता है, तो ऐसा नहीं है और अच्छा लगता है। तो हमें मतलब

0: आप मध्य प्रदेश, हरियाणा, त्रिपुरा, सब जगह से जब लोग आते हैं ना कार्यक्रम में, तो बहुत खुशी मिलती है, बहुत खुशी मिलती है।
1: हाँ जी दीदी, बिल्कुल अच्छा लगता है, श्रोता सभी श्रोताओं से बात होती है, अच्छा लगता है।
0: चलिए तो सुनवाएं आपकी पसंद का गीत।
1: जी दीदी, मैं दो तीन मित्रों को भी याद करना चाहूंगा।
0: जल्दी से याद कर लीजिए।
1: जी दीदी, मित्र हमारे अजी जी हैं, केसर सिंह राजपूत जी, गजराज सिंह लोधी जी और मांगीलाल चंदेल जी, और आपके लिए रहेगा दीदी।
0: बहुत बहुत धन्यवाद
1: कानपुर से उनके लिए।
0: ठीक है, ये माफिया फिल्म का गीत आप सुनना चाहते हैं कुमार सानू की आवाज में, ठीक है?
1: हाँ जी दीदी, हाँ जी।
0: धन्यवाद कॉल करने के लिए। नमस्कार
1: दीदी। नमस्कार।

0: हम भी आवाज़ देते हैं अपने श्रोताओं को कि आइए फ़ोन मिलाइए, हमसे बात करें। तो हमारे साथ जुड़ गए हैं जयपुर राजस्थान से पूरन वर्मा जी। जय माता दी।
1: जय माता जी।
0: कैसे हैं आप पूरन वर्मा जी?
1: बस मैडम बढ़िया हूँ, और बहुत देर से ट्राई कर रहा था, वो ट्राई करके भोलेनाथ ने
0: आपके ऊपर तो बहुत कृपा है।
1: आप दुआ कर रहा था हमको, बोले बाबा मेरा कॉल आठ लग जाएगा तो मैं तुम्हारा बदन अर्पण करूंगा। मैं
0: देखिए कितनी बड़ी बात है, आपने भोले बाबा को याद किया, दिल से याद किया, और उन्होंने आपकी बात सुन ली। ऐसे ही आपकी हर बात सुने और हर काम, आपके सभी काम पूरे करें। तो ठीक है, तो और कुछ कहना चाहेंगे?
1: बस मैडम बढ़िया है, आपका कार्यक्रम सुन रहे हैं, दूर दूर से श्रोता बातचीत हो रही है, और आपकी भी बात श्रोता आपकी भी सुनने को मिल रही है, और आप जो कह रहे हैं तो आपकी बात हमारे को सुनने को मिल रही है, बहुत अच्छा लग रहा है मैडम।
0: चलिए, आपको अच्छा लगता है, बस यही हमारी सफलता है ना। और तो सुनवाते हैं आपको ये आपके भोले बाबा का शिव महिमा का ये भजन, ठीक है?
1: थैंक यू मैडम। दो तीन दोस्तों को याद कर लो।
0: हाँ हाँ, याद कर लीजिए
1: जी। सबसे पहले आप है,
0: धन्यवाद।
1: और मेरा दोस्त है राकेश है, भगवान सिंह परवान जी है, अभिनाथ जी है, रमेश प्रजापति जी है, रोहित है इटावा से, और जितने कार्यक्रम आकाशवाणी लखनऊ
0: के लिए हरिहरन की आवाज में ये शिव भजन सुनते हैं।
1: थैंक यू मैडम,
0: धन्यवाद।

इस भजन के साथ ही आज का ये कार्यक्रम कुछ तुम कहो कुछ हम कहें अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। अब प्रस्तुत है NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है उमंग कार्यक्रम में।
1: और आपके मित्र अजीत का भी नमस्कार और जोहार।
2: बिना संघर्ष के सफलता बिना नमक के भोजन की तरह होती है। इससे हमारी भूख तो मिट जाएगी लेकिन ये स्वादिष्ट नहीं लगेगी।
1: श्रोताओं, ये सुंदर विचार हमें भेजा था बिहार से वसीम अकरम और गुड़िया खातून जी ने। बिल्कुल सच कहा है, बिना श्रम के सफलता का सच्चा आनंद नहीं मिलता
2: जी।
1: आप दोनों का धन्यवाद। और आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश।
2: छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव, तुषार देव तामुरिया, डॉली बेबी, पूजा, पुष्कर लेहान, जिज्ञासा, विराट, तेजस्वी और गौरव तामुरिया।
1: और भटीपुरा महुआ उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मीहू का संदेश हमें मिला है। लिखते हैं,
2: गुरुवार 23 अप्रैल को सुविचार को स्पष्ट रूप से समझाने के लिए आपने जानकारी देते हुए एक दोहा का उदाहरण दिया। इस दोहे में कबीरदास जी विश्वास को न तोड़ने की सीख देते हैं। दोहा इस तरह से था, रहिमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर न जुरे, जुरे गांठ परे जाए।
1: आपने आगे लिखा है, आपके द्वारा इस दोहे के रचनाकार कवि का नाम कबीरदास बताया गया। वास्तव में इस दोहे को रहीम ने लिखा है, न कि कबीरदास जी ने। धन्यवाद और आभार।
2: आपका भी बहुत बहुत आभार। कृष्ण कुमार जी, आपको भी हमारा विशेष धन्यवाद। आप हमारे कार्यक्रमों को बड़ी बारीकी से सुनते हैं और उन पर प्रतिक्रिया भी देते हैं।
1: तो हम कहना चाहते हैं कि आपकी प्रतिक्रियाओं का स्वागत है हमेशा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया संदेश भेजते रहिए। अगला संदेश सुनते हैं जो हमें मिला है।
2: गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरता बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलऊदास, जयदास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतिम बाई मानिकपुरी।
1: और करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर।
2: छोटी बलिया मुंबई से आमना अंसारी, जुबैदा और नेहा अंसारी।
1: और बेगूसराय बिहार से हमें संदेश मिला है इकबाल मोगा, देव, अजय मोगा और अहमद मोगा का। लिखते हैं,
2: आज की प्रस्तुति कल्पना चावला जो सितारों में खो गई हमें बहुत अच्छी लगी, आपको साधुवाद।
1: और आप सबको हमारा हार्दिक आभार। आइए अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जानने की। तो हमारा पहला प्रश्न था, आकार में समुद्र के सबसे बड़े जीव का नाम बताइए।
2: इस प्रश्न का उत्तर है, नीली वेल को आकार में समुद्र का सबसे बड़ा जीव माना जाता है। इसका वजन लगभग 100 से 150 टन का होता है, यानी किलोग्राम के अनुसार ये 1 लाख से 1.5 लाख किलोग्राम की होती है
1: जी। और अब सुनिए हमारा दूसरा प्रश्न। हमारा दूसरा प्रश्न था, थर्मल लैग किसे कहते हैं।
2: इसका उत्तर जान लेते हैं साथियों। गर्मियों में सूर्य की किरणें जब सीधी पड़ती हैं तो भूमि गर्म हो जाती है। सुबह से सूर्य के ताप के कारण धरती गर्म होती रहती है और 12 बजे सूर्य की किरणें धरातल पर सीधी पड़ती हैं
1: जी।
2: बाद में धीरे धीरे तिरछी होने लगती हैं, इसीलिए उनका ताप कम होने लगता है। लेकिन इस दौरान यानी 12 बजे के बाद भूमि अपनी गर्मी धीरे धीरे छोड़ती है, जिसके कारण गर्मी और अधिक बढ़ जाती है, जिसे थर्मल लैग कहते हैं।
1: और हमारा तीसरा प्रश्न था कि प्रकृति को हमारे भले की चिंता रहती है, ऐसा क्यों कहा गया है।
2: इसका उत्तर है साथियों, प्रकृति जलवायु के अनुसार हर मौसम में वही उपज देती है जिसकी हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। इसके अनेक उदाहरण हैं, एक उदाहरण ले लेते हैं। जैसे कि गर्मी के मौसम में जो फल आते हैं उनमें पानी की मात्रा बहुत अधिक होती है ताकि हमें गर्मी के मौसम

0: में इसका लाभ मिले।
1: और हमारा अगला प्रश्न श्रोताओं प्राथमिक उपचार से संबंधित था। हमारा प्रश्न था कि लू से पीड़ित व्यक्ति के कपड़े और बेल्ट ढीले करने से उसे किस प्रकार की राहत मिलती है।
0: तो साथियों इसका उत्तर भी जान लेते हैं। लू से पीड़ित व्यक्ति के कपड़े और बेल्ट ढीली करने से सांस लेने में आसानी होती है और शरीर का रक्त संचार आसानी से हो पाता है।
1: और अब हमारा पूछा गया अंतिम प्रश्न, हमारा प्रश्न था बच्चे अपनी गर्मियों की छुट्टी में और क्या क्या कर सकते हैं।
0: इसके बहुत से उत्तर हो सकते हैं, लेकिन हम कहेंगे विद्यार्थी कोई भी शास्त्रीय नृत्य या वाद्य यंत्र सीख सकते हैं, जैसे हारमोनियम, तबला या बांसुरी।
1: जी विमरेश जी, ये सचमुच एक बड़ी अच्छी सलाह है। तो श्रोताओं अब सुनते हैं आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, पीसा की मीनार कहाँ है और ये तिरछी क्यों है। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: पीसा की मीनार कहाँ है और ये तिरछी क्यों है।
1: 8800440559 हमारा IVRS नंबर है और audio@cit.nic.in है हमारे ईमेल का पता। आप इन पतों पर अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर हमें भेज सकते हैं। और अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो आज के कार्यक्रमों की कड़ी में सबसे पहले सुनते हैं कार्यक्रम शो ऑफ क्लाउड्स।
0: कक्षा 2 की अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक की एक कविता पर आधारित ये कार्यक्रम बच्चों को प्रोत्साहित करता है कि वे प्रकृति का ध्यान से अवलोकन करें और उसकी सुंदरता का अनुभव करें। कार्यक्रम एक सुंदर गीत के द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जिसमें एक बच्ची आकाश में बादलों को ध्यान से देखकर उनके विभिन्न आकारों में पशु पक्षियों की छवि की कल्पना करती है।
2: हेलो चिल्ड्रन, हाउ आर यू?
3: वी आर फाइन सर।
4: आई एम फाइन।
5: आई एम गुड सर।
2: फाइन, गुड। ओके, सो टेल मी, what do you like most?
4: I like playing, sir.
6: I like painting, sir.
2: Very good. Anyone else?
7: Sir, I like singing.
8: I like playing with my pets.
2: Oh, that's great. Now tell me, do you like looking at the beautiful flowers in the garden?
3: Yes, sir.
6: We like.
2: Lovely butterflies?
3: Yes, sir.
2: And lovely colorful chirping birds?
3: Yes, sir.
2: That's very nice, children.
6: Sir, I go to the park with my parents on holidays.
2: Okay. It's always wonderful to see the beautiful nature, isn't it?
3: Yes, sir.
2: The rivers, the mountains, and the green trees.
3: Yes, sir.
2: Okay. So let me tell you the story of a sweet child like you.
3: Like us?
2: Would you like to listen? To know what the child did, you have to listen to a beautiful poem. After listening to the poem, you will know what the child did. Okay?
3: Okay, sir.
2: Very good. Now I am going to read this poem. You have to repeat after me. Okay?
3: Okay, sir. We love you.
2: As I lie on my back, looking up at the sky, I see a big white bear, looking down at me, as I lie on my back,
3: looking up at the sky.
2: I see a ship sailing.
3: On a white sea.
2: As I lie on my back. Looking up at the sky. I see an elephant. Waving its trunk at me. As I lie on my back, looking up at the sky. Oh, it's fun to me. To see whatever I want to see. So, children, you have recited so well. Have you ever noticed the clouds?
3: Yes, sir.
6: They are beautiful.
5: They are very big.
4: They change the shapes.
2: Wonderful. You have very rightly said. So now listen to the same poem in a

0: Did you like the song?
1: Yes, sir, it was lovely.
0: So, children, here is something to do for you, okay?
1: Okay, sir.
0: Sit outside your home or go to any park and see the clouds go by. And tell your friends what you have observed.
1: Okay, sir, it will be so lovely.
2: It will be good.
0: Yes. And one thing more. Notice the colors of the clouds and you will find that the clouds also have different colors from time to time.
1: Yes, sir!
3: I have seen rainbow.
4: It has seven colors.
0: So, children, whenever you see the clouds, they have different
1: shapes.
0: Yes, shapes. And they have different
1: colors.
0: Very nice.
5: Show of Clouds. You were just listening to this program. Program Coordinator, Professor Rajendra Pal. Technical Coordinator, Bati Langlingdo. Child Singer, Angel. Child Artists, Soham, Vedika, Vanya, Navya, Riddhi and Lavish. Sound Recordist, Mayank Kumar. Assistance in Production, Kusum Lata. Directed and produced by Ajit Horo. This program was brought to you by CIET NCERT, New Delhi, India. अभी आपने सुना कार्यक्रम शो ऑफ क्लाउड्स और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम. अगले कार्यक्रम का शीर्षक है तुलसी गौड़ा.
6: ये कार्यक्रम जंगल की एनसाइक्लोपीडिया कही जाने वाली महान आदिवासी पर्यावरण विशेषज्ञ तुलसी गौड़ा के जीवन, उनके पर्यावरण पर शोधों और वृक्षों को बचाने के उनके प्रेरणादायक अभियान की जानकारी देता है. विशेष रूप से मातृ वृक्षों पर उनकी खोज के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है.
7: नंगे पांव, धोती नुमा पारंपरिक कपड़े, आदिवासी गहने पहनी
8: तुलसी गौड़ा, 72-year-old ट्राइबल वुमन फ्रॉम कर्नाटका,
9: राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद तंको पद्मश्री सम्मान रे सम्मानित करिछंती.
10: इनसाइक्लोपीडिया ऑफ द फॉरेस्ट शी इज कॉल्ड इन कर्नाटका तुलसी गौड़ा.
7: जंगलों की इनसाइक्लोपीडिया कही जाने वाली तुलसी गौड़ा
11: को देश के चौथे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्मश्री से नवाजा गया है.
12: ये आकाशवाणी है. प्रस्तुत हैं आज के मुख्य समाचार. आज राष्ट्रपति भवन के एक भव्य समारोह में श्रीमती तुलसी गौड़ा जी को महामहिम राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद द्वारा

0: सन 2020 के पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
1: श्रीमती तुलसी गौड़ा, समाज सेवा, पर्यावरण।
0: यह सम्मान पर्यावरण संरक्षण में उनके द्वारा दिए गए उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया गया है। देश भर में प्रसन्नता की लहर।
2: आठ नवंबर 2020 को भारत सरकार ने श्रीमती तुलसी गौड़ा जी को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया, जो भारत के नागरिकों को दिया जाने वाला चौथा सर्वोच्च पुरस्कार है। राष्ट्रपति भवन के रेड कार्पेट पर नंगे पांव चलते हुए श्रीमती तुलसी गौड़ा पद्मश्री सम्मान लेने जब महामहिम राष्ट्रपति के पास पहुंची, तो सादगी और विनम्रता की प्रतिमूर्ति इस आदिवासी महिला को देखकर सभागार देर तक तालियों की गड़गड़ाहट से गूंजता रहा।

0: उत्तरी कर्नाटक का क्षेत्र पर्वतों और सघन जंगलों से घिरा हुआ है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता देखते ही बनती है। पहाड़ों से उछलती कूदती नदियां जब घाटियों और समतल मैदानों से कल कल करती हुई गुजरती हैं, तो एक अनोखा नजारा पेश करती हैं।
1: इस सुरम्य वातावरण को और भी संगीतमय बना देता है पक्षियों का कलरव। इस क्षेत्र में अनेक जनजातियां रहती हैं। उनके जनजातीय संगीत और नृत्य तो मानो संपूर्ण सौंदर्य में चार चांद लगा देते हैं। ये जनजातियां मुख्य रूप से खेतीबाड़ी और पशुपालन पर निर्भर हैं। यहाँ के आदिवासी विशेष रूप से नर्सरियों में बागबानी करके औषधीय पौधों को उगाने का कार्य करते हैं।
0: समृद्ध आदिवासी संस्कृति और प्रचुर प्राकृतिक सौंदर्य के बीच तुलसी गौड़ा का जन्म 1944 में होनाली गांव के हलक्की आदिवासी परिवार में हुआ था। पिता की मृत्यु के बाद उन्होंने बहुत ही छोटी उम्र से नर्सरी में काम करना शुरू किया। निर्धनता के कारण कभी वो स्कूल नहीं जा पाई।
1: बड़ी हो जाने पर तुलसी ने अपनी माँ और बहनों के साथ गांव की ही एक सरकारी नर्सरी में दैनिक वेतन भोगी के रूप में काम करना शुरू किया। पौधों से उनका बहुत लगाव था। तुलसी की कार्य निष्ठा और लगन को देखते हुए उन्हें पौधों की देखरेख का विशेष काम सौंपा गया।
0: एक बार की बात है, उनके गांव की नर्सरी में वन विभाग द्वारा कुछ पौधे लाए गए। वो औषधीय पौधे थे और बहुत महंगे भी। वन विभाग की योजना थी बड़े पैमाने पर इन औषधीय पौधों की खेती करने की। पौधे रोप दिए गए, लेकिन एक दो दिनों के बाद वो मुरझाने लगे। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। तो तुलसी की कार्य निष्ठा और लगन को देखते हुए उन्हें उन पौधों की देखरेख का विशेष काम सौंपा गया।
1: कुछ ही दिनों में उन पौधों में जान सी आ गई और वो खूब हरे भरे होकर पनपने लगे। इस घटना से तुलसी का नाम स्थानीय वन विभाग में फैल गया और सबने उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की। इस घटना को याद करते हुए वो बताती हैं।
2: उन दिनों मैं करीब 20 वर्ष की थी। पौधों के बारे में मेरा अनुभव बहुत नहीं था। मुझे उस नर्सरी में बुलाया गया था। वहां जाकर मैंने देखा कि सब कुछ ठीक था। रोज उन्हें पानी 2 बार दिया जाता था और खाद की भी कोई कमी नहीं थी।
3: अच्छा,
2: अक्सर मैंने देखा था कि कई बार ज्यादा पानी देने से कुछ पौधे मर जाते हैं। तो मैंने सोचा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इन पौधों को जरूरत से बहुत ज्यादा पानी मिल रहा है, क्यों ना पानी की मात्रा कम करके देखा जाए। जब ऐसा किया तो 2 दिनों में पौधों में कुछ अच्छे बदलाव आए।

0: ये तो आपने बहुत अच्छी बात बताई तुलसी जी।
1: जी, पौधों के बारे में ये जानना बहुत जरूरी है कि उन्हें कितना पानी दिया जाए
0: और कितना नहीं दिया जाए। हाँ। तुलसी जी, ये तो हुई पानी की बात। क्या आपने उन पौधों के बारे में कुछ और भी अनुभव किया था?
1: हाँ हाँ, मैंने एक और बात पर गौर किया था कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं कि यदि उन्हें साथ साथ रखा जाए तो वो बहुत अच्छी तरह से बढ़ते हैं।
0: अरे वाह, ये तो बहुत ही सचमुच गौर करने वाली बात है।
1: हाँ, और अगर अलग अलग रखा जाए तो वो उस तरह से नहीं बढ़ पाते। कुछ पौधे तो अकेले लगाए जाने से बढ़ते ही नहीं हैं और फिर धीरे धीरे कमजोर होकर सूख जाते हैं।
0: अच्छा,
1: मुझे लगा कि क्यों ना इन्हें एक दूसरे के आसपास रोप कर देखा जाए। फिर हमने ऐसा ही

0: किया था?
1: हाँ हाँ
0: मैंने एक और बात पर गौर किया था कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं कि यदि उन्हें साथ साथ रखा जाए तो वो बहुत अच्छी तरह से बढ़ते हैं।
2: अरे वाह, ये तो बहुत ही सचमुच गौर करने वाली बात है।
0: हाँ, और अगर अलग अलग रखा जाए तो वो उस तरह से नहीं बढ़ पाते। कुछ पौधे तो अकेले लगाए जाने से बढ़ते ही नहीं हैं, और फिर धीरे धीरे कमजोर होकर सूख जाते हैं।
2: अच्छा,
0: मुझे लगा कि क्यों ना इन्हें एक दूसरे के आसपास रोप कर देखा जाए। फिर हमने ऐसा ही किया तो पाया कि आश्चर्यजनक रूप से ये पौधे बढ़ने लगे थे। हाँ,
2: अरे ये तो बड़ी ही अद्भुत बात बताई आपने तुलसी जी। हाँ, लेकिन इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं?
0: देखो, पहली बात तो ये कि पौधों में भी जीवन होता है।
2: बिल्कुल होता है।
0: और मुझे लगता है कि वे भी दुख सुख अकेलापन का अनुभव कर सकते हैं, इसीलिए यदि उन्हें उचित दूरी पर आसपास रखा जाए तो वे बेहतर ढंग से पढ़ते हैं।
2: ये तो बड़ी ही दिलचस्प बात है तुलसी जी,
0: है ना
2: जी।
0: और उचित दूरी पर आसपास लगाए जाने से वे एक दूसरे के साथ नमी और पोषण को साझा कर सकते हैं।
2: तुलसी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई विशेष संदेश देना चाहेंगे?
0: बिल्कुल देना चाहूंगी। मेरा कहना है कि देश को बचाने के लिए वन को बचाना होगा। वन बचाओ, देश बचाओ।
3: उन्होंने पेड़ पौधों और जंगल को अपनी जिंदगी में पूरी तरह से शामिल कर लिया था। उनके अंदर पेड़ पौधों की सेवा करने का जज्बा आ गया था। एक बार उन्होंने कहा था,
0: मुझे नहीं मालूम कि जंगल के बारे में मैंने इतना ज्ञान कैसे एकत्रित किया, लेकिन धीरे धीरे मुझे ऐसा लगने लगा जैसे मैं पौधों से, जंगल से बातें कर सकती हूं। मैं जंगल की भाषा बोल सकती हूं।
3: कहते हैं कि वो जहां भी जाती थी वहां के सभी पेड़ पौधों के बारे में भली भांति बता सकती थी। वो विस्तार से चर्चा कर सकती थी कि किस पौधे को कितना पानी देना है, उन्हें खाद किस मात्रा में देना है और बीजों का संग्रह व भंडारण किस तरह से करना चाहिए।
4: श्रीमती तुलसी गौड़ा जी को जंगल और उसके पौधों के बारे में उनके ज्ञान के कारण पर्यावरणविदों द्वारा जंगल के विश्वकोश और उनकी जनजाति द्वारा वृक्ष देवी और जंगल अम्मा के रूप में जाना जाता है। वो जंगल में हर प्रजाति के पेड़ की माँ या मातृ वृक्ष की पहचान करने की अपनी क्षमता के लिए जानी जाती हैं, चाहे वो कहीं भी हो। किसी भी पेड़ का मात्र एक सूखा पत्ता भी उठाकर वो बता सकती हैं कि इसकी माता पेड़ कहाँ है।
3: आइए जानते हैं कि मातृ वृक्ष या माता पेड़ किसे कहते हैं। नाम से ही विदित होता है कि एक बच्चे को पालने में माता की जो भूमिका होती है वही भूमिका इन पेड़ों की भी होती है। तो आइए सुने कैसे।
5: तुलसी जी, अक्सर माता पेड़ों या मातृ वृक्षों के बारे में बात की जाती है, तो आपसे ये जानना चाहते हैं कि माता पेड़ों या मातृ वृक्षों को आखिर पहचानते कैसे हैं?
0: बड़ा अच्छा सवाल है। माता पेड़ या मातृ वृक्ष अपने आकारों से पहचाने जाते हैं।
5: अच्छा।
0: ये जंगल के सबसे पुराने, बड़े, लंबे और घने पेड़ होते हैं। और हाँ, पुराने होने की वजह से इनकी जड़ें बहुत गहरी और दूर दूर तक फैली होती हैं।
5: अच्छा।
0: इनकी जड़ों से आसपास के बहुत से छोटे और

0: समान वृक्ष भूमि के अंदर जड़ों से जुड़े होते हैं और मातृ वृक्ष से भोजन लेते हैं।
1: अच्छा, ये तो बड़ी दिलचस्प बात बताई आपने। अच्छा, मैंने तो ये भी सुना है कि मातृ वृक्ष मिट्टी को पकड़ कर रखते हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है?
0: बिल्कुल सही सुना है आपने, मातृ वृक्ष गोंद की तरह मिट्टी को पकड़ कर रखते हैं।
1: अच्छा,
0: और आंधी तूफान के समय दूसरे पेड़ों को गिरने या उखड़ने से बचाते हैं।
1: अरे वाह, ये तो बहुत ही दिलचस्प बात बताई आपने।
0: इतना ही नहीं, यदि कई मातृ वृक्ष आसपास हों तो छोटे पेड़ों के लिए आसपास की नमी को बनाए रखकर प्राकृतिक ग्रीन हाउस बनाते हैं। वे छोटे और युवा पेड़ों को नाइट्रोजन और कार्बन प्रदान करके उन्हें पालते हैं, समझे?
1: जी, ये तो बहुत ही अच्छी जानकारियां आपने दी हैं। और अच्छा, इसके अलावा भी कुछ और बताइए ना मातृ वृक्षों के बारे में।
0: हाँ हाँ, बिल्कुल। देखिए, जड़ें गहरी होने के कारण ये अपनी जड़ों द्वारा आसानी से भूमिगत जल और फास्फोरस जैसे मिट्टी के पोषक तत्वों को खींच लेते हैं और उन पेड़ों को देते हैं जिनकी जड़ें अभी बहुत गहरी नहीं है, ठीक है ना?
1: तुलसी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी दिलचस्प और उपयोगी जानकारियां दी हैं आज। एक बार फिर से बहुत धन्यवाद।
0: आपका भी बहुत धन्यवाद।
2: तुलसी गौड़ा जी को 300 औषधीय पौधे और 1,00,000 से भी अधिक पेड़ लगाने का गौरव प्राप्त है। कहते हैं कि उनके द्वारा लगाया गया एक भी पेड़ सूखा नहीं है। उनके द्वारा लगाए गए औषधीय पौधों के इस्तेमाल से उस क्षेत्र की जनजातियों का बड़ा कल्याण हुआ है।
3: 78 वर्षीय श्रीमती तुलसी गौड़ा ने 60 वर्षों तक कर्नाटक वानिकी विभाग में अपनी सेवाएं दी हैं और अब वो अवकाश प्राप्त जीवन बिता रही हैं। लेकिन आज भी उनकी ऊर्जा कम नहीं हुई है। इन दिनों भी वो अपने गांव की नर्सरी और वानिकी विभाग के दफ्तर में बीजों का संग्रह लेकर पैदल चलती हुई दिखाई देती हैं। किसी ने कहा है, महानतम चीजें हमेशा अति साधारण होती हैं, यानी ग्रेटेस्ट थिंग्स आर ऑलवेज सिंपलेस्ट। तुलसी गौड़ा जी, आपका हार्दिक अभिनंदन।
4: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम जंगल इंसाइक्लोपीडिया तुलसी गौड़ा। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटीलैंग लिंगडो, कलाकार अश्विनी वालिया, शिमाइला परवेज, परवेज गौहर, पूनम एस कुदेसिया और अंजलि, आलेख अजीत होरो, निर्माण सहायक कुसुम लता, निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी। प्रिय श्रोता, यदि आप हमारे कार्यक्रमों पर अपनी प्रतिक्रियाएं देना चाहते हैं तो हमारे IVRS नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा IVRS नंबर है 8800440559। साथ ही आप ईमेल पर भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली, भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम तुलसी गौड़ा और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
5: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
6: नमस्कार।
7: उमंग उमंग उमंग उमंग।
8: अभी आप सुन रहे थे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं।
9: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
10: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय,

0: आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
0: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
0: 8700001-4242।
2: आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। आइए अब सुनते हैं सदाबहार नगमे।

किस्मत फिल्म का गीत आप सुन रहे थे आशा भोसले और शमशाद बेगम की आवाज़ों में। एसएच बिहारी के बोलों को सुरों में ढाला ओपी नैयर ने। कार्यक्रम का अगला गीत आनंद बख्शी का लिखा हुआ, जिसकी धुन बनाई लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, आवाजें दी लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी ने। फिल्म का नाम दो रास्ते।

0: लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ों में आपने सुना गोरा और काला फिल्म का गीत, जिसे लिखा आनंद बख्शी ने, गीत की धुन बनाई लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। कार्यक्रम में अब वक्त है एक अंतराल का।
1: मैं डॉक्टर राजेश हर्षवर्धन, चिकित्सा अधीक्षक SJPGIMS और संयुक्त निदेशक राज्य अंग एवं उत्तर प्रत्यारोपण संगठन उत्तर प्रदेश, आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में अंग जैसे किडनी, लीवर, हार्ट, कॉर्निया, इनकी वैसे रोगियों की संख्या काफी ज्यादा हो रही है, बढ़ रही है, जिनके केस में ये अंग काम नहीं कर रहे हैं और उन्हें अंग प्रत्यारोपण की आवश्यकता है। आप एक मुहिम के रूप में आगे आकर SOTOUP के वेबसाइट पे, होम पेज पे प्लीज नाउ बटन क्लिक करें और QR कोड स्कैन करके अंग दान करने का शपथ लें, क्योंकि अंग दान महादान है। आपके इस निर्णय से किसी की जिंदगी बच सकती है। दान जगत का नियत धर्म है, व्यर्थ मनुष्य डरता है, एक दिवस तो स्वयं उसे सब कुछ देना पड़ता है। बचते वही समय पर जो सर्वस्व दान करते हैं, इतु का ज्ञान रहा न जिन्हें वो देकर भी मरते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप यही मैसेज अपने सभी संपर्क में फैलाएंगे। धन्यवाद।
2: सपनों को देना है नई रफ्तार, तो सुनिए आकाशवाणी प्राइमरी चैनल का बेहतरीन प्रोग्राम। यूथ के लिए जरूरी जानकारी, सामयिक चर्चा, फील्ड से OB रिपोर्ट्स और गीत संगीत का परफेक्ट मिक्स, सब कुछ एक ही मंच पर। हर दिन शाम 5:45 पर रेडियो ऑन रखिए और जुड़िए नई उड़ान से।

घर आंगन मा है बहार, कहानी कविता और बतकही के फुहार, आपन बोली बानी संग लोक गीतन के बहे बयार, खान पान संग सेहत के और स्वावलंबन के बहचली है बयार, घर आंगन संग होई के तैयार, चलो विकास के रफ्तार, सोम बृहस्पति और साथे है दिन शनिवार, ईमेल और पाती के होए भरमार।

आप सुन रहे थे महबूब की मेहंदी फिल्म का गीत। आवाज़ थी मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की। आनंद बख्शी के लिखे बोलों को सुरों में ढाला लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं साहिर लुधियानवी का लिखा गीत, जिसकी धुन बनाई आरडी बर्मन ने, आवाज़ें किशोर कुमार और आशा भोसले की। फिल्म का नाम दीवार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे के ओस्लो पहुंच गए हैं। इस दौरे में भारत और नॉर्वे के बीच द्विपक्षीय वार्ता और तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन शामिल है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि ये दौरा नॉर्डिक देशों के साथ भारत के संबंधों को गति प्रदान करेगा।
1: आज प्रधानमंत्री नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम और रानी सोनिया से मुलाकात करेंगे। इसके बाद वे नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनास गार स्टोरर के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। कल प्रधानमंत्री तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। वर्तमान में भारत और 5 नॉर्डिक देशों के बीच व्यापार का मूल्य 19 अरब डॉलर है। व्यापार के प्रमुख क्षेत्रों में नवाचार, रक्षा, आर्कटिक और जनसंपर्क जैसे कई क्षेत्र शामिल हैं। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी न्यूज, ओस्लो, नॉर्वे।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत आज निवेश, नवाचार और विनिर्माण के लिए विश्व का सबसे आकर्षक केंद्र बन गया है। श्री मोदी ने स्वीडन की 2 दिन की यात्रा के दौरान गोथेनबर्ग में यूरोपीय उद्योग गोलमेज सम्मेलन को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि देश में सभी कंपनियों के लिए अवसर मौजूद हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत पिछले 12 वर्षों से सुधार, प्रदर्शन और परिवर्तन के मूल मंत्र पर काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत की सुधार एक्सप्रेस पूरी गति से चल रही है। श्री मोदी ने स्वीडिश कंपनियों से विनिर्माण, हरित हाइड्रोजन मिशन, स्वच्छ ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में उपस्थिति बढ़ाने का आग्रह किया। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को द्विपक्षीय संबंधों में उनके असाधारण योगदान और दूरदर्शी नेतृत्व के लिए स्वीडन के सर्वोच्च सम्मान रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार डिग्री कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि स्वीडन की उनकी यात्रा के कई महत्वपूर्ण परिणाम निकले हैं जो द्विपक्षीय संबंधों को एक नई गति प्रदान करेंगे। केरलम के तिरुवनंतपुरम में आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीडी सतीशन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने यूडीएफ सरकार के नए मंत्रियों को शपथ दिलाई। नई सरकार में शामिल वरिष्ठ नेताओं में पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रमेश चेन्नीथला, वर्तमान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सन्नी जोसेफ, के मुरलीधरन और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के नेता पी के कुन्हालीकुट्टी शामिल हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने आज रायपुर में 112 नंबर वाली आपातकालीन सेवाओं के लिए 400 नए अत्याधुनिक वाहनों को रवाना किया। छत्तीसगढ़ में पहले ये सुविधा 16 जिलों में थी, अब ये 33 जिलों में उपलब्ध है। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा भी उपस्थित थे। कार्यक्रम के बाद गृहमंत्री बस्तर के लिए रवाना हो गए, जहां वे नेतानार गांव में सीआरपीएफ कैंप परिसर में स्थापित जन सुविधा केंद्र का शुभारंभ करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वियतनाम और दक्षिण कोरिया की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि वे द्विपक्षीय संबंधों को और विस्तार देने के लिए इन दोनों एशियाई देशों का दौरा करने को लेकर उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि इस दौरे का मुख्य उद्देश्य रणनीतिक सैन्य सहयोग, रक्षा औद्योगिक साझेदारी और समुद्री सहयोग को बढ़ावा देना तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति तथा स्थिरता को प्रोत्साहित करना है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने आज अंतर्राष्ट्रीय महिला समुद्री दिवस के अवसर पर महिला नाविकों के अदम्य साहस को नमन किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सोनोवाल ने कहा कि नीतिगत सुधारों के कारण भारत में महिला नाविकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में आज ट्रक और वैन की टक्कर होने से एक सड़क हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई। वैन में 2 महिलाओं समेत 10 लोग सवार थे। ये हादसा पीलीभीत बस्ती राजमार्ग पर अदालीसपुर गांव के पास हुआ। प्रधानमंत्री ने इस हादसे में हुई जानमाल की हानि पर शोक व्यक्त किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजन को 2 लाख और घायलों को 50,000

0: रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में मामूली गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 133 अंक की गिरावट के साथ 75,105, निफ्टी 60 अंक लुढ़क कर 23,584 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचनाएं। कमल किशोर प्रजापति ने ग्राम दोस्तपुर शिवली थाना फतेहपुर जनपद उन्नाव से सूचित किया है कि कुमारी सरस्वती 13 फरवरी 2026 से लापता हो गई हैं। कुमारी सरस्वती की आयु 19 वर्ष, कद 5 फीट 6 इंच, इकहरा मजबूत शरीर, रंग गोरा और चेहरा लंबा है। आज्ञाराम शुक्ला ने अघरी ज्योत थाना मोतीगंज जनपद गोंडा से सूचित किया है कि अमूल शुक्ला 18 मार्च 2026 से लापता हो गए हैं। अमूल शुक्ला की आयु 13 वर्ष, कद 5 फीट, सामान्य शरीर, रंग सांवला, चेहरा गोल है। महादेव सोनकर ने ग्राम परशुरामपुर पिपरा भिटौरा थाना मोतीगंज जनपद गोंडा से सूचित किया है कि मीना देवी 24 जुलाई 2025 से लापता हो गई हैं। मीना देवी की आयु 35 वर्ष, कद 4.5 फीट, गठीला शरीर और रंग सांवला है। खोए हुए व्यक्तियों के बारे में सूचनाएं समाप्त हुईं।
2: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
3: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
2: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
3: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
2: बुकिंग है तो संपर्क करें 870-001-4242 पर।
3: 870-001-4242।
4: फिल्म आकाश के रोशन सितारों की महफिल, आज के मेहमान, विविध भारती पर हर बुधवार शाम 4 बजे पिटारा में सुनिए। रहिए कहीं भी, सुनते रहिए विविध भारती। विविध भारती, आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक।
5: आइए जुड़िए विज्ञान जगत के साथ, जहां हर जटिल सवाल का जवाब मिलता है रोचक अंदाज में। क्या है आपके जीवन में विज्ञान की भूमिका, कैसे बदल रही है तकनीक आपकी दुनिया, जानिए विशेषज्ञों से, सुनिए रोचक चर्चाएं और पाइए विज्ञान से जुड़े ताजा अपडेट्स। तो सुनना न भूलें
6: विज्ञान जगत हर शनिवार शाम 7:30 बजे आकाशवाणी लखनऊ पर।
7: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
8: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान आप सुनेंगे हर मंगलवार को शाम 7:45 पर। एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे से।

श्रोताओं, आज शाम 7:31 पर स्वास्थ्य वार्ता के अंतर्गत आप सुनेंगे ब्रेन स्ट्रोक कारण लक्षण और उपचार। इस विषय पर जानकारी देंगे प्रोफेसर डॉक्टर नीरज कुमार और उनसे भेंट करेंगे आशीष चतुर्वेदी। इसके अलावा कॉर्निया की समस्या और निदान के बारे में जानकारी देंगे प्रोफेसर डॉक्टर अरुण शर्मा और उनसे भेंट करेंगे सुरेंद्र राजेश्वरी।

0: हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 1:10 होने वाले हैं। अब आप सुनेंगे इलाकाई खबरें।
1: ये आकाशवाणी लखनऊ है। इलाकाई खबरों के साथ मैं आमिर हुसैन सिद्दीकी। स्वीडन ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस अवार्ड से नवाजा। ये स्वीडन का किसी भी सरबराह ममलकत को दिया जाने वाला सबसे बड़ा एजाज़ है। इस मौके पर अपने खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि स्वीडन का आला तरीन एजाज़ हासिल करना सिर्फ उनके लिए एजाज़ नहीं है बल्कि 140 करोड़ भारतीयों के लिए एजाज़ है। ये वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को अब तक मिला 31वां आलमी एजाज़ है। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में अपनी सरकारी रिहायशगाह पर कैबिनेट मीटिंग की सदारत की। मीटिंग में रियासत के मजमूई तरक्की, गुड गवर्नेंस और अवामी सहूलियात की तौसी से मुतालिक मुख्तलिफ अहम तजावीज़ पर फैसले किए गए। इससे कबल वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कल अपनी काबीना में नए मुकर्रर करदा और तरक्की पाने वाले वज़रा को कलमदान तफवीज़ किए। नए मुकर्रर करदा वज़रा में साबिक़ बीजेपी रियासती सदर भूपेंद्र चौधरी को माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज MSME का महकमा सौंपा गया है। मनोज कुमार पांडे को खुराक और शहरी सप्लाई का महकमा दिया गया। अजीत पाल सिंह, जिन्हें काबीना में तौसी के दौरान वजीर ममलकत के ओहदे पर तरक्की दी गई है, उन्हें फूड सेफ्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के साथ साथ पॉलिटिकल पेंशन डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी दी गई है। सोमेंद्र तोमर को मिलिट्री वेलफेयर और सूबाई डिफेंस फोर्स के महकमे का चार्ज दिया गया है। चार नए मुकर्रर करदा वज़राए ममलकत को भी कलमदान दिए गए। कृष्णा पासवान को हैवानात और दूध की तरक्की का महकमा, सुरेंद्र दिलेर को रेवेन्यू का महकमा, हंसराज विश्वकर्मा को छोटे और दरमियानी दर्जे के कारोबारी इदारों की वजारत और कैलाश राजपूत को तवानाई और इजाफी तवानाई के ज़राए का महकमा सौंपा गया। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट के ज़रिए मुनक़िदा इंस्ट्रक्टर एजाजी तकरीब और चेक तकसीम प्रोग्राम में शिरकत की। इस तकरीब का इनेकाद तालीमी साल 2026-27 में समग्र शिक्षा अभियान के तहत 24,717 पार्ट टाइम इंस्ट्रक्टर्स के एजाजिया को 9,000 से 17,000 रुपये माहाना करने के लिए किया गया था। इस मौके पर वज़ीर आला ने कहा कि एजाजिया में इजाफे के साथ साथ रियासती हुकूमत असातिज़ा को 5 लाख रुपये तक के हेल्थ इंश्योरेंस कवर का फ़ायदा फराहम करने जा रही है। उन्होंने कहा कि हुकूमत का इरादा है कि हर बच्चा तालीम हासिल करे ताकि तरक्की याफ्ता भारत का अज़्म पूरा हो सके।
2: जब साफ नियत से कोई सरकार कार्य करती है, स्पष्ट नीति हो, तो परिणाम आने में देर नहीं लगती। प्रदेश के अंदर जो ड्रॉप आउट रेट था लगभग 17-18% के आसपास था, और आज हम इसको घटाते घटाते 3 तक पहुंचाने में सफल हुए हैं, और हमारा मानना है इसको 0 तक पहुंचाना है। हर बच्चा पढ़ेगा तब विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार हम कर पाएंगे।
1: लखीमपुर खीरी ज़िले में आज सुबह हुए एक दर्दनाक सड़क हादसे में कम अज़ कम 9 अफराद जाँ बहक हो गए। ज़िला हेडक्वार्टर से 40 किलोमीटर दूर पीलीभीत बस्ती हाईवे पर अदालीसपुर गांव के करीब यह हादसा उस वक्त पेश आया जब एक तेज़ रफ्तार ट्रक बेकाबू होकर सामने से आ रही एक गाड़ी से टकरा गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव काम शुरू कर दिया। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने हादसे पर शदीद रंज का इजहार किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि लखीमपुर खीरी ज़िले में पेश आने वाले सड़क हादसे में जानी नुकसान इंतहाई अफसोसनाक और दिल दहला देने वाला है। मेरी ताज़ियत सोगवार ख़ानदान के साथ है। वज़ीर आला ने मकामी इंतज़ामिया को ज़ख्मियों और मुतासरीन को फौरी और मुनासिब इमदाद फराहम करने की हिदायत दी। महकमा मौसमियात ने मशरक़ी उत्तर प्रदेश के शुमाल मशरक़ी हिस्सों में 20 मई से कहीं कहीं बारिश और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने का इम्कान जाहिर किया है। साथ ही महकमे ने 19 और 20 मई को रियासत के मशरक़ी और मगरबी हिस्सों में दिन के वक्त कुछ मकामात पर तेज़ लू चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस दरमियान रियासत में लगातार बढ़ रही ज़बरदस्त गर्मी और लू के मद्देनज़र वज़ीर आला ने इंतज़ामिया को चौकन्ना रहने की हिदायत दी है। उन्होंने कहा कि सरकारी अस्पतालों में हीट

घर आंगन कार्यक्रम है तैयार और सब श्रोता बहिनन का ममता के नमस्कार। श्रोता बहिनी देखो ननुहारे गील माटी निहायत होत है, मने जौन देखी है वह करी है, चाहे वो गलत हो और चाहे सही। उनका समझ नया होत है कि का हम कह रहे हैं गलत हो चाहे सही करत रहा था। बहनी ननुहारेपन से मने बचपने से इन माँ अच्छे संस्कार के अंकुर फूटत हैं, जोन परिवार से मिलत हैं मने घरहीन से। और पहले जो पहल शिक्षिका होती हूँ महतारिन होती श्रोता बहनी ननुहारन के पूरे व्यक्तित्व विकास के खातिर अच्छे संस्कार नींव के काम करत हैं, जोन उनका जिम्मेदारी त्याग सत्य बोलब सेवा भाव और अनुशासन सिखावत हैं। ये सब बचपने से जीवन के हिस्सा बन जाते हैं और राष्ट्रभक्ति के भावना भी बचपने से जागृत होते हैं। देखो जब गणतंत्र दिवस या स्वतंत्रता दिवस आवत है तो सब लड़का बच्चा मार देश की तिरंगा झंडा लेके हाथे माँ और कमीजी माँ तिरंगा के बिल्ला लगाए के भारत माता की जय के नारा लगावत जाते हैं, स्कूली माँ जात हैं। तो बहनी ये सब भी संस्कारें हैं जो उन बचपने से ननुहारन माँ जगावा जाते हैं। और ये सब के साथ इन माँ शिक्षा खातिर इनका प्रोत्साहित कीन जाए, मने पढ़े लिखे माँ जू लगावें, इनका क्रोध पर नियंत्रण राखब सिखावे का चाहिए। काहे कि इनका गुस्सा बहुत जल्दी आवत है, काहे कि इन माँ इनका गुस्सा बहुत ई मारे आवत है जल्दी कि अगर इनके कोनो जू के बात ना ही भई तो बस रिसिया जाते हैं। तो इनका अपन गलती माना भी आवे का चाहिए और अगर कोई कोई खातिर करे कुछ करें तो उनका धन्यवाद जरूर बोलें। ई नहीं काम बस निकरा और बस जल्दी हिन। और शिक्षक और अपने से बड़न के हर बात सुने समझें और अमल करें, सबके साथ है कैसे व्यवहार करे का चाहिए ई सब भी हमका इनका सिखावे का चाहिए। और सबसे बड़ी बात बहनी आज का लड़का बच्चा सा मोबाइल लिहा चलावा करत है और ई मोबाइल जो है तो बहनी नीको होत है और जो है बेकारो होत है कि नहीं। तो मूल जो लड़कन बच्चन खातिर नीक नहीं है, मने बुरी चीजन के उरिया भी ले जा सकत है। तो ई सब के भी ध्यान रखे कहा चाहिए, नान गिदहरन का इसे तनी दूर रखें तो ज़्यादा बढ़िया है। इन और उनका कविता कहानी और नीक नीक चीजन के का चित्रकारी के ओरिया प्रेरित कीन जाए। और देखो कहानी किस्सा से सीखो मिलत है श्रोता बहनी, अच्छे संस्कार ननुहारन का सकारात्मकता के ओरिया ले जाते हैं, जौन मुश्किलन से उनका लड़प सिखावत हैं, इनका संतुलन बनाओ सिखावत हैं, अच्छे व्यक्तित्व के विकास करत हैं। और हाँ श्रोताबनी संस्कार से सजी शिक्षा के धारण के उज्जवल भविष्य संवारत हैं, रंग रूप भी निखारत हैं और बिटिए ईमा भाई सबसे आगे ही। तो चलो सीता जी के रूप रंग रूप के बखान करत सुनो ई लोक भजन। स्वर है संगीता श्रीवास्तव एवं मीना कुमारी बहनी के।

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: श्रोता बनी, एक रचनाकार, एक कहानीकार अपने भाव का व्यक्त करे के कोनो ना कोनो माध्यम ढूंढ लेते। सुंदर चलचित्र आजकल के और पहले के बिरिया के वातावरण पर एक कविता या कहानी रच डारत है, अपने कलम से कागज पर उतार देते हैं। तो चलो आप सब का एक रोचक कहानी डॉक्टर निशा गहलोत बहनी सुनाई जा रही हैं, रिश्ते की रजामंदी। तो चलो आप सब भी सुनो।
5: बेटे के डॉक्टर बनते ही रिश्तों की झड़ी जरूर लग गई थी, पर कोई भी रिश्ता तय नहीं हो पा रहा था। वजह थी दुनिया से अलग सोच रखने वाले मेरे बेटे की गांव में ही दवाखाना खोलने और गांव में ही बसने की जिद। डॉक्टर ओहदे के आकर्षण से खींचकर रिश्ते आते, पर जिद का पता चलते ही पीछे हट जाते। इस बीच एक रिश्ता आया। रिश्ता मुझे ठीक और उम्मीद भरा लगा। कारण दो थे। पहला तो ये कि लड़की मेडिकल शिक्षा में मेरी बेटी की सहपाठी थी। बेटी उसे अच्छी तरह जानती थी, उसकी बहुत तारीफ की थी। और दूसरा बड़ा कारण यह था कि मेरे बेटे की तरह ये लड़की भी अपनी डॉक्टरी योग्यता का इस्तेमाल गांव में ही करने की इच्छुक थी। हालांकि लड़की वालों की तरफ से लड़की दिखाने का प्रस्ताव आ चुका था, पर मैंने मना कर दिया। दरअसल बच्चियों की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाली इस परंपरा के मैं खिलाफ हूँ, जिसमें उन्हें बेच

भुगतान सामान की तरह पसंद या नापसंद किया जाता है। हाँ, मेरे लिए लड़की के पारिवारिक माहौल, जहाँ उसके संस्कारों की बुनियाद पड़ती है, से अवगत होना ज़रूरी था। इसलिए आज मैं औचक निरीक्षण की तर्ज पर बिना पूर्व सूचना के पहुँच रहा था। बेटी ने बताया था कि पिता, बेटी और बेटे वाला छोटा सा परिवार है। माँ गुजर चुकी हैं। कृषि विज्ञान में पीएचडी पिता बड़ी बड़ी नौकरियों के प्रस्ताव ठुकरा कर स्वेच्छा से गांव की पाठशाला में पढ़ा रहे हैं। पिता कहते हैं, मेरी ज़रूरत शहर से ज़्यादा गांव को है। जाहिर था उनके सोच की मेरे सिर फिरे बेटे के सोच के साथ पूरी संगत बैठ रही थी। कुल मिलाकर इस रिश्ते में मेरी दिलचस्पी से आगे बढ़कर रिश्ता तय करने की हद तक पहुंचना चाहती थी, लेकिन आखिरी फैसला तो आज के अनुभव पर ही टिका था। बस के सफ़र के बाद आधे घंटे का कच्चा रास्ता तय करके मैं निर्धारित जगह पहुंच गया। बिना पूर्व सूचना के आधमकने का नतीजा दरवाजे पर लटक रहे ताले के रूप में सामने था। पड़ोसी से पता चला घर वाले आधे या एक घंटे में लौटेंगे। हालांकि बरामदे में बस खटिया बिछी थी, पर उबाऊ प्रतीक्षा की जगह मुझे चारों ओर का अवलोकन अधिक रुचिकर प्रतीत हुआ। छोटा सा साफ सुथरा और रंगापुता घर बचपन में पढ़ी गई बाल पत्रिकाओं के मनोरम दृश्यों की याद दिला रहा था। फाटक से दरवाजे तक आने वाली संकरी सी सड़क के दोनों तरफ रोपे गए पौधों की कतारें मौसमी फूलों से लदी हुई थी, जैसे आगत का स्वागत कर रही हूँ। घर के साथ एक बगिया भी संयुक्त थी। देखते ही आंखें जुड़ा गईं। आम, अमरूद, जामुन, सहजन, आंवले, कटहल और नींबू के पेड़ों से घिरी बगिया की क्यारियों में उगी सब्जियों के स्वास्थ्य पर कृषि विज्ञान के जानकार का असर बड़ा साफ नजर आ रहा था। नीम की सघन छाया तले स्थित गौशाला में बछड़े सहित दो गायें बगिया की खूबसूरती में जैसे चार चांद लगा रही थीं। तभी फाटक खड़का। 12-13 साल का एक आकर्षक सा लड़का बस्ता थामे सामने खड़ा था। चेहरे पर जिज्ञासा लिए उसने मुझे प्रणाम किया। जीते रहो बेटा, पापा नहीं है? मिलने आया था, मैंने कहा। बाबूजी तो बगल के गांव में कैंप लगाने गए हुए हैं। कैंप? मैंने पूछा। इस बीच लड़का ताला खोल चुका था। मुझे बैठने का आमंत्रण देकर वो भीतर चला गया। लौटा तो पोशाक बदली हुई थी। उसके साथ आमपना के दो गिलास और लैया चने की नमकीन थी। अरे, इतनी जल्दी कैसे बना लाए? लड़के की कार्यकुशलता ने मुझे बहुत प्रभावित किया। स्कूल जाने से पहले बाबूजी पूरी तैयारी कर देते हैं, मैं लौट कर बना लेता हूँ, उसने सहजता से बताया। सौंफ, काला नमक और पुदीने के स्वाद वाला खटमिठा पना बहुत स्वादिष्ट था। मेरा मनोभाव भाँप कर लड़का थोड़ा पना और ले आया और मेरे गिलास में उड़ेल दिया। तुम किसी कैंप की बात कह रहे थे? तृप्त होकर मैंने छूट गई बात का सिरा फिर उसे पकड़ाया। बाबूजी हर महीने किसी न किसी गांव में कैंप लगाते हैं, लड़के ने बताया। लोगों को अच्छी खेती, साफ सफाई से रहने का ढंग बताते हैं, मामूली बीमारियों के लिए होम्योपैथी दवाएं भी बांटते हैं। तुम बाबूजी का हाथ नहीं बटाते? मैंने हंसकर पूछा। छुट्टियों में मैं भी जाता हूँ, दवा की पुड़िया बनाता हूँ, पर बाबूजी कहते हैं पहले लगकर पढ़ाई करो। एकदम ठीक कहते हैं तुम्हारे बाबूजी। लड़के के साथ वार्तालाप में अब मुझे आनंद आने लगा था। अच्छा, पढ़कर तुम क्या बनोगे? बाबूजी की तरह अध्यापक या दीदी की तरह डॉक्टर? लड़के के स्वर में आत्मविश्वास था। तुम्हारी दीदी डॉक्टर हैं? मैं जानता था, तो भी कुछ और जानने की गरज से पूछा। अभी तो डॉक्टरी पढ़ रही हैं, लड़के ने कहा। फिर कुछ रुक कर बताया, दीदी कहती हैं डॉक्टर बनकर गांव के गरीबों का इलाज मुफ्त करेंगी। अरे वाह, बहुत अच्छे विचार हैं तुम्हारी दीदी के। लड़के के बारे में कुछ और जानने के मंतव्य से मैंने पूछा, और क्या क्या करती हैं तुम्हारी दीदी?

0: दीदी कई बार गांव की औरतों की बनी चीज़ों की नुमाइश शहर में लगा चुकी हैं। किन चीज़ों की? पंखे, गुड़िया, बांस से बनी डलिया, लड़के ने बताया। वहां से मिले पैसों से दीदी ने गांव में कमरा बनवाया है, मेज कुर्सी भी बनवाए हैं। वो क्यों? मैंने उत्सुकता से पूछा। दीदी और बाबूजी ने कमरे में गांव के लोगों के लिए मुफ्त पुस्तकालय जो खोला है। अरे वाह, मैं तो इतना ही सुनकर विभूत हो चला था कि लड़के ने आगे बताया, बाबूजी हफ्ते में 3 दिन वहीं गांव की औरतों को पढ़ाते भी हैं। इस परिवार के लिए मेरा माथा आदर से झुक गया। अच्छा बेटा, अब मैं चलूँगा, कहता मैं उठ खड़ा हुआ। अरे नहीं चाचा जी, इतनी देर में लड़के ने मुझसे चाचा का नाता जोड़ लिया था। खाना खाकर जाइए, पहली बार आए हैं, बिना खाए चले गए तो बाबूजी बहुत नाराज़ होंगे। बित्ता भर के लड़के की भूली समझदारी और आतिथ्य भाव पर मैं चकित कम मुग्ध ज़्यादा हुआ। देर नहीं लगेगी, लड़के ने मुझे जैसे आश्वस्त सा किया। बाबूजी छत पर सोलर कुकर में खाना रख जाते हैं, लौटने पर गर्मा गर्म तैयार मिलता है। छत की सीढ़ी फलांगता लड़का बोला, मैं बस अभी आया। ज़रा देर में कांसे की चमचमाती थाली में देसी घी, लहसुन और हींग के तड़के वाली भाप उड़ाती अरहर की दाल, गर्मा गर्म चावल और हरी धनिया और मिर्च वाला आलू का भरता मेरे सामने था। भूख तो मुझे वाकई लगाई थी, इस महक ने तो उसे जैसे और भड़का दिया। आप हाथ धोइए, मैं भी आया। मेरे हाथ में पानी भरा लोटा थमाकर लड़का हिरन के छौने सा कुलाचे भरता बगिया में गया और नींबू और खीरे तोड़ लाया। कटे नींबू पर अपनी छोटी छोटी उंगलियों का दबाव बनाकर उसने बीज निकाले और दाल में निचोड़ दिया। खीरे का सलाद तैयार हो ही चुका था। याद नहीं पड़ता ऐसा अमृततुल्य भोजन इससे पहले मैंने कभी खाया हो। बाबूजी से आपके लिए क्या बताऊं? चलने के लिए उठा तो लड़के ने शालीनता से पूछा। फ़ोन पर मैं उनसे खुद बात कर लूँगा, मैंने स्नेह से लड़के के गाल थपथपा दिए। तुमने अपना नाम नहीं बताया? जी सुधांशु, बहुत प्यारा नाम है, बिल्कुल तुम्हारे जैसा। लड़का सड़क तक छोड़ने आया, मेरे मना करने के बावजूद बस आने तक रुका रहा। बस में बैठने से पहले मेरे पैर छूकर प्रणाम किया। मैंने आशीर्वाद के रूप में उसे रुपये देने चाहे तो उसने विनम्रता से मना कर दिया। चलती बस के शीशे के पार मैं विदाई में हिलता उसका छोटा सा हाथ देखता रहा। जिस उद्देश्य से मैं आया था वो पूरा हो चुका था। अब मुझे कुछ और जानने या देखने की ज़रूरत नहीं थी। घर पहुँचते ही इस रिश्ते को मंजूरी देने का निर्णय मैं ले चुका था।
1: रिश्ते की रजामंदी, अभी इतनी बढ़िया कहानी आप सब डॉक्टर निशा गहलोत बहनी से सुनो तो इका खातिर इनका धन्यवाद दे दीजिए। श्रोता बहनी, पहले की बिरिया माँ देखो मातारी बाप रिश्ता देखत रहे कि कोनो कमी ना हो लड़का या बिटिया माँ। और देखो कहा जैसा कि ये कहानी माँ आप सब सुनो कि बहनी सब सुख से भी रहा है कि नहीं। और देखो श्रोता बहनी, ये तो बात भाई कहानी के, तो एक बात और हम आप सबका बताई, विश्व संग्रहालय दिवस जौन आज 18 मई का मनावा जात है और ये जो हमार गीत गऊ नहीं है ना वो हमरे मन के संग्रहालय मां रचा बसा है, जीमा कई विधा के गीत और लोक गीत गाए बजाए जात है, जीमा से है ई खेमटा जी का आप सब प्रीति सिंह बहनी के स्वर मां सुनो।

देखो सुन, ये बढ़िया से जो है भाई खेमटा सुने के बाद अब कुछ काम के बाद कह लीन जाए। श्वेता बहनी, गाँव माँ सबके लगे भाई प्रशीतक यंत्र नाई होत है मने फ्रिज, तो वह का खातिर हम सबका कुछ न कुछ जुगाड़ कर ही इनका परत है कि चीज खराब ना हो। भाई गर्मी तो बहुत है कि नहीं, तो चलो मटका फ्रिज बनाओ। बताइए आप सबका, तो एक मटका, बड़ा मटका माटी के कुम्हार से ले लें, मने 10-15 लीटर पानी ओमा आ जाए, और एक मटका 5 लीटर पानी वाला ले लें, और एक बड़ा तसला प्लास्टिक या स्टील के ले लें जीमा मटका धरा जा सके, और सूती कपड़ा से या जूट के बोरी से मटका का ढांक दें, और टब या हवादार जगह, जो टब रखें वो हवादार जगह पर रखें, फिर वहाँ बलुई माटी डारें और पानी डार के छिड़काव करके वह का माटी का गील कर लें, फिर मटका का कपड़ा या बोरी से लपेट के टब के बीचों बीच धर दें, और माटी गील करत रहें कि भाई नमी बनी रहे। फिर छोट मटका माँ दूध सब्जी फल सब रख के गीले कपड़ा से या बोरी से ढक्कन लगाए के ढांक दें, चीज निकार निकार 2-3 रोज इस्तेमाल करें। बहनी जाना थी, गुजरात और राजस्थान माँ ग्रामीण बहने यह प्रशीतक यंत्र इस्तेमाल कर थी, तो आप सब भी भाई इका बनाओ और इस्तेमाल करो। और भाई देखो यह के साथ है, चलो कुछ मनोरंजन भी हो जाए, तो चलो आनंद उठाओ। ई दादरा के स्वर है।

के सदुपयोग खातिर कुछ उपाय हम आप सबका बताए दी। तो भाई मोबाइल टीवी देखो ना ज्यादा पकड़ो, और अब हम जो हम उपाय बता रहे हैं उनका बहुत ध्यान से आप सब सुनो। तो चलो आप सबका लड़कन बच्चन की गर्मी की छुट्टी पाई तो कैसे बिताओ उसके खातिर कुछ उपाय है, दिमाग भी तेज हुई और समय के सदुपयोग भी हुई। तो नीम के बिरुवा के लगे 5 लड़का बच्चा भाई मिल के, जैसे दोस्त अपने संगी साथी हों, मिल के अपन एक ठो घरौंदा टाइप के या किताब घरौंदा मेर या किताब जैसे से बना ले छोटा सा घर, और बढ़िया बढ़िया किताब में जो रोचक हो जो सीख दे उकाओ मत धरें, और रोज एक किताब पढ़ें पांचों जने, है कि नहीं। और इसे का हुई दिमाग तेज हो, और बोल बोल के पढ़ें तो इसे बोले के हिम्मत भी बढ़ी क्षमता भी बढ़ी और दिमाग भी तेज हुई। और देखो रेडियो चाचा जी पर आप हमारा कार्यक्रम सुन रहे हो तो उनका भी भाई सुनो, आकाशवाणी लगाओ और 15 मिनट समाचार सुनो, और 3 समाचार जोन बहुत महत्वपूर्ण हो उनका अवश्य उनका जरूर सुनो, और अपने अम्मा पापा का जरूर सुनाओ, और जिससे तुहार सबके सामान्य ज्ञान भी बढ़ी और हिंदी भी सुधरी। कहे कि भाई हिंदी हमार मातृभाषा है तो उमा सुधार बहुत जरूरी है। तो देखो गर्मी के छुट्टिन माँ लड़का बिटिया गीत कौने भी सुन के सीख सकत हैं, मनोरंजन जन भी होई और एक गुण भी आ जाए। तो चलो यह बात पर हम आप सबका एक सोहर सुनवाई, स्वर है सुमिता श्रीवास्तव बहनी के।

और श्रोता बहनी देखो, गर्मी की छुट्टी तो भाई अब लड़कन बच्चन के शुरू हो चुका हो और कुछ बच्चन के हो वाला भी हो, तो देखो ये इन्हों ये जो लड़के बच्चे होते हैं वो कान है कितने चंचल होते हैं, तो चलो इनके

अश्वथा बहनी देखो आज के भाई कार्यक्रम के बिरिया हो गई है समाप्त, तो आप सब भाई गर्मी से बचो और खूब पानी पियो और स्वस्थ रहो, और लड़का बच्चा सब स्वस्थ रहा है यह कामना के साथ है। आज के कार्यक्रम से ममता सक्सेना का देव आज्ञा, नमस्कार, जय हिंद।

बहनें अभी सुन रही थी अपना कार्यक्रम घर आंगन। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम जवानों के लिए।

द लेजेंड ऑफ भगत सिंह, इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। आवाजें थी सोनू निगम, मनमोहन वारिस और साथियों की। सुनना चाहते थे कटरा चांद खां मौर्य मंदिर वार्ड नंबर 11 पुराना शहर बरेली से अनोखे लाल मौर्य, सुंदर देवी मौर्य, प्रकाश मौर्य, रिंकी मौर्य, कपिल मौर्य, वेदराम मौर्य, कैलाश मौर्य, सुनील मौर्य, खुशबू मौर्य, एरोही मौर्य और स्वाति मौर्य। कार्यक्रम का अगला गीत सुनना चाहते हैं जिला रायबरेली गांव पहाड़ीपुर से रामराज, राजू भानु, रामशंकर पत्रकार बहाई वाले, रक्षा मौर्य, राम सागर शाहू, रसूलपुर वाले, मिर्जा तुराब बेग। फिल्म का नाम एक दूजे के लिए। आवाजें एसपी बाला सुब्रमण्यम और लता मंगेशकर की।

कार्यक्रम में अगला गीत सुनना चाहते हैं बेनी माधवगंज रायबरेली उत्तर प्रदेश से गुड्डू गुप्ता और शिवा गुप्ता। कल की आवाज़ फिल्म का नाम, आशा भोसले और कुमार सानू की आवाज़ें।

कार्यक्रम का अगला गीत सुनना चाहते हैं डिस्ट्रिक्ट अमेठी उत्तर प्रदेश से रोहित कुमार, आपकी पसंद पर। गिरफ्तार फिल्म का गीत आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाजों में।

सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप, कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज। आप सब सुनना चाहते हैं फिल्म लगे रहो मुन्ना भाई का गीत, जिसे गाया सोनू निगम और श्रेया घोषाल ने।

कुरसठ हरदोई से, राम खलावन, अविनाश द्विवेदी, विजय पांडे, मनीराम, देवेंद्र दीक्षित, बबलू यादव और राम प्रसाद। आप सब सुनना चाहते हैं पत्थर की सनम फिल्म का गीत, जिसे गाया लता मंगेशकर और मुकेश ने।

लता मंगेशकर और मुकेश के युगल स्वरों में आप सुन रहे थे पत्थर की सनम फिल्म का गीत। इसके साथ ही आज का जवानों के लिए कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम जवानों के लिए। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। 2:15 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप दोपहर समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे के ओस्लो पहुंचे। श्री मोदी आज शाम प्रधानमंत्री योनस गहर स्टुर के साथ द्विपक्षीय

0: वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, स्वीडन यात्रा से आपसी संबंधों को नई गति मिली। दोनों देश अगले 5 वर्ष में व्यापार को दोगुना करने पर सहमत हुए। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन ने 20 मंत्रियों के साथ केरलम के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी। गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में 400 आपातकालीन वाहनों को रवाना किया। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने होंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे के ओस्लो पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी का ओस्लो में पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया। श्री मोदी नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनस गहर स्तुर के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि ये दौरा नॉर्डिक देशों के साथ भारत के संबंधों को गति प्रदान करेगा।
1: आज प्रधानमंत्री नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम और रानी सोनिया से मुलाकात करेंगे। इसके बाद वे नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनस गार स्टोरर के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। कल प्रधानमंत्री तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। वर्तमान में भारत और 5 नॉर्डिक देशों के बीच व्यापार का मूल्य $19 अरब है। व्यापार के प्रमुख क्षेत्रों में नवाचार, रक्षा, आर्कटिक और जनसंपर्क जैसे कई क्षेत्र शामिल हैं। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी न्यूज, ओस्लो, नॉर्वे।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्वीडन की उनकी यात्रा के कई महत्वपूर्ण परिणाम निकले हैं जो द्विपक्षीय संबंधों को एक नई गति प्रदान करेंगे। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने में ये यात्रा महत्वपूर्ण रही। संयुक्त नवाचार साझेदारी के दूसरे चरण और भारत स्वीडन प्रौद्योगिकी तथा AI गलियारे की शुरूआत से लेकर अगले 5 वर्ष में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित करने तक ये चर्चाएं अत्यंत सार्थक रहीं। उन्होंने स्वीडन की जनता, सरकार और प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन का उनके स्नेह और मित्रता के लिए आभार व्यक्त किया। हमारी संवाददाता ने बताया है कि द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक पहुंचाने का ये कदम भारत स्वीडन संयुक्त कार्य योजना द्वारा निर्देशित है।
2: इस यात्रा के दौरान 6 प्रमुख उपलब्धियां सामने आईं। पहली उपलब्धि रही भारत स्वीडन संयुक्त कार्य योजना 2026-2030 को अपनाना, जो व्यापार, नवाचार, जलवायु कार्रवाई, रक्षा और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में सहयोग के लिए एक व्यापक रोडमैप प्रस्तुत करती है। दूसरी बड़ी उपलब्धि रही तकनीकी सहयोग को नई ऊंचाई तक पहुंचाना। इसके तहत ज्वाइंट इनोवेशन पार्टनरशिप 2.0 की शुरुआत की गई और स्वीडन इंडिया टेक्नोलॉजी AI कॉरिडोर यानी CTAC का विस्तार किया गया। तीसरी उपलब्धि रही एक वर्चुअल भारत स्वीडन संयुक्त विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करने पर सहमति। ये केंद्र AI, 6G, क्वांटम कंप्यूटिंग और जीवन विज्ञान जैसे अत्याधुनिक क्षेत्रों पर कार्य करेगा। चौथी बड़ी उपलब्धि अगले 5 वर्षों में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य तय करना रही। पांचवी उपलब्धि रही भारत स्वीडन SME और स्टार्टअप प्लेटफॉर्म का विकास। छठी महत्वपूर्ण उपलब्धि साझा सांस्कृतिक और बौद्धिक विरासत को नई पहचान देना रही। इसके तहत टैगोर स्वीडन लेक्चर सीरीज की शुरुआत की गई, जो गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की वर्ष 1926 की ऐतिहासिक स्वीडन यात्रा की शताब्दी को समर्पित है। इन पहलों के अलावा दोनों देशों ने लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिट यानी LEADIT के तीसरे चरण की घोषणा करी। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत निवेश, नवाचार और विनिर्माण के लिए विश्व का सबसे आकर्षक केंद्र बन गया है। श्री मोदी ने स्वीडन की 2 दिन की यात्रा के दौरान गोथेनबर्ग में यूरोपीय उद्योग गोलमेज सम्मेलन को संबोधित करते हुए ये बात कही। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत पिछले 12 वर्ष से सुधार, प्रदर्शन और परिवर्तन के मूल मंत्र पर काम कर रहा है। श्री मोदी ने स्वीडिश कंपनियों से विनिर्माण, हरित हाइड्रोजन मिशन, स्वच्छ ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में उपस्थिति बढ़ाने का आग्रह किया। केरलम के तिरुवनंतपुरम में आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीडी सतीशन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली।
3: ഭാരതത്തിന്റെ ഭരണഘടനയോട് നിർവ്യാജമായ വിശ്വസ്തതയും
0: राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने UDF सरकार के 20 नए मंत्रियों को शपथ दिलाई। नई कैबिनेट में शामिल 16 सदस्य पहली बार मंत्री बन रहे हैं। इसमें कांग्रेस पार्टी

के 11 प्रतिनिधि हैं, जबकि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के 5 मंत्री हैं। नई सरकार में शामिल वरिष्ठ नेताओं में पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रमेश चिनिथला, वर्तमान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सन्नी जोसेफ, के मुरलीधरन और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के नेता पीके कुन्हालीकुट्टी शामिल हैं। शपथ ग्रहण समारोह के बाद आज नई बनी सरकार ने अपनी पहली आधिकारिक कैबिनेट बैठक की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडी सतीशन को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार राज्य के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने में केरलम की नई सरकार को हर संभव सहयोग का आश्वासन देती है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल सरकार मंत्रिमंडल ने राज्य सरकार, विभिन्न सरकारी बोर्ड, निगमों और अन्य राज्य सहायता प्राप्त निकायों तथा स्कूलों के कर्मचारियों के लिए सातवें वेतन आयोग के गठन को सैद्धांतिक

0: कैबिनेट बैठक की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडी सतीशन को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार राज्य के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने में केरलम की नई सरकार को हर संभव सहयोग का आश्वासन देती है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल सरकार मंत्रिमंडल ने राज्य सरकार, विभिन्न सरकारी बोर्ड, निगमों और अन्य राज्य सहायता प्राप्त निकायों तथा स्कूलों के कर्मचारियों के लिए सातवें वेतन आयोग के गठन को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। एक महत्वपूर्ण निर्णय में मंत्रिमंडल ने आज राज्य सरकार के सूचना और सांस्कृतिक मामलों के विभाग तथा अल्पसंख्यक और मदरसा विभाग के तहत 1 जून से विभिन्न प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण को रोकने को भी सैद्धांतिक मंजूरी दी। इन विभागों के तहत छात्रवृत्ति योजनाएं जारी रहेंगी। राज्य सरकार ने राज्य की महिलाओं के लिए छोटी और लंबी दूरी की मुफ्त परिवहन सुविधा को भी स्वीकृत किया है। राज्य की महिलाओं के लिए 1 जून से अन्नपूर्णा योजना शुरू की जाएगी, जिसके तहत प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से 3,000 रूपये हस्तांतरित किए जाएंगे। एक ऐतिहासिक फैसले में शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली पश्चिम बंगाल की भाजपा सरकार ने सरकारी नौकरियों में प्रवेश के लिए अधिकतम आयु सीमा बढ़ा दी है। ग्रुप ए पदों पर भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा अब 41 वर्ष निर्धारित कर दी गई है। ग्रुप बी पदों के लिए यह सीमा बढ़ाकर 44 वर्ष कर दी गई है। ग्रुप सी और ग्रुप डी पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा अब 45 वर्ष है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के मंत्रिमंडल ने आज अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी आयोग के गठन को मंजूरी दे दी। मंत्रिमंडल ने 2 प्रमुख मेट्रो प्रस्तावों को भी मंजूरी दी है, जिसमें आगरा मेट्रो के दूसरे कॉरिडोर के अंतर्गत स्टेशन निर्माण और एलिवेटेड सेक्शन के लिए आवश्यक भूमि का हस्तांतरण शामिल है। केंद्र, राज्य सरकार और उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल निगम के बीच चारबाग से वसंत कुंज तक के पूर्वी पश्चिम कॉरिडोर के लिए लगभग 5,801 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाले त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन को स्वीकृति दी गई। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि वैश्विक चुनौतियों और अनिश्चितताओं के बावजूद भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज नई दिल्ली में भारत व्यापार महोत्सव की वेबसाइट लॉन्च करते हुए श्री गोयल ने कहा कि आगे बढ़ने का उत्साह कभी कम नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को हासिल करने के प्रति भारत के उद्योगों, व्यापारिक समुदाय और लोगों में हौसला इतना मजबूत है कि दुनिया की कोई भी ताकत भारत को रोक नहीं सकती।
1: विकसित भारत 2047 जो प्रधानमंत्री जी ने हम सबको प्रोत्साहित किया है अमृत काल में मेहनत करने के लिए, वो लक्ष्य बड़ा है पर भारत के उद्योग व्यापार जगत, भारत के लोगों में जो आज उत्साह है और सफलता के लिए जिस प्रकार से पूरा देश 140 करोड़ लोग एकत्र हुए हैं, मुझे लगता है कि कोई ताकत दुनिया की ना हमें रोक पाएगी ना हमारे को थम पाएगी।
0: श्री गोयल ने कहा कि भारत व्यापार महोत्सव का उद्देश्य स्वदेशी व्यापार को बढ़ावा देना और ये सुनिश्चित करना है कि भारतीय सामान और सेवाएं पूरे देश और दुनिया भर में और भी तेजी से फैलें। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने आज अंतर्राष्ट्रीय महिला समुद्री दिवस के अवसर पर महिला नाविकों के अदम्य साहस को नमन किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सोनोवाल ने कहा कि नीतिगत सुधारों के कारण भारत में महिला नाविकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि नारी शक्ति देश के विकास और वैश्विक समुद्री क्षेत्र को एक उज्ज्वल समावेशी भविष्य की ओर ले जा रही है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सार्वजनिक परिवहन और ईंधन संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए आज मेरा भारत मेरा योगदान में मेट्रो मंडे अभियान के तहत मेट्रो से यात्रा की। उन्होंने सभी दिल्लीवासियों से सार्वजनिक परिवहन का अधिक से अधिक उपयोग करने की अपील की।
2: हम सरकार की ओर से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कहीं पे कोई दिक्कत ना हो, लास्ट माइल कनेक्टिविटी पे ज्यादा से ज्यादा काम किया जाए और हर व्यक्ति जब थोड़ा थोड़ा भी सहयोग इसमें करेगा तो दिल्ली शहर के लिए ये बेहतरीन होगा। हमारे शहर में पॉल्यूशन से लेकर के हर समस्या का इसका समाधान मिलेगा।
0: ये समाचार आकाशवाणी

0: से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज रायपुर में 112 नंबर वाली आपातकालीन सेवाओं के लिए 400 नए अत्याधुनिक वाहनों को रवाना किया। छत्तीसगढ़ में पहले यह सुविधा 16 जिलों में थी, अब ये 33 जिलों में उपलब्ध है। 400 नए अत्याधुनिक आपातकालीन वाहन, 33 विशेष निगरानी वाहन तथा 60 नए राजमार्ग गश्ती वाहन प्रदेश के विभिन्न जिलों के लिए रवाना किए गए। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा भी उपस्थित थे।
1: आपातकालीन सेवा डायल 112 अभी तक छत्तीसगढ़ के सिर्फ 16 जिलों में उपलब्ध थी, लेकिन अब राज्य सरकार ने इस सेवा का विस्तार सभी 33 जिलों में कर दिया है। सुरक्षा मानकों और सहायता क्षमता को और मजबूत करने के लिए डायल 112 सेवा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित स्थान पहचान तकनीक को जोड़ा गया है, जिससे संकट में फंसे व्यक्ति की वास्तविक भौगोलिक स्थिति का सटीक पता लगाया जा सके। महिला सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए इस व्यवस्था में पैनिक बटन और विशेष निगरानी सुविधाएं भी जोड़ी गई हैं। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
0: प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने कथित बैंक धोखाधड़ी मामले में आम आदमी पार्टी के नेता दीपक सिंगला को गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले एजेंसी ने इस मामले में आज सुबह दीपक सिंगला के दिल्ली और गोवा में छापेमारी की। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में आज ट्रक और वैन की टक्कर से हुए सड़क हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई। वैन में 2 महिलाओं समेत 10 लोग सवार थे। यह हादसा जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर पीलीभीत बस्ती राजमार्ग पर अदालीसपुर गांव के पास हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सड़क दुर्घटना में हुई जान माल की हानि पर दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजन को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। आईपीएल क्रिकेट में आज हैदराबाद में चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने होंगे। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने बताया है कि इस सप्ताह उत्तर पश्चिम और मध्य भारत के मैदानी इलाकों में लू की स्थिति बनी रहने की संभावना है। शनिवार तक उत्तर प्रदेश में लू की स्थिति बनी रहने की संभावना है। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में भी ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। देश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में अधिकतम तापमान में धीरे धीरे 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी का अनुमान है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, तटीय कर्नाटक, केरल और माहे में तेज बारिश की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे के ओस्लो पहुंचे। श्री मोदी आज शाम प्रधानमंत्री योनास गहर स्टोर के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, स्वीडन यात्रा से द्विपक्षीय संबंधों को नई गति मिली। दोनों देश अगले 5 वर्ष में व्यापार को दोगुना करने पर सहमत हुए। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन ने 20 मंत्रियों के साथ केरलम के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी। गृहमंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में 400 आपातकालीन वाहनों को रवाना किया। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम विज्ञान और किसान। आज इस कार्यक्रम में समन्वित मत्स्य पालन की योजना और तैयारी के बारे में जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर शरद कुमार सिंह और उनसे भेंट कर रहे हैं डॉक्टर सुशील कुमार राय।
3: नमस्कार किसान भाइयों बहनों, खेती के साथ साथ जहां समन्वित मत्स्य पालन आप करना चाहते हैं, तो इस समय समन्वित मत्स्य पालन की योजना कैसे बनाएं और इसकी तैयारी कैसे करें, इसी विषय पर जानकारी के लिए आज हमारे साथ हैं जल कृषि अनुसंधान एवं प्रशिक्षण इकाई चिन्हट, राष्ट्रीय मत्स्य आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो लखनऊ से प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर शरद कुमार सिंह साहब। स्वागत है कार्यक्रम।

0: डॉक्टर साहब ये बताएं कि जहां किसान भाई खेती से जुड़े हैं और मत्स्य पालन खास करके समन्वित मत्स्य पालन करना चाहते हैं, तो ये समन्वित मत्स्य पालन है क्या और इसकी योजना और तैयारी कैसे करें किसान भाई बहन?
1: सभी किसान भाई बहनों को नमस्कार। राय साहब, जहाँ तक समन्वित मत्स्य पालन की बात है तो इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसमें दो से अधिक खेती पद्धतियों का समावेश होता है और एक दूसरे से जो वर्ज्य निकलता है तो उपयोग होता है। कहने का मतलब एक की कमजोरी दूसरे की ताकत होती है, साथ ही साथ ये पर्यावरण मैत्री होता है। इसके लिए सबसे पहली आवश्यकता होती है एक तालाब। ये किसान भाइयों के क्षमता के अनुसार, कोई किसान भाई 2000 वर्ग मीटर का तालाब बना सकता है, कोई 4000 वर्ग मीटर का यानी एक एकड़ का तालाब बना सकता है और उतनी ही करीब 10% जो क्षेत्रफल है उसमें बंधा बनाकर चारों तरफ खेती किसानी कर सकता है अगर बड़ा करना चाहता है। तो इसमें दो तरह की बातें आती हैं, एक जो होता है मुख्य फसल जो होती है मछली पालन होती है और रसा फसल के रूप में खेती किसानी की प्रक्रियाएं होती हैं,
0: बागवानी भी हो सकता है, पशुपालन भी हो सकता
1: जी। और दूसरा जो होता है जैसे खेती किसानी में जैसे सस्य क्रियाओं के लिए हो, कृषि वानिकी हो या अन्य जो क्रियाएं हैं जान से संबंधित है वो मुख्य फसल होती है और मत्स्य पालन सह व्यवसाय होता है।
0: डॉक्टर साहब, समन्वित मत्स्य पालन की बात चल रही है तो ये जो समन्वित जल कृषि है इसकी कौन कौन सी प्रणाली है और उसके फायदे क्या क्या हैं?
1: समन्वित जल कृषि फायदा ये है कि ये जल एवं भूमि का समुचित उपयोग करता है और पुनः चक्रण के द्वारा लाभकारी होता है, जिसे पारिवारिक खेती कहा जाता है, उद्यम है। साथ ही साथ लागत में कमी करता है, जो हमारे सरकार की ये नीति रही है कि किसानों की आमदनी दुगनी की जाए। और सबसे बढ़िया उदाहरण है, अगर कोई किसान भाई विशेषकर लघु किसान या सीमांत किसान अगर करना चाहते हैं तो उनके लिए बहुत लाभकारी है, क्योंकि मछली पालन में आहारों की 60% तक धन खर्च होता है जिसकी कमी हम कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें धान के साथ मछली पालन किया जा सकता है। ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ जलाक्रांत नहरों के किनारे वाले क्षेत्र हैं या जो सोनभद्र और चंदौली का इलाका है जहाँ पर बरसात ज्यादा होता है पूर्वी उत्तर प्रदेश में, उसमें धान के साथ मछली पालन कर सकते हैं और धान की फसल की भी लाभ होता है और साथ ही साथ मछलियों का भी उत्पादन होता है।
0: तो डॉक्टर साहब, जहाँ मत्स्य पालन के साथ साथ अगर बागवानी करनी है या पशुपालन करना है या मुर्गी पालन बत्तख पालन करना है तो ये प्रणाली कितनी फायदेमंद होगी?
1: ये प्रणाली भी बहुत फायदेमंद होती है। बागवानी करनी है तो जैसे तालाब है, तालाब के चारों किनारे फलदार वृक्ष लगाए जा सकते हैं, या कृषि वानिकी करनी है तो उसमें जो घरेलू मकान निर्माण के लिए जो लकड़ियां होती हैं उनका भी रोपण करके उसकी भी खेती की जा सकती है, जैसे पॉपुलर है, इकुलिप्टस है, शीशम है, सागौन है, डेक है। इसके करने से जो परिधि होती है तालाब के पिछले हिस्से में इसे लगाना चाहिए, जिससे एक प्रकार का छाया का निर्माण होता है। तो विशेषकर आजकल जो गर्मियों का मौसम है इसमें काफ़ी लाभकारी होता है, छाया के द्वारा जो है जल का तापमान में कमी होती है और मछलियों में तनाव नहीं होता है। तो ये एक बहुत ही लाभकारी चीज़ है, मछली के साथ लकड़ी का भी उत्पादन हो सकता है। साथ ही साथ औद्यानिक फसलों में जैसे कहा, में जैसे सब्जी की बात करें, लहसुन की करें, प्याज की करें, गोभी करें, तो ये बंधों पर करके किया जा सकता है और बड़ी ही अच्छी तरह से तालाब के ही पानी के ही से सिंचाई कर सकते हैं, या तालाब में जो नीतल वाली मिट्टी, कीचड़ मिट्टी जिसे कहते हैं, उसको निकाल के उसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटास होता है, उसके द्वारा क्यारी बनाकर इसको किया जा सकता है। तालाब के जल में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटास घुलनशील मात्रा होता है, तो ये प्राकृतिक खेती के रूप में भी काफी लाभकारी होता है।
0: डॉक्टर साहब, जहाँ शुरुआत करनी है समन्वित जल कृषि की तो कितना क्षेत्रफल से शुरू करना फायदेमंद होगा?
1: राय साहब, 2000 वर्ग मीटर यानी आधा एकड़ का क्षेत्र बहुत ही उपयोगी माना जाता है,
0: कम से कम।
1: और इसमें एक और भी कहा जा सकता है कि किसान भाई अगर चारा उत्पादित करते हैं, 12 महीने चारा लगाकर भी मछली पालन कर सकते हैं और मछली को 100 किलो चारा खिलाने से 3 किलो मछली पैदा होती है और जो मल पदार्थ निकलता है, वर्ज्य पदार्थ मछली का निकलता है, 60-65% मछली पचा पाती है, ग्रास कार्प मछली होती है और 30-35% वो नीचे जो जाता है अन्य मछलियां उसको खाती हैं। तो कहने का मतलब अगर 2000 मछलियां 2000 वर्ग मीटर में डालते हैं तो उसमें 1000 मछली ग्रास कार्प डालिए और 1000 में 250-250 चार अन्य मछलियां डालिए, तो इस तरह से लाभकारी होगा। साथ ही साथ जो वर्ज नीतल में जाएगा उर्वर्गीकरण करेगा और प्लवक निर्माण में सहायक होगा, कुदरती मछलियों को भोजन प्राप्त होगा और मछलियों की बढ़वार होगी।
0: तो क्या इसमें मिश्रित मत्स्य पालन करना होगा?

0: हमेशा मिश्रित मछली पालन ही समन्वित कृषि का आधार है, ये काफी उपयोगी होता है। इसमें जैसे 6 प्रकार की मछलियां होती हैं, 2 ऊपर वाली, 2 बीच वाली और 2 नीचे वाली। तो ऊपर वाली मछलियों में जैसे कतला हुई, सिल्वर कार्प हुई, बीच वाले में रोहू और ग्रास कार्प हुई, और नीचे वाली में जैसे नयन मछली और कामन कार्प मछली हुई। तो इस 6 मछलियों की मत्स्य पालन की प्रणाली को हम मिश्रित मछली पालन कहते हैं और ये समन्वित कृषि के लिए बहुत ही लाभकारी होती।
1: तो इनका कुछ अनुपात होता होगा?
0: इनका अनुपात मुख्य रूप से अगर 10 मछली है, नया तालाब है, तो ऊपर वाली मछली 4 रखनी चाहिए, बीच वाली 3 रखनी चाहिए, नीचे वाली 3 रखनी। अगर पुराना तालाब है तो उसमें नीचे वाली मछलियां जैसे नयन और कामन कार्प है वो 4 होनी चाहिए, और गहरा तालाब है तो उसमें बीच में 4 होनी चाहिए। कहने का मतलब 3 रोहू होनी चाहिए तो 1 ग्रास कार्प भी रख सकते हैं।
1: डॉक्टर साहब, जहाँ नया तालाब खुदाई करना है और समन्वित मत्स्य पालन की शुरुआत करनी है तो तालाब के निर्माण में कौन कौन सी आवश्यक बारीकी है?
0: सबसे पहले तालाब निर्माण के पहले ध्यान देना होता है कि जल का स्रोत है कि नहीं है, और मिट्टी का परीक्षण करना होता है, सर्वेक्षण करना होता है। तो उसके लिए 1 मीटर गुड़े 1 मीटर गुड़े 2 मीटर का एक गड्ढा बना लेते हैं और तालाब की मृदा का विभिन्न स्तरों का परीक्षण कर लेते हैं, क्योंकि निचले स्तर में नीतल में मिट्टी जो होनी चाहिए चिकनी मिट्टी होनी चाहिए, जिससे जल निर्धारण की क्षमता होती है या धारण की क्षमता होती अधिक होती है, और पानी रुकने से मछली पालन आसानी से हो सकता है और संबंधित कृषि भी बढ़ोतरी कर सकती है।
1: डॉक्टर साहब, जहाँ पुराने तालाब हैं उनका जीर्णोद्धार करना है तो यही समय है?
0: ये गर्मी का महीना बहुत ही अच्छा है जीर्णोद्धार के लिए, और पुनर्सुधार के लिए आजकल तो बहुत सारे यांत्रिक यंत्र आ गए हैं, जैसे JCB है, ट्रैक्टर है और पोकलैंड है, मानव श्रम से भी किया जा सकता है। और किसान भाई इस समय का उपयोग करके अगर खाका बनाकर वैज्ञानिक सुझाव के अनुसार समन्वित जल कृषि का स्वरूप अगर देते हैं तो काफ़ी लाभकारी होगा।
1: तो जो पुराने अनुत्पादक तालाब हैं उनको समन्वित कृषि प्रणाली लाने के लिए कौन कौन सा खास ध्यान देना होगा?
0: सबसे पहले जैसे 5 साल से ऊपर पुराने तालाब है तो उसमें कीचड़ यानी गाद, उसकी जो 4 इंची से 6 इंची तक मोटाई हो जाती है, जिसमें आप जानते हैं कि जो मृदा में है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास भंडारित होकर रहता है, जल में वो घुलनशील नहीं हो पाता, तो उस मृदा को निकाल देना चाहिए, बंधों पर या बगल में खेत पर उसको बिछावन कर देना चाहिए, उस पर सब्जी उगानी चाहिए, अन्य फसलें लेनी चाहिए, खेती किसानी के लिए लाभकारी होगा।
1: डॉक्टर साहब, किसान भाइयों बहनों के मन में अभी भी ढेर सारे सवाल होंगे समन्वित मत्स्य पालन की योजना और तैयारी के बारे में। अगर इसके लिए आपसे सीधे संपर्क करना चाहें या आपके जल कृषि अनुसंधान एवं प्रशिक्षण इकाई चिन्हट आना चाहें तो अपना मोबाइल नंबर बता दें।
0: 9838376030 9838077 6303 98 38 0 77 630।
1: चलते चलते और क्या आह्वान करना चाहते हैं किसान भाइयों बहनों का समन्वित मत्स्य पालन की योजना और तैयारी के बारे में? डॉक्टर साहब,
0: जैसा कि राय साहब आप जानते हैं समन्वित कृषि कार्बनिक कृषि का एक स्वरूप है या प्राकृतिक खेती का, तो इसमें पशुधन का भी बहुत महत्व है, चाहे मुर्गी पालन हो, बतख पालन हो, गाय पालन हो, भैंस पालन हो, खरगोश पालन हो, बकरी पालन हो, तो इनका भी समावेश करने से काफ़ी लाभ मिलेगा। सरकारों की जो योजनाएँ हैं उनका लाभ उठाएँ, जैसे सौर ऊर्जा यंत्र हैं, टपक विधि की जो सिंचाई की व्यवस्था है उसको करें, और छोटा किसान अगर चाहता है तो एक्वापोनिक के साथ भी समन्वित कृषि कर सकता है, मछली भी मिलेगी और बिना मृदा के खेती भी हो सकती है, टैंक के जल से कर सकते हैं।
1: डॉक्टर शरद कुमार सिंह साहब, आज आप कार्यक्रम में आए और समन्वित मत्स्य पालन है क्या, इसकी योजना कैसे बनाएं और इसकी तैयारी इस समय कैसे करें, इसके बारे में आपने ढेर सारी जानकारी दी। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद।
2: समन्वित मत्स्य पालन की योजना और तैयारी, इस विषय पर जानकारी दे रहे थे डॉक्टर शरद कुमार सिंह और उनसे भेंट कर रहे थे डॉक्टर सुशील कुमार राय। अब आज का विज्ञान और किसान कार्यक्रम समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं, लीजिए सुनिए खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचनाएं। रामराज ने बिस्वा मलारी सालपुर चौकी थाना मोती

0: पंच जनपद गोंडा से सूचित किया है कि गीता 28 मार्च 2026 से लापता हो गई है। गीता की आयु 40 वर्ष, कद 5 फीट, एक गहरा शरीर, रंग गोरा है। ये अपने साथ 1.5 साल का बच्चा भी ले गई हैं। श्री राधेश्याम जायसवाल ने पिपर विटौरा थाना मोतीगंज जनपद गोंडा से सूचित किया है कि सुशीला देवी 22 जनवरी 2026 से लापता हो गई हैं। सुशीला देवी की आयु 22 वर्ष, कद 5 फीट 4 इंच, सामान्य शरीर, रंग गोरा और गोल चेहरा है। सैजहा ने जमादार पुरवा मौजा बनकटी सूर्यबली सिंह थाना मोतीगंज जनपद गोंडा से सूचित किया है कि अब्दुल लईक 12 नवंबर 2025 से लापता हो गए हैं। अब्दुल लईक की आयु 20 वर्ष, कद 6 फीट, रंग गोरा और चेहरा लंबा है। खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में आप हमें इस पते पर भी सूचित कर सकते हैं। पुलिस अधीक्षक, राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो, उत्तर प्रदेश, महानगर लखनऊ। खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचनाएं समाप्त हुईं।
1: बात सेहत की हो या हुनर को तराशने की, खोजने हो प्रगति के पथ, या करना हो अपना उद्यम, सरोकार है उन सब से जिससे निखरे आपकी पहचान और मिले आपको एक नई उड़ान। नई उड़ान सुनिए हर शाम 5:45 से मीडियम वेव 747 किलोहर्ट्ज़ आकाशवाणी लखनऊ पर।
2: मैं डॉक्टर राजेश हर्षवर्धन, चिकित्सा अधीक्षक SJPGIMS और संयुक्त निदेशक राज्य अंग एवं उत्तक प्रत्यारोपण संगठन उत्तर प्रदेश, आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में अंग जैसे किडनी, लीवर, हार्ट, कॉर्निया, इनकी वैसे रोगियों की संख्या काफी ज्यादा हो रही है, बढ़ रही है, जिनके केस में ये अंग काम नहीं कर रहे हैं और उन्हें अंग प्रत्यारोपण की आवश्यकता है। आप एक मुहिम के रूप में आगे आकर SOTOUP के वेबसाइट पे, होम पेज पे प्लीज नाउ बटन क्लिक करें और QR कोड स्कैन करके अंग दान करने का शपथ लें, क्योंकि अंग दान महादान है। आपके इस निर्णय से किसी की जिंदगी बच सकती है। दान जगत का नियत धर्म है, व्यर्थ मनुष्य डरता है, एक दिवस तो स्वयं उसे सब कुछ देना पड़ता है। बचते वही समय पर जो सर्वस्व दान करते हैं, ऋतु का ज्ञान रहा न जिन्हें वो देकर भी मरते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप यही मैसेज अपने सभी संपर्क में फैलाएंगे। धन्यवाद।
0: प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान आप सुनेंगे हर मंगलवार को शाम 7:45 पर। NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे से।

श्रोताओं, कार्यक्रम संबंधी सूचना सुनिए। आज रात 10 बजे आप सुनेंगे जितेंद्र स्वामी का लिखा नाटक मोक्ष। निर्देशक एवं प्रस्तुतकर्ता अतिश कुमार श्रीवास्तव, प्रस्तुति सहयोग कीर्ति श्रीवास्तव का। समय होगा आज रात 10 बजे।

हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम लोक माधुरी। आज सुनिए शिवलाल के गाए भोजपुरी लोकगीत। सबसे पहले सुनते हैं कहरवा।

आप सुन रहे थे शिवलाल के गाए भोजपुरी लोकगीत। संगत करता थे ढोलक पर नरेंद्र सिंह, हारमोनियम पर संतोष तिवारी, बांसुरी पर दिगंत सैकिया और साइड रिदम पर आशीर्वाद कठेरिया। अब आज का लोक माधुरी कार्यक्रम समाप्त होता है।

कार्यक्रम संबंधी सूचना सुनिए। आज रात 8 बजे हिंदी कार्यक्रम में आप सुनेंगे नवीन जोशी से उनकी कहानी ठहरा हुआ मोबाइल युग। सुगम संगीत के कार्यक्रम में रात 8:10 पर रुबीना बनर्जी के गाए भजन सुनवाए जाएंगे। मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। 3 बज चुके हैं, अब हमारी आज की ये सभा संपन्न होती है। सायंकालीन सभा में 5 बजे आपकी सेवा में हम पुनः उपस्थित होंगे, तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए।

0: मीडियम वेव 401.1 मीटर अर्थात 747 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। शाम के 5 बजे हैं। अब आरंभ हो रही हमारी आज की सायंकालीन सभा। सभा में सबसे पहले आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, बस कुछ ही पलों में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनस गौर स्टोरा के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। श्री मोदी इस समय संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
2: स्वर्णिम युग में प्रवेश कर रहे हैं। पिछले वर्ष भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के एक ऐतिहासिक ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया। यह एग्रीमेंट भारत और नॉर्वे के बीच शेयर्ड प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी सुनिश्चित करने का ब्लूप्रिंट है। इस एग्रीमेंट में अगले 15 वर्ष में भारत में $100 बिलियन इन्वेस्टमेंट और 1 मिलियन जॉब्स क्रिएट करने का लक्ष्य है।
1: श्री मोदी आज नॉर्वे के ओस्लो पहुंचे, जहां उनका पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री कल तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। ये दौरा नॉर्डिक देशों के साथ भारत के संबंधों को गति प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम और रानी सोनिया से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि स्वीडन की उनकी यात्रा के कई महत्वपूर्ण परिणाम निकले हैं, जो आपसी संबंधों को एक नई गति प्रदान करेंगे। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने में ये पहल महत्वपूर्ण रही। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के अंतर्गत विधि और न्याय मंत्रालय कल से गुजरात के गांधीनगर में ब्रिक्स वरिष्ठ अधिकारियों SOM की 2 दिवसीय बैठक की मेजबानी करेगा। विधि और न्याय मंत्रालय ने कहा कि SOM बैठक में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के वरिष्ठ अधिकारी

0: वैकल्पिक विवाद समाधान एडीआर से संबंधित मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया संकट के कारण आयात में व्यवधान के बावजूद देश के तेल शोधक कारखाने सामान्य रूप से काम कर रहे हैं और भारत के पास कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार है। पश्चिम एशिया में हाल की घटनाओं पर आज नई दिल्ली में आयोजित अंतर मंत्रालय ब्रीफिंग को संबोधित करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि देश में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस का पर्याप्त भंडार है। रसायन और उर्वरक मंत्रालय की संयुक्त सचिव अपर्णा एस शर्मा ने कहा कि खरीफ सीजन के लिए उर्वरक की उपलब्धता सभी राज्यों में 50% से अधिक है। वहीं विदेश मंत्रालय खाड़ी के अपर सचिव असीम महाजन ने कहा कि भारतीय दूतावास और वाणिज्य दूतावास 2400 घंटे हेल्पलाइन संचालित कर रहे हैं ताकि समय पर सहायता प्रदान की जा सके और वे देश के नागरिकों की सक्रिय रूप से सहायता कर रहे हैं। केरला में नई यूडीएफ सरकार ने राज्य परिवहन की बसों में महिला यात्रियों को मुफ्त यात्रा सुविधा प्रदान करने का निर्णय लिया है। कैबिनेट की बैठक में लिए गए अन्य निर्णयों में आशा कार्यकर्ताओं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायकों और रसोईया कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि करना शामिल है। राज्य में नई विधानसभा का सत्र इस महीने की 21 तारीख को आयोजित किया जाएगा, जिसमें नए सदस्यों को शपथ दिलाई जाएगी और अध्यक्ष का चुनाव होगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने स्विट्जरलैंड के जिनेवा में आयोजित 79वीं विश्व स्वास्थ्य सभा के दौरान विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस अधानोम घेब्रियसिस से मुलाकात की। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि श्री नड्डा ने वैश्विक स्वास्थ्य समानता को बढ़ावा देने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया। बैठक के दौरान WHO के महानिदेशक ने भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधारों और वैश्विक स्वास्थ्य साझेदारियों में नेतृत्व की सराहना की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज वियतनाम की राजधानी हनोई पहुंचे। वे आज से वियतनाम और दक्षिण कोरिया की यात्रा पर हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में रक्षा मंत्री ने कहा कि इस दौरान सामरिक सहयोग बढ़ाने, रक्षा औद्योगिक साझेदारी मजबूत करने, समुद्री सहयोग सुदृढ़ करने और हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे चेन्नई में चेन्नई सुपर किंग्स का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। अंक तालिका में तीसरे स्थान पर मौजूद हैदराबाद जीत दर्ज कर प्ले ऑफ के और करीब आना चाहेगी, जबकि चेन्नई की नजर शीर्ष 4 में प्रवेश करने पर होगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। आइए अब आपको जानकारी दे दें हमारे आज के शेष और कल प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों के बारे में। पहले सुनिए आज के शेष कार्यक्रमों के बारे में। स्वास्थ्य वार्ता कार्यक्रम होगा शाम 7:31 पर, जिसमें आज सुनिएगा ब्रेन स्ट्रोक कारण, लक्षण और उपचार पर प्रोफेसर डॉक्टर नीरज कुमार से आशीष चतुर्वेदी की भेंट वार्ता और कार्निया की समस्या और निदान इस विषय पर प्रोफेसर डॉक्टर अरुण शर्मा से सुरेंद्र राजेश्वरी की बातचीत। रात 10 बजे सुनिएगा जितेंद्र स्वामी का लिखा नाटक मोक्ष। प्रस्तुति सहयोग है कीर्ति श्रीवास्तव का और इस नाटक के निर्देशक एवं प्रस्तुतकर्ता हैं अतीश कुमार श्रीवास्तव। हिंदी कार्यक्रम होगा रात 8 बजे, जिसमें आज आप सुनेंगे कहानी ठहरा हुआ मोबाइल युग। कहानीकार होंगे नवीन जोशी। रूबीना बनर्जी के गाए भजनों का आनंद लीजिएगा सुगम संगीत कार्यक्रम में रात 8:10 पर। युवा साथी सुनेंगे अपना कार्यक्रम युवा तरंग शाम 5:10 पर। नई उड़ान कार्यक्रम का समय होगा शाम 5:45 पर, जिसमें सरोकार के अंतर्गत सुनिएगा स्मार्ट शहरों को स्मार्ट बनाए रखने में हमारी भूमिका, आरती की ओबी पर आधारित ये कार्यक्रम। अधकपारी कारण और निवारण, इस विषय पर डॉक्टर अतुल अग्रवाल से नीना सोनकर की भेंटवार्ता हम आपको सुनवाएंगे लोक आयतन कार्यक्रम में शाम 6:30 पर। पशुओं में संक्रामक रोगों से बचाव और टीकाकरण पर डॉक्टर संतोष कुमार द्विवेदी जानकारी देंगे खेती किसानी कार्यक्रम में आज शाम 6:50 पर। भेंट करता होंगे डॉक्टर सुशील कुमार राय। श्रोता अपनी पसंद के फिल्मी नगमे सुन सकेंगे आपकी पसंद कार्यक्रम में रात 9:30 पर। और रात 10:30 पर

शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में सुनिएगा पार्थ प्रतिम राय का सितार वादन। ये थी जानकारी हमारे आज के शेष कार्यक्रमों की। और आइए अब आपको जानकारी देते हैं कल यानी 19 मई 2026 को आकाशवाणी लखनऊ से प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों की। राज्य स्तरीय प्रसारण में कल रात 10 बजे सुनिएगा कार्यक्रम खेल दर्पण। कल का ये कार्यक्रम आकाशवाणी वाराणसी की प्रस्तुति होगा। जिले की हलचल आप सुनते हैं हर रोज प्रातः 9:15 पर। उर्दू कार्यक्रम होगा सुबह 9:30 पर, जिसमें कल समात फरमाइएगा गुफ्तगु, जिसका उन्वान होगा आकाशवाणी के 90 सुनहरे साल। मेहमान होंगे डॉक्टर मुजाहिद फराज, शरीके गुफ्तगु होंगे परवेज खान। कल का ये कार्यक्रम आकाशवाणी रामपुर की पेशकश होगा। मक्का की उन्नत खेती के बारे में डॉक्टर नगेंद्र सिंह रघुवंशी जानकारी देंगे कृषि चर्चा कार्यक्रम में कल प्रातः 6:05 पर। गुणकारी शंख पुष्पी के बारे में नीना सोनकर बताएंगी कल की स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में प्रातः 7:00। आज सुबह कार्यक्रम होगा सुबह 7:31 पर। संजोली पांडे के गाए अवधि लोकगीतों का आनंद लीजिएगा लोक रंग कार्यक्रम में प्रातः 9:50 पर और लोक माधुरी कार्यक्रम में दिन में 2:45 पर। अपराजिता कार्यक्रम का समय होगा दिन में 1:15 पर। जायद फसलों में जल प्रबंधन पर डॉक्टर अतुल कुमार सिंह से जानकारी देंगे विज्ञान और किसान कार्यक्रम में दिन में 2:30 पर। आपसे बातचीत करेंगे डॉक्टर सुशील कुमार राय। युवा साथी सुनेंगे अपना दैनिक कार्यक्रम युवा तरंग शाम 5:10 पर। नई उड़ान कार्यक्रम में कल शाम 5:45 पर अपना उद्यम के अंतर्गत सुनिएगा अभिषेक की ओबी पर आधारित कार्यक्रम स्व उद्यमिता में नवाचार। कृत्रिम बुद्धिमत्ता और ग्रामीण धरोहर संरक्षण, पुष्पा पंखुड़ी सिंह की ये वार्ता प्रसारित होगी लोकायतन कार्यक्रम में शाम 6:30 पर। कृषि रक्षा रसायनों के प्रयोग में सावधानियां, इस विषय पर डॉक्टर लाल बहादुर यादव से डॉक्टर सुशील कुमार राय की भेंटवार्ता आप सुनेंगे खेती किसानी कार्यक्रम में शाम 6:50 पर। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचनाओं में राष्ट्रीयता के स्वर, डॉक्टर अब्दुल रहीम की ये वार्ता प्रसारित होगी हिंदी कार्यक्रम में कल रात 8:00। सुगम संगीत कार्यक्रम में रात 8:10 पर सुनिएगा गुलशन भारती की गाई गजलें। फोन इन कार्यक्रम हेलो मेरी पसंद का समय होगा रात 9:30 पर। और शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में कल रात 10:30 पर हम आपको सुनवाएंगे सृष्टि माथुर का ख्याल गायन। ये थी जानकारी हमारे आज के शेष और कल प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों की। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। युवा साथी सुने अपना दैनिक कार्यक्रम युवा तरंग।

नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना प्रिय कार्यक्रम युवा तरंग, युवाओं की आवाज, सपनों की उड़ान और नई सोच का शानदार मंच। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त विष्णुप्रिया और आज मैं लेकर आई हूं आपके लिए उत्साह, उमंग और प्रेरणा से भरा एक खास कार्यक्रम। दोस्तों, युवा वो शक्ति है जो हर चुनौती को अवसर में बदलने का हौसला रखती है। युवाओं के सपने, उनकी ऊर्जा और कुछ नया कर गुजरने का जज्बा ही देश के उज्जवल भविष्य की पहचान है और इन्हीं विचारों को समर्पित है हमारा कार्यक्रम युवा तरंग। आज के इस कार्यक्रम में होगी ज्ञान की बातें, मनोरंजन का तड़का, प्रेरणादायक विचार और ढेर सारी सकारात्मक ऊर्जा। तो तैयार हो जाइए एक ऐसे सफर के लिए जहां हर पल होगा खास और हर बात देगी नई प्रेरणा। बने रहिए हमारे साथ क्योंकि अब शुरू होने जा रहा है जोश, जुनून और युवा सोच का खूबसूरत संगम युवा तरंग इस प्यारे से गीत के साथ।

0: सुनो सुनो सुनो गांव वालों, केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
1: आरबीआई कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: लेकिन मैं
1: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
0: डिजिटल अरेस्ट?
1: 1,00,000 बच जाओगे।
0: इतने पैसे?
1: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
0: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
2: हेलो मम्मा।
3: RBI कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: दोस्तों, वक्त हो गया है आपको एक भेंट वार्ता सुनवाने का, जिसमें आप जानेंगे AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वर्तमान और भविष्य में उपयोगिता, जिसके वार्ताकार हैं डॉक्टर विनायक शुक्ला और जिनसे बात की है कुंवर बहादुर जी ने।
6: श्रोताओं, कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि हर दिन ही बात करते हैं किसी न किसी विषय पर, तो आज भी एक बहुत ही रोचक विषय पर हम आपके लिए जानकारी लेके आए हैं, साथ में ही आपको मिलाएंगे उस विषय विशेषज्ञ से। तो आज जिस विषय पर हम बात करेंगे वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर विनायक शुक्ला जी, जो PhD हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में।
7: बहुत बहुत धन्यवाद कुंवर जी।
6: वैसे तो हम सभी जानते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या, क्योंकि अब इसको आए हुए भी काफी दिन हो गए हैं और जो हमारी आम पब्लिक है, जो लोग हैं, जो हमारे युवा हैं, उसको यूज धीरे धीरे करने ही लग गए हैं। लेकिन आज आपके माध्यम से जानना चाहेंगे सरल शब्दों में हमारे श्रोताओं के लिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आखिर है क्या, कैसे ये हमारे दैनिक जीवन में घुसता चला जा रहा है।
7: देखिए कुंवर जी, अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हम लोग बात करें तो ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें मशीनों और कंप्यूटरों को हम लोग क्या कर रहे हैं, इंसानों की तरह सोचने, सीखने और निर्णय लेने की क्षमता प्रदान कर रहे हैं। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो जो हमारे पास डेटा अवेलेबल रहता है, डेटा सेट रहता है, उसको वो अपने अनुभव से सीखता है और उसी आधार पर कार्य करता है। उदाहरण के तौर पर लिया जाए तो जैसे हमारा गूगल असिस्टेंट है, तो हम क्या करते हैं, अपनी आवाज में उससे हम बात कर सकते हैं और कोई भी अपना काम उससे करा सकते हैं। इसी तरीके से अभी ChatGPT आया हुआ है, तो ChatGPT क्या है, उसको अपने प्रश्नों को उसको देते हैं, वो उसको समझता है और वो स्वयं से ही सीखता है, सेल्फ लर्निंग करता है और फिर वो अपने अनुभव से सुधार करता हुआ और आपको बेहतर उत्तर देता है।
6: तो यानी कि जो पहले से जानकारी हमारे पास है उसी को यूज करता है, उसी में से ही इंफॉर्मेशन निकालता है और जो आपको जानकारी चाहिए वो आपको लाके देता
7: है। बिल्कुल बिल्कुल, ये जनरेटिव AI कहलाता है। जनरेटिव AI के केस में क्या कहता है, ये अपने आप से सेल्फ जनरेट कर रहा है, ये नए कंटेंट भी आपको बना के दे सकता है। नया कंटेंट, जैसे आप अगर टेक्स्ट की बात करें, ऑडियो की बात करें, वीडियो की बात करें, इमेजेस की बात करें, जैसे अभी एक गिबली आया हुआ था, तो ये तो खैर Gemini निकाला था। अगर गिबली की मैं बात करता हूँ तो आपको मैं बताऊं कि एक गिबली स्टाइल आर्ट जो है, इसकी शुरुआत जापान के एक एनिमेशन स्टूडियो हुआ करता था जिसका नाम स्टूडियो गिबली हुआ करता था। उसने सन 1985 कह रहा हूँ विकसित किया इस कला को, और जो इसके जन्मदाता कहलाते थे वो हायो मिज़ाकी कहलाते थे। तो उन्होंने, आप समझिए कि लगभग 10 से 15 साल इस आर्ट पे काम किया, और इस आर्ट पे काम करने के बाद इस स्टूडियो ने जो मूवीज निकाली, उस मूवीज के एक एक फ्रेम में 10 से 15 दिन लगते थे बनने में, और आज के समय में आप सिर्फ एक क्लिक करते हैं और मुश्किल से 10 से 15 सेकंड में आपको जो गिबली आर्ट है वो उससे रिलेटेड इमेज आपको मिल जाती है।
6: यानी कि जिसको आप यूज करने में सेकंड्स भी नहीं लगाते हैं, उसके पीछे कई सालों की मेहनत होती है और उसके बाद वो आप तक आता है।
7: बिल्कुल बिल्कुल।
6: जैसा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हम बात कर रहे हैं, तो शुरुआत में जब ये आया तो लोगों को बहुत भय हुआ कि ये तो कई सारी नौकरियां ले जाएगा, और अब धीरे धीरे हम उसका यूज करने लग गए हैं, तो आप क्या मानते हैं कि वर्तमान में क्या स्थिति है और भविष्य में कैसे देखते हैं उसको?
7: देखिए कुंवर जी, बिल्कुल आपका जो ये प्रश्न है अधिकतर जनमानस का प्रश्न है, इसका उत्तर मैं एक तरीके से आपको थोड़ा सा मीडियोकर आंसर करना चाहूंगा। देखिए, अगर आपने अपनी स्किल को अपग्रेड नहीं किया तो आप ये मान लीजिए कि बहुत जल्दी AI आपकी वाकई में जैसे नौकरियां खा रहा है, तो ये सत्य प्रतीत होता आपको नजर आएगा। जैसे कुछ पारंपरिक नौकरियां ये कम कर रहा है, लेकिन साथ ही साथ अगर आपने अपनी स्किल अपग्रेड कर ली तो जितनी ये खाएगा नहीं उससे ज्यादा ये आपको नौकरियों का अवसर दे देगा। महत्वपूर्ण चीज यहाँ पे यही है कि ह्यूमन को AI के साथ कोलेबरेट करना पड़ेगा। जब दोनों आपस में कोलेबरेट कर जाएंगे तो निश्चित रूप से भविष्य में आप बहुत अच्छे स्तर पे इसको देख पाएंगे।
6: जब कंप्यूटर आया था
7: जी,
6: तो तब भी

0: पुलिस।
1: मिस सीमा
0: जी,
1: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए वरना घर आ जाएंगे।
0: क्यों, लेकिन

0: शुरू में ये भय व्याप्त हुआ था कि अब जब कंप्यूटर आया है तो ये तो नौकरियां खा जाएगा।
1: बिल्कुल,
0: लेकिन अब आज के समय में अगर आप देखें तो इतनी ज्यादा नौकरियां आईटी सेक्टर में है।
1: बिल्कुल सही,
0: और जो भारत की अर्थव्यवस्था है उसमें जो हमारा आईटी सेक्टर है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल कुमार जी,
0: तो कुछ ऐसा ही शायद एआई के साथ होने वाला हो।
1: बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही होगा। आपको मैं बताऊं कि अभी एक जैसे आपने क्वांटम फिजिक्स शब्द सुना होगा, तो ऐसे ही क्वांटम एआई आया हुआ है, जो कि आप समझिए कि जो क्वांटम कंप्यूटर्स हुआ करते थे वो आपके कॉम्प्लेक्स जो प्रॉब्लम्स होती थी उनको मिनटों में सॉल्व कर देते थे, ऐसे ही आपका क्वांटम एआई

0: होगा। तो ऐसे ही क्वांटम एआई आया हुआ है, जो कि आप समझिए कि जो क्वांटम कंप्यूटर्स हुआ करते थे वो आपके कॉम्प्लेक्स जो प्रॉब्लम्स होती थी उनको मिनटों में सॉल्व कर देते थे, ऐसे ही आपका क्वांटम एआई क्या करेगा, जो समझिए ऐसे ऐसे कैलकुलेशंस जिसमें आप समझिए बरसों बीत जाएं, उसको वो चुटकियों में हल करके आपको दे देगा। अगर यूजेस की मैं बात करता हूँ तो आपको साइबर सिक्योरिटी में, ड्रग्स डिस्कवरी में, सेल्फ ड्राइविंग कार्स में, बहुत तमाम जगह यूज हो रहा है। जैसे टेस्ला कंपनी है तो ये इस तरीके से ऑटोमेटेड व्हीकल्स को प्रमोट कर रही है और बहुत ज्यादा ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके अपनी लगभग जितनी भी आने वाली आप देखेंगे कुछ समय में ही, तो ये भारत में भी काफी प्रचलित हो जाएंगी।
1: एआई को आए हुए कुछ समय तो हो ही गया है, तो अब अगर हम देखें कि लोग धीरे धीरे यूज टू हो रहे हैं एआई के, तो अब क्या चेंजेस देखते हैं, जैसे लोग पहले काम करते थे उनके काम करने के तरीके में और अभी के काम करने के तरीके में क्या बदलाव है?
0: भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो अगर आप कृषि पे ही ले लीजिए, तो अगर आप कृषि को देखते हैं तो यहाँ पे पहले जो है हम लोग किस तरीके की हमारी क्रॉप है उसमें कौन सी बीमारी लग रही है, तो ये पहले हम इस तरीके का प्रेडिक्शन नहीं कर पाया करते थे। अब हम क्या कर रहे हैं कि बीज को देख के, उसकी पत्तियां देख के, हम एआई की मदद से पहले ही बता दे रहे हैं कि उसमें कौन सी डिजीज लग सकती है, और अब आप क्या करिए कि इस प्रकार की डिजीज के लिए आप ये पर्टिकुलर प्रयोग कर लीजिए कीटनाशक, और आपकी फसल अच्छी होगी। साथ ही साथ वेदर फोरकास्टिंग, पूरा हमारा जो कृषि है वो वेदर फोरकास्टिंग पे ही निर्भर है, तो वो भी आप एआई की हेल्प से काफी अच्छे से उसको नियंत्रित कर सकते हैं।
1: मेडिकल फील्ड में अगर हम देखें तो एआई वहां भी घुस चुका है, और आजकल मेडिकल फील्ड में काफी सारी रिसर्च हो रही है और काफी चीजें निकल कर सामने आ रही है, तो थोड़ा सा हमारे श्रोताओं को बताएं कि कैसे एआई हमारी मेडिकल फील्ड को हेल्प कर रहा है।
0: एआई की हेल्प से बीमारियों को हम लोग जल्दी पता लगा सकते हैं, जो दवाइयां हैं उनका शोध और अच्छे बेहतर तरीके से किया जा सकता है। साथ ही साथ अगर उदाहरण के तौर पर अगर हम लोग देखें, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, कई तरीके के कैंसर डिटेक्शन एल्गोरिथम्स हैं जो कि यूज हो रही हैं, और कई प्रकार के जो वर्चुअल हेल्थ असिस्टेंट अवेलेबल हैं, तो इसमें काफी हेल्प मिल रही है।
1: बक्सा, अगर हम बात करें सरकार की योजनाओं के बारे में, ऐसी कौन सी योजनाएं हैं जो हमारी सरकार चला रही है एआई को प्रमोट करने के लिए?
0: देखिए कुमार जी, भारत तेजी से एआई टेक्नोलॉजी को अपना रहा है, सरकार और प्राइवेट कंपनीज जो हैं वो एआई रिसर्च में निवेश कर रही हैं। भारत सरकार के द्वारा कुछ एआई प्रोग्राम शुरू किए गए हैं, भारत सरकार ने इस सबको भांपते हुए 2024 में ही इंडिया एआई मिशन एक बनाया था और उसका आरंभ कर दिया था। एक हमारी भाषणी भारत सरकार द्वारा चलाया गया एक प्रोग्राम है जिसमें भारतीय भाषाओं में एआई आधारित ट्रांसलेशन और स्पीच टेक्नोलॉजी के द्वारा स्पीच उपलब्ध कराना है। इंडिया एआई फ्यूचर स्किल प्रोग्राम जो कि बहुत वृहत स्तर पे भारत सरकार चला रही है, इसके अलावा युवा एआई फॉर ऑल, ये भी भारत सरकार के द्वारा चलाया गया एक बहुत ही अच्छा योजना है।
1: इसके चैलेंजेस क्या हो सकते हैं आगे आने वाले समय में?
0: देखिए आने वाले चैलेंजेस की अगर मैं बात करूं तो अभी आपने जो प्रश्न किया था, ये आने वाले समय में क्या ये इंसानों की नौकरियां खाएगा, तो बिल्कुल, अगर आप अपनी आपने स्किल को डेवलप नहीं किया, अपग्रेड नहीं किया, तो आप ये समझ लीजिए कि निश्चित तौर पे आपकी आने वाले समय में नौकरियां खाएगा। इसके अलावा एक चीज़ ये भी है कि आपको थोड़ा सा, जैसे हम लोगों ने बचपन में क्या किया था कि हम लोगों को कुछ संस्कार दिए जाते थे, तो उन संस्कारों के साथ ही हम लोग पले बढ़े हैं, आगे हुए हैं, तो इसी तरीके से एआई में भी हमें क्या करना होगा कि जो इथिकल एआई है उसे हमें अपनाना होगा। देखिए हर चीज के दो पहलू होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। एआई मतलब इतना पावरफुल है कि आपके पास कुछ वॉइस क्लोनिंग ऐप हैं जिनकी मदद से, जैसे अगर अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं और अगर आप अभी मेरी वॉइस रिकॉर्ड करके इन ऐप्स को दे दें, तो ये दूसरे किसी पर्सन से सेम पिच पे, सेम नोट पे जाके उससे बात कर लेंगे, और सामने वाला व्यक्ति ये नहीं पहचान पाएगा कि ये विनायक जी से बात हो रही है या किससे बात हो रही है, और इनकी मदद से लोग ठगी भी कर रहे हैं।
1: अगर हम बात करें लोगों की गोपनीयता के बारे में या फिर उनकी जो निजी जानकारी है, तो क्या आपको कुछ ऐसा लगता है कि जो एआई है वो उस पर कुछ खतरा डाल सकता है?
0: बिल्कुल बिल्कुल, आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है उसका मिसयूज किया जा सकता है, तो आपको थोड़ा सा कोई भी ऐप यूज करते वक्त या किसी भी व्यक्ति से बात करते वक्त आपको अपनी निजी जानकारियां नहीं देनी है। बस अगर आपने एक दो चीजों का ध्यान रख लिया तो वहां से जो आपके साथ मिस हैपनिंग हो सकती है उससे आप बच सकते हैं।
1: बहुत सारे युवा अभी आपको सुन रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं कि अगर वो एआई में प्रशिक्षण चाहते हैं, इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो कहां से वो इसका शिक्षण ले सकते हैं?
0: मैं आपको दो चीजें बताना चाहूंगा कि एआई में सीखने के लिए आपको क्या सीखना है और कहां से सीखना है। पहले जानने की कोशिश करते हैं हमें क्या सीखना है।

0: तो हमें एआई में सीखने के लिए जैसे पाइथन प्रोग्रामिंग है, डेटा एनालिसिस है, मशीन लर्निंग के बेसिक्स हैं, क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, और साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ अभी जो मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एथिक्स की बात कर रहा था, ये इन चीजों की आपको नॉलेज होनी चाहिए। और ये नॉलेज आएगी कहाँ से? तो बिल्कुल बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं हमारे भारत सरकार के द्वारा और हमारे निजी भी संस्थान हैं, जो जैसे कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की ही कुछ ब्रांचेस हो गई हैं, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग है, डेटा साइंस है, क्लाउड कंप्यूटिंग है, इस तरीके से बहुत सारी ब्रांचेस हैं।
1: जो भी हमारे पाठ्यक्रम होते हैं उसमें एआई को एक पाठ्यक्रम के तौर पर लिया जाता है। तो जो भी हमारे श्रोता, जो भी युवा इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं और अपना करियर जो एआई के फील्ड में बनाना चाहते हैं, तो किसी ऐसे विश्वविद्यालय या कॉलेज में जाके इनरोल हो सकते हैं जहाँ पर ये पाठ्यक्रम सिखाया जाता हो।
0: जी
1: डॉक्टर विनायक शुक्ला जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में और इसकी चुनौतियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद कुमार जी। बस अंत में मैं एक बात यही कहना चाहूंगा कि आपको एआई से डरने की नहीं बल्कि उसे समझने और सही दिशा में उपयोग करने की जरूरत है। जो लोग एआई सीखेंगे, आप यकीन मानिए, वही भविष्य में आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।
2: तो दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे एआई पर चर्चा। आशा करते हैं आपको इससे काफी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई होगी। तो आगे हम आपसे और भी चर्चा करेंगे, उससे पहले सुनते हैं एक गीत।

0: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह,
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: दोस्तों, आज की बात में हम चर्चा करेंगे वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे पर। ये दिवस प्रत्येक वर्ष 18 मई को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य HIV एड्स के प्रति जागरूकता फैलाना तथा एड्स की वैक्सीन के विकास के लिए चल रहे शोध को समर्थन देना है। आज के समय में दोस्तों, HIV एड्स विश्व की गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं में से एक है। यद्यपि इसके उपचार के लिए कई दवाएं तो उपलब्ध हैं, फिर भी इसका कोई स्थायी इलाज और प्रभावी वैक्सीन अभी तक पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाई है। इसलिए ये दिवस वैज्ञानिकों, चिकित्सकों और समाज को एक साथ मिलकर कार्य करने के लिए प्रेरणा देता है। आइए जानते हैं इस दिवस के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं। तो दोस्तों, HIV एड्स के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाना है, वैक्सीन अनुसंधान को प्रोत्साहित करना है, संक्रमित व्यक्तियों के प्रति भेदभाव को कम करना है, सुरक्षित और स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए भी प्रेरित करता है। ये समाज का कर्तव्य है कि HIV एड्स से प्रभावित लोगों के प्रति सहानुभूति और सहयोग का भाव रखें। भेदभाव और गलत धारणाएं इस बीमारी से लड़ाई को और कठिन बना देती हैं। वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे हमें यह संदेश देता है कि जागरूकता, वैज्ञानिक अनुसंधान और सामाजिक सहयोग के माध्यम से ही HIV एड्स जैसी गंभीर बीमारी पर नियंत्रण पाया जा सकता है। ये दिन मानवता के स्वास्थ्य और सुरक्षित भविष्य के लिए सामूहिक प्रयास का प्रतीक है। तो दोस्तों, ये तो बात थी वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे से जुड़ी हुई। आगे अन्य विषय पर चर्चा करेंगे, उससे पहले सुनते हैं एक गीत।

0: अपना कार्ड दे, पिन दे।
1: आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: दोस्तों आइए अब हम एक और विषय पर चर्चा करते हैं, जो है हिंसक वीडियो गेम प्रतिबंधित होना सही है या गलत। आज के समय में बच्चे और युवा बड़ी संख्या में वीडियो गेम्स की ओर आकर्षित हो रहे हैं। इनमें से कई गेम्स ऐसे होते हैं जिनमें मारपीट, हथियारों का प्रयोग और हिंसा को बढ़ावा दिया जाता है। ऐसे में ये सवाल उठता है, सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या इन हिंसक वीडियो गेम्स पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। कुछ लोगों का मानना है कि हिंसक वीडियो गेम बच्चों और युवाओं के मानसिक विकास पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। लगातार हिंसा वाले दृश्य देखने से बच्चों के व्यवहार में बदलाव देखने को मिलता है, जो माता पिता को चिंतित भी कर देता है। वास्तविक जीवन और आभासी दुनिया के बीच का अंतर समझने में कठिनाई महसूस कर सकते हैं। कई बार बच्चे पढ़ाई से दूर होकर केवल गेम्स में ही समय बिताने लगते हैं।

जिससे उनका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों ही प्रभावित होता है। इसलिए लोगों का कहना है कि इन गेम्स पर रोक लगाना समाज और बच्चों के भविष्य के लिए सही कदम होगा, सही कदम होगा। वहीं दूसरी ओर कुछ लोग मानते हैं कि केवल वीडियो गेम्स को दोष देना उचित नहीं है। उनका कहना है कि हर व्यक्ति गेम खेलकर हिंसक नहीं बन जाता है। यदि माता पिता बच्चों की गतिविधियों पर ध्यान दें और समय की सीमा को तय कर दें तो गेम्स मनोरंजन और तनाव कम करने का साधन भी बन जाता है। कई वीडियो गेम्स बच्चों की सोचने की क्षमता, निर्णय लेने की शक्ति और तकनीकी समझ को भी बढ़ाते हैं। इसीलिए पूर्ण प्रतिबंध की जगह सही मार्गदर्शन और नियंत्रण अधिक आवश्यक है। यदि देखा जाए तो समस्या केवल गेम्स में नहीं बल्कि उनके गलत उपयोग और अत्यधिक लत में है। बच्चों को सही और गलत का अंतर समझाना, उनकी ऑनलाइन गतिविधियों पर नजर रखना और संतुलित जीवन शैली अपनाना अधिक जरूरी है। अंत में यही कहा जा सकता है कि हिंसक वीडियो गेम्स पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने की बजाय जागरूकता, अभिभावकों की निगरानी और उचित सीमा तय करना अधिक प्रभावी समाधान हो सकता है। तो दोस्तों, आज तो हमने आपसे बहुत सारी चर्चा की और आपको अधिक से अधिक जानकारी देने का प्रयास भी किया है। तो अब वक्त हो गया है विदा लेने का। तो मुझे यानी विष्णुप्रिया को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

अभी युवा साथी सुन रहे थे अपना दैनिक कार्यक्रम युवा तरंग। हम आकाशवाणी लखनऊ से बोल रहे हैं। प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान आप सुनेंगे हर मंगलवार को शाम 7:45 पर।

कुछ किस्से किताबों में नहीं मिलते, कुछ इतिहास तारीखों से बाहर सांस लेते हैं, और कुछ शहर अपने संग्रहालयों में चुपचाप पूरी सभ्यता संभाले बैठे हैं। नमस्ते, नई उड़ान कार्यक्रम में आपके साथ ही आरती आप सभी का स्वागत करती है। दोस्तों, आज 18 मई, यानी आज एक ऐसा खास दिन है जिस पर बात करना जरूरी हो जाता है। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस आज हम मना रहे हैं, और ऑनेस्टली बताइए, आप में से कितने लोग संग्रहालय म्यूजियम को सिर्फ पुरानी चीज़ों का स्टोर रूम समझते हैं? सच कहूँ, म्यूजियम सिर्फ दीवारों के बीच रखी चीज़ें नहीं होते, ये होते हैं, ये वो जगह हैं जहाँ इतिहास आवाज़ नहीं करता फिर भी बहुत कुछ कह जाता है। कभी किसी पुराने सिक्कों को देखकर लगा है कि इसे भी कभी किसी ने अपनी मेहनत की कमाई समझकर संभाला होगा। कभी किसी तलवार, पेंटिंग या मिट्टी के बर्तन को देखकर सोचा है कि इसके पीछे भी किसी दौर की पूरी कहानी रही होगी। दोस्तों, म्यूजियम हमें सिर्फ अतीत नहीं दिखाते बल्कि ये बताते हैं कि हमारी जड़ें कितनी गहरी हैं। और अच्छी बात यह है कि आजकल म्यूजियम भी बदल रहे हैं, अब वहाँ सिर्फ ग्लास बॉक्स नहीं है, डिजिटल स्क्रीन, साउंड इफेक्ट्स, इंटरैक्टिव गैलरीज और यूथ फ्रेंडली एक्सपीरियंसेस भी हैं। अगर आप क्यूरियस इंसान हैं तो ज़िंदगी में कम से कम एक बार ज़रूर म्यूजियम को वक्त दीजिए, क्योंकि जो समाज अपने इतिहास को संभालना जानता है वो अपने भविष्य भी बेहतर करना सीख जाता है। वैसे बेहतर भविष्य के लिए ज़रूरी है कि हम जागरूक रहें, और इसीलिए तमाम दिवस भी मनाए जाते हैं। एड्स के प्रति जागरूकता को बढ़ाने के लिए आज यानी 18 मई को विश्व एड्स वैक्सीन दिवस भी मनाया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि वैक्सीन दिवस मतलब वैक्सीन बन गई है क्या? ये तो बड़ी एक्साइटिंग न्यूज़ हो गई। नहीं, अभी रिसर्च चल रही है। दुनिया भर के वैज्ञानिक लगातार कोशिश कर रहे हैं

एचआईवी के खिलाफ एक असरदार वैक्सीन तैयार हो सके, लेकिन तब तक सबसे बड़ी वैक्सीन क्या है पता है? अवेयरनेस, जागरूकता, सही जानकारी। क्योंकि कई बार बीमारी से ज्यादा खतरनाक लोगों की सोच बन जाती है। एचआईवी से पीड़ित लोग बीमारी से लड़ लेते हैं लेकिन समाज के तानों से टूट जाते हैं। तो अगर आपके आसपास कोई एचआईवी पेशेंट है तो उसे दया नहीं, नॉर्मल बिहेवियर दीजिए। एचआईवी कोई छूने से, बात करने से या करीब बैठने से फैलने वाली बीमारी थोड़ी है। उसे दूरी नहीं, उसे सपोर्ट चाहिए। और हाँ, रेगुलर हेल्थ चेकअप, सेफ प्रैक्टिस और सही जानकारी, ये तीन चीज़ें हम सब की जिम्मेदारी हैं। नॉलेज शेयर कीजिए, डर नहीं, सपोर्ट कीजिए, जजमेंट नहीं, और रखिए अपना ख्याल, अपनों का ख्याल। फिलहाल आपका ख्याल रखते हुए मैं सुनाती हूँ आपको एक प्यारा सा गाना।

0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: देश भर में स्मार्ट सिटी अभियान चले, जिनमें दौड़ लखनऊ ने भी लगाई और काफी तेजी से आगे भी बढ़ रहा है। लेकिन सवाल यह है कि स्थिति कहाँ है, क्या फ्यूचर प्लान्स हैं, और क्या सिर्फ सरकार के प्रोजेक्ट्स ही शहर को स्मार्ट बना सकते हैं, या इसमें हमारी यानी आम नागरिकों की भी जिम्मेदारी है। ऐसे ही कुछ सवालों के साथ लखनऊ नगर निगम कार्यालय में भी बातचीत करने के लिए हमने रिक्वेस्ट किया है अपर नगर आयुक्त श्री अरविंद राव जी से, नोडल ऑफिसर स्वच्छ भारत लखनऊ। कार्यक्रम में सर आपका बहुत बहुत स्वागत है।
3: धन्यवाद मैडम, आपके माध्यम से सभी जनता को हमारा प्रणाम।
2: जब हम स्मार्ट सिटी की बात करते हैं तो लोग कई बार ये समझ नहीं पाते कि स्मार्ट सिटी का मतलब क्या, टेक्नोलॉजीज या कुछ और।
3: देखिए, स्मार्ट सिटी का मतलब होता है कि जो सिटीजन्स वहां रह रहे हैं उनका जीवन बहुत आसान हो जाए। छोटा सा उदाहरण मैं दे रहा हूँ कि मान लीजिए आपको ट्रेन का टिकट कराना है। पहले आप देखते थे, लाइन लगाते थे, फॉर्म भरते थे, ये करते थे। टेक्नोलॉजी आ गई, आप अपने मोबाइल पे अपना ऐप खोलिए और खट से अपना टिकट ले लीजिए। बिजली का बिल भरना है, आप अपने मोबाइल से भर लो। और बता रहा हूँ आप, पहले हमारे ट्रैफिक के सिपाही चौराहों पे खड़े रहते थे, कोई गाड़ी गई दौड़ा के चालान करते थे, लड़ाई झगड़ा हो जाता था, मैंने मैनुअल इंटरवेंशन बहुत था। अब क्या है, आप बैठे रहो, बैठे बैठे वहीं से सीधे चालान आपके घर पहुंच जाएगा, अगर आपने ट्रैफिक सेंस को फॉलो नहीं किया तो।
2: लोग कहते हैं कि अपनी भूमिका हम निभाएं भी, पर उससे पहले जो हमें सड़कें मिल रही हैं, आज बनकर चकाचक तैयार है, एकदम शानदार सड़क पर ड्राइव कर रहे हैं, पता चलता है दो दिन बाद किसी कारणवश वहां पर खुदाई चल रही है। तो इस तरह की तमाम शिकायतें लोगों की रही हैं, तो ऐसी चीजों पर क्या कुछ चीजें चल रही हैं, कुछ फ्यूचर प्लान्स हैं स्मार्ट सिटी के अंतर्गत?
3: स्मार्ट सिटी के बहुत सारे हुए। आपको ये लग रहा है कि स्मार्ट सिटी में बिल्कुल मलेशिया कुआलालंपुर जैसा चमकता शहर, वो शहर नहीं है। स्मार्ट सिटी का मतलब है कि जो सिटीजन यहाँ रह रहे हैं उनका जीवन कितना आसान हो गया है, वो है स्मार्ट शहर। अभी आप देख लो, लगातार चली रहा है कि थोड़ी सी बारिश हुई, रोड धस गया। अब क्यों हुआ, रोड पहले बन गई, उसके 3 मीटर 5 मीटर नीचे से सीवरेज सिस्टम गया, फिर सीवर सिस्टम गया, फिर उसके बाद से अंडरग्राउंड केबल होके गया, उसके नीचे से केबल वाले ट्रेंच को कहीं उन्होंने सीवर को पंचर कर दिया, सीवर पंचर हुआ, अंडरग्राउंड पोरिंग चालू हो गई, और जैसे ही थोड़ा सा मिट्टी की मजबूती कम हुई, बारिश होता, अब सड़क धस गई। तो अब जो स्मार्ट रोडें बन रही हैं उसमें बिल्कुल जो है उनके अलग से वायरिंग की ट्रेंच दी जा रही है, ओवरहेड वायर्स खत्म कर दिए गए, और जो है साथ साथ जो है स्टॉर्म वाटर का ड्रेन बना रहे हैं, सीवरेज सिस्टम को उसी के अनुसार कि एक बार आपको हम पैसे दे दें तो फिर दोबारा सड़क तोड़नी न पड़े। पता चला कि बहुत अच्छी सड़क आपने बना दिया और उसके एक साल बाद कोई प्रोजेक्ट आ गया कि साहब हर घर को हमको रसोई गैस का कनेक्शन देना है, तो फिर वो रोड काटने जाए, तो अगर हमने ट्रेंच पहले ही दे दी है तो आप उसी के थ्रू ले जाओ, ये है स्मार्ट रोड। अच्छा, इससे हो क्या रहा है, इससे हमारा जीवन आसान।
2: जी, इस इनिशिएटिव से आसान तो हो जाएगी लाइफ, और ये खबर सुन के जो आपने बताया है इसके जरिए लोगों के चेहरे पर एक खुशी जरूर आई होगी। वैसे खुशी की एक और बात और ये भी है दोस्तों कि स्मार्ट सिटी के अंदर नेशनल रैंकिंग में अपना लखनऊ 44वें नंबर से 3रे नंबर पर पहुंच गया है, एक बड़ा जंप है सर, ये कैसे संभव हुआ?
3: देखिये, ये तो एक मतलब बहुत ही बड़ा चैलेंज था कि लखनऊ हमारा 50 लाख की आबादी का शहर है, संसाधन है, लखनऊ हमारे उत्तर प्रदेश की कैपिटल है, हम 44 पे स्टैंड कर रहे हैं। तो उसमें जब मेरी नियुक्ति हुई, हमारे म्यूनिसिपल कमिश्नर इंद्रजीत सिंह साहब थे, मेयर सुषमा खरपलाल जी आई, तो हम लोगों ने बैठ के इस बात पे चर्चा किया, तो ये देखा गया कि सबसे बड़ा हर्डल ये था कि हम कूड़े को जनता से जोर जबरदस्ती करके सेग्रीगेट तो करा ले रहे हैं, लेकिन हमारे पास प्रोसेसिंग की स्थिति ही नहीं थी, पैसा भी नहीं था, मन भी नहीं था, सोच भी नहीं थी, स्टाफ भी नहीं था। आप ये समझिए कि जहाँ पे 50-60 लाख टन कूड़ा इकट्ठा हो चुका हो, 20-30 लाख टन मेट्रिक टन कूड़ा जो है बिल्कुल अभी भी एग्जिस्ट कर रहा हो, वहाँ के लोकल एरिया की स्थिति क्या होगी, और कूड़े की हाइट 25 मीटर, और 25 मीटर का कूड़ा का ढेर, एक गाड़ी कूड़ा खाड़ी करने के लिए हमको 5 या 6 पोकलैंडे लगानी पड़ती थी, रेगुलर 24 आवर काम करती थी, तब एक गाड़ी कूड़ा हम खाली करा के। आप ये समझिए कि कूड़े से जो पानी निकलता है उसको लीचेट बोलते हैं,

0: इंटरनेशनल लैंग्वेज है ये, मतलब वर्ड है, और लीचेट इज वेरी मतलब डेंजरस, मतलब कार्सिनोजेनिक, यानी कि आप समझिए कि उससे मतलब कैंसर तो एक छोटी बीमारी है, और बड़ी बड़ी बीमारियां उससे होती हैं, वो पूरे कैंपस में फैला हुआ था। वहाँ के जो 8 गांव के रहने वाले 8 से 10 हजार लोग हैं, वो आए दिन वहाँ पे धरना प्रदर्शन, हम लोग की गाड़ी अगर रात में कभी देख लिया कि लाल पीली बत्ती जलती हुई कोई गाड़ी आ गई है तो लोग घेराव करते थे। तो ये तीनों अधिकारियों ने मिलकर जब इस बात पे चर्चा करनी शुरू की, तो इस पे हमने स्ट्रेटजी बनाई। सबसे पहले आपने लिगेसी वेस्ट को प्रोसेस करना चालू किया। लिगेसी वेस्ट की साइट भी हमारे पास 2 जगहें थी। एक जगह जब भी आपसे अभी चर्चा हो रही थी, आपने बताया कि जहाँ पे अटल स्मृति उपवन बन गया है वहाँ पे,
1: बहुत ही शानदार था। पहले मैं देखती थी कि कितने ऊंचे ऊंचे वहां पर पहाड़ थे गंदगी के, और वो अब साफ होकर के इतना खूबसूरत दिखाई देता है।
0: आपने देख लिया।
1: जी
0: और
1: जी
0: वो जगह ऐसी थी कि वहां पे सारे जितने इलीगल काम होते थे सब वहां होते थे, छिनैती, डकैती, दारू पीने का अड्डा था दिन में, रात में लोग मतलब उधर से बाईपास करके परिवार के लोग निकलते नहीं थे वहां। आज की डेट में हमारा सबसे प्राइम रोड है, और मतलब इधर पिक्चरों की शूटिंग करने लोग वहां पे आ रहे हैं, एनओसी लेने आ रहे हैं। तो वहां पे 6.5 लाख मेट्रिक टन ही था, उसको साफ किया, साफ करके एलडीओ को दिया कि आप बनाइए इस पे, आप देखिए उन्होंने बढ़िया सुंदर बना दिया है। फिर दूसरा हम ये लगे, हमारा जहाँ पे प्रोसेसिंग प्लांट है सिवरी का, सिवरी वाले प्लांट पे करके दो चीजों का चैलेंज था कि एक तो लीगेसी वेस्ट को मुझे खत्म करना था हम लोगों को, और दूसरा जो रोज का कूड़ा जा रहा है उसके लिए भी रोज का रोज प्रोसेस करने का इंतजाम करना था। ये बड़ा चैलेंज था, सरकार ने भी हमारी बहुत मदद की, हमको इसके लिए फंड किया, हमने अपनी गैप एनालिसिस भी की कि हम पीछे कहाँ पे हैं रैंकिंग में। तो उसमें निकल के ये आया कि सबसे पहले हमको लीगेसी वेस्ट खत्म करना है। आपको विश्वास नहीं होगा, अभी आप हमारे स्क्रीन पे देख रहे हैं, हमारा ये प्लांट है, पुराना कूड़ा बचा हुआ जो आगे खाली हो गए वहाँ पे फ्रेश वेस्ट के प्लांट ये लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे रोज का कूड़ा जो आप दे रही हैं रोज का रोज वहाँ प्रोसेस हो रहा है, और जो लीगेसी वेस्ट था हमको 20 लाख मेट्रिक टन एक पैच मिला था, इसमें 16.5 लाख मेट्रिक टन आज की डेट में हम समाप्त कर चुके हैं। उसी से जो लैंड रिक्लेम हुई है उसी में फ्रेश वेस्ट का प्लांट लगाया है।
1: जिस तरह से कूड़ा निस्सारण की जो प्रक्रिया होती है वो और आसान हो सके, जो भी चाहे कूड़ा घर घर जाके लेने वाले हों या फिर प्रोसेसिंग का जो भी पूरा प्रोसेस होता है, उसमें जो आम नागरिक की क्या छोटी छोटी चीजें हैं जो वो अगर ध्यान रख लें तो एक बड़ी मदद हो सकती है स्मार्ट सिटी को स्मार्ट बनाए रखने के लिए और कूड़ा निस्तारण के लिए।
0: मैम देखिए, जैसे अभी आप देख रहे हो कि कई बार अभी भी शिकायतें आती हैं। सबसे पहले आपके घर से अगर कूड़ा हम उठाते हैं तो उसको बोलते हैं प्राइमरी कलेक्शन। प्राइमरी कलेक्शन में हमारे पास कूड़ा प्रोसेसिंग के दो तरीके के प्लांट लगे होते हैं, एक वेट वेस्ट के प्रोसेसिंग का, एक ड्राई वेस्ट के प्रोसेसिंग का, तीसरा एक प्लांट है मिक्स वेस्ट का ही। अभी हम मिक्स वेस्ट वाले से हम इस समस्या का कर रहे हैं क्योंकि हमारी जनता अभी हमको पूरा कोऑपरेट नहीं कर रही है। अच्छा, हम उन्हें बहुत जबरदस्ती भी नहीं कर रहे हैं कि नहीं आप करिए, क्योंकि हमारा भी वेस्ट वेस्ट का प्लांट अंडर प्रोसीजर है। जनता से हमें ये अपेक्षा है कि अभी 2 महीने में हमारा वेट वेस्ट का प्लांट चालू हो जाएगा, कि अब हमें 4 लेवल के सेग्रीगेशन चाहिए होंगे आगे फ्यूचर में, ड्राई वेस्ट, वेट वेस्ट, हैजार्डस वेस्ट, सैनिटरी पैड्स वगैरह, और फिर ई वेस्ट। चारों वेस्ट की प्रोसेसिंग अलग अलग होनी है, तो चारों हमको चार सेग्रीगेटेड उसमें चाहिए। हमारी जो गाड़ियां भी जाएंगी उसमें 4 कंपार्टमेंट रहेंगे। सबसे बड़ी बात, अभी हम ट्रांसफर स्टेशन बनाने जा रहे हैं, जो कि अभी आप देख रहे हो सड़कों किनारे कूड़ा गिरता है, फिर हमारे जेसीबी से उसको हम लोड करते हैं, लेके जाते हैं। ये स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये कॉन्सेप्ट तो ऐसे ही है, ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट है। अभी अगले 3 महीनों में आपको ये दिखेगा कि वहां पे बिल्कुल ट्रांसफर स्टेशन की बिल्डिंग दिखेगी आपको, जो कि बिल्कुल तैयार है, फैब्रिकेटेड होती है तो बहुत टाइम नहीं लगना है। फिर उसके अंदर पीसीटीएस रहेगा, पीसीटीएस है पोर्टेबल कॉम्पैक्ट ट्रांसपोर्ट, मतलब जिसमें एक कैप्सूल जैसा है, छोटी गाड़ियों से कूड़ा आएगा वो अपने आप में ही उस कूड़े को कंप्रेस करके कैप्सूल के अंदर भर लेगी,
1: ऑटोमेटिक
0: ऑटोमेटिक, पूरा इलेक्ट्रिकल है, बिल्कुल मैनुअल नहीं, और बिल्कुल चारों तरफ से ढका हुआ। ये 3 से 4 महीने में पूरा कॉन्सेप्ट आपको दिखने लगेगा, और शहर में जो ये मतलब कूड़ा कपड़ा इधर उधर उड़ता हुआ गाड़ियों से जाता था वो सब बदल।
1: और क्या कुछ चीजें हैं जिनका ध्यान रखना ही चाहिए?
0: देखिए, पहले लिटरिंग बंद करें, लिटरिंग का मतलब कहीं चल रहे हैं गाड़ी में से कूड़ा उठाया और फेंक दिया सड़क पे, ये मतलब एक
1: बेसिक सेंस
0: बेसिक सेंस है। घरों के सामने ड्रेन, जैसे बारिश में पानी भर जाता है, इतना ऊंचा रैंप ना बना ले कि हमारी नाली ढक जाए, हमको क्लीनिंग में आसानी ना हो, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्योंकि सब जितने भी लोग अपना घर बनवाते हैं रोड से 2 फीट 3 फीट ऊपर बनाया तो उसको रैंप से जोड़ते हैं, सब पता है कि रोड के बाद नाली होती है, तो अल्टीमेटली रोड से वो कनेक्ट करते हैं तो नाली ढक देते हैं। इस पे मेरा विशेष जोर है कि कृपया लोग रैंप बनाएं तो नाली को न ढककें, अगर नाली को ढकने की नौबत आ रही है तो उसको ओपन रखने का प्रोविजन रखें, चाहे लोहे की ग्रिल डाल दें या कुछ भी डाल दें। फिर आपका जो है ट्रैफिक सेंस के बारे में बताया, कूड़े के सेग्रीगेशन में हमारी मदद करें। अच्छा, मैं देखता हूँ हमारे इंडिया के लोग जैसे बाहर जाते हैं मतलब वो बिहेवियर उस कंट्री के अनुसार करने लगते हैं, तो हमारा ये निवेदन है कि अपनी कंट्री में भी उसी तरीके का बिहेवियर रखें।
1: ये बहुत अच्छी बात आपने कही है कि हम दूसरे के घर जाते हैं तो उनके तरीके से रहना हम शुरू कर
0: शुरू कर
1: देते हैं,
0: देते हैं।
1: लेकिन अपने घर में हम कैसे
0: हाँ
1: भी रहते हैं
0: हाँ
1: और उससे कहीं ना कहीं खुद नुकसान अपने घर का है। और
0: यस
1: दोस्तों, ये बात
0: यस
1: आपके उस 4 दीवारी वाले घर के लिए नहीं है, ये हमारे देश के रूप में जो हमारा भारत हमारा घर है उसके लिए है, इसलिए हमारी भूमिका बहुत जरूरी है। एंड सर, आप

0: आपने आज बहुत सारी चीजें बताई हैं, फ्यूचर प्लान्स पे भी आपने बताया, तो एज अ नागरिक हम और हमारे श्रोता मिल करके अपनी अपनी भूमिका सुनिश्चित करने का प्रयास जरूर करेंगे, मुझे लगता है। थैंक यू सो मच इस बातचीत के लिए।
1: थैंक यू।
0: दोस्तों, ट्रैफिक के लिए नागरिकों की जो जरूरी भूमिका है वो जमीनी स्तर पर किस तरह से दिखाई दे रही है या क्या कुछ ध्यान भी रखने की जरूरत है, इसको बेहतर समझने के लिए आइए अब बात करते हैं हम लखनऊ के सबसे बिजी चौराहे हजरतगंज के ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर विजय कुमार मिश्रा जी से। बहुत बहुत स्वागत है आपका।
2: धन्यवाद।
3: काफी कुछ चीजें स्मार्ट सिटी के तहत ट्रैफिक कंट्रोल डिपार्टमेंट में चेंज की गई है, तो पहले एक झलकी तो ये बताइए क्या क्या बदल चुका है अब।
2: ट्रैफिक पहले की अपेक्षा बहुत बदल चुका है। लखनऊ में सारे चौराहों पे सिग्नल्स की व्यवस्था है, सब तरफ कैमरे लगे हुए हैं। जिन जो लोग यातायात को नहीं मान रहे हैं उनका कैमरे द्वारा चालान किया जा रहा है, और सबसे बड़ी चीज है कि यातायात सुचारू रूप से चलता रहे, इसके लिए हम लोगों ने पूरी व्यवस्था कर रखी है। सभी जगह यातायात पुलिसकर्मी मौजूद है, वन वे का पालन करवाया जा रहा है। तो आउटर रिंग रोड ये बन गई, वो सबसे बड़ी चीज है कि हम बड़े वाहन रुक नहीं रहे कहीं भी, छोटे वाहन सुचारू रूप से चलते रहे, किसी को कोई दिक्कत ना हो।
3: तो हर दिन आपका लोगों से वावस्ता होता है, लोग आपको कैसे दिखते हैं, जितना स्मार्ट टेक्नोलॉजी हो गई है क्या लोग हो गए हैं?
2: लोगों को अंतर प्रेरित होने की जरूरत है कि कहीं आप फनवे पे तो नहीं जा रहे हैं या नो एंट्री में तो नहीं जा रहे हैं। ये सब चीजें जब आप स्वतः लागू करेंगे तभी ट्रैफिक सुचारू से चल पाएगा।
3: बिल्कुल। और जब ये चीज कोई ट्रैफिक पुलिस इंस्पेक्टर या कोई भी कर्मचारी बता रहा है तो अच्छे से सुने, बिना अपना पारा बढ़ाए उस चीज को फॉलो करें, ये भी
2: सबसे बड़ी चीज है। यहाँ लोगों के अंदर ईगो बहुत ज्यादा है, किसी को समझाने की कोशिश करो उसको लगता है कि हमको समझा रहे हैं, हमारा लेवल इनसे ज्यादा है या हमको समझा रहे हैं। तो इस चीज को अगर हमको लगता है कहीं हमको छोटे छोटा बच्चा भी समझा रहा है, हमको जरूरत है उस चीज को सीखने की, तो उसमें बुराई नहीं होनी चाहिए, हमको सीखना चाहिए। सीखने कोई उम्र नहीं होती है, हमेशा सीखते रहना चाहिए, फॉलो करना पड़ेगा।
3: क्या मोटा मोटा पांच चीजें जो हर नागरिक को फॉलो ही करना चाहिए सड़क पे चलते समय?
2: देखिए, सबसे बड़ी चीज है दुर्घटना के चार प्रमुख कारण है जो शहरों में दुर्घटना हो रही है। नशा, नींद, तेज रफ्तार और सिग्नल का पालन न करना, इनकी वजह से अक्सर ट्रैफिक दुर्घटना हो रही है। तो नशा करके कभी वाहन चलाना ही नहीं चाहिए। फिर अगर आपको नींद आ रही है आप कहीं आराम कर लीजिए, उसमें गाड़ी मत चलाइए और गाड़ी को लिमिट में रखिए। तेज रफ्तार में गाड़ी बिल्कुल भी मत चलाइए। तेज रफ्तार में गाड़ी चलाने का अर्थ है कि दुर्घटना होनी ही होनी है। अभी एक्सप्रेस वे में लगातार एक्सीडेंट हो रहा है केवल तेज रफ्तार की वजह से। आजकल बच्चों में देखा जा रहा है स्टंट करने का जुनून, पेरेंट्स को चाहिए कि बच्चों को समझाएं इससे दुर्घटना होगी और जान भी जा सकती है बच्चों की, ये इनकी पेरेंट्स की जिम्मेदारी होनी चाहिए। खैर, नाबालिग बच्चों को तो उनको गाड़ी देनी ही नहीं चाहिए बिल्कुल। ये स्वतः जागरूक हो तभी अच्छा ट्रैफिक चल पाएगा।
3: बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वक्त दिया और इतनी सारी चीजें बताई हैं। बस उम्मीद है कि लोग उसको फॉलो करें और एक स्मार्ट नागरिक होने का अपना पहचान जग जाहिर करें।
2: धन्यवाद
3: सो मच टाइम देने के लिए। लखनऊ के सबसे बिजी चौराहे में से एक हजरतगंज पर ही मैं खड़ी हूँ। चौराहे पर देखा कि भाई साहब जैसे ही सिग्नल पर आए तुरंत ही इन्होंने अपनी गाड़ी बंद कर दी। पॉल्यूशन में भी बचत भाई साहब और ईंधन भी बचत, तो ये आपकी स्मार्टनेस है या टेक्नोलॉजी और आपकी दोनों की स्मार्टनेस है?
4: मैम थैंक यू। एक्चुअली हमारा जो फीचर्स है अभी गाड़ी का वो I3S का जो फंक्शन है मेन काम उसका है। जैसे ही हम ट्रैफिक में आते हैं गियर वगैरह सारे डिस्कनेक्ट कर देते हैं तो वो ऑटोमेटिक गाड़ी बंद हो जाती है 5 सेकंड बाद।
3: अरे वाह।
4: और जैसे ही हम उसको क्लच में लेते हैं तो गाड़ी ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाती है।
3: अच्छा।
4: ये फीचर्स कंपनियों के द्वारा हमें क्या कहते हैं लॉन्च की गई है।
3: तो ये तो बहुत अच्छी बात है, ये सब लोगों को पता होगी?
4: बहुत कम लोगों को पता रहता है।
3: अच्छा, ये नहीं पता है, तब तो बहुत अच्छी बात है कि आपके जरिए हमारे जो श्रोता सुन रहे हैं वो अब अपनी गाड़ी में ये फीचर चेक करेंगे।
4: ये 16-17 से स्टार्ट हो गया था ये।
3: अच्छा, मतलब टेक्नोलॉजी है लेकिन उपयोग लोग नहीं कर रहे हैं। अब आपने बता दिया है, देश भर से लोग सुन रहे हैं तो आप सुन करके अप्लाई करेंगे। लेकिन ये टेक्नोलॉजी से पहले भी क्या आप ये करते थे?
4: बिल्कुल, मैं करता था, जब से मैं बाइक लिया हूं तब से ये करता हूं।
3: अच्छा, और क्या क्या करते हैं शहर को बेहतर या स्मार्ट बनाए रखने के लिए, साफ सफाई को लेकर के या ट्रैफिक नियम फॉलो करने को लेकर के?
4: जी, ट्रैफिक नियम को फॉलो करने के लिए हम लोग जहाँ पे भी रेड सिग्नल होता है वहाँ बाइक तुरंत होल्ड कर देते हैं।
3: और हेलमेट खैर आप लगा के ही रखे हैं?
4: टाइम रखते हैं। हेलमेट का अच्छा फीचर्स ये है कि एक तो आपका जो फेस है वो खराब नहीं होगा, और दूसरा नंबर यहाँ आपके जो बाल है वो भी नहीं खराब होंगे। फिर आप ड्राइविंग आप कैसे भी करें सामने से जो धूल वगैरह कीड़े वगैरह आते हैं ये भी नहीं लगेगा आपको। और आपका सबसे प्लस पॉइंट इसमें ये है कभी भी अगर ऐसा हो ना, कभी अगर होता भी एक्सीडेंट तो आपका सर जो है इसमें पूरा पूरा सेफ रहता है। आगे मेरे साथ ऐसा हो चुका है एक्सीडेंट में, मैं कई बार सेव हो चुका हूँ।
3: बहुत अच्छी बात आपने कही। और एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपने कही, लोग अक्सर हेलमेट इसलिए नहीं लगाते कि बाल खराब हो जाएंगे, लेकिन आपने बताया कि बाल सही होंगे। सही बात है, धूल मिट्टी प्रदूषण से बचेंगे, कुछ समय के लिए पसीना होगा लेकिन वॉश करके साफ हो गए।
4: आप ज्यादा नहीं, अगर आप इससे 250 किलोमीटर अगर बाइक आप चलाते हैं विदाउट हेलमेट तो आप रुकने के बाद देखेंगे आपकी आंख रेड हो जाएगी।

0: सही बात
1: अगर आप हेलमेट लगा के ड्राइव कर रहे हैं तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ आपके इतना छोड़ के जो भी पोर्शन नीचे होगा वही सब होगा।
0: बहुत अच्छी बात। नाम क्या है आपका?
1: राजेंद्र।
0: राजेंद्र जी थे हमारे साथ और इन्होंने बताया कि किस तरह से एक स्मार्ट सिटी के स्मार्ट नागरिक होने के नाते ये जब भी सड़क पर चलते हैं तो सारी नियम कानून फॉलो करते हैं और इस तरह से एक स्मार्ट सिटी के स्मार्ट नागरिक के रूप में जाने जाते हैं।
2: दोस्तों, स्मार्ट सिटी सिर्फ सरकार नहीं, हम सब मिलकर बनाते हैं। अगर हम खुद को स्मार्ट बना लें तो हमारी सिटी अपने आप धीरे धीरे स्मार्ट बन ही जाएगी। तो आइए संकल्प लें कि हम अपने सिटी को साफ, सुरक्षित और स्मार्ट बनाए रखने में अपना योगदान देंगे।

इस खबर, और ये खबर जुड़ी है हमारे प्रदेश के डेवलपमेंट से। हमारे प्रदेश का औद्योगिक शहर कानपुर, जिसे कई बड़ी सौगातें मिलने जा रही हैं। एक तो अभी बहुत जल्दी ही कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे के उद्घाटन की बारी आ रही है, ऑलमोस्ट तैयार है ही है। और इसी बीच शहर में तीन और मेगा प्रोजेक्ट्स पर बहुत तेज़ी से काम आगे बढ़ रहा है। इनमें से एक तो है कानपुर मेट्रो के कानपुर सेंट्रल से नौबस्ता सेक्शन का उद्घाटन। लगभग 998 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले रामा देवी से गोल चौराहा एलिवेटेड कॉरिडोर का भूमि पूजन, और करीब 571 करोड़ रुपए की लागत वाले कानपुर ट्रांस गंगा सिटी फोर लेन गंगा ब्रिज परियोजना की शुरुआत भी शामिल है। इन परियोजनाओं से दोस्तों स्थानीय लोगों को जाम से राहत मिलेगी, तेज और सुरक्षित सफर होगा, बेहतर मेट्रो कनेक्टिविटी और ट्रांस गंगा सिटी और औद्योगिक क्षेत्रों तक आसान पहुंच मिलेगी। साथ ही व्यापार, निवेश और रोजगार के नए अवसर भी बढ़ने की उम्मीद तो है ही। अच्छा, औद्योगिक शहर के बाद अगर हम बात करें राजधानी की, तो अब राजधानी यानी लखनऊ टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नए दौर में शामिल होने जा रही है। बहुत तेज़ी से आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इस प्रोजेक्ट की बात अगर हम करें तो जो लखनऊ का एआई सिटी प्रोजेक्ट है, उसको लेकर के एक बड़ा ऐलान अभी हाल ही में हुआ है, जिसमें ये बताया गया है कि बहुत ही जो महत्वाकांक्षी परियोजना है उसके डेवलपर का चयन ऑलमोस्ट तय माना जा चुका है। एनसीआर की एक बड़ी रियल एस्टेट कंपनियों की बात यहाँ पर बताई गई है। तो ये जो प्रोजेक्ट है ज़मीन पर जैसे उतरेगा, इससे युवाओं के लिए तमाम तरह का अवसर मिलेगा। डेटा साइंस, आईटी, स्टार्टअप और रिसर्च के बड़े अवसर मिलेंगे, जो प्रशासनिक राजधानी को टेक्नोलॉजी और इनोवेशन का हब बना देंगे। फिलहाल समय कह रहा है हमसे, घड़ी की सुइयां कह रही है कि आज के कार्यक्रम से आरती अब लो अनुमति, तो दीजिए इजाजत। नमस्ते, जय हिंद।

0: अभी आप सुन रहे थे हमारा कार्यक्रम नई उड़ान। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ का प्रसारण मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्ज के साथ साथ न्यूज ऑन AIR ऐप और DTH पर भी। लीजिए अब सुनिए कुछ खोए हुए व्यक्तियों से संबंधित सूचनाएं। ओम प्रकाश वर्मा पुत्र मेवालाल वर्मा निवासी सिंगारी पुरवा डुडाव थाना मोतीगंज गोंडा से हमें सूचित करते हैं कि अंग्रेज, जिनकी उम्र है 20 वर्ष, कद 5 फीट 5 इंच, रंग सांवला, चेहरा गोल है, ये 20 मार्च 2026 से कहीं लापता हैं। अंग्रेज मानसिक रूप से कमजोर हैं और जिस समय ये लापता हुए इन्होंने पैंट शर्ट और ऊपर काली जैकेट पहनी हुई थी। अंग्रेज के बारे में कोई भी जानकारी आप इस मोबाइल नंबर पर दे सकते हैं 7081559082। मोबाइल नंबर एक बार फिर मिला लें 7081559082। एक और प्राप्त सूचना के अनुसार कुमारी जानवी पुत्री गिरीश चंद्र निवासी ग्राम व पोस्ट जोत थाना बेवर मैनपुरी, ये 20 जून 2025 रात्रि 11:50 से घर से बिना बताए कहीं चली गई हैं। जानवी की उम्र 17 वर्ष, कद 5 फीट 2 इंच, रंग गोरा, शरीर सामान्य है। जिस समय ये घर से निकली इन्होंने सलवार सूट और पैरों में बाजारू चप्पल पहनी हुई थी। इनके बारे में कोई भी जानकारी आप इस पते पर दे सकते हैं थाना प्रभारी थाना बेवर मैनपुरी। खोए हुए व्यक्तियों से संबंधित सूचनाएं समाप्त हुई।
1: अब वक्त है उड़ान का, अब वक्त है पहचान का, अब वक्त है अपने हुनर को आवाज देने का। जुड़िए नई उड़ान से जहां सपनों को मिलता है आगाज और मेहनत को मिलती है आवाज।
2: तुमने दी आवाज लो मैं आ गया।
1: हर शाम 5:45 से 6:15 तक सिर्फ आकाशवाणी लखनऊ पर नई उड़ान, आगाज हर हुनर का, आवाज हर मेहनत की।

0: फिल्म आकाश के रोशन सितारों की महफिल आज के मेहमान विविध भारती पर हर बुधवार शाम 4 बजे पिटारा में सुनिए। रहिए कहीं भी, सुनते रहिए विविध भारती। विविध भारती, आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
2: 8700001-4242।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
5: आइए जुड़िए विज्ञान जगत के साथ, जहां हर जटिल सवाल का जवाब मिलता है रोचक अंदाज में। क्या है आपके जीवन में विज्ञान की भूमिका, कैसे बदल रही है तकनीक आपकी दुनिया, जानिए विशेषज्ञों से, सुनिए रोचक चर्चाएं और पाइए विज्ञान से जुड़े ताजा अपडेट्स। तो सुनना न भूलें
6: विज्ञान जगत हर शनिवार शाम 7:30 बजे आकाशवाणी लखनऊ पर।
7: हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:20 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार।

0: वाचकः पुनीत त्रिपाठी। आदौ मुख्य वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोरे च ओस्लो नगरे प्रतिबंधित प्रतिनिधिस्तरीय वार्तालापं कृतवन्तौ। कांग्रेस नेता वीडी सतीशनः अद्य प्रातः तिरुवनन्तपुरम नगरस्य केन्द्रीय क्रीडांगणे आयोजिते भव्य समारोहे केरलम राज्यस्य नूतन मुख्यमंत्री रूपेण शपथवचनं स्वीकृतवान्। पश्चिमबंग सर्वकारेण स्वस्य निर्वाचनस्य प्रतिज्ञानुसारं कथित संस्थागत भ्रष्टाचारस्य महिला विरुद्धम् अत्याचारस्य च अन्वेषणार्थं द्वौ अन्वेषणायोगौ निर्मितौ। स्वास्थ्य परामर्शपत्रे उष्णतरंगस्य स्थितिं निवारयितुं आयुर्वेदादि विविध आयुष प्रणाल्याः पारंपरिक स्वास्थ्य निवारक उपायाः अपि समाविष्टाः सन्ति। अपि च आईपीएल क्रिकेट क्रीडायाम् अद्य चेन्नई सुपर किंग्स दलं एम ए चिदंबरम क्रीडांगणे सनराइजर्स हैदराबाद दलं सम्मुखीकरिष्यति। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोरे च ओस्लो नगरे प्रतिबंधित प्रतिनिधिस्तरीय वार्तालापं कृतवन्तौ। स्वक्षोर्जायाः नील अर्थव्यवस्थायाः हरित संक्रमणस्य च क्षेत्रेषु सहकारं वर्धयितुं महत्वपूर्णं सोपानं लक्ष्यीकृत्य भारत नॉर्वे सम्बन्धं हरित सामरिक सहभागित्वं प्रति उन्नतीकर्तुं उभावपि नेतारौ सहमतौ अभवताम्।
1: आज हम भारत नॉर्वे संबंधों को एक ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप दे रहे हैं। इस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप से क्लीन एनर्जी से लेकर क्लाइमेट रेजिलियंस, ब्लू इकोनॉमी, उससे लेकर के ग्रीन शिपिंग, हर क्षेत्र में भारत की स्केल, स्पीड और टैलेंट को नॉर्वे की टेक्नोलॉजी और कैपिटल के साथ जोड़कर हमारी कंपनीज ग्लोबल सॉल्यूशंस डेवलप करेगी।
0: वार्तालापावधौ उभौ नेतारौ द्वैपाक्षिक सम्बन्धानां सम्पूर्ण क्षेत्रस्य समीक्षाम् अकुरुताम्।
1: भारत और यूरोप अपने संबंधों के एक नए स्वर्णिम युग में प्रवेश कर रहे हैं। पिछले वर्ष भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के एक ऐतिहासिक ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया। यह एग्रीमेंट भारत और नॉर्वे के बीच शेयर्ड प्रोग्रेस

0: प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी सुनिश्चित करने का ब्लूप्रिंट है। इस एग्रीमेंट में अगले 15 वर्ष में भारत में 100 बिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट और 1 मिलियन जॉब्स क्रिएट करने का लक्ष्य है।
1: प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना अद्य स्वीडन देशस्य द्विदिवसीया यात्रा समापिता। स्वीडन देशस्य प्रवासे अनेकानि महत्वपूर्णानि परिणामानि प्राप्तानि, येन द्वैपाक्षिकसम्बन्धेषु नूतना गतिः प्राप्ता इति श्रीमोदिना सामाजिकान्तर्जालीयपटले उक्तम्। सः अवदत् यत् तेषां द्वैपाक्षिक उपबन्धान् व्यूहात्मक सहभागित्वं प्रति उन्नतीकरणात् आरभ्य संयुक्त नवान्वेषण सहभागित्वम् इत्यस्य द्वितीयो भागः अथ भारत स्वीडन प्रौद्योगिकी कृत्रिमबुद्धिमत्ता मार्गस्य आरम्भात् आरभ्य आगामिषु पञ्चवर्षेषु द्वैपाक्षिक व्यापारं द्विगुणीकरणस्य लक्ष्यम् अभवदिति। सः स्वीडन देशस्य जनेभ्यः स्वीडन देशस्य सर्वकाराय प्रधानमन्त्री उल्फ क्रिस्टर्सन इत्यस्मै च स्नेहाभिवर्षणाय धन्यवादभावान् प्रायच्छत्। अग्रिमेषु पञ्चवर्षेषु द्वैपाक्षिक आर्थिक विनिमयं द्विगुणीकर्तुं मेक इन इंडिया मेड विद स्वीडन

0: आगामिषु पञ्चवर्षेषु द्वैपाक्षिक व्यापारं द्विगुणीकरणस्य लक्ष्यम् अभवदिति। सः स्वीडन देशस्य जनेभ्यः स्वीडन देशस्य सर्वकाराय प्रधानमन्त्री उल्फ क्रिस्टर्सन इत्यस्मै च स्नेहाभिवर्षणाय धन्यवादभावान् प्रायच्छत्। अग्रिमेषु पञ्चवर्षेषु द्वैपाक्षिक आर्थिक विनिमयं द्विगुणीकर्तुं मेक इन इण्डिया, मेड विद स्वीडन इत्येतयोश्च उपक्रमयोः विशेषतः हरित हाइड्रोजन, सेमीकंडक्टर्स, उन्नत विनिर्माणम् इत्यादिषु क्षेत्रेषु सहकारं सुदृढीकर्तुं समग्र मार्गचित्रस्य लक्ष्यम् अस्ति इति सः प्रावोचत्। कांग्रेस दलस्य वीडी सदीशनः अद्य प्रातः तिरुवनन्तपुरम नगरस्य केन्द्रीय क्रीडांगणे आयोजिते भव्य समारोहे केरलम राज्यस्य नूतन मुख्यमंत्री रूपेण शपथवचनं स्वीकृतवान्। राज्यपालः राजेन्द्रन विश्वनाथ आर्लेकरः श्रीसतीशनं पदस्य गोपनीयतायाः च शपथं कारितवान्। मुख्यमन्त्रिणा सह एकविंशतिः सदस्याः मन्त्रिपरिषदः कार्यभारं स्वीकृतवन्तः। अस्मिन् कार्यक्रमे कांग्रेस दलस्य अध्यक्षः मल्लिकार्जुन खड्गे, कांग्रेस दलस्य नेता राहुल गांधी, कर्णाटकस्य मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, तेलंगाना राज्यस्य मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, हिमाचल प्रदेशस्य मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुखू, केरलस्य भाजपा पक्षस्य राज्याध्यक्षः राजीव चंद्रशेखरादयः नेतारः उपस्थिताः आसन्। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन एआईआर चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। पश्चिमबङ्गसर्वकारेण स्वस्य निर्वाचनस्य प्रतिज्ञानुसारं कथितसंस्थागत भ्रष्टाचारस्य, महिलाविरुद्धम् अत्याचारस्य च अन्वेषणार्थं द्वौ अन्वेषण आयोगौ निर्मितौ। मुख्यमंत्री सुवेन्दु अधिकारी अद्य राज्यमंत्रिमण्डलस्य अनुमोदनानन्तरम् अस्य निर्णयस्य घोषणां कृतवान्। केन्द्रीय गृहसहकारिता च मन्त्री अमितशाह अद्य रायपुरे राज्यस्तरीय कार्यक्रमे अत्याधुनिक डायल 112 इति आपत्कालीन प्रतिक्रियावाहनानाम्, आधुनिक फॉरेंसिक मोबाइल यानानां च ध्वज प्रदर्शनपूर्वकं शुभारम्भं विहितवान्। राज्यस्य विभिन्नेषु मण्डलेषु नियोजनार्थम् अद्य आहत्य 400 नूतनोन्नतापत्कालिक वाहनानि लोकार्पितम्। अस्मिन् अवसरे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई, उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा, छत्तीसगढ़ विधानसभाध्यक्षः रमण सिंहश्च उपस्थिताः आसन्। सर्वकारः अवदत् यत् देशे तैलेन्धन शोधनागाराणि सामान्यरूपेण कार्यं कुर्वन्ति। भारते च वर्तमानिक पश्चिमेशिया संकटेन आयात बाधायाः अनन्तरम् अपि पर्याप्तानि अशोधित तैलेन्धन भण्डाराणि सन्ति इति। पश्चिमेशियायाः साम्प्रतिक स्थितिविषये अद्य नवदिल्ली नगरे अन्तर्मन्त्रालयीयं विवरणं प्रायच्छन् पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मन्त्रालयस्य संयुक्त सचिव पदासीना सुजाता शर्मा इत्येषा अवदत् यत् देशे पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, प्राकृतिक गैस इत्येतेषां पर्याप्त भण्डारम् अस्ति इति।
1: हमारी रिफाइनरीज नॉर्मल ऑपरेशन पर है और हमारे पास सफिशिएंट क्रूड इन्वेंट्रीज हैं, पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और नेचुरल गैस के सफिशिएंट स्टॉक्स हैं और किसी भी एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप पर या रिटेल आउटलेट पर ड्राई आउट नहीं है, लेकिन कई जगह पर अफवाहों के चलते पैनिक बाइंग देखी जा रही है। ये भी देखा जा रहा है कि जो बल्क सेल था वो पंप सेल पर भी शिफ्ट हो रहा है।
0: आयुष मन्त्रालयः अद्य वर्तमान ग्रीष्मकालाय अत्यधिक उष्णतायाः सह उष्णतरङ्गस्य च विषये विस्तृतं सार्वजनिक स्वास्थ्य परामर्शं प्राकाशयत्। परामर्शत्वेन मन्त्रालयेन उक्तं यत् पर्याप्ततया जलग्रहणं, व्यस्ततायाम् अपि सूर्यप्रकाशस्य प्रत्यक्ष संसर्गात् निवारणं, विद्युत्श्लेष्यै समृद्धानां ऋतुकालिक फलानां द्रवाणां च सेवनं करणीयमिति प्राकाशयन्। स्वास्थ्य परामर्शपत्रे उष्णतरङ्गस्य स्थितिं निवारयितुम् आयुर्वेद, सिद्ध, योग, यूनानी, होमियोपैथी इत्यादीनां विविध आयुष प्रणाल्याः पारम्परिक स्वास्थ्य निवारक उपायाः अपि समाविष्टाः सन्ति। केन्द्रीय वाणिज्य उद्योग मन्त्री पीयूष गोयलः अवदत् यत् वैश्विक समस्याभिः सह अनिश्चिततासु अपि भारतं द्रुतगत्या प्रगतिं कुर्वदस्ति। अद्य नवदिल्ल्यां भारत व्यापार महोत्सवस्य अन्तर्जालीय पटलस्य उद्घाटने श्रीगोयलः अग्रे गन्तुम् उत्साहः कदापि न न्यूनीभवति तथा च सर्वे अविरामं कार्यं कुर्वन्तु इति उक्तवान्।
2: भारत का बना हुआ सामान, भारत से दी हुई सेवाएं और अधिक तेजी से आगे बढ़े। हम संतुष्ट ना हो कि हम विश्व की सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है, कभी संतुष्ट ना हो और आगे बड़ा छलांग लेने की सोच और क्या कर सकते हैं उसके लिए

0: समय हमें सोचते रहना पड़ेगा, काम करते रहना पड़ेगा, नई चीजों को आगे लेके जाना पड़ेगा।
1: केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा स्विट्जरलैंड देशस्य जिनोवा नगरे आयोजिते ऊनाशीतितमे विश्व स्वास्थ्य सभायाः अनन्तरं विश्व स्वास्थ्य संघटनस्य महानिदेशकेन सह मिलितवान्। सामाजिक पटले स्वास्थ्य मंत्रालयेन उक्तं यत् श्री नड्डाः पुनः दृढीकृतवान् यत् वैश्विक स्वास्थ्य समता परिवर्तयितुं भारतस्य प्रतिबद्धता अस्ति इति। रक्षामंत्री राजनाथ सिंह अद्य वियतनाम दक्षिण कोरिया देशयोः यात्रायामस्ति। सः वियतनाम देशस्य हनोई इत्यत्र सम्प्राप्तवान्। वियतनाम देशस्य प्रवासावधौ राजनाथ सिंह वियतनाम देशस्य राष्ट्रीय रक्षामंत्रिणा जनरल फॉन वॉन जियांग इत्यनेन सह द्वैपाक्षिकं वार्तालापं करिष्यति। सामाजिक अंतर्जालीय पटले मंत्री अवदत् यत् सः द्वैपाक्षिक संबंधानां व्याप्तिम् अधिकं विस्तारयितुम् उभयोः देशयोः भ्रमणार्थम् उत्सुकः अस्ति इति। सः अवदत् यत् सामरिक सैन्य सहयोगस्य गहनता, रक्षा औद्योगिक सहभागित्वस्य सुदृढीकरणं, समुद्रीय सहयोगस्य संवर्धनार्थं भारत प्रशांत क्षेत्रे शान्तेः स्थिरतायाः च प्रोत्साहनम् अस्य केन्द्रबिन्दुः भविष्यति। आईपीएल क्रिकेट क्रीडायाम् अद्य आतिथेय चेन्नई सुपर किंग्स दलम एमए चिदंबरम क्रीडांगणे सनराइजर्स हैदराबाद दलम सम्मुखीकरिष्यति। क्रीडायाः आरंभः सायं 7:30 भविष्यति इति वार्ताः।
2: आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है, लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम लोकायतन और खेती किसानी।

0: पंचो जय हिंद।
1: हिमांशु भैया,
0: हाँ रत्ना बहनी,
1: ये साइड तो अत्ता घाम होइरा कि जी के ना नहीं धूप में निकल जाओ तो लागत है खोपड़ी चटकी जात मालूम।
0: बिल्कुल बहनी, अगर पानी गलत से रखा है धूप में, यहाँ सोचो हाथ धो लो मुंह धो लो तो भैया लागत जले जाइए हो बिल्कुल।
1: हाँ मालूम देते से काई घूम जाए।
0: हाँ
1: तो
0: लेकिन
1: ऐके
0: साथ में बहनी, अब धूप से ने और लू से ने बचे खातिन थोड़े प्रयास हमका आपके यहाँ सबका करे के है,
1: बिल्कुल,
0: ताकि तनिक दिन की बात रहते हैं तो वही अगर सावधानी बरत लें तो हम अपने कहीं अपने घर परिवार के हैं सबका बीमारी से ने बचा सके थे।
1: बिल्कुल सही बात कहा। तो वही खास करके कहा जाता है कि दोपहर के 12 बजे के लमसम के समय ते लगाए के और सांझ के 4 बजे तक के समय तक ना बाहर निकलो, बहुत जरूरी ना हो तो।
0: बिल्कुल
1: और बहुत
0: बहने,
1: जरूरी है निकल है तो खोपड़ी झाँप के निकलो, टोपी या गमछा डारी के, और पानी साथ लेके चलो, घर से पी के चलो, खाली
0: हाँ।
1: पेट ना निकलो। काश की खाली पेट कहा जाता है, जो लू होता है वह लग जाते हैं और ठंड हो तो वह लग जाते हैं।
0: बिल्कुल बहनी, साथ है में यहाँ थोड़ा पहने वाढ़े थोड़ा ध्यान रखे है, ऐसा न हो बहुत चटक रंग के कपड़ा पहन लेन और जा रहे हैं तो वैसे गर्मी अतनी हुई रही तो वैसे और गर्मी लागी, तो हल्के कलर के कपड़ा पहने तो थोड़ा शरीर के यहाँ और आराम रहा
1: सही
0: था।
1: बात कहा तो कि सूती कपड़ा हो, हल्के हो और तनु ढील हो, मार तंग कपड़ा ना हो कि सांसों लेत ना बने।
0: साथ है में यहाँ थोड़ा खान पियन का भी ध्यान रखे के, जैसे आप अभय कहो ज्यादा ज्यादा तरल पदार्थ पिए, पानी की बोतल हमेशा साथ हम रखा है, अब यू नहीं बहुत ज्यादा चिकनाई वाली चीजें उल्टा सीधा चीजें खा रहे हैं इसी गर्मी में यहाँ, तो समझ लो जानबूझ के यहाँ बीमारी के यहाँ बुला रहे हैं।
1: सही बात है। तो बीमारी का न्योता ना दो, वही की बदे जो है अपन घर से संभर के निकलो, साथ में यहाँ सादा भोजन करो और
0: हाँ
1: हल्का करो, गरिष्ठ भोजन ना करो, ज्यादा ना करो। काहे इसकी पेट से ऊपर अगर तुम को खा ले हो तो गड़बड़ हो जाए मामला। और दूसर चीज है कि मामला गड़बड़ ना हो पावे, ये के खातिर अपने जो देश है और देश की सरकार है
0: हाँ
1: उन सबका यह प्रयास है कि हम पंच अपने हाथ से अपन कुछ कराई और जिसे हमारे देश के आगे बढ़ा पा रहे।
0: बिल्कुल बहनी, हमका लागत आप बात कर रही हो मेक इन इंडिया के। हाँ बहनी, तो मेक इन इंडिया जो है बहुत बढ़िया योजना है, पहल है, और जो है अहिमा कह रहे थे कि एक समय ऐसा रहा है कि जो है भारत में यहाँ बहुत सारी चीज़ें विदेश से ने, चाहे मोबाइल है या कोनो इलेक्ट्रॉनिक सामान है या और सारी चीज़ें हैं कि छोटी छोटी चीज़ें हमका दूसरे देशों से ने मंगावे पड़ती रहें। आज के समय में यहाँ अपन सरकार और जो अपन युवा मिलकर सब लोग मिलकर बढ़िया प्रयास से ने अच्छे उद्योग धंधा स्थापित कर रहे हैं, और आज अच्छी अच्छी चाहे मोबाइल कंपनी है, इलेक्ट्रॉनिक सामान है या बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अब अपने देश में है बन रही हैं।
1: सही बात है। वो अपने देश में बने से कईयों फायदा है। एक तो अपने देश के लोगों का रोजगार मिल रहा,
0: बिल्कुल बहनी,
1: दूसर

0: अपने देश में बन रही तो चीज सस्ती पड़ रही, बाहर से मंगावे में यहाँ महंगी पड़ जात रहा है।
1: बिल्कुल
0: तो ये सब फायदा है, इन सब फायदन का ध्यान रखत भाई हम बंच अपने देश का आगे बढ़ाए, मदद करी।
1: बिल्कुल
0: और
1: बहनी,
0: देखो मदद तबे कर सब कि भाई जब हम पंच स्वस्थ रहिबे,
1: हाँ
0: है ना।
1: बिल्कुल
0: वो
1: बिल्कुल
0: आजकल सबसे बड़ी समस्या का है कि छोट छोट बच्चा है, वो कहते हैं अरे हमार खोपड़ी पेराए रही तनिके देर में यहाँ।
1: हाँ सही बात है।
0: तो वह खोपड़ी पेराए रही, कबो कबो का होता है कि कोई कोई जने का तो देखे हैं कि कपड़े जो है खोपड़ी बांधे हैं मुरैठा कस के, ताकि
1: हाँ
0: तनिको जो है कहूँ से कुछ हो ना पावे और पहुड़े हैं अंधेरे में यहाँ।
1: बिल्कुल बहनी, कौनों तो कहा था कि भैया हमारा अधिक खोपड़ी पिरा रही और बहुत परेशान है भाई माँ।
0: और बहुत समस्या मालूम देते हैं। तो
1: हाँ
0: यू होत का है, हम पन सोचे थे कि ऐसे है कपड़े पिरा रहे या कोई बहाना मार रहे हैं, लेकिन कबो कबो यू कम बहाना नहीं होते, कोई ना कोई समस्या होते हैं।
1: बिल्कुल
0: तो यह समस्या कैसे है का है, इके बारे में बहुत जने कहे थे कि आधा सीसी कहा जाता है, अध
1: आधा
0: कपारी कहा
1: शीशी,
0: जाता है।
1: हाँ अधकपारी हुईगा या अंग्रेजी में बहुत सारे लोग माइग्रेन भी कहते
0: हाँ,
1: हैं।
0: तो यू है का, इके बारे में हम पंच सोचे थे अपने पंच भाई बहनी का, और अपन आपसों में यह जो है जानकारी सब जने साझा करी। तो एक भेंट वार्ता है अर्ध कपारी कारण और निवारण, जी के वार्ताकार हैं डॉक्टर अतुल अग्रवाल भैया, जिनसे बतकही करके हम पंचन का सबका जानकारी दिवाने नीना सोनकर बहनी।
1: हाँ
0: तो पंच भाई बहनी जाने हमो पंच जानी।
1: बिल्कुल
2: श्रोता पंचे नमस्कार। आज हम आपसे जौन विषय पर बात करे जा रहे हैं, वो है सिर के दर्द। आप सोचे तो ये भी कौनो बात ही, कबो कबो तो सर में दर्द हो ही जाता है, मनई टेंशन में रहा था जी का तनाव कहा जाता है, और या फिर कौनो और कारण भी हो जाता है। कोई कोई आइस मनई है जिनकी खुपड़िया तो पिरा थी, लेकिन आधी खुपड़िया पिरा थी। अब ये आधी जब खुपड़िया पिरा थी तो सोचत है का कीन जाए, लेकिन कुछ न करो, ध्यान पूर्वक आज की भेंट वार्ता का सुनो। और आज आपका यही विषय पर जानकारी दे के लिए आकाशवाणी लखनऊ के स्टूडियो में आए हुए हैं जाने माने तंत्रिका तंत्र विशेषज्ञ, मतलब इका आप न्यूरोलॉजिकल समस्या के एक्सपर्ट भी कह सकते हो, इके विशेषज्ञ डॉक्टर अतुल अग्रवाल जी। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपके बहुत बहुत स्वागत है।
3: नमस्कार
2: जी डॉक्टर साहब, सिर दर्द के बारे में तो पंचे बहुत सुनी है कि सिर दर्द होत है, लेकिन आज जौन आधा सीसी दर्द की बात हम करे जा रहे हैं, मुलाई आधी खुपड़िया पे रात ही कुछ लोग ही कहते हैं, और अंग्रेजी में कुछ लोग माइग्रेनो समझा करते हैं, लेकिन आप बताओ कि आधा सीसी का कहा जाता है, यानी वो मनई कैसे समझे। पहले तो सर दर्द की एक व्याख्या कर दो मोट मोट।
3: नहीं, सबको कभी ना कभी सिर में दर्द हो ही जाता है। सिर दर्द को हम लोग दो तरह से देखते हैं। पहला सिर दर्द जो किसी अन्य कारण से है, जैसे आपने बहुत सारे उदाहरण दिए, अगर ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है, साइनस है, जुखाम खांसी के बाद सिर दर्द है, या किसी को कोई ब्लड क्लॉट हो गया, चोट लगी है, या कोई ट्यूमर गांठ बन रही है,
2: जी
3: तो इन सबसे जब सिर दर्द होता है तो इसको कहते हैं कोई दूसरा कारण है, सेकेंडरी हेडेक, मतलब सिर दर्द उसका एक लक्षण है। लेकिन सबसे मुख्य है जो 90% रोगियों को प्रभावित करता है, उसको कहते हैं प्राइमरी हेडेक, जिसमें सिर दर्द ही परेशानी है, कोई उसका अन्य कारण नहीं है। तो इसमें दो मुख्य दर्द के प्रकार हैं। पहला है जिसको आपने कहा आधा सीसी माइग्रेन, क्योंकि इसमें अक्सर दर्द आधे सिर में होता है, लेकिन जरूरी नहीं कि आधे में हो, बच्चों में या कुछ लोगों में पूरे में भी हो सकता है। और कुछ लोगों को जिनको आधा दर्द भी होता है आधा सिर में, कभी बाईं तरफ हो कभी दाईं तरफ हो, तो ये एक माइग्रेन एक मुख्य सिर दर्द का प्रकार है। दूसरा, जिनका सिर भारी रहता है, काम में मन नहीं लगता है और चिंताएं रहती हैं, तो तनाव की तरह का टेंशन टाइप हेडेक दूसरा मुख्य प्राइमरी हेडेक है।
2: जी डॉक्टर साहब, कहे कि मतलब ये है कि सर दर्द के विभिन्न कारण होते हैं, लेकिन ध्यान दे की बात ये है कि खोपड़ी अगर लगातार पिराए रही और मार ई लगता है कि जैसे कपाल फटा जाए रहा, दुई टुकड़ा हो जाए, कब कब ऐसी मैंने कहा
3: जी
2: था,
3: जी
2: दर्द बिल्कुल असहनीय होएगा है, तो ई बताओ कि एक लक्षण का हुई।
3: नहीं, माइग्रेन एक कॉमन सिर दर्द है, और ये महिलाओं में पुरुषों की तुलना में 2-3 गुना अधिक पाया जाता है, मतलब महिलाओं को ज्यादा दर्द प्रभावित करता है, छोटे बच्चों को भी हो सकता है। दर्द होने से पहले ही व्यवहार में कुछ परिवर्तन महसूस होता है, चिड़चिड़ापन, गुस्सा, भूख न लगना, इस तरह के लक्षण देखते हैं। और फिर कुछ लोगों में लक्षण होते हैं कि जैसे आंख के सामने झिलमिलाहट होना, इस तरह का कुछ रोशनियां दिखाई देना, और उसके कुछ समय के बाद 5 से 60 मिनट के अंदर बहुत तेज सिरदर्द होता है।

0: है, तो ये तीव्रता वाला सिरदर्द है और रोगी उस समय अगर कुछ काम कर रहा हो तो कर नहीं सकता है, गृहिणी है तो उसको भी लेटने की इच्छा होती है, उस समय रोशनी अच्छी नहीं लगती, आवाज़ अच्छी नहीं लगती, तो मन करता है कि लाइट बंद करें, सबको भगाएं, कोई शोर शराबा ना करे, बोले ना, और फिर शांति से लेटे। और इस दर्द में धपकन जैसा पल्सेटिंग हेडेक लगता है, जैसे कि हार्ट बीट जैसा महसूस होता है, पल्सेटाइल हेडेक उसको बोलते हैं, तो उस तरह का लगता है। कुछ लोग उसमें सिर पे चुन्नी कपड़ा बांध के लेटते हैं, लाइट बंद करके अंधेरे में लेटने की इच्छा होती है, और ये दर्द अगर दवा ना ली जाए तो घंटों चल सकता है। साथ में कुछ लोगों को उल्टी जैसी मछली महसूस हो और कुछ लोगों को उल्टी हो भी जाती है, और फिर कुछ घंटों के बाद या दवा लेने से फिर धीरे धीरे ठीक होता जाता है, लेकिन कुछ लोगों को 3-4 घंटे से लेके 24 घंटे तक सिरदर्द हो सकता है। फिर कुछ समय निढ़ाल रहता है, रोगी सुस्त रहता है, फिर धीरे धीरे ठीक हो सकता है, और फिर दोबारा सिरदर्द 2 दिन बाद भी हो सकता है, 2 हफ्ते बाद भी हो सकता है, किसी को 2 महीने बाद भी हो सकता है। तो इस तरह से बार बार तेज सिरदर्द जो अक्सर आधे सिर में होता है, साथ में ही उल्टी लगे और रोशनी और आवाज अच्छी ना लगे, तो ये माइग्रेन के आधा शीशी के लक्षण है।
1: डॉक्टर साहब, आप बहुत सी बातें बताएं, उम्मा एक विशेष बात यहू ही, यानी जो महिलाएं हैं, घर की मेहरिया हैं, उनके सिरमा ऐसा दर्द ज्यादा होता है पुरुषन की अपेक्षा। डॉक्टर साहब, आप ई बताओ, ई जौन आधा शीशी के दर्द के बारे में या जौन आधी खोपड़िया कपाल पे रात है उसके बारे में आप जौन जानकारी दे रहो, ई के उत्तेजक कारण कौन कौन से है? हम आई सुना है कि जैसे मान लो कुछ लोग कैफीन कुछ चीजन में होती उके इस्तेमाल करते हैं, या फिर आइस जो बाहर के खाना पीना भोजन खाए के आदि होते हैं, या फिर कुछ और, का कहना चाह रहे हो कि मनई अच्छे से समझे?
0: बिल्कुल सही है। और जब हम लोग रोगी को इलाज बताते हैं तो ये कहते हैं कि जो उत्तेजना वाली चीजें हैं जिनसे सिरदर्द बढ़ जाएगा, एक शब्द में कहा जाए तो ट्रिगर, जिससे सिरदर्द हो जाए, तो उनसे बचना चाहिए। तो उसमें है पहली चीज कि समय से खाना, अगर आप खाली पेट रहे तो सिरदर्द हो जाएगा। तो जो महिलाएं अधिक व्रत रखती हैं तो उस दिन व्रत का कितना फायदा होता है वो तो है, लेकिन दर्द अक्सर हो जाता है। तो इतना जिनको ऐसा दर्द होता हो, कठिन व्रत ना रखें, थोड़ा बहुत दूध फल ले लें तो उससे अच्छा रहता है। दूसरा, अगर नींद ना पूरी हो किसी की, किसी कारण से 1 दिन 2 दिन काम से नींद नहीं पूरी हो, तब भी हो जाता है। कुछ लोगों को तेज गंध से, पेट्रोल की स्मेल से, कुछ को सेंट से भी हो सकता है। तो ऐसे ट्रिगर हर किसी को देखे गए हैं। महिलाओं में मासिक चक्र के दौरान दर्द हो जाना भी अधिक देखा गया है। तो जिन लोगों को ये ट्रिगर मालूम है, जैसे आपने कहा कॉफ़ी अधिक पीने से, चाउमीन या जिसमें कुछ ऐसे केमिकल होते हैं उनसे ट्रिगर हो जाता है, कुछ लोग बच्चों को चॉकलेट खाने से भी हो जाता है, तो ये बहुत अधिक संबंध नहीं है। लेकिन अगर आपने ये देखा है कि किसी वस्तु के प्रयोग से आपको सिरदर्द बढ़ता है या हो सकता है, तो आपको जरूरी है कि उससे बचा जाए।
1: डॉक्टर साहब, ये बताओ, जो ने खराब नींद होती, तनाव होता है, तेज धूप के संपर्क में, का दर्द कहा जाता है? मने कहा था कि हमारे दर्द बढ़ गया है, तो का आइस होता है?
0: जी बिल्कुल, तेज धूप में जाने से भी सिरदर्द हो जाता है। तो जो लोग को धूप से बचा जा सकता है, भाई आप एक टोपी गमछा पहने, साथ में गॉगल काले चश्मा लगाएं अगर धूप जाना जरूरी हो, तो उससे भी बचाव में मदद मिलती है।
1: जी, मान लो अचानक से कौनो कहीं जाए रहा, अचानक से कपाल पिड़ाए लगा, तो तत्काल का करें?
0: अब इसमें दवाएं 2 तरह की हैं, एक तत्काल प्रभाव की दवाएं हैं। तो पहली दवा है सिरदर्द, जो दर्द की सामान्य दवाएं हैं उनको लिया जा सकता है, किसी को पैरासीटामोल से फायदा होता है, जो भी दर्द की दवा आपको हेल्प करती है, असर करती है, उसको ले सकते हैं। और उसको ले करके अगर आप घर में हैं या ऐसी जगह हैं जहां अंधेरे में घंटा 2 घंटा विश्राम कर लें, सो लें, तो फिर आप उठेंगे तो दर्द बेहतर हो जाएगा। दूसरी दवाएं हैं कुछ आधा सीसी स्पेसिफिक, माइग्रेन स्पेसिफिक हैं, ट्रिप्टान नाम से बहुत सारी इस तरह की दवाएं हैं, वो थोड़ा शुल्क में भी ज़्यादा हैं, लेकिन उनके लेने से भी आराम मिलता है। जिसको जल्दी जल्दी या बार बार सिरदर्द होता हो, तो फिर ऐसा अनुशंसा की जाती है, ऐसी एडवाइस दी जाती है कि आप कुछ दवाएं आप नियम से कई महीने, मतलब 6 महीने से लेके 2-3 साल तक भी

0: लगातार खाने के लिए दी जाती हैं, जिससे बार बार दर्द होने की आवृत्ति फ्रिक्वेंसी कम हो जाती है और कभी कभार दर्द होना है तब उसको दर्द निवारक दवा से ठीक किया जाता है। तो वो दवाएं बहुत सारी हैं, किस रोगी को कौन सी दवा देनी है वो उसके आयु, उसका स्त्री पुरुष के अनुसार, या और मोटा है, पतला है, नींद कैसी है, भूख कैसी है, इन सब को देख करके हम लोग ये निर्धारित करते हैं और वो दवा कम मात्रा से शुरू करके धीरे धीरे बढ़ा करके, और फिर वो दवाएं साल दो साल लेने से काफ़ी आराम मिलता है।
1: जी डॉक्टर साहब, बहुत सी बातें बताए हो कि जी का जल्दी जल्दी दौरा पड़ रहा आधी सीसी, तो उनका डॉक्टर की सलाह से लंबे समय तक दवा के सेवन करे का होता है।
0: जी
1: अब चलत चलत ई बताओ, का ये अनुवांशिक कारण है?
0: जी हाँ, अनुवांशिक फैक्टर इसमें देखा गया है। मतलब जिस किसी लड़की को, महिला को दर्द है, उसके माता पिता में, भाई बहनों में अधिक लोगों को माइग्रेन देखा गया है, तो आनुवांशिक है। लेकिन ऐसा आनुवांशिक नहीं है कि जरूरी हो कि माता पिता को है तो बच्चे को हो, लेकिन आनुवांशिक फैक्टर देखा गया है, परिवार में एक से ज़्यादा लोगों को ऐसा दर्द अक्सर देखा गया है।
1: जी डॉक्टर साहब, सारी बातें आप बताए हो, पूरी उम्मीद है कि हमारे पंचे जो उन्हें सुन रहे हैं, कार्यक्रम का पूरा लाभ उठाएंगे इससे। लेकिन एक छोटा सा सवाल और बताए दे कि मान लो कौन को कोई दवा सूट नहीं कर रही, उल्टी या पलटी हुई जा रही, तो उसका क्या करेगा है?
0: कोई भी दवा दी जाती है तो उससे कुछ प्रतिशत लोगों को हल्की फुल्की सुस्ती होती है, तो हम लोग कम मात्रा में दवा दे करके धीरे धीरे बढ़ाते हैं। दूसरा, कभी भी दर्द नाशक दवा को खाली पेट नहीं खाना चाहिए, तो कुछ खा करके, एक बिस्किट दो बिस्किट खा लिया कुछ खा के, तब दवा लेने से पेट में दर्द, उल्टी, मछली होने की संभावना कम है। जिन लोगों को माइग्रेन, आधा सीसी सिरदर्द के साथ बहुत उल्टियां होती हैं, तो इस तरह की भी दवा है कि उसको नाक में स्प्रे करके ली जा सकती हैं। कुछ दवा ऐसी हैं कि जो जीभ पे रख के चूस लेने से भी असर करती हैं, क्योंकि आपको साथ में फिर पानी या और कुछ लेने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन अगर कोई भी दवा से आपको साइड इफ़ेक्ट या कोई प्रभाव दिखता है तो आपको अपने चिकित्सक से, अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए।
1: जी डॉक्टर साहब, आखिरी में एक छोटा सा संक्षेप में एक सवाल के जवाब हमका ऐसा लग रहा कि हम सोता पंचे की तरफ से पूछ लिए आपसे। कुछ ऐसे पंच हैं जो कहा जाता है कि जो उन गूगल ज्ञान है उका हेरा करत हैं।
0: अब देखिए, गूगल ज्ञान बहुत कॉमन चीज हो गई। हमारे पास जो रोगी आते हैं वो पहले से अपने लक्षण देख के और गूगल से पूछते हैं, तो आप गूगल से कोई दवा पढ़ लें, आपको डायबिटीज़ है, आपको ब्लड प्रेशर है, आपको आधा सीसी माइग्रेन है, तो उसके बारे में जानकारी ले लें, अच्छा है। उससे जो दिशा निर्देश दिए हैं कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, ये भी अच्छी चीज़ है, तो बीमारी के बारे में जानना। लेकिन गूगल दवा के लिए, इलाज के लिए ठीक नहीं है, उसके लिए आपको अपने डॉक्टर से, अपने फिजिशियन से ही मिलना होगा।
1: तो जैसा कि डॉक्टर अतुल अग्रवाल जी बताएं, पंचे हम आपको बताए दे रहे हैं कि गूगल के ज्ञान से मैग्नीशियम या कौनो विटामिन ना खाना शुरू करे, और जो डॉक्टर कहें उन्हीं के सलाह के मशवरे के हिसाब से अपन उपचार करो, इलाज करो, और कुछ भी होए तो डॉक्टर के पास है जाए का है।
0: आपने एक बहुत अच्छा पॉइंट कहा कि ये भी अभी देखा गया है कि मैग्नीशियम की को देने से भी आधा सीसी माइग्रेन में हेल्प होती है, लेकिन कितना देना है, किसको देना है, ये तो डॉक्टर ही निर्णय करेगा।
1: जी डॉक्टर अतुल अग्रवाल जी, आप कार्यक्रम में आयो, बहुत ही नीक जानकारी आप आधा सीसी दर्द के बारे में सोता पंचे का दिए, अपना कीमती समय आकाशवाणी लखनऊ का दियो, इसके लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।
2: रत्ना बहनी,
3: हाँ हिमांशु भैया,
2: देखो कितनी नेकी तरह जानकारी मिली अध कपारी कारण और निवारण के बारे में है। तो एक ही खातिन जो हमारे वार्ता कर रहे हैं डॉक्टर अतुल अग्रवाल भैया, और जो इनसे इतनी बढ़िया बात कही करें नीना सोनकर बहनी, दोनों जन को बहुत बहुत धन्यवाद।
3: और देखो एक बात है कि ये सही जो है, अब धीरे धीरे हम पंच कुछ ना कुछ नवा करी थी है।
2: हाँ।
3: और जीवन में जब कुछ नवा आवत है तो और नवा नवा लागत है।
2: बिल्कुल,
3: उसमें खास करके जब घर में नवा मेहमान आवत है, नन्हा मुन्ना बाल।
2: हाँ।
3: तो जो है बहुत नीक लागत है।
2: हाँ।
3: और उनके स्वागत में हम पंच जो है गौनोई करी थी।
2: बिल्कुल बहनी,
3: तो हम सोच रहे हैं काहे ना गौनोई सुनवा दे अपने पंच।
2: बिल्कुल बहनी, आज बहुत बढ़िया एक सोहर लेकर आए हैं, सासू रस बनिया, स्वर है रंजना रजिता एवं
3: दीपिका
2: मिश्रा बहनी के, तो सुना जाए।
3: बिल्कुल,

0: हिमांशु भैया।
1: हाँ रत्ना बहन।
0: गाँव नहीं तो बहुत नीक रहा है, लेकिन नीक सब कुछ तब लागत है जब अपनी जेब में दाम होते है, और दाम तब हुई जब हम पंच अपनी खेती से संबंधित जो जुड़े काम है उनका समय ते निपटाई तब।
1: अब बिल्कुल सही बात कहो बहनी। अब जैसे वह गांव हम गए रहन तो देखन बहुत सारे किसान परेशान रहा ये चीज़ कह लेके कि किसान रजिस्ट्री या जो है फार्मर IDU का होते हैं सरकार अनिवार्य कह रही है, तो
0: हाँ
1: ऐका लेके तो अहिमा बहनी जो है बहुत ज़्यादा कुछ सोचे समझे कि अब ऐसा कोई तरीका या कोई घबराए वाली बात नहीं है। किसान रजिस्ट्री यानी फार्मर ID सरकार द्वारा जो है किसानन के यार एक हिसाब से जैसे डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करे के प्रक्रिया है। ऐसे का होते है कि कोनो कागज कहूँ रखें, कोई समय पर जरूर लाग मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं या कोई दिक्कत है ऐसी वैसी बहगे, तो एक बार जब हमारे किसान रजिस्ट्री हो जाते हैं या फार्मर ID बन जाते हैं तो ऐसे हमेशा के लिए फुर्सत हो जाते हैं। जब जरूरत है अपन पूरा रिकॉर्ड हमारा तैयार है। और सबसे बड़े फायदा इसे का रहा था बहना बहनी की जो है माँ किसान के भूमि फसल आधार और बैंक संबंधी सारी जानकारी दर्ज हो जाते हैं। और तनकु कौनु किसान खातन कौनु सरकारी योजना होते हैं तो सबसे पहले किसानन के यहाँ मिल जाते हैं।
0: मैंने कहे कि मतलब यूँ है कि हम पंचे जो डराई थे कि यू किसान फार्मा रजिस्ट्री ID का है, तो
1: हाँ
0: डराई की वजह जो है ईमा बढ़ चढ़ के हिस्सा ले, काहे कि यू हमरे फायदे खातिन है, आगे चल के कोई समस्या हमका झलक ना पड़ी।
1: बिल्कुल भाई। नहीं अहिमा हर तरीके का फायदा, जैसे चाहे PM किसान योजना है या फसल बीमा है या कुछ

0: तरीके कृषि अनुदान है या खाद बीज खरीदो सब्सिडी आवत है या किसान क्रेडिट कार्ड बनवावे का है, अगर यो हमरे रहे तो बहुत आसानी सारे काम हो जाते हैं। ओमे कोई बहुत ज्यादा कोनो कागज लगतो नहीं है।
1: अच्छा।
0: आधार कार्ड होगा ठीक है, खतौनी या भूमि के जोन कागज हो तो वो लाग जाते हैं, मोबाइल नंबर तो सबके पास होते है, बैंक के पासबुक सबके पास है और परिवार का विवरण लाग जाते हैं कि भाई कितने लोग हैं या क्या करते हैं। तो बस वो सबसे सरल तरीका है, सोचा था अब कैसे बनाए, तो सबसे सरल तरीका यू है कोई जो है जनसेवा केंद्र पर आराम से नहीं चले जाए और वहाँ पर वहीं से बता दो ये कागज दे दो, तुरंत किसान रजिस्ट्री फार्मर आईडी बना दे बस।
1: तो यू तो बहुत नीक है भैया कि अपने तिरन यह नहीं समस्या है कि कहाँ कागज धरा है ढूंढे के, एक बार ढूंढ के वही का बनवा ले और फिर वही के बाद जो सरकारी लाभ मिल रहे हैं उनका ले, और साथ में भैया जो है अपने कागजन का बार बार ऐसी वैसे हेरा डेरे से भी फुर्सत हो जाए,
0: बिल्कुल
1: ये तो
0: बहन।
1: बहुत नीक चीज़ है। और एक चीज़ और है भैया
0: हाँ
1: कि हम पंच जो अपने खेती करी थे तो खेती में या कबो कबो का होते कि जो कहूँ जमीन होते ऊसर हो जाते, वही मैं समझ में नहीं आवा कि अब करी तो करी का
0: हाँ
1: कैसे हम फसल का लाभ ले, है ना। तो इके खातिर सबसे जरूरी है कि हम पहले देखी कि हमारी माटी काहे ऊसर भई।
0: बहनी बिल्कुल सही बात कहो, वही बिल्कुल साधारण पहचान यू है कि कैसे जनियो कि हमारी माटी ऊसर है कि नहीं
1: हाँ
0: है। बिल्कुल सरल पहचान है कि माटी पर एक सफ़ेद परत तरीके से ने जम जाते हैं, अगर उन्हें दिखाते हैं तो बहुत खेत में यह देखो बहुत देर तक पानी भरा रहा, तो मतलब जो जल धारण क्षमता होते है या माटी जो पानी
1: माटी में
0: स्वाकत
1: बैठे तो
0: है
1: नहीं है।
0: हाँ
1: हाँ
0: तो अंदर जाते नहीं है, एक यहो पहचान हो। दूसर यू हो तो कोई फसल बही जात तो पीलापन आ जाते हैं वही माँ। तीसर का हो तो कि कोई पौधा या फसल लाओ बहुत धीमे धीमे वही की वृद्धि होते हैं, कोई बीज बैन तो एक अंकुरण कम भा या माटी बहुत कठोर है, तो अगर ये सब कारण है तो यू कहा जा सकते हैं कि हमार भूमि जो है वह ऊसर है। तब हूँ एके बाद हम अपनी माटी के जांच करवा ले।
1: सबसे जरूरी है भैया काहे कि हम पंच तो अंधेरे में तिल चलाई थे,
0: हाँ
1: क्यों काहे कि पूरी पूरी जो कहा जाता सटीक जानकारी वह हमका नहीं होते, बस यूं मालूम चलते थे कि ईमा ऊसर तो आएगा लेकिन कौने कारण ते आएगा और कईस ऊसरपन है,
0: बिल्कुल
1: एक अम्लीय कहा जाते एक क्षारीय कहा जाते है, तो
0: हाँ
1: यूं तो हम पंच जान नहीं पाई थे जल्दी। तो
0: बिल्कुल
1: इके
0: बहन
1: खातिर सबसे नीक है कि अपनी माटी की जांच करा ले, और माटी की जांच करा एक तरीका हम सबका मालूम है कि एक जगह से नहीं कईयों जगह से नमूना लई के फिर उनका गबड़ के और फिर वही के बाद आप पहुंचाओ तो पता चल जाता है कि हमारी माटी में का समस्या है, और जौन विधि बतावें विशेषज्ञ भैया तौने विधि का अपनाए के वही का ऊसर सुधार करे। काहे इसकी इमा हम सोचे कि ज्यादा डार दे या कम डार दे तो इसे लाभ ना हो बल्कि नुकसान हो जाए।
0: बिल्कुल बहनी, का एक मतलब यू है कि अगर भूमि ऊसर सिद्ध हो जाते हैं तो हम अधिकतर जो है जिप्सम के उपयोग किन जाते हैं, और जिप्सम के उपयोग भी अपने हिसाब से न डारे कि नहीं अथा जिप्सम में
1: जितनी
0: डाल दें
1: संतुत
0: तो जो है वो कर दें,
1: हाँ मात्रा
0: तो
1: बतावे।
0: वैज्ञानिक सलाह के अनुसार वही की मात्रा निर्धारित कर ले, डार दे खेत तक जुताई कर दे आराम से ने खेत में फैला दे, यू नहीं एक जगह पूरा कोरे दिन खेत में है कि है क्षारिय दूर हो जाए, क्षारिय वो जो है ऊसर भूमि सही हो जाए, तो ये सारी चीज़ें सही कर लेना, हल्की सिंचाई कर देना तो माटी सही हो जाए। एक साथ में यहाँ एक उपाय और है कि अगर अपनी खेत में यहाँ हम धीमे धीमे हरी खाद बोना शुरू कर देते हैं तो बहुत बढ़िया रहते हैं कि ऊसर भूमि धीमे धीमे बहुत बढ़िया हो जाते हैं।
1: हाँ यूँ तो है, और वही के साथ साथ जैसे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनकी जानकारी हम पंचन का हो तो है और पुरखनों से पता चल जाता है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो समय के साथ बदलती जा रही हैं
0: हाँ
1: जिनका हम पंच पहले नहीं देखें कबो लेकिन आज दिखाई पड़ रहे हैं, तो उनका जानकारी ले के तबह करें। और जब
0: बिल्कुल
1: जानकारी की बात आ रही तो देखो एक जानकारी अपने कार्यक्रम में बैठकी में अधीन है कि जो पशु होते हैं हमरे पशु में बहुत तरह के संक्रामक रोग हो जाते हैं,
0: बिल्कुल
1: तो उनसे कैसे बचा जाए और उनका टीकाकरण का है ये के बारे में यह बता रहे हैं डॉक्टर संतोष कुमार द्विवेदी भैया, जिनसे बात कही की इन हैं डॉक्टर सुशील कुमार राय भैया जो जाए के लीहीन है जानकारी और जानकारी लेके हम पंचन का दीहीन, तो हमो पंच जानी
0: बिल्कुल बनी सुना जाए।
1: और पंच भाई बहनों जाने।
2: नमस्कार किसान भाइयों बहनों, खेती का जुड़वा भाई पशुपालन है और पशुपालन में कभी कभी कुछ समस्याएं आती हैं जैसे संक्रामक रोग। जहां पशुओं में संक्रामक रोग की समस्या आ रही है तो उससे बचाव कैसे हो और टीकाकरण कितना जरूरी है, इसी विषय पर आज हमारे साथ हैं पशुपालन निदेशालय उत्तर प्रदेश से संयुक्त निदेशक डॉक्टर एस के द्विवेदी साहब, स्वागत है कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब ये बताएं कि पशुओं में संक्रामक रोग कौन कौन से हैं जिनसे पशुपालक भाइयों बहनों को सजग रहना है।
3: जी मैं

0: मैं सबसे पहले तो पशुपालक भाइयों को बहनों को प्रणाम करता हूँ। और इस समय पशुपालन में जो समय चल रहा है बहुत गर्मी का, इसके तुरंत बाद बारिश होना शुरू होगी, तो जो तनाव है उसकी वजह से तमाम सारे संक्रामक रोगों की प्रचुरता हो जाती है। जैसे बड़े पशुओं में जो गाय भैंसे हैं उसमें गला घोटू, खुरपका मुंहपका, लंगड़िया और लंपी जा,
1: जी
0: वुडन टंग, ये सारी बीमारियां हैं। इनके अलावा जो हमारे छोटे पशुओं में है, बकरियों में, भेड़ों में, उनमें भी पीपीआर है।
1: जी
0: उसके अलावा
1: एक तरह का
0: इंट्रोटॉक्सीन
1: प्लेग
0: है,
1: है।
0: जी प्लेग है।
1: हाँ
0: और इसी प्रकार से जो ये कुत्ते बिल्ली हैं उनमें भी कई तरह की कैनाइन डिस्टेंपर, पार्वो वायरस इन्फेक्शन, ये सब इस समय बहुत तेज़ी से फैलते हैं। और उसका कारण ये है, बारिश में जैसे ही उमस बढ़ती है,
1: हाँ
0: ह्यूमिडिटी जैसे ही बढ़ती है, सभी तरह के जीवाणु, विषाणु, फंगस, ये फफूंदी, ये सब
1: सक्रिय हो
0: बहुत
1: जाते हैं।
0: बहुत तेज़ी से सक्रिय हो जाते हैं। पूरे वातावरण में बहुत ज़्यादा इनकी संख्या हो जाती है, तो कोई सांस से, कोई खाने में, भोजन के में, पानी में, इस तरह से ये सभी पशुओं को संक्रमित कर देते हैं।
1: और जब जानवर संक्रमित होता है तो उसका उत्पादन प्रभावित
0: उसका
1: होता है।
0: उत्पादन प्रभावित होता है। अब जो लंबी बीमारियां हैं, जैसे कि आपकी लंपी स्किन डिजीज है,
1: जी
0: LSD,
1: हाँ
0: ये हाल ही में हमारे यहाँ 4-6 साल से इसका प्रादुर्भाव हुआ है।
1: जी
0: और ये बीमारी पशु को इतना कमज़ोर कर देती है कि उसका उत्पादन ख़त्म हो जाता है। यदि गर्भित पशु है तो उसका बच्चा गिर जाता है और मृतप्राय हो जाता है,
1: जी
0: जिससे हमारे पशुपालकों को काफ़ी आर्थिक क्षति होती है।
1: डॉक्टर साहब, ये जो गला घोंटू, खुरपका, मुंहपका और लंगड़िया बुखार का आपने जिक्र किया, तो इसका
0: जी,
1: संक्रमण होता कैसे है?
0: ये सभी बीमारियां, ये गला घोटू भी और खुरपका मुंहपका भी और लंगड़िया भी, ये तीनों बीमारियां भोजन से, श्वास से और पानी से, ये खाने के द्वारा और सांस के द्वारा, ये एक दूसरे में फैलती हैं, एक जानवर से दूसरे जानवर में फैलती हैं। जिसमें से लंगड़िया और गला घोटू तो जीवाणु जनित है,
1: हाँ
0: जबकि खुरपका मुंहपका
1: विषाणु
0: ये
1: जनित।
0: विषाणु जनित है। इसलिए खुरपका मुंहपका तो हवा से भी फैल जाता है।
1: जी
0: इसी तरह से लंपी स्किन डिजीज, वो भी विषाणु जनित है, वो मच्छरों के काटने से, इस तरह के बाहरी जो कीड़े मकोड़े हैं इनके काटने से भी फैलता है।
1: और जो लंपी चर्म रोग है वो भी तो विषाणु जनित बीमारी है।
0: जी, वो भी विषाणु जनित बीमारी है। और मच्छरों के और इस प्रकार के
1: मक्खियां,
0: डांस, मक्खी, इस तरह की जो बड़ी मक्खियां हैं इनके काटने से भी ये बीमारी फैलती है दूसरे पर।
1: तो वाहक कीट मक्खी और मच्छर है।
0: मक्खी, मच्छर, हाँ, एक बड़ी टेबनस फ्लाई होती है जिसको हमारे किसान भाई गांव में डांस बोलते हैं,
1: हाँ बड़ी मक्खी।
0: बड़ी मक्खी, उसकी वजह से जिससे सर्रा भी फैलता है,
1: हाँ
0: एक
1: हाँ
0: पशु से दूसरे पशु में सर्रा, काला जार। अपने यहाँ तो काला जार कम होता है, लेकिन बंगाल के इलाकों में या कुछ हमारे जो जहाँ पे ज़्यादा पानी का
1: लो
0: जगह,
1: लैंड है।
0: हाँ, लो लैंड या वेट लैंड टाइप की जो जगहें हैं, वहाँ पर भी काला जार जैसी बीमारियों को फैलाने में डांस का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है।
1: डॉक्टर साहब, पशुओं में संक्रामक रोगों की बात चल रही है, तो आजकल दुधारू जानवरों में संक्रामक गर्भपात भी की।
0: जी, संक्रामक गर्भपात जिसको ब्रुसेलोसिस कहते हैं, ये बहुत ही खतरनाक समस्या हो गई है। और इसमें एक पशु में जो जिसमें हुआ ये इन्फेक्शन, उसका जो गर्भपात होता है उससे निकलने वाला हर स्राव,
1: जी
0: चाहे वो गर्भपात हुआ शिशु हो, उसकी झिल्लियां हो, उसका पानी हो, उसका कोई भी वहां उसके गर्भ से निकला हुआ जो
1: है।
0: पदार्थ है, वो दूसरे में संक्रमण पैदा कर देता है। और पशुओं में ही नहीं, ये मनुष्यों में भी हो जाता है।
1: यानी
0: अगर आपका खाल कहीं कटा फटा हुआ है तो ये मनुष्यों में भी चला जाता है। जूनोटिक बीमारी है ये।
1: अच्छा,
0: जी,
1: और जो आपने कहा कि भेड़ और बकरियों में
0: उस
1: प्लेग की समस्या।
0: जी प्लेग की समस्या, उसमें भी पीपीआर होता है। और ब्रुसोलेसिस भी बकरियों में खूब देखा जा रहा है।
1: जी
0: ब्रुसोलेसिस की समस्या जो बकरियों में गर्भपात है, और वहां पे ज्यादा खतरनाक इसलिए होता है कि आपने देखा होगा कि हमारे जो किसान भाई बकरी या भेड़ पालन करते हैं वो झुंड में करते हैं,
1: हाँ,
0: तो एक को हुआ तो दूसरे को होने की संभावना
1: संक्रमण
0: बहुत
1: आसान
0: अधिक
1: हो
0: हो जाती
1: जाता
0: है। जी हाँ, साथ में जो प्लेग की बात कर रहे हैं हम लोग, ये पीपीआर है।
1: है। हाँ
0: और पीपीआर में क्या होता है, इसको हमारे यहाँ गांव में लोकल भाषा में मुहा भी कहा जाता है,
1: मुहा।
0: मुहा। इसमें क्या होता है कि मुंह के अगल बगल छाले पड़ जाते हैं,
1: जी
0: काफी तेज बुखार होता है, नाक के अगल बगल छाले और अंदर तक छाले पड़ जाते हैं, जिससे नाक से, मुंह से राल, नाक से द्रव निकलता रहता है।
1: भेड़ और
0: सांस,
1: बकरी में।
0: भेड़ बकरी में, जी, इसमें सांस लेने में तकलीफ होने लगती है उनको, और धीरे धीरे धीरे धीरे उनकी भूख खत्म हो जाती है। बुखार बहुत तेज रहता है, 104 से 105 फारेनहाइट तक। इस तरह से धीरे धीरे वो दुर्बल होते जाते हैं, क्योंकि मुंह में छाले हैं, नाक में छाले हैं।

0: कुछ खा नहीं पाते, वो कुछ भी खाते हैं तो चुभता है
1: और बहुत जल्दी कालकवलित हो
0: जाते, उसकी वजह से वो कालकवलित हो जाते हैं। और इसमें बहुत महत्वपूर्ण ये होता है क्योंकि विषाणु जनित है तो उसमें दवा भी बहुत ज्यादा प्रभावी नहीं हो पाती है, इसलिए इसका बचाव तो टीकाकरण ही है।
1: देख सब बचाव की बात ही हम लोग करें कि जो भी पशुओं में संक्रामक रोग हैं, चाहे गलाघोटू है, खुरपका मुहपका है, लंगड़िया बुखार है, संक्रामक गर्भपात है, लंपी चर्म रोग है, या भेड़ और बकरी में पीपीआर है
0: जी,
1: तो इसका बचाव है क्या?
0: इसका सबसे सटीक बचाव जो वैज्ञानिकों के द्वारा खोजा गया है वो टीकाकरण।
1: अच्छा,
0: अगर समय से टीकाकरण करा लिया जाए तो इन सभी बीमारियों से बचा जा सकता है।
1: तो इस साल में कब कब कैसे टीका लगेगा?
0: जी, अब ये जैसे हमारे यहाँ एक सरकार द्वारा स्कीम चलाई जाती है NADCP, नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम,
1: जी,
0: उसमें हम इन सभी बीमारियों के खिलाफ, विशेषतर केंद्र सरकार भी FMD यानी खुरपका मुंहपका और ब्रुसेलोसिस, इनके रोकथाम के लिए साल में 2 बार।
1: अच्छा
0: ब्रुसेलोसिस का तो एक ही बार जीवन में टीका लगता है,
1: अच्छा एक जानवर को एक ही
0: एक
1: बार?
0: बार जो मादा जानवर को शुरू में जब वो 7-6 महीने से लेकर के 1 साल के बीच की बछिया होती है
1: तभी
0: उस
1: लगेगा,
0: समय एक बार टीकाकरण हो जाएगा, फिर जीवन में उसको ब्रुसेलोसिस नहीं होता,
1: पूरा सुरक्षित हो
0: जी
1: गया।
0: सुरक्षित हो गया। और ये आपका खुरपका मुंहपका का हर 6 महीने पर अभियान पूर्वक हम लोग FMD कंट्रोल प्रोग्राम चलाते हैं, जिसमें पशुपालकों के द्वार पर जाकर के हमारी टीम निःशुल्क टीकाकरण करती है।
1: और गलाघोटू और लंगड़िया बुखार?
0: गलाघोटू और लंगड़िया का साल में एक बार होता है टीकाकरण, लेकिन जो छोटे पशु रहते हैं उसके लिए हमारे पशु चिकित्सालयों पर वैक्सीन रहती है, उनको कभी भी हमारे पशुपालक भाई जाकर के टीकाकरण करा सकते हैं जो छोटे पशु हैं।
1: और लंपी चर्म रोग?
0: लंपी चर्म रोग के लिए भी हमारे यहाँ ये टीकाकरण अभियान चलाया जाता है और ये भी साल में 2 बार।
1: और जो भेड़ और बकरी पालन से जुड़े पशुपालक हैं
0: जी,
1: तो पीपीआर के बारे में?
0: पीपीआर का टीकाकरण भी पूर्णतया निःशुल्क है और सभी हमारे पशु चिकित्सालयों पर इसके टीकाकरण के लिए वैक्सीन भेजी जाती है और टीम बनाकर हमारे पशुपालकों के द्वार पर जाकर के यदि किसी कारणवश किसी के पशु बाहर हैं, कई बार भेड़ों का झुंड बाहर गया होता है,
1: जी,
0: तो वापस आने पर हमारे पशुपालक उनसे संपर्क करके उनको टीकाकरण करा सकते हैं।
1: डॉक्टर साहब, जैसा आपने कहा कि पशुओं में संक्रामक रोगों से बचाव का उपाय केवल और केवल टीकाकरण है,
0: जी,
1: तो इसमें पशुपालक भाइयों बहनों की सहभागिता बढ़े, अपने 100% जानवरों का टीकाकरण कराएं, इसके लिए क्या आह्वान करना चाहेंगे?
0: मैं अपने सभी पशुपालक भाइयों बहनों से आह्वान करता हूं कि वो अपने सभी छोटे बड़े पशुओं को टीकाकरण अवश्य कराएं। बड़े पशुओं में गलाघोटू, गर्भपात और खुरपका मुंहपका का टीकाकरण, LSD का टीकाकरण, छोटे पशुओं में PPR का टीकाकरण, ये अवश्य कराएं। और साथ में पशुओं को टैगिंग करा करके अपने आधार कार्ड के साथ उनका रजिस्ट्रेशन जरूर करा दें ताकि उनका पशु पंजीकृत रहे और वो वास्तव में टीकाकरण करने के बाद उनका पोर्टल पर अपलोड हो जाता है, जिससे हमारे पास भी रिकॉर्ड रहता है और उनको भी भविष्य में बड़ी सुविधाएं उससे प्राप्त होती।
1: डॉक्टर साहब, पशुपालक भाइयों बहनों के मन में अभी भी ढेर सारे सवाल होंगे पशुओं में संक्रामक रोग से बचाव और टीकाकरण के बारे में। अगर इसके लिए आपसे सीधे संपर्क करना चाहें या आपके पशुपालन निदेशालय आना चाहें तो अपना मोबाइल नंबर बता दें।
0: जी, पशुपालन निदेशालय आने के लिए वो कभी भी स्वागत है उनका, आ सकते हैं। और हमारा मोबाइल नंबर वो नोट कर लें, 9415 50 868, 9415350868, 9415350868।
1: चलते चलते और क्या आह्वान करना चाहते हैं पशुपालक भाइयों बहनों का?
0: मैं अपने पशुपालक भाइयों बहनों से आह्वान करूंगा कि सरकार बहुत जोर शोर से उनकी आय को बढ़ाने के लिए, पशुपालन को अपनाने के लिए, पशुपालन में आने वाली समस्याओं को दूर करने के लिए कृतसंकल्पित है, इसलिए उनका सहयोग आवश्यक है। समय पर टीकाकरण, समय पर कृमिनाशक दवाओं का उपयोग और पशुओं को अच्छा हरा चारा, साफ सुथरा बढ़िया रहने का स्थान ये मुहैया कराते हुए अपनी आय को बढ़ाएं और पशुपालन विभाग की सुविधाओं का पूरा लाभ उठाएं, ये मेरा आह्वान है उनसे।
1: डॉक्टर SK द्विवेदी साहब, आज आप कार्यक्रम में आए और पशुओं में संक्रामक रोग से बचाव और टीकाकरण कितना जरूरी है और पशुपालक भाई बहन इसे कैसे करें ताकि पशुपालन उन्नत पशुपालन हो सके और उससे खेती

0: में आप और कामयाब हो सकें, इसके बारे में आपने ढेर सारी जानकारी दी। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद।
1: हिमांशु भैया।
2: हाँ रत्ना बहनी।
1: भाई बड़ी निजी तरह से हम पंचन का जानकारी दी कि पशुओं में संक्रामक रोग के कैसे बचाव हो सकते हैं, उनका टीकाकरण कैसे कराई। तो इके खातिन डॉक्टर संतोष कुमार द्विवेदी भैया का और जानकारी दिवाए खातिन डॉक्टर सुशील कुमार राय भैया का, दोनों जनन का बहुत बहुत धन्यवाद। और हम देख रहे हैं कि आज तो दिन सोमवार है, वैसे तो सभी दिन होते हैं भगवान के अपने, लेकिन सोमवार का दिन सब जने हम पंच हमेशा सोचे थे कि जानित है कि भोले बाबा के होते हैं, तो काहे ना एक भोले बाबा का भजन सुनवा दो।
2: बिल्कुल बहनी, आज बहुत बढ़िया लोक भजन लेके आए हैं भोले बाबा के, स्वर है दीपक सिंह भैया, तो और सुना जाए।

0: भाई भोजन तो बहुत निक रहा है।
1: हाँ बहनी,
0: और मौसम की जानकारी जरूरी है, काहे कि अगर मौसम पता होता तब अपनी खेती जो है बढ़िया होते।
1: बिल्कुल बहनी, हमारे पास मौसम आ चुका है जो भारत सरकार पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय भारत मौसम विज्ञान विभाग मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ से नया हुआ है।
0: हाँ
1: तो अगले 7 दिन अनुसार वर्षा पूर्वानुमान इस प्रकार है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यहाँ संभाग में यहाँ मौसम शुष्क रहने की संभावना है
0: हाँ
1: और कहूँ कहूँ तेज सतही हवा चलने की संभावना है।
0: अच्छा।
1: हुए पर पूर्वी उत्तर प्रदेश में यहाँ 21, 22, 23 और 24 के यहाँ कहूँ कहूँ जो है वर्षा गरज चमक के साथ हो एक संभावना है।
0: अच्छा,
1: हाँ बहनी
0: तो मतलब सावधानी रखने की जरूरत है।
1: बिल्कुल बहनी, अब आप तिर बाजार भाव आ चुका है तो अगर किसान अपने पंच बहन के यहाँ बढ़िया लाभ ले गए तो भैया बाजार के भाव पता हो अब जरूरी रहते हैं,
0: बिल्कुल सही
1: तो
0: बात
1: बहनी
0: कहा।
1: बाजार भाव बता दीजिए।
0: तो थोक मंडी भाव है रुपये प्रति कुंतल के हिसाब से।
1: हाँ
0: लखनऊ में गेहूं है 2595, कानपुर में 2575, अयोध्या में 2585, गोंडा में 2540।
1: बिल्कुल बहनी, चना है लखनऊ के 6,620 रुपया, कानपुर है 6,490 रुपया, अयोध्या है 6,400 रुपया, गोंडा है 6,550 रुपया प्रति क्विंटल। और हमें अगर मटर सफ़ेद कर बात की जाए तो लखनऊ क्या रहे 4,400 रुपया, कानपुर का है 4,550 रुपया, अयोध्या क्या रहे 4,260 रुपया और गोंडा क्या रहे 4,270 रुपया प्रति क्विंटल।
0: और मटर सफ़ेद वाली जो है सरसों काली, लखनऊ मंडी में 6,590, कानपुर में 6,800 और अयोध्या में 6,470 रुपये प्रति कुंतल के हिसाब से है।
1: बिल्कुल बहनी, हुए अगर बात की जाए गुड़पारी के तो लखनऊ के रहे 4,650 रुपया और कानपुर क्या रहे 4,310 रुपया प्रति क्विंटल।
0: हाँ, और देखो भैया, ये सब तो हो गए कि मौसम की जानकारी और थोक मंडी भाव रुपये प्रति कुंतल के हिसाब से। और
1: हाँ
0: कल के कार्यक्रमों पंच भाई का बता
1: बिल्कुल
0: दीजिए।
1: बहनी, कल के कार्यक्रम में यहाँ लोकायतन में यहाँ पर पंच भाई सुनी है वार्ता है कृत्रिम बुद्धिमता और ग्रामीण धरोहर संरक्षण। वार्ताकार हैं पुष्पा पंखुड़ी सिंह बहनी और खेती किसानी कार्यक्रम में यह बहुत बढ़िया भेंट वार्ता है कृषि रक्षा रसायनों के प्रयोग में सावधानियां। वार्ताकार हैं डॉक्टर लाल बहादुर यादव भैया और भेंटकर्ता डॉक्टर सुशील कुमार राय भैया हैं।
0: तो पंच भाई जो है, भाई बहनी सब जने एका जाने, और साथे भैया जो है अगर कोई बात कहा चाहते हैं हम पंचन से
1: हाँ
0: या कोई बतावा चाहते हैं तो वही के खातिन जो है हम पंचन का जो पता है वही का जरूर लिख ले, है ना।
1: बता दो बहनी।
0: हाँ, तो पंच भाई का सबका बता दें जाए
1: हाँ
0: कि जो अपने खेती किसानी से संबंधित पता है वो है द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी लखनऊ, लोकायतन एवं खेती किसानी, 18 विधानसभा मार्ग लखनऊ,
1: हाँ
0: और पिन है 226001, यानी कि 22601
1: हाँ
0: यो पिन है। और अगर ईमेल करा चाहते हैं तो वही के खातिन ईमेल एड्रेस लिख लें हम पंचन के,
1: हाँ
0: फार्म एंड होम AIR लखनऊ @gmail.com।
1: हाँ
0: तो ये सब बातें हैं, अगर कोई सुझाव देवा चाहते हैं तो दे सकते हैं। और ये के साथ देखो चले खोई रही बिरिया,
1: हाँ
0: तो पंच भाई से लीन जाए आज्ञा।
1: जय
0: जय
1: हिंद।
0: हिंद।

0: खेती किसानी कार्यक्रम समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में प्रादेशिक समाचार होंगे।
1: हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक।
2: बिल भरने के पहले तो आएगी ना।
3: सो गर्ल्स, क्या हो रहा है?
4: बिल हो रहा है।
3: चल अपना कार्ड दे।

0: बोल बोल के थक गया।
1: क्या हुआ?
0: नया किड बैग चाहिए।
1: तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से।
2: करेक्ट।
3: तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पर शिकायत करें। तो पहले बैंक, फिर CMS पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी नामंजूर।
0: चले
1: ले आ गया नया किड बैग।
4: RBI कहता है
5: पहले अपना बैंक, फिर RBI ओम्बुड्समैन।
6: पापा कॉलेज की फीस ज्यादा है।
7: बेटा
8: याद है बोनस के कुछ पैसे हमने दूसरे खाते में रखे थे?
7: 2 साल से खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है, शायद इनऑपरेटिव हो गया होगा।
9: तो अब बैंक जाके या वीडियो KYC से KYC अपडेट कराओ, खाता होगा एक्टिव एकदम फ्री। चलो
6: कहाँ?
9: एडमिशन कराने, खाता हुआ एक्टिव।
5: RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: ये कहानी है एक फोटोग्राफर और उसके अंतर्मन की।
10: ओह लवली, वेल डन,
5: बिजनेस लोन अप्रूव्ड।
10: अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट्स,
11: लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से।
10: नो, लोन लिए गए काम में ही लगाओ, समय से EMI चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ।
11: कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो।
10: आप कौन?
4: RBI कहता है
5: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
12: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में 12 प्रस्ताव पारित। पंचायत चुनाव के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन और लखनऊ समेत आगरा मेट्रो के विस्तार को मिली मंजूरी। मुख्यमंत्री ने आज लखनऊ में UP SSSC 2024 के अंतर्गत विभिन्न पदों पर चयनित 932 अभ्यर्थियों को बांटे नियुक्ति पत्र, कहा प्रदेश को देश का ग्रोथ इंजन बनाने में युवाओं की अहम भूमिका। लखीमपुर खीरी में सड़क दुर्घटना में 10 लोगों की मौत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री ने जताया शोक, मृतकों के परिजनों को अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। और प्रदेश में भीषण गर्मी और लू का दौर जारी, मौसम विभाग ने 22 मई तक अधिकांश जिलों में लू चलने का जारी किया ऑरेंज अलर्ट। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मनीषा पाठक। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज हुई प्रदेश कैबिनेट की बैठक में 12 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में ग्रामीण निकायों में अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण के निर्धारण के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन को मंजूरी दे दी गई। प्रदेश के श्रम एवं सेवायोजन समन्वय विभाग के मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि ये आयोग पंचायत चुनाव में पिछड़े वर्गों को आरक्षण प्रदान करने के लिए उनके सामाजिक और राजनीतिक पिछड़ेपन की जाँच करेगा।
13: माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार उत्तर प्रदेश की सरकार ने आज पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया है। आप सब लोग जानते हैं बड़ा प्रदेश है, 59,000 से भी ज्यादा पंचायतें हैं, हमारे सैकड़ों विकास खंड हैं, 75 जनपद हैं। तो पंचायत चुनाव कराने से पहले हमें आरक्षण की व्यवस्था को लागू करना और भी चीजों को देखना है, उसके लिए अब आयोग अध्ययन करेगा और आयोग जैसा रिपोर्ट देगा उसके आधार पर पंचायत के चुनाव की कार्रवाई को हम लोग आगे बढ़ाएंगे।
12: वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बताया कि मंत्रिमंडल ने 2 प्रमुख मेट्रो प्रस्तावों को भी मंजूरी दी है। इनमें आगरा मेट्रो के दूसरे कॉरिडोर के अंतर्गत स्टेशन निर्माण और एलिवेटेड सेक्शन के लिए आवश्यक भूमि का हस्तांतरण शामिल है। श्री खन्ना ने कहा कि केंद्र, राज्य सरकार और उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल निगम के बीच चारबाग से बसंत कुंज तक के पूर्व पश्चिम कॉरिडोर के लिए लगभग 5,801 करोड़ रूपये की अनुमानित लागत वाले त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन को स्वीकृति दी।
14: परिषद की दिनांक 5/3/24 को संपन्न बैठक में लखनऊ मेट्रो परियोजना फेज 1B ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर DPR पर माननीय मंत्री परिषद द्वारा अनुमोदन पहले प्रदान किया गया। ये खास तौर से इसी सरकार संबंध में लखनऊ मेट्रो फेज 1B ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर चारबाग से बसंत कुंज परियोजना की अनुमोदित लागत 5,801.05 करोड़ रुपए पर सहमति प्रदान की गई। इसमें 50-50% हिस्सा है भारत सरकार, 50% राज्य सरकार।
12: बैठक में मंत्रिमंडल ने पशु चिकित्सा के छात्रों के इंटर्नशिप भत्ते को 4,000 रूपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 12,000 रूपये प्रतिमाह किए जाने और मिर्जापुर में 2,799 करोड़ रूपये की लागत से बिजली ग्रिड उन्नयन के प्रस्ताव पर भी मुहर लगाई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में उत्तर प्रदेश

बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2024 के अंतर्गत विभिन्न पदों पर चयनित 932 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने बीते 9 वर्षों में 9 लाख से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार के साथ प्रदेश को विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ाने में राज्य के प्रतिभाशाली युवाओं ने भी अहम भूमिका निभाई है। परिणाम स्वरूप आज प्रदेश देश के ग्रोथ इंजन के रूप में अपनी पहचान बना रहा है।
1: 9 वर्ष की शानदार यात्रा में चुनौतियां थी, लेकिन उन चुनौतियों का सफलतापूर्वक

0: उत्तर प्रदेश अब बीमारू राज्य नहीं है, अब तो उत्तर प्रदेश देश की अर्थव्यवस्था का एक ग्रोथ इंजन बन करके भारत के विकास में अग्रिम भूमिका के साथ अपने आप को खड़ा कर रहा है।
1: प्रदेश सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार के बाद कल शाम मंत्रियों को विभागों का आवंटन कर दिया गया। नवनियुक्त कैबिनेट मंत्रियों में भूपेंद्र चौधरी को सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग सौंपा गया है, वहीं मनोज कुमार पांडे को खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग आवंटित किया गया है। सरकार ने मंत्रिमंडल विस्तार के दौरान स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री के रूप में पदोन्नत किए गए अजीत पाल सिंह को राजनीतिक पेंशन के साथ साथ खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग दिया है, जबकि सोमेंद्र तोमर को सैनिक कल्याण एवं प्रांतीय रक्षा दल विभाग सौंपा गया है। चार नवनियुक्त राज्य मंत्रियों में कृष्णा पासवान को पशुपालन और दुग्ध विकास विभाग, सुरेंद्र दिलेर को राजस्व विभाग, हंसराज विश्वकर्मा को लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय और कैलाश राजपूत को ऊर्जा और अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग सौंपा गया है। केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज वाराणसी में जिला विकास समन्वय और अनुश्रवण समिति दिशा की बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने जिले में संचालित विभिन्न विकास योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में केंद्रीय मंत्री ने देश में पेट्रोल, पीएनजी और एलपीजी की उपलब्धता को लेकर लोगों को आश्वस्त किया। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य अधिक से अधिक घरों तक पीएनजी सुविधा पहुंचाना है।
2: भारत एक ऐसा देश है विश्व भर में जिसमें ना कच्चे तेल की, ना पाइप नेचुरल गैस की, ना एलपीजी की कोई कमी हमने होने दी। एक हमने जो बहुत कोशिश की है काशी में, हम ये चाह रहे हैं जो एलपीजी कनेक्शन थे उसको ज्यादा तेजी से पाइप गैस में कन्वर्ट किया जाए। उससे सुविधा लाभार्थियों को भी होगी। एक तो पाइप गैस ज्यादा एफिशिएंट है, उस सस्ती भी है।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। केंद्र सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया में जारी संकट के कारण आयात में बाधा के बावजूद देश में रिफाइनरियां सामान्य रूप से काम कर रही हैं। आज नई दिल्ली में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि देश में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस का पर्याप्त भंडार है।
3: हमारी रिफाइनरीज नॉर्मल ऑपरेशन पर है और हमारे पास सफिशिएंट क्रूड इन्वेंट्रीज हैं। पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और नेचुरल गैस के सफिशिएंट स्टॉक्स हैं और किसी भी एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप पर या रिटेल आउटलेट पर ड्राई आउट नहीं है, लेकिन कई जगह पर अफवाहों के चलते पैनिक बाइंग देखी जा रही है। ये भी देखा जा रहा है कि जो बल्क सेल था वो पंप सेल पर भी शिफ्ट हो रहा है।
1: डुमरियागंज से सांसद जगदम्बिका पाल ने अपने क्षेत्रवासियों से आग्रह किया है कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के अनुसार डीजल, पेट्रोल के न्यूनतम प्रयोग के साथ साथ सोने की खरीद से बचें। देश भर में ईद उल अजहा यानी बकरीद 28 मई को मनाई जाएगी। कल देश में कहीं से भी चांद दिखने की पुष्टि नहीं हुई। इसके बाद लखनऊ स्थित मरकजी चांद कमेटी फरंगी महल के अध्यक्ष मौलाना खालिद रशीद और शिया मरकजी चांद कमेटी के अध्यक्ष मौलाना सैफ अब्बास ने बताया कि बकरीद 28 मई को मनाई जाएगी। लखीमपुर खीरी में आज सुबह एक सड़क दुर्घटना में 10 लोगों की मौत हो गई। हादसा उस वक्त हुआ जब पीलीभीत बस्ती राजमार्ग पर अदालीसपुर गांव के पास एक तेज रफ्तार ट्रक और सवारी वाहन की आमने सामने से टक्कर हो गई। ट्रक चालक हादसे के बाद घटना स्थल से फरार हो गया। घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शोक जताया है। साथ ही दोनों ने प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। प्रदेश में भीषण गर्मी और लू का दौर जारी है। बीते 24 घंटों में 46.4 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ बांदा देश में सर्वाधिक गर्म जनपद के रूप में दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने कल से 22 मई तक प्रदेश के अधिकांश जिलों में लू चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस दौरान कई जिलों में तापमान 47 डिग्री सेल्सियस के पार जाने की आशंका है। मौसम के प्रकोप को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रशासन को पूरी सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। एक रिपोर्ट।
4: भीषण गर्मी और लू के मद्देनजर मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों, स्वास्थ्य विभाग, बिजली विभाग और राहत एजेंसियों को अलर्ट मोड में रहने को कहा है। साथ ही सरकारी अस्पतालों में हीट स्ट्रोक से प्रभावित मरीजों के इलाज के लिए पर्याप्त इंतजाम सुनिश्चित करने को कहा है। श्री योगी ने सार्वजनिक स्थानों पर पेयजल की व्यवस्था और बिजली

0: आपूर्ति बाधित न होने पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से अपील की है कि अत्यधिक गर्मी और लू के दौरान अनावश्यक रूप से घरों से बाहर न निकलें। समाचार कक्ष से शैलेंद्र शर्मा।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में 12 प्रस्ताव पारित। पंचायत चुनाव के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन और लखनऊ समेत आगरा मेट्रो के विस्तार को मिली मंजूरी। मुख्यमंत्री ने आज लखनऊ में यूपी ट्रिपल एससी 2024 के अंतर्गत विभिन्न पदों पर चयनित 932 अभ्यर्थियों को बांटे नियुक्ति पत्र। कहा, प्रदेश को देश का ग्रोथ इंजन बनाने में युवाओं की अहम भूमिका। लखीमपुर खीरी में सड़क दुर्घटना में 10 लोगों की मौत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री ने जताया शोक। मृतकों के परिजनों को अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। और प्रदेश में भीषण गर्मी और लू का दौर जारी। मौसम विभाग ने 22 मई तक अधिकांश जिलों में लू चलने का किया ऑरेंज अलर्ट। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे।
3: आइडिया, यही करते हैं पार्टी।
2: पिज़्ज़ा पार्टी, ये। चल अपना कार्ड और पिन दे।
3: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
2: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग।
3: RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: प्लेटफॉर्म नंबर 2 से चलने वाली सुपर फास्ट एक्सप्रेस के यात्रियों
5: तुमने इसे मोबाइल चार्ज करना,
6: दिमाग चार्ज कर रखना।
7: ऐसे पब्लिक पोर्ट से फोन चार्ज किया तो पर्सनल डेटा होगा पब्लिक।
6: देखा
5: पापा, रुको मैं पे करता हूँ। नो सिग्नल।
7: अब क्या करोगे?
5: फ्री वाईफाई है ना?
6: बुद्धू सुधर जा।
7: पेमेंट्स के लिए नो ओपन वाईफाई,
5: यानी फ्रॉड को करो बाय बाय।
7: RBI कहता है
8: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
9: तुझे कॉलेज का टाइम याद है?
10: अरे कॉलेज की यादें छोड़िए, कितनी बातें भूल गया हूँ। तब का बैंक अकाउंट भी याद नहीं है।
9: बैंक अकाउंट पुराना हो तो पता चल सकता है?
10: कहाँ से पता चलेगा?
9: उद्गम से। RBI के उद्गम पोर्टल पे रजिस्टर करके लॉग इन करें और अपने डिटेल्स डालकर 10 साल या उससे पुराने निष्क्रिय खातों को सर्च करें। बैंक से संपर्क करके खाता सक्रिय बनाओ।
11: आज ही सर्च करूंगा।
9: तो आज की चाय तेरी तरफ से।
8: RBI कहता है
12: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
8: ये कहानी है एक फोटोग्राफर और उसके अंतर्मन की।
13: ओह लवली, वेल डन।
8: बिजनेस लोन अप्रूव्ड।
13: अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट्स,
14: लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से।
13: नो, लोन लिए गए काम में ही लगाओ। समय से EMI चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ।
14: कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो।
13: आप कौन?
12: RBI कहता है
8: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
15: हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम स्वास्थ्य वार्ता। आज इस कार्यक्रम में पहले सुनिए ब्रेन स्ट्रोक कारण लक्षण और उपचार विषय पर प्रोफेसर डॉक्टर नीरज कुमार से आशीष चतुर्वेदी की भेंट वार्ता।
16: ब्रेन स्ट्रोक या लकवा या पक्षाघात एक इमरजेंसी सिचुएशन हो सकती है। ब्रेन स्ट्रोक क्या होता है, इसको आने पर क्या करना चाहिए, इसकी पहचान कैसे होती है, कैसे इसको हम अपनी लाइफस्टाइल से इससे बच सकते हैं, इन सभी विषयों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर नीरज कुमार साहब हैं, जो किंग जॉर्जेस मेडिकल विश्वविद्यालय लखनऊ के न्यूरोलॉजी विभाग में प्रोफेसर हैं। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आप बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी के कार्यक्रम में।
17: धन्यवाद
16: डॉक्टर साहब। सबसे पहले तो इसी पर आते हैं कि ब्रेन स्ट्रोक क्या है।
17: जैसे हार्ट अटैक के समय तो मरीज को दर्द महसूस होता है, तो वो तुरंत उस सिम्टम को समझ पाता है और बता पाता है और इलाज करने के लिए डॉक्टर के पास पहुंच जाता है। ब्रेन स्ट्रोक उसमें क्या दिक्कत होती है कि मरीज में आमतौर पे 3-4 तरह के लक्षण होते हैं, जिसमें कि मरीज में आवाज में बदलाव आ जाए या मरीज में किसी अंग में कमजोरी आ जाए या मरीज में होश में कमी हो जाए। तो मरीज जो है किसी को बता नहीं पाता है और अटेंडेंट को भी सुबह तक पता नहीं चलता है, तो उस वजह से जो है इलाज या डॉक्टर के पास जाने में देरी हो जाती है। तो ब्रेन स्ट्रोक अगर दिमाग में जो खून की नसें ब्लड की सप्लाई ले जा रही हैं, तो वो अचानक से उसमें कोई कमी आ जाए, चाहे वो खून का थका जमने की वजह से हो या फिर धमनियां फट जाएं उसकी वजह से हो और ब्रेन का कोई भी हिस्सा इस तरह से प्रभावित होता है, तो उसे हम ब्रेन स्ट्रोक कहते हैं। एक होता है

0: इस्चेमिक स्ट्रोक, इस्चेमिक स्ट्रोक करीब 80-85% मरीजों में इस्चेमिक स्ट्रोक होता है, और दूसरा होता है हेमरेजिक स्ट्रोक जो कि 15-20% में हेमरेजिक स्ट्रोक होता है। इस्चेमिक स्ट्रोक का मतलब होता है कि जो खून का प्रवाह वाली खून की नलियां हैं उसमें अंदर से रुकावट आ जाए जिससे कि आगे के हिस्से में कोई ब्लड ना जाए। हेमरेजिक स्ट्रोक में खून की नलियां जो है वो कमजोर हो जाती है तो वो फट जाती है, फटने की वजह से खून का रिसाव ब्रेन में चालू हो जाता है और जो ब्रेन का हिस्सा है वो भी डैमेज होता है, और खून की धमनियों में जब खून इकट्ठा हो गया तो आगे का ब्लड भी रुक जाता है और आसपास जहां जहां ब्लड जाएगा वो हिस्सा भी डैमेज हो जाता है। तो दोनों में डैमेज तो ब्रेन का हो ही रहा है लेकिन दोनों में कारण जो है थोड़े से अंतर में है।
1: डॉक्टर साहब, इसमें ज्यादा डैमेज किसमें होता है अगर उसको समय से इलाज मिल जाए?
0: देखिए, इस्चेमिक स्ट्रोक जो होता है, जो ब्रेन में खून की जो सप्लाई जा रही है वो एंटीरियर सर्कुलेशन और पोस्टीरियर सर्कुलेशन दो तरह से खून की नसें जो है वो अंदर जो है खून की सप्लाई ले जाती है। तो मुख्यतः एक खून की नस जितनी एरिया में ब्लड की सप्लाई करेगी उतने एरिया को ही अगर उसमें रुकावट होगा तो डैमेज होगा। तो अलग अलग हिस्सों में जो सबसे बड़ा हिस्सा जो हम कहते हैं वो मिडिल सेरेब्रल आर्टरी का एरिया होता है, जिसमें अगर वो पूरी आर्टरी अगर शुरुआत में ही अगर बंद हो जाती है तो पूरे ब्रेन का एक तरफ का हिस्सा, दाहिने तरफ या बाएं तरफ का हिस्सा जो है वो क्षतिग्रस्त होता है और उसकी सूजन की वजह से वो अगले तरफ के ब्रेन के हिस्से को भी दबाने लगता है, डैमेज होने लगता है और होश में कमी आने के साथ में मरीज गंभीर स्थिति में पहुंच सकते हैं। अगर ब्रेन को समझा जाए तो ब्रेन में दाहिने और बाएं तरफ जो ब्रेन के काम होते हैं वो अलग अलग होते हैं, उसी के साथ साथ ब्रेन के कई सारे हिस्सों के काम भी अलग अलग होते हैं। जैसे अगर अचानक आंखों की रोशनी में कोई फर्क आ जाए तो वो भी एक लकवे का प्रकार हो सकता है। अगर आवाज की लड़खड़ाहट के साथ में अगर किसी को चलने में डगमगाहट हो जाए तो जो सेरिबलम हमारा ब्रेन का हिस्सा होता है तो उसकी वजह से भी आदमी में होश तो रहता है, आवाज में थोड़ी लड़खड़ाहट पर महसूस होती है लेकिन चलने में बहुत डगमगाहट होती है। ये भी लक्षण जो है वो स्ट्रोक के ही है। लेकिन कोई भी चीज अगर अचानक किसी मरीज में हो रही है तो उसको स्ट्रोक मानते हुए उसका डॉक्टर से उपचार के लिए जरूर जाएं।
1: तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले करना क्या हो?
0: देखिए, अगर किसी भी मरीज में इस तरह के अगर सिम्टम्स आ रहे हैं तो सबसे पहले तो आप जो अपने आसपास के चिकित्सक हैं या फिर जो भी नियरेस्ट अस्पताल है वहां जरूर पहुंच जाएं। वहां पहुंचने पे डॉक्टर एक बार देख लेता है तो वो सबसे पहले जो जांच की जरूरत पड़ती है ब्लड प्रेशर नापने के बाद वो है सीटी स्कैन। अगर सीटी स्कैन समय पे हो जाता है तो एक तो ये पता चल जाता है कि इस्चेमिक स्ट्रोक है कि हेमरेजिक स्ट्रोक है। समय का इम्पोर्टेंस जो है इस्चेमिक स्ट्रोक में ज्यादा है, तो जो अस्पताल ऐसे हैं जिनके अंदर इस्चेमिक स्ट्रोक की ट्रीटमेंट जिसमें कि क्लॉट हो, तो वो जो है अगर 4.5 घंटे के अंदर अगर वो दवा दे दी जाती है तो जो खून के थके ब्रेन में जमे होते हैं वो खुल जाते हैं। तो इसके लिए समय सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है।
1: डॉक्टर साहब, क्या कुछ ऐसे भी जोखिम है जो स्ट्रोक को बढ़ाते हैं?
0: हमारे स्ट्रोक के कई सारे रिस्क फैक्टर्स होते हैं जिसको हम दो कैटेगरी में आसानी से बांट सकते हैं। एक होता है मॉडिफाइबल और एक होता है नॉन मॉडिफाइबल। तो कई लोगों में अनुवांशिक भी चीजें होती हैं जिसकी वजह से स्ट्रोक के रिस्क ज्यादा होते हैं, जिसको हम नहीं बदल सकते हैं। लेकिन जो चीजें हम चेंज कर सकते हैं उसमें खासकर यही है कि हेल्दी लाइफस्टाइल हो, वेट हमारा एक एप्रोप्रिएट हो, ब्लड प्रेशर नियमित रूप से चेक हो और ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रखा जाए अगर ब्लड प्रेशर की मेडिकेशन ले रहे हैं। अगर किसी को कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है तो चिकनाई वाली चीजें कम खाएं और कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल रखें। अगर कोई धूम्रपान कर रहा है उससे भी जो है ब्लड की थके जमने के चांसेस बढ़ जाते हैं। किसी को अगर हार्ट अटैक की समस्या हुई है पहले तो हार्ट से संबंधित दवाइयां जो कि खून पतला करने के लिए दी जाती हैं उसका इलाज भी जारी रखना जरूरी होता है, और अगर कोई ड्रग्स ले रहा है तो ये भी जो है स्ट्रोक के कारण होते हैं। तो इन सारे रिस्क फैक्टर्स को कंट्रोल करना, इनसे बचना, यही जो है सबसे पहला इलाज है
1: प्रिवेंशन। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ब्रेन स्ट्रोक के बाद अक्सर ये देखा जाता है कि कुछ डिसेबिलिटी हो जाती है, तो क्या एक समय के बाद रिकवरी भी पॉसिबल होती है ऐसे पेशेंट्स में?
0: इलाज को अगर हम देखें तो शुरुआती इलाज में तो जैसे मैंने बताया कि 4.5 घंटे के अंदर इस्चेमिक स्ट्रोक में आप थ्रोम्बोलिसिस कर सकते हैं। उसके अलावा भी अस्पताल के अंदर जब शुरू में मरीज 10 दिन जब रहता है उस समय ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना, दिमाग में सूजन कम हो जाए उसके लिए दवाइयां देना, ये सब प्रक्रियाओं के बाद जब मरीज एक बार डिस्चार्ज होता है तो कहीं ना कहीं कुछ चीजें उसमें जो है पूरी सुधार नहीं होती, जिसमें खासकर लकवा या कमजोरी चीज रहती है, आवाज में बदलाव रहता है। तो आगे दवाइयों के साथ में स्पीच थेरेपी का रोल भी रहता है जिसमें धीरे धीरे करके जो स्पीच में रिकवरी है उसके लिए गाइड किया जाता है। ब्लड प्रेशर कंट्रोल के साथ में फिजियोथेरेपी का भी रोल रहता है जिसमें कि कैसे एक्सरसाइज करना है, धीरे धीरे जब दिमाग में न्यूरॉन्स जो है वो डैमेज उसका सही होगा तो हाथों में जो कमजोरी जब इम्प्रूव करे तो हाथ में पैर में जो जोड़ है वो बिल्कुल जम ना जाए, गांठे जो है अकड़ ना जाए, इसके लिए फिजियोथेरेपी करते रहना जरूरी है ताकि हाथ और पैर मुलायम रहें और जब ताकत आए तो आदमी चल पाए या अपनी डेली रूटीन के काम कर पाए।
1: डॉक्टर साहब, चलते चलते हमारे श्रोताओं के लिए ब्रेन स्ट्रोक पर आप क्या कहना चाहेंगे?
0: ब्रेन स्ट्रोक के लिए अब हमारी जैसे दिनचर्या होती जा रही

0: ये है, तो उसमें कई सारी बीमारियों के कुछ मुख्य कारण हैं, जैसे आप माइग्रेन ले लीजिए, एपिलेप्सी ले लीजिए, आप स्ट्रोक ले लीजिए। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि दैनिक दिनचर्या में एक्सरसाइज तो ज़रूर घूमें टहलें, एक्सरसाइज करें, ताकि आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहे, आपका शुगर कंट्रोल रहे। दूसरी चीज़ जो है, आप हर 6 महीने पर या 1 साल पर अपना ब्लड प्रेशर जरूर चेक कराते रहें, शुगर चेक कराते रहें। स्मोकिंग, अल्कोहल, ये दो चीज़ ऐसी है जिसको आप ना करें सेवन, तो आपके जीवन में हर तरह से वो अच्छा है।
1: फायदा ही
0: हाँ,
1: है।
0: इसके अलावा नींद, तो रात में समय पे सोना और एक अच्छी नींद लेना, कम से
1: बहुत
0: कम
1: ज्यादा
0: 6 से 7 घंटे की अगर रात की आपकी नींद होती है, तो आपका दिमाग भी चुस्त दुरुस्त रहेगा, इन बीमारियों से भी बचेंगे, और घर में भी जो भी आपका पारिवारिक जो संबंध है, लोगों से मिलना जुलना है, वो भी एक
1: बिल्कुल
0: हंसमुख
1: बिल्कुल।
0: प्रभाव में रहेगा।
1: तो डॉक्टर नीरज कुमार साहब, आप आकाशवाणी के स्टूडियो आए और ब्रेन स्ट्रोक पर एक लंबी चर्चा में आपने भाग लिया, और जो हमारे श्रोता आपको सुन रहे हैं वो निश्चित तौर पर इससे लाभान्वित होंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी आप ब्रेन स्ट्रोक कारण, लक्षण और उपचार विषय पर प्रोफेसर डॉक्टर नीरज कुमार से आशीष चतुर्वेदी की बातचीत सुन रहे थे। स्वास्थ्य वार्ता कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए कार्निया की समस्या और निदान, इस विषय पर प्रोफेसर डॉक्टर अरुण शर्मा से सुरेंद्र राजेश्वरी की बातचीत।
3: आज कार्यक्रम में हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर अरुण शर्मा, जो कि नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं KGMU लखनऊ में। डॉक्टर अरुण, आज के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
4: धन्यवाद।
3: ये तो शरीर के सारे अंग बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, ये महत्वपूर्ण चीजें जो पूरी कायनात को, पूरी दुनिया का जो रसा स्वादन है, उसका जो दर्शन है, हमें आंख कराती हैं। इसका स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है, लेकिन कई बीमारियां ऐसी हैं अगर आंखों में आ जाती हैं तो जिसका समाधान अगर विशेषज्ञ के पास जाकर के जल्दी नहीं कराए तो बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है। ऐसी ही एक बीमारी है कार्निया। कार्निया की समस्या और समाधान, यह है हमारे आज का विषय जिस पर हम बातचीत करेंगे। डॉक्टर, इससे पहले कि ये क्यों होता है, कैसे होता है, इसका समाधान क्या है, कि कार्निया है क्या बेसिकली?
4: जी, जो कार्निया है इसको आम भाषा में लोग पुतली भी कहते हैं। तो ये कार्निया जो होती है एक एवास्कुलर स्ट्रक्चर होती है। तो हमारे जो 5 सेंसेस भगवान ने हमको दिए हुए हैं, उसमें एक सेंस है आंख। हम आंखों से हम लोग 85% चीजें सीखते हैं। रही बात क्या कहते हैं कार्निया क्या होता है, कार्निया एक छोटा सा पतला स्ट्रक्चर होता है जो 0.5 मिलीमीटर आप कह सकते हैं, ये आंख के ऊपरी सतह से होता है और ये एवास्कुलर होता है, मतलब इसमें कोई धमनियां नहीं होती हैं, और जो टीयर होती है उससे न्यूट्रिशन मिलता है। ये शीशे की तरह होता है, तो चश्मा जो होता है वो रेज को फोकस करता है, तो ये जब ये फोकस करती है तो जिसका अगर नॉर्मल नहीं होता है तो उसको चश्मे लगाने की जरूरत पड़ती है, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया की आपने नाम सुना है। तो पुतली का मेन काम जो है वो रेज को फोकस करना, लेकिन ये बहुत बड़ा काम है। इसलिए बड़ा है कि अगर मान ली किसी की पुतली सफेद हो गई या किसी वजह डैमेज हो गई तो फोकस नहीं कर पाएगा, उसको दिख नहीं पाएगा। पुतली का जो न्यूट्रिशन होता है वो टीयर फिल्म से मिलता है। तो पहली बीमारी तो तब हो जाती है जब आपकी आंखों में मतलब टीयर का सेक्रेशन कम है, जिसको ड्राई आई बोलते हैं। ड्राई आई कई तरीके की होती है, मतलब सिंपल भी हो सकती है, मॉडरेट भी हो सकती है, सीवियर भी हो सकती है। जो सीवियर ड्राई आई होती है वो क्या कहते हैं कि बहुत खराब होती है, इसमें दर्द, लाली, ये सब चीजें होती है। प्लस एक चीज और भी कॉमन होती है ड्राई आई से रिलेटेड, कि इसको बोलते हैं हम लोग कंप्यूटर विजन सिंड्रोम। तो जब आदमी पढ़ाई कर रहा होता है या किसी जॉब में होता है और टीवी स्क्रीन के सामने होता है, उसको 6 घंटे काम करने तो वो टकाटक आंख लगाए रखता है और वो पलक ब्लिंक नहीं कर पाता। जब ब्लिंक नहीं कर पाता तो कॉर्निया को टीयर फिल्म नहीं पहुंच पाती है, तो जिसके वजह से उसको ड्राई आई हो जाती है। और एक समस्या होती है ट्रामा की। तो ट्रामा जो है पुतली में 2 तरीके से होते हैं। एक तो ऐसा ट्रामा होता है जिससे आंख में छेद हो जाता है, कट जाता है, या एक ऐसा होता है जिससे मान लीजिए फार्मर भाई लोग हैं हमारे, उनके पत्तियों से चोट लग गई है, वेजिटेटिव ऑर्गन से मतलब लकड़ी की बनी हुई किसी भी चीज से चोट लग गई, तो उससे फंगल अल्सर हो सकता है। तीसरी बीमारी ये होती है कि अगर पुतली का, जैसा मैंने बताया कि काम होता है रेज को फोकस करना, यदि ये रोज रेज को पहले फोकस कर देती है पुतली से तो उसको बोलते हैं हम लोग मायोपिया, यदि उसके बियॉन्ड अगर फोकस कर देती है तो उसको बोलते हैं हम लोग हाइपरमेट्रोपिया।
3: इसके शुरुआती जो लक्षण है वो कौन कौन से?
4: पुतली की बीमारी में सबसे बड़ा लक्षण तो आपको ये आएगा कि आपको आंख में डिस्कम्फर्ट लगेगा, पेन होगा और देखने में प्रॉब्लम आएगी, मतलब आपको चीजें धुंधली धुंधली दिखेंगी और पलकों में स्वेलिंग हो सकती है। तो ये सब इसके मतलब एक सिम्टम अगर पूछा जाए तो एक सिम्टम जो है वो उसको कम दिखेगा।
3: अच्छा,
4: ये बहुत खतरनाक है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पुतली अगर मान ली किसी की सफेद है, वो एक ही आंख उसका काम करा, दूसरा नहीं करा, डीएल नहीं बन सकता उसका, उसको रोड क्रॉस करने में भाई 2 आंख से क्या होता है, जब 2 आंखें होती हैं इंसान के पास तो वो डेप्थ को पहचान पाता है, जब उसके पास 1 आंख होती है तो डेप्थ को उसको एक्सेस करने में उसको प्रॉब्लम होती है। तो पुतली वैसे भी शरीर में है तो परेशानी तो करती है, लेकिन इसमें आपकी लर्निंग भी मतलब काफी अफेक्टेड हो जाती है।
3: अच्छा, इसमें उम्र का भी कोई मसला है क्या?
4: जी बिल्कुल, जैसा कि मैंने बताया बहुत सारी माताएं हैं हमारी ऐसी जो कमजोर होती हैं, अगर वो प्रेग्नेंट होती हैं, उनके पुतली की बीमारियां जन्मजात होती हैं, जन्मजात ग्लोकोमा होता है, जन्मजात मोतियाबिंद होता है।
3: अच्छा,
4: ये सारी बीमारियां होती हैं। तो बचपन में भी होती हैं, आप जो लोग घर के बाहर रहते हैं, स्कूटर ड्राइव कर रहे हैं, कारपेंटर्स हो गए, खेत में काम करने वाले लोग, जो लकड़ी चोट लगने की संभावना बहुत होती है। आप देखिए सबके पास फोन है ही है, वो मतलब हमेशा फोन लेके चला, सारे रील्स पे रील 3 घंटे 4 घंटे देख रहा है, तो उससे ड्राई आई की प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये सारी परेशानियां बहुत ही बाहुल्य रूप में हमारे देशों में देखी जा रही है।
3: किन किन बातों का ध्यान रखना होगा कि ये बीमारी ना आए?
4: देखिए, जैसे कोई हम 6-7 घंटे काम करता है,

0: ये बोलते हैं कि जब भी आप काम करिए तो 20 मिनट काम करने के बाद 5-10 सेकंड के लिए आंख बंद करके बैठ जाइए या बीच में ब्लिंक करते रहिए, ठीक है। और दूसरा क्या करें, जो लोग हमारे मतलब गाड़ी चलाते हैं, फार्मर्स हैं, तो वो प्रोटेक्टिव ग्लासेस मतलब यूज करें। प्लस क्या कहते हैं, जो ड्राई आई की समस्या है उसके लिए आप जो गैजेट यूज कर रहे हैं या गैजेट पे समय ज्यादा बिता रहे हैं उसको कम होना चाहिए, या फिर उसको डॉक्टर के सुपरविजन से पूछे कि कितने देर कर सकते हैं, या अगर कर भी रहे हैं तो बहुत जरूरी तो कितने देर में ब्रेक लेना चाहिए, और क्या क्या हम सप्लीमेंट ले सकते हैं, जैसे रेड चीजें और ग्रीन चीजें, अनार गाजर पपीता होना चाहिए, ये खान पान में ध्यान रख सकते हैं, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज हो जानी चाहिए। इन सब चीजों से आपकी जो नेचुरल इम्यूनिटी बढ़ेगी, प्लस आपकी बॉडी में जो टीयर फिल्म की क्वालिटी होगी वो भी काफी अच्छी बेहतर होगी।
1: कार्निया का प्रत्यारोपण भी हो सकता है क्या?
0: बिल्कुल, इस समय तो सिटी में सबसे ज्यादा कार्निया का प्रत्यारोपण मैं ही कर रहा हूँ। पुतली होती है 5 लेयर थिक होती है, तो जिसको ऊपर के लेयर की प्रॉब्लम होती है उसको हम ऊपर की लेयर लगा देते हैं, जिसको नीचे की लेयर की प्रॉब्लम होती है उसको नीचे की लेयर लगा सकते हैं। तो जो ऊपर की लेयर की जो ट्रांसप्लांट उसको बोलते हैं डार्क डीप एंटीरियर लैमेलर क्रेटोप्लास्टी, और जो नीचे वाला होता है उसको बोलते हैं डेस्मेट स्ट्रिपिंग एंडोथेलियल क्रेटोप्लास्टी। तो जैसा कि आपको मैंने बताया कि चोट लग जाने के बाद उसकी सफेदी आ जाती है, तो सफेदी को हटाने के लिए हम लोग उसको फिर ट्रांसप्लांट करते हैं। इंडिया में करीब 22 लाख लोग ऐसे हैं जो कि वेट कर रहे हैं कि पुतली सफेद है चोट की वजह से, कई सारी वजह से। कारण यह है कि गवर्नमेंट चाहती है कि 1 लाख ट्रांसप्लांट प्रति वर्ष हो, पिछले 40 साल से चाह रही है, और हर साल कभी 25,000 होता है कभी 30,000 होता है। तो ये जो 22 लाख का नंबर है इसमें करीब हर साल 30,000 और 50,000 नंबर इसमें बढ़ता चला जाता है। तो हमारे वहाँ एक और डाटा है जिसमें ये कहा जाता है कि 1,000 पॉपुलेशन में 7 डेथ होती है। यदि आप ये निर्णय ले लें कि हम डेथ के 6 घंटे के अंदर आई बैंक को इन्फॉर्म कर दें, तो पुतली मतलब आई बैंक की टीम ला सकती है और जो लोग वेट करें उनको प्रत्यारोपण कर सकती है। बहुत ही आसान सा तरीका है कि जिस शहर में आप रहते हैं उसका कोड, जैसे लखनऊ में है तो 0522 और उसके आगे 1919, ये नंबर लाके आप डायल कर दिए किसी भी इंडिया में कहीं पे, रेस्पेक्टेड आई बैंक को पहुंच जाएगा, हमारी टीम आ जाएगी, कॉर्निया ले जाएगी, जिसको प्रॉब्लम होगी उसको लगा।
1: डॉक्टर साहब, अच्छा इस कॉर्निया की कोई नई तकनीक भी आ गई है क्या?
0: हम एक पुतली से 2 लोगों को लगा सकते हैं, तो मतलब कि एक आदमी से 4 लोगों को ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। लेकिन कोशिश तो यही रहती है ना कि अगर हमको पुतली तो मिले, क्योंकि डेथ के बाद क्या कहते हैं लोग याद ही नहीं करते हैं बताना। तो इसीलिए गवर्नमेंट चाहती है आपके चैनल के माध्यम से, अखबार के माध्यम से, जो एनजीओज उनके माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाएगा। डेथ के 6 घंटे के भीतर यदि आपने 1919 नंबर पे अगर डायल कर दिया, उसके पीछे अपने डिस्ट्रिक्ट का एसटीडी कोड लगा के, तो आप बहुत बहुत अच्छे काम करेंगे और आप किसी न किसी की भला कर पाएंगे।
1: इस समय आपकी इस बातचीत को डॉक्टर सारे लोग सुन रहे हैं कि अच्छी सेहत के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: जी हम बिल्कुल संदेश अच्छे ही देना चाहेंगे कि भारत एक ऐसा देश जहाँ की सारी ऋतुएं होती हैं, तो जितने भी सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं ताकि आपके शरीर का अंग सारे काम करें, और अपने आंखों बचाएं, बच्चों को अगर फोन पे बहुत लगे उनको समझाएं कि उसका क्या नुकसान हो सकता है, इन सब चीजों को ध्यान देंगे तो आंख की बीमारी से, पुतली की बीमारी से आप बच सकेंगे, और अगर होगी भी तो बहुत कम मात्रा में होगी।
1: कार्निया की समस्या और समाधान, इस महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ थे प्रोफेसर डॉक्टर अरुण शर्मा। डॉक्टर अरुण शर्मा, आप आए और बहुत ही सारगर्भित बातें आपने कार्निया से संबंधित सुनने वालों तक पहुंचाई है। आपका स्टूडियो आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: कार्निया की समस्या और निदान, इस विषय पर अभी आप प्रोफेसर डॉक्टर अरुण शर्मा से सुरेंद्र राजेश्वरी की बातचीत सुन रहे थे। अब आज का स्वास्थ्य वार्ता कार्यक्रम समाप्त होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ का प्रसारण मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्ज के साथ साथ न्यूज़ ऑन AIR ऐप और DTH पर भी। लीजिए अब सुनिए फिल्म संगीत।

कार्यक्रम की पहली पेशकश थी सलामी फिल्म से। इस गीत के बोल लिखे थे समीर ने, जिन्हें संगीत से संवारा था नदीम श्रवण ने। इस गाने में आवाज अलका याग्निक की थी। कार्यक्रम का अगला नगमा आप सुनेंगे उफ ये मोहब्बत फिल्म से। शब्द रचना है रानी मलिक की, संगीतकार हैं निखिल विनय और इस गाने को आप सुनेंगे कुमार सानू की आवाज में।

अभी आपने कुमार सानू और अलका याग्निक को सुना सनम फिल्म में। इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए अब सुनिए हिंदी कार्यक्रम।

0: हिंदी कार्यक्रम के आज के इस अंक में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, सुरेंद्र राजेश्वरी की ओर से। श्रोताओ, आज के इस अंक में आपको एक कहानी सुनवाते हैं जिसका शीर्षक है ठहरा हुआ मोबाइल युग। कहानीकार हैं श्री नवीन जोशी।
1: एक मित्र के घर छोटी सी अंतरंग पार्टी थी। 8-10 परिवार जमा हुए थे। हंसी मजाक, गपशप, पुराने दिनों की यादें। भागम भाग वाले जीवन में ऐसे अवसर कम ही आते हैं, लेकिन बच्चे बार बार उनके रंग में भंग कर दे रहे थे। कोई बालक रोता हुआ आता तो कोई मम्मी का पल्लू खींचकर घर चलने की जिद करने लगता। आनंद में बार बार व्यवधान पड़ते देखकर सभी माता पिताओं ने बच्चों को अपने मोबाइल पकड़ा दिए। अब शांति हो गई। बच्चे दूसरे कमरे में जाकर मोबाइल में खो गए। जन्मदिन की पार्टी फिर निर्विघ्न चली। यह इन दिनों का आम दृश्य है। छोटा बच्चा दूध न पी रहा हो, रो रहा हो या कोई जिद कर रहा हो, माता पिता उसे मोबाइल पकड़ा देते हैं। गोदी के शिशु भी मोबाइल पकड़े पकड़े दूध पीते हैं और नींद भी मोबाइल से ही आती है। वही लोरी सुनाता है, कहानी भी। ऐसे ही एक देर शाम मैंने कुछ बच्चों को पार्क की बेंच पर मोबाइल में खोए देखा। 5 बच्चे थे और 5ों सिर झुकाए मोबाइल की स्क्रीन में आँखें गड़ाए हुए थे। जो वे देख रहे होंगे उसी के अनुरूप उनके चेहरे की भावभंगिमाएं बन रही थी, आंखें सिकुड़ या फैल रही थी। मैं उन्हें देखता रहा और अपने दिनों को, बल्कि अपने बचपन को याद करता रहा। हमारे समय में मोबाइल नहीं था। हम बच्चे पार्क में उछल कूद करते, गेंदताड़ी और 7 टाइल्स खेलते, कभी छुपन छुपाई वगैरह, अंधेरे में बैठे अंत्याक्षरी खेलते, गाने गाते और पहेलियां बुझाते, कुछ नहीं तो पार्क में लोटपोट लगाते और देर शाम मिट्टी से सने कपड़ों, गंदे हाथ पैरों से घर लौटते। थोड़ी बहुत डांट पड़ती, फिर नहलाए धुलाए जाते। माँ झुंझलाती, कितनी मिट्टी फतोड़ कर लाया है। घुटने की खरोंच पर चिंता व्यक्त करती, फिर दवा लगाती, हिदायत देती, ऐसे खेल मत किया करो जिसमें चोट लगती है। हम बच्चों पर इसका कोई असर नहीं होता था। अगली शाम और भी मिट्टी लगाकर लौटते थे। जो बच्चे पार्क की बेंच पर बैठे मोबाइल में खोए थे, उनके बगल में उसी बेंच पर उनकी पानी की बोतलें भी रखी थी। बोतलें नहीं, सिपर कहते हैं। खैर, प्यास लगने पर बच्चे सिपर मुंह से लगाते, फिर मोबाइल में खो जाते। मैं फिर अपने बचपन में चला गया। कबड्डी या गेंदताड़ी खेलते खेलते प्यास लगी तो पार्क की सिंचाई करने वाला पाइप मुँह से लगा कर पी लेते। हमारे ज़माने में पानी बोतल में नहीं होता था। स्कूल के बस्ते में सिर्फ किताबें होती थी, उसमें सिपर की जगह ही नहीं होती थी। स्कूल में दीवार पर एक साथ कई नल लगे होते थे, या सड़क के किनारे लगे नल से चुल्लू बनाकर गटागट पानी पी लेते थे। बम्बा कहते थे उसे। हमें किसी ने नहीं टोका कि बम्बे का या स्पार्क का पानी क्यों पीते हो। आज मैं किसी बच्चे को पार्क का पाइप उठाकर पानी पीते नहीं देखता। मेरे पड़ोस में एक नवयुगल रहता है। उनकी एक प्यारी सी बच्ची है, बिल्कुल गुड़िया जैसी। नया खूबसूरत फ्रॉक पहनकर वह कभी अपनी माँ की, कभी पिता की और कभी अपनी दादी की गोद में दिखाई देती है। इन दिनों वह गोद से उतरकर घुटने घुटने चलने की जिद करती है। दादी उसे नीचे उतार देती हैं और पोती को घुटनों के बल आगे सरकता देखकर खुश होती हैं। लेकिन उसकी मम्मी अपनी सास पर गुस्सा करती है। देखिए, इसने मिट्टी लगा ली है, आपने नीचे क्यों छोड़ दिया। फिर वह नेपकिन में सैनिटाइजर या कुछ लगाकर उसके हाथ पांव पोछती है, उंगलियां साफ करती है और बच्ची को समझाती है, नीचे छिच्छी है, छिच्छी, छिच्छी में नहीं जाते। फिर उसे गोद में उठाती है, प्रेम में बिठाती है। बच्ची नीचे जमीन पर उतरने की

0: करती है, लेकिन वहाँ छिछी है। वो गोद या प्रेम या सैनिटाइज्ड घर की कैद में है। जिन बच्चों ने मिट्टी में घुटने नहीं घिसे, मिट्टी नहीं खाई, उनका बचपन मुझे करुणामय लगता है। सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता की पंक्ति याद आती है, माँ ओ कहकर बुला रही थी, मिट्टी खाकर आई थी, कुछ मुँह में कुछ लिए हाथ में, मुझे खिलाने आई थी। तब मिट्टी में खेलने, मिट्टी खा लेने पर कैसा ममत्व उमड़ा करता था। पार्क की बेंच पर बैठे मोबाइल में खोए साफ सुथरे बच्चों से मैं कहना चाहता हूँ, आओ पहेली बूझें, मोबाइल रख दो। किंतु मैं कह नहीं पाता, मेरे बोल नहीं फूटते। पता नहीं वे सुनेंगे भी या नहीं, सुनेंगे भी तो मुझे क्या समझेंगे। हो सकता है डर जाएं, मैं अजनबी हूँ। अब अपरिचित व्यक्तियों से दूर रहने की हिदायतें दी जाती हैं। हमने अपरिचित व्यक्तियों से भी खूब प्यार पाया है या फटकार खाई है। गलती करने पर कोई भी डांट सकता था, अब यह अपराध है। हमारे मास्टर जी उल्टी हथेली पर खड़े पटरूल से पिटाई कर देते थे। काम पूरा नहीं करने, पाठ याद नहीं करने या झगड़ा करने पर मुर्गा बना देते थे। कान इतनी जोर से उमेटते थे कि दो दिन तक लाल रहता था। लाल कान देखकर घर में भी डांट पड़ती थी। आज के टीचर अभिभावकों की अदालत में अपराधी ठहराए जाते हैं कि बच्चे का कान क्यों पकड़ा। मैं तो अपरिचित ठहरा, बच्चों को पहेली बूझने को कैसे कह सकता हूँ। मेरा मन लेकिन पहेली पर ही अटका रह गया। क्या पहेलियाँ होती थी? हरी थी मन भरी थी, राजा जी के बाग में दुशाला ओढ़े खड़ी थी। किसने बनाई होगी यह पहेली? अवश्य ही उसने मक्के के खेत में दिन बिताए होंगे, पौधे को बढ़ते पनपते और फलते हुए देखा होगा, तभी रच पाया होगा ऐसी पहेली। मोबाइल में डूबे बच्चों ने कभी कॉर्न तो खाया होगा, लेकिन क्या कभी खेत में मक्के की फसल देखी होगी? ये बच्चे अन्न नहीं पहचानते। धान और गेहूं की लहलहाती फसल इनसे बहुत दूर है। यह नूडल्स वाली पीढ़ी है। नूडल्स और पास्ता की फसल नहीं होती। चॉकलेट और कोल्ड ड्रिंक्स किस पेड़ में फलते हैं भला? खैर, मेरा मन अपने ही से पहेलियां बूझने लगा। एक थाल मोती भरा, सबके सिर पर औंधा धरा। मेरी गर्दन अपने आप ही ऊपर की ओर उठने लगी। आंखें आसमान में मोतियों भरा थाल देखने को आतुर हो उठी। लेकिन यह क्या, ऊपर कोई थाल नहीं था। शायद थाल था, लेकिन सारे मोती जाने कहाँ चले गए थे? क्या कहीं गिर गए होंगे? हमारे बचपन में ऊपर के विशाल थाल में मोती ही मोती भरे रहते थे, टिम टिम करते रहते थे। छोटे बड़े असंख्य तारे, हमें ध्रुव तारा दिखाया जाता था। भक्त ध्रुव की कहानी कितनी ही बार सुनी थी। मेरा एक दोस्त खूब तारे पहचानता था। हमें सप्त ऋषि दिखाया करता था। अब सप्त ऋषियों ने आसमान छोड़ दिया है क्या? मैंने आँख गड़ा गड़ा कर देखने की कोशिश की। बड़ी मुश्किल से एक तारा दिखा, लेकिन उसमें चमक नहीं थी, वह धुंधला धुंधला था। तब मैंने गौर किया कि ऊपर धुंध ही धुंध है। मोती भरे थाल को धुंध की चादर ने ढक रखा है। हमारे बचपन में तो नहीं थी यह धुंध, अब कहाँ से आ गई? किसने यह बदसूरत चादर ओढ़ा दी हमारे खूबसूरत मोतियों भरे थाल को? अच्छा हुआ मैंने बच्चों से पहेली नहीं पूछी। अगर वे पहेली का उत्तर सुनकर ऊपर देखते तो मोती भरा थाल न पाकर मुझ पर हंसते, मेरा मजाक बनाते, मुझ अजनबी को पागल समझते। यह सोचकर मुझे झुरझुरी होने लगी। लगता है सब कुछ बदल गया है। मोती भरा थाल दिखता ही नहीं तो बच्चे पहेली क्या बूझें? पहेलियां गायब हो गईं और नई पहेलियां रचने का अवकाश ही किसी को नहीं। मिट्टी की तासीर भी बदल गई होगी, इसीलिए बच्चों को मिट्टी में खेलने लिथड़ने नहीं दिया जाता। उस दिन PGI के एक डॉक्टर कह रहे थे कि बच्चों को मिट्टी में खेलने दीजिए, इससे उनकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। डॉक्टर साहब को भी पता शायद न होगा कि मिट्टी की तासीर बदल गई है। अब कोई कवयित्री बच्चों के मिट्टी खाने पर कविता नहीं लिखती, इसीलिए बच्चे मिट्टी को छिछी कहते हैं और नल का पानी नहीं पीते। तभी तो आज के बच्चों के पास हमारे जैसे खेल नहीं है। उनके पास मोबाइल इसीलिए है कि वह साफ सुथरा है शायद। मुझे उन बच्चों पर दया आई कि बेचारे अपनी मिट्टी से वंचित हैं। मोबाइल न खेलें तो खेलें क्या? उनके माता पिता, भाई बहन, दादा दादी सभी तो मोबाइल में खोए हैं। यह मोबाइल युग है लेकिन शायद ठहरा हुआ है।
1: ठहरा हुआ मोबाइल युग, ये कहानी अभी आप सुन रहे थे। कहानीकार थे श्री नवीन जोशी। इसके साथ ही आज का हिंदी कार्यक्रम का यह अंक अब यहीं संपन्न होता है। सुरेंद्र राजेश्वरी को आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे हिंदी कार्यक्रम, हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। सुगम संगीत आज इस कार्यक्रम में आनंद लीजिए रुबीना बनर्जी के गाए भजनों का। पहले आपको सुनवाते हैं रुबीना बनर्जी के स्वर में मीराबाई की भक्तिपूर्ण रचना।

सुगम संगीत कार्यक्रम में आज की हमारी कलाकार हैं रुबीना बनर्जी और आप आनंद ले रहे हैं उनके गाए भजनों का। अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं डॉक्टर योगेश प्रवीण की भक्ति रचना रुबीना बनर्जी के ही स्वर में।

0: आंगन माहे बहार कहानी कविता और बतकही के फुहार आपन बोली बानी संग लोक गीतन के बहे बयार खान पान संग सेहत के और स्वावलंबन के बहचली है बयार घर आंगन संग होई के तैयार चलो विकास के रफ्तार सोम बृहस्पति और साथे है दिन शनिवार ईमेल और पाती के होए भरमार।
1: हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं, लीजिए आप सुनिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट से। कार्यक्रम में पहले आपको सुनवाते हैं इंग्लिश बाबू देसी मेम फिल्म का गीत। ये गाना आप सुनेंगे कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ में। योगेश ने इसे लिखा है, जिसे निखिल विनय ने संगीत से संवारा है।

0: अभी आप रुबीना बनर्जी की आवाज़ में मीराबाई की ये भक्ति रचना सुन रहे थे। अब आज का सुगम संगीत का ये कार्यक्रम समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी लखनऊ से बोल रहे हैं।
1: विविध भारती के खजाने से हम आपके लिए लाते हैं अनमोल कार्यक्रम।
2: फौजी भाइयों की खिदमत में आपका खादिम नौशाद आदाब पेश करता है, कबूल फरमाइए।
1: कल और आज के ऐसे ही नामचीन सितारों को आप सुनते हैं विशेष जयमाला में हर शनिवार और रविवार शाम 7:05 पर। विविध भारती आप सुन सकते हैं देश के कोने कोने में 2400 घंटे DTH और आपके मोबाइल पर।

चित्रपट से कार्यक्रम में अभी आपने सुना कुमार सानू को नाराज फिल्म में। कार्यक्रम के अंत में आपको सुनवाने जा रहे हैं कुमार सानू और साधना सरगम की आवाज में नवाब आरजू का लिखा गीत। अनु मलिक ने इसे संगीत दिया है और इस गीत को हमने लिया है गैम्बलर फिल्म से।

कुमार सानू और साधना सरगम के गाए गैम्बलर फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट से अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनस गार स्टोर से ओस्लो में वार्ता की। द्विपक्षीय संबंधों को स्वच्छ ऊर्जा और समुद्री अर्थव्यवस्था पर केंद्रित करते हुए पर्यावरण अनुकूल रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने पर सहमति। प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ द मेरिट से सम्मानित किया। सरकार का निर्यात लक्ष्य इस वर्ष $1 ट्रिलियन। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने अमरीकी उद्योग प्रतिनिधिमंडल के साथ परमाणु ऊर्जा सहयोग और भारत में निजी निवेश के अवसरों पर वार्ता की। पश्चिम बंगाल सरकार ने भ्रष्टाचार और महिलाओं पर अत्याचारों की जांच के लिए 2 जांच आयोग गठित किए और आयुष मंत्रालय ने अत्यधिक गर्मी के संबंध में जन स्वास्थ्य परामर्श जारी किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नॉर्वे की पहली यात्रा के दौरान दोनों देशों ने भारत नॉर्वे संबंधों को पर्यावरण अनुकूल रणनीतिक साझेदारी में उन्नत करने की घोषणा की है। आज ओस्लो में प्रधानमंत्री योनस गार स्टोर के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि ये साझेदारी स्वच्छ ऊर्जा से लेकर जलवायु लचीलापन, समुद्री अर्थव्यवस्था लेकर हरित शिपिंग तक के क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देगी। उन्होंने आशा व्यक्त की कि भारत की क्षमता, गति और प्रतिभा का उपयोग करते हुए नॉर्वे की प्रौद्योगिकी और पूंजी के सहयोग से भारतीय कंपनियां वैश्विक समाधान विकसित करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ मजबूती से खड़े रहने के लिए नॉर्वे का आभार व्यक्त किया।
1: मैं पिछले वर्ष नॉर्वे आने वाला था, लेकिन पहलगाम में हुए आतंकी हमले के कारण वह यात्रा स्थगित करनी पड़ी। उस कठिन समय में नॉर्वे ने आतंकवाद के विरुद्ध भारत के साथ मजबूती से खड़े होकर सच्ची मित्रता का परिचय दिया। आज जब मैं नॉर्वे आया हूं, तो मैं इस सॉलिडेरिटी के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं।
0: हाल ही में लागू व्यापार और आर्थिक साझेदारी से परिणाम सुनिश्चित करने के लिए आज ठोस कदम उठाए गए। विशेष रूप से उच्च तकनीक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और स्टार्टअप के क्षेत्र में सहयोग की परिकल्पना की गई, ताकि साझेदारी को भविष्य के लिए तैयार किया जा सके।
1: रिसर्च, एजुकेशन और इनोवेशन भी हमारे संबंधों के मजबूत पिलर्स बने हैं। आज हमने सस्टेनेबिलिटी, ओशन एनर्जी, जियोलॉजी और हेल्थ जैसे क्षेत्रों में रिसर्च कोऑपरेशन बढ़ाने पर सहमति बनाई। इंजीनियरिंग, एआई, साइबर और डिजिटल जैसे सेक्टर में हम अपनी यूनिवर्सिटी और स्टार्टअप इकोसिस्टम को जोड़कर अपने पार्टनरशिप को फ्यूचर रेडी बनाएंगे।
0: द्विपक्षीय बैठक में उच्च तकनीक, स्वास्थ्य समाधान, डिजिटल स्वास्थ्य और डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के क्षेत्रों में कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। एक त्रिकोणीय सहयोग समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए। इसके अंतर्गत भारत और नॉर्वे संयुक्त रूप से भारत के डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का उपयोग करते हुए वैश्विक दक्षिण के देशों को मानव विकास समाधान प्रदान करेंगे। नॉर्वे के प्रधानमंत्री ने आज एक महत्वपूर्ण बयान में संघर्षों से घिरे विश्व में सहयोग बढ़ाने के महत्व पर जोर दिया। दोनों नेताओं ने नियम आधारित विश्व व्यवस्था में अपने साझा विश्वास और संवाद तथा कूटनीति के प्रति प्रतिबद्धता को दोहराया।
1: भारत और नॉर्वे दोनों रूल्स बेस्ड ऑर्डर, डायलॉग और डिप्लोमेसी में विश्वास रखते हैं। हम एकमत है कि मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट से किसी भी मुद्दे का समाधान नहीं निकल सकता, यूक्रेन हो या पश्चिमी एशिया। हम संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के हर प्रयास का समर्थन करते हैं। हम इस बात पर भी एकमत है कि बढ़ते हुए ग्लोबल चैलेंजेस के समाधान के लिए ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस का रिफॉर्म अनिवार्य है।
0: प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के महामहिम राजा हेराल्ड पंचम द्वारा रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ द मेरिट का

0: ग्रैंड क्रॉस प्रदान किया गया। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, जगत प्रकाश नड्डा, पीयूष गोयल, मनोहर लाल और किरेन रिजिजू सहित कई अन्य मंत्रियों ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नॉर्वे के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी। गृहमंत्री ने कहा कि 32वां अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व के विस्तार का प्रतीक है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि यह सम्मान मोदी के सशक्त नेतृत्व और विश्व भर में भारत के बढ़ते सम्मान को दर्शाता है। विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि ये सम्मान वसुधैव कुटुंबकम के चिरस्थायी सिद्धांतों के माध्यम से वैश्विक सद्भाव को मजबूत करने के प्रति श्री मोदी की अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि स्वीडन के उनके यात्रा के कई महत्वपूर्ण परिणाम निकले हैं जो द्विपक्षीय संबंधों को एक नई गति प्रदान करेंगे। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने में ये पहल महत्वपूर्ण रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में कल इटली पहुंचेंगे। ये यात्रा इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर हो रही है। श्री मोदी प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मैटारेला से भी मुलाकात करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी भारत और इटली के बीच व्यापार और निवेश को और बढ़ावा देने के लिए व्यापारिक प्रमुखों से भी बातचीत करेंगे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 और 20 तारीख को इटली में होंगे। यह दौरा 5 देशों की यात्रा का अंतिम चरण है, जिसका उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में भारत की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना है। श्री मोदी इटली की प्रधानमंत्री के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ता करेंगे, जिसमें समुद्री सुरक्षा और मजबूत कनेक्टिविटी प्रमुख विषय होंगे। इटली भारत को केवल यूरोप ही नहीं बल्कि पूरे भूमध्य सागरीय क्षेत्र तक पहुँच प्रदान करता है। आपूर्ति श्रृंखला साझेदारी और रक्षा सहयोग के दृष्टिकोण से यह अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यह 5 देशों की यात्रा केवल कूटनीतिक प्रयास नहीं है, ये भारत के भविष्य के ऊर्जा मार्गों, AI साझेदारी, सेमीकंडक्टर पहुंच, रक्षा निर्माण और वैश्विक हितों को सुरक्षित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। रोम से आकाशवाणी के लिए सुपर्णा भाटिया।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

दिशा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।

0: योजना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ने इस वर्ष $1 ट्रिलियन और अगले 5 वर्ष में $2 ट्रिलियन के निर्यात का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा कि यही आत्मनिर्भर भारत की सच्ची पहचान होगी। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद इस वर्ष निर्यात $863 अरब तक पहुंच गया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत के उद्योगों, व्यापार समुदाय और लोगों में जो है उसे दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। उन्होंने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था लगातार बढ़ रही है और निर्यात भी बढ़ रहा है।
2: भारत का बना हुआ सामान, भारत से दी हुई सेवाएं और अधिक तेजी से आगे बढ़े। हम संतुष्ट ना हो कि हम विश्व की सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है, कभी संतुष्ट ना हो और आगे बढ़ा छलांग लेने की सोच और क्या कर सकते हैं उसके लिए पूरे समय हमें सोचते रहना पड़ेगा, काम करते रहना पड़ेगा, नई चीजों को आगे लेके जाना पड़ेगा।
1: भारत में परमाणु क्षेत्र में निजी निवेश और उद्योग सहयोग के उभरते अवसरों के बारे में उच्च स्तरीय अमरीकी उद्योग प्रतिनिधिमंडल ने आज विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह से चर्चा की। प्रतिनिधिमंडल के इस दौरे में अमरीकी परमाणु उद्योग के वरिष्ठ प्रतिनिधि, व्यावसायिक हितधारक और नागरिक परमाणु ऊर्जा तथा उन्नत प्रौद्योगिकी में भारत अमरीका सहयोग से जुड़े अधिक

0: अधिकारी शामिल थे। इस अवसर पर डॉक्टर सिंह ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच आज विज्ञान, प्रौद्योगिकी, स्वच्छ ऊर्जा और उभरते क्षेत्रों में मजबूत और भविष्योन्मुखी साझेदारी है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने विकसित भारत 2047 की परिकल्पना के अंतर्गत भारत के दीर्घकालिक स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत का लक्ष्य 2047 तक अपनी परमाणु ऊर्जा क्षमता को वर्तमान 8.8 गीगावाट से बढ़ाकर 100 गीगावाट करना है। सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया संकट के कारण आयात में व्यवधान के बावजूद देश में तेल शोधक कारखाने सामान्य रूप से काम कर रहे हैं और भारत के पास कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार है। पश्चिम एशिया में हाल की घटनाओं पर आज नई दिल्ली में आयोजित अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि देश में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस का पर्याप्त भंडार है।
1: कमर्शियल एलपीजी की सप्लाई 70% पर अभी बनी हुई है। मार्च के महीने से लेकर अभी तक लगभग 7,37,000 पीएनजी कनेक्शंस को गैसिफाई किया गया है। 2,76,000 कनेक्शंस के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जा चुका है और 7,76,000 से अधिक ऐसे कंज्यूमर्स हैं जिन्होंने पीएनजी कनेक्शन के लिए अपने आप को रजिस्टर कराया है।
0: इस बीच सरकार ने YouTube के उन वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया जा रहा है कि भारत में केवल 9 दिन का तेल भंडार बचा है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने दावे को भ्रामक बताते हुए कहा कि देश में लगभग 60 दिन के कच्चे तेल का भंडार है और शोधन क्षमता भी पर्याप्त है। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारतीय जनता पार्टी के चुनावी वादों के अनुरूप संस्थागत भ्रष्टाचार और महिलाओं पर अत्याचारों की जांच के लिए 2 जांच आयोगों का गठन किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद आज इस फैसले की घोषणा की। संस्थागत भ्रष्टाचार के जांच आयोग की अध्यक्षता कलकत्ता उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश बिस्वजीत बसु करेंगे। पूर्व सरकार के कार्यकाल के दौरान महिलाओं पर अत्याचारों पर गठित आयोग की अध्यक्षता कलकत्ता उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश समाप्ति चैटर्जी करेंगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि दोनों आयोग 1 जून से काम शुरू करेंगे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने अब तक दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम, नासिक, पुणे, लातूर और अहिल्यानगर से नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पिछले 24 घंटों में सीबीआई ने 5 स्थानों पर तलाश अभियान में कई आपत्तिजनक दस्तावेज, लैपटॉप और मोबाइल फोन जब्त किए। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। आयुष मंत्रालय ने अत्यधिक गर्मी और लू की स्थिति से निपटने के लिए व्यापक जन स्वास्थ्य परामर्श जारी किया है। एक रिपोर्ट।
2: यह परामर्श आम लोगों, कामगारों और बड़े सार्वजनिक कार्यक्रमों तथा खेल आयोजनों में शामिल लोगों के लिए जारी किया गया है, ताकि वे गर्मी और लू से होने वाली बीमारियों से अपना बचाव कर सकें। इसमें कहा गया है कि शिशु, बच्चे, गर्भवती महिलाएं, बुजुर्ग, बाहर काम करने वाले लोग और दिल की बीमारी या उच्च रक्तचाप जैसी बीमारियों से ग्रसित लोग लू के दौरान सबसे ज्यादा जोखिम में रहते हैं, इसलिए इनकी विशेष देखभाल और निगरानी जरूरी है। परामर्श में कार्यस्थलों, सार्वजनिक कार्यक्रमों और बाहरी गतिविधियों के लिए खास सावधानियां बताई गई हैं। में छायादार आराम स्थल की व्यवस्था, समय समय पर पानी पीने के लिए ब्रेक और लू के लक्षणों के बारे में जागरूकता फैलाना शामिल है। रिशु जायसवाल के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक चेन्नई सुपर किंग्स ने 15 ओवर में 4 विकेट पर 132 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनस गोलस्टोर से ओस्लो में वार्ता की। द्विपक्षीय संबंधों को स्वच्छ ऊर्जा और समुद्री अर्थव्यवस्था पर केंद्रित करते हुए पर्यावरण अनुकूल रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने पर सहमति। प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ द मेरिट से सम्मानित किया। सरकार का निर्यात लक्ष्य इस वर्ष $1 ट्रिलियन। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने अमरीकी

0: उद्योग प्रतिमंडल के साथ परमाणु ऊर्जा सहयोग और भारत में निजी निवेश के अवसरों पर वार्ता की और आयुष मंत्रालय ने अत्यधिक गर्मी के संबंध में जन स्वास्थ्य परामर्श जारी किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashvani. I am Anuja Kumar with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi holds talks with his Norwegian counterpart Jonas Gahr Støre in Oslo. Agreed to elevate bilateral ties in green strategic partnership focusing on clean energy and blue economy. Prime Minister Modi awarded Grand Cross of the Royal Norwegian Order of Merit by King Harald V. Government targets $1 trillion exports this year. Union Minister Jitendra Singh holds talks with US industry delegation on nuclear energy and private investment opportunities in India. West Bengal government sets up 2 inquiry commissions to probe corruption and atrocities against women. And amid extreme heat conditions, Ministry of Ayush issues advisory to prevent heat-related illnesses. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi's first-ever visit to Norway has seen a substantial outcome, with both the countries declaring the upgradation of India-Norway relation to green strategic partnership. In a joint statement today, after delegation-level talks with counterpart Jonas Gahr Støre in Oslo, Prime Minister Modi highlighted that this partnership will ensure increased collaboration in sectors ranging from clean energy to climate resilience, blue economy to green shipping.
2: आज हम भारत नॉर्वे संबंधों को एक ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप दे रहे हैं। इस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप से क्लीन एनर्जी से लेकर क्लाइमेट रेजिलियंस, ब्लू इकोनॉमी, उससे लेकर के ग्रीन शिपिंग, हर क्षेत्र में भारत की स्केल, स्पीड और टैलेंट को नॉर्वे की टेक्नोलॉजी और कैपिटल के साथ जोड़कर हमारी कंपनीज ग्लोबल सॉल्यूशंस डेवलप करेगी।
1: Prime Minister Modi said the India-EFTA Trade and Economic Partnership Agreement serves as a blueprint for shared progress and prosperity.
2: भारत और यूरोप अपने संबंधों के एक नए स्वर्णिम युग में प्रवेश कर रहे हैं। पिछले वर्ष भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के एक ऐतिहासिक ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया। यह एग्रीमेंट भारत और नॉर्वे के बीच शेयर्ड प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी सुनिश्चित करने का ब्लूप्रिंट है। इस एग्रीमेंट में अगले 15 वर्ष में भारत में $100 बिलियन इन्वेस्टमेंट और 1 मिलियन जॉब्स क्रिएट करने का लक्ष्य है।
1: The Prime Minister hoped that using the scale, speed and talent of India, in collaboration with the technology and the capital of Norway, Indian companies would develop global solutions. Norway will also be joining the Indo-Pacific initiative. Both the leaders reiterated their common belief in rules-based world order and commitment to dialogue and diplomacy. Prime Minister Modi thanked Norway for standing firmly with India against terrorism during that difficult period and described it as a reflection of true friendship.
2: मैं पिछले वर्ष नॉर्वे आने वाला था, लेकिन पहलगाम में हुए आतंकी हमले के कारण वह यात्रा स्थगित करनी पड़ी। उस कठिन समय में नॉर्वे ने आतंकवाद के विरुद्ध भारत के साथ मजबूती से खड़े होकर सच्ची मित्रता का परिचय दिया। आज जब मैं नॉर्वे आया हूँ तो मैं इस सॉलिडरिटी के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ।
1: Multiple MOUs were signed in this bilateral meeting in the sectors of high-tech health solutions, digital health and digital public infrastructure. An MOU between India's ISRO and Norway's space agency will ensure deepening of ties in the space sector. A triangular cooperation agreement was also signed today. In this, India and Norway will jointly provide human development solutions to the countries of Global South using India's digital public infrastructure. In a gesture towards closer relations, Prime Minister Modi was awarded the Grand Cross of the Royal Norwegian Order of Merit by His Majesty King Harald V of

0: Union Minister Jitendra Singh holds talks with US industry delegation on nuclear energy and private investment opportunities in India. And amid extreme heat conditions, Ministry of Ayush issues advisory to prevent heat-related illnesses. That is all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शमीम अहमद। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ओस्लो में नॉर्वे के अपने हमनसब जॉन्स घार स्टोर के साथ मुज़ाकरात किए। उन्होंने बाहमी ताल्लुकात को बढ़ाकर साफ तवानाई और नीलगू मईशत पर तवज्जो करते हुए ग्रीन कलीदी शराकत दारी तक पहुँचाने से इत्तफाक किया। वज़ीर-ए-आज़म मोदी को किंग हैराल्ड द फिफ्थ ने ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट से नवाजा। हुकूमत ने इस बरस $1 खरब बरामदात का निशाना रखा है। मरकजी वजीर जितेंद्र सिंह ने भारत में न्यूक्लियाई तवानाई और प्राइवेट सरमायाकारी के मौके पर अमेरिका के एक सनती वफद से मुज़ाकरात किए। मगरबी बंगाल की हुकूमत ने बदउनवानी और ख्वातीन के खिलाफ ज़्यादतियों की छानबीन के लिए 2 इंक्वायरी कमीशन तश्कील दिए हैं और गर्मी की इंतहाई शिद्दत के दौरान आयुष की वजारत ने गर्मी से मुतालिक बीमारियों की रोकथाम की गरज से एडवाइजरी जारी की है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के नॉर्वे के अव्वलीन दौरे के नुमाया नताइज सामने आए हैं, जिसमें दोनों मुल्कों ने भारत नॉर्वे ताल्लुकात को मजीद बढ़ाकर सब्ज जाम शराकत दारी की हैसियत देने से इत्तफाक किया है। ओस्लो में अपने हम मनसब जॉन्स घार स्टोर के साथ वफद की सतह की बातचीत के बाद आज एक मुश्तरका बयान में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने उजागर किया कि दोनों लीडरों ने भारत नॉर्वे ताल्लुकात को बेहतर करके उसे सब्ज जाम शराकत दारी की हैसियत देने से इत्तफाक किया है, जो कि साफ तवानाई, नीलगू मईशत, ग्रीन कायापलट के शोबों में तआवुन को बेहतर बनाने में एक अहम संग मील है।
2: आज हम भारत नॉर्वे संबंधों को एक ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप दे रहे हैं। इस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप से क्लीन एनर्जी से लेकर क्लाइमेट रेजिलियंस, ब्लू इकोनॉमी, उससे लेकर के ग्रीन शिपिंग, हर क्षेत्र में भारत की स्केल, स्पीड और टैलेंट को नॉर्वे की टेक्नोलॉजी और कैपिटल के साथ जोड़कर हमारी कंपनीज ग्लोबल सॉल्यूशंस डेवलप करेगी।
1: वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि दोनों लीडरों ने भारत EFTA तिजारती और इक्तसादी शराकत दारी के मुआहदे से हासिल होने वाले वसी मौके को भी वाजह किया है। इसमें शराकत दारी को हाईटेक AI स्टार्टअप्स के शोबों में मुस्तकबिल के लिए तैयार बनाने की गरज से तवानाई पर खसूसी तवज्जो मरकूज की गई है।
2: भारत और यूरोप अपने संबंधों के एक नए स्वर्णिम युग में प्रवेश कर रहे हैं। पिछले वर्ष भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के एक ऐतिहासिक ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया। यह एग्रीमेंट भारत और नॉर्वे के बीच शेयर्ड प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी सुनिश्चित करने का ब्लूप्रिंट है। इस एग्रीमेंट में अगले 15 वर्ष में भारत में $100 बिलियन इन्वेस्टमेंट और 1 मिलियन जॉब्स क्रिएट करने का लक्ष्य है।
1: इस बाहमी मीटिंग में सेहत से मुतालिक हाईटेक हल, डिजिटल सेहत, डिजिटल पब्लिक बुनियादी ढांचे के शोबों में बहुत से मुफाहमत नामों पर दस्तखत किए गए। भारत के इसरो और नॉर्वे की खलाई एजेंसी के दरमियान एक मुफाहमत नामा दिफाई शोबे में ताल्लुकात बेहतर बनाने को यकीनी बनाएगा। तआवुन के एक सहरुखी समझौते पर भी आज दस्तखत किए गए। इसमें भारत और नॉर्वे भारत के डिजिटल पब्लिक बुनियादी ढांचे को इस्तेमाल करते हुए आलम जुनूब के ममालिक को इंसानी तरक्की के हल मुश्तरका तौर पर फराहम करेंगे। नॉर्वे के वज़ीर-ए-आज़म ने एक अहम बयान में टेक्नोलॉजी के शोबे में भारत की क़्यादत को तस्लीम किया है। दोनों लीडरों ने ज़ाब्तों पर मबनी आलमी निज़ाम में अपने मुश्तरका एतक़ाद और मुज़ाकरात और सिफारतकारी के अपने अहद का इरादा किया। करीबी ताल्लुकात के तई जज्बा खैर सगाली के तौर पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को नॉर्वे के इज्जत माब शाह हैराल्ड दी फिफ्थ के जरिए रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट का ग्रैंड क्रॉस

0: अवार्ड दिया गया। जनाब नरेंद्र मोदी स्वीडन का अपना दौरा पूरा करने के बाद आज सुबह नॉर्वे पहुंचे थे। वजीर आजम ने सोशल मीडिया की एक पोस्ट में कहा कि बाहमी ताल्लुकात को बेहतर बनाकर एक जामे शराकत दारी में तब्दील करना, मुश्तरका इख्तराई शराकत दारी 2.0 की शुरुआत करना और भारत स्वीडन टेक्नोलॉजी और मसनूई जहानत के कॉरिडोर का आगाज करने समेत ये मुजाकरात इंतहाई बारावर रहे। बातचीत में बाहमी तजारत को आइंदा 5 साल में दुगना करने का हदफ भी मुकर्रर किया गया। 5 मुल्कों के अपने दौरे के आखिरी मरहले में वजीर आजम नरेंद्र मोदी इटली की अपनी हम मनसब मोहतरमा जॉर्जिया मेलोनी की दावत पर कल इटली के 2 रोज़ा दौरे पर रोम पहुंचेंगे। वजीर आजम मोदी वजीर आजम मेलोनी के साथ बाहमी बातचीत करेंगे। वो इटली के सदर सर्गियो मैटरेला से भी मुलाकात करेंगे। जनाब मोदी दोनों मुल्कों के दरमियान तजारत और सरमायाकारी को मजीद फरोग देने की गरज से कारोबारी लीडरों से भी बातचीत करेंगे। पेश है एक रिपोर्ट।
1: वजीर आजम नरेंद्र मोदी इस महीने की 19 से 20 तारीख को इटली के दौरे पर होंगे। उनका ये दौरा 5 मुल्कों के दौरे का आखिरी मरहला है, जिसका मकसद मुख्तलिफ शोबों में भारत की जामे शराकत दारी को मजीद मुस्तहकम करना है। वजीर आजम की इटली की वजीर आजम के साथ वफूद की सतह की बातचीत करेंगे, जिसमें समंदरी सिक्योरिटी और मुस्तहकम कनेक्टिविटी पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। इटली भारत को न सिर्फ यूरोप बल्कि बहिरे रूम के मुकम्मल खित्ते तक भी रसाई फराहम करता है। ये अम्र सप्लाई चेन और दिफाई शराकत दारी के तनाजुर में अहमियत का हामिल है। उनका 5 मुल्कों का यह दौरा सफारतकारी से कहीं ज़्यादा हैसियत रखता है। ये भारत के मुस्तकबिल के तवानाई रूट्स, मसनूई जहानत की शराकत दारी, सेमी कंडक्टर की रसाई, दिफाई साजो सामान की तैयारी और आलमी मफादात को बेहतर बनाने से ताल्लुक़ रखता है। रोम से सुपर्णा भाटिया की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं महताब आलम।
0: कॉमर्स और सनत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ने इस बरस $1 खरब और अगले 5 बरस में $2 खरब की मालियत के बरामदात का निशाना तय किया है। उन्होंने वाजे किया कि ये आत्मनिर्भर भारत का हकीकी हॉलमार्क होगा। नई दिल्ली में भारतीय व्यापार महोत्सव के वेबसाइट के इफ्तिताह की तकरीब से खिताब करते हुए जनाब गोयल ने कहा कि इस बरस आलमी चैलेंजों के बावजूद बरामदात $863 अरब तक पहुंच गई है, जो कि पिछले साल के मुकाबले तकरीबन 5% ज्यादा है। जनाब गोयल ने जोर देकर कहा कि आगे पेशरफ्त के लिए इस जोश व खरोश में कभी कोई कमी नहीं आनी चाहिए और हर एक को बिला तकान काम जारी रखना चाहिए।
2: भारत का बना हुआ सामान, भारत से दी हुई सेवाएं और अधिक तेजी से आगे बढ़े। हम संतुष्ट ना हो कि हम विश्व की सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है, कभी संतुष्ट ना हो और आगे बड़ा छलांग लेने की सोच और क्या कर सकते हैं उसके लिए पूरे समय हमें सोचते रहना पड़ेगा, काम करते रहना पड़ेगा, नई चीजों को आगे लेके जाना पड़ेगा।
0: अमेरिका के आला सतह के एक सनती वफद ने नई दिल्ली में आज साइंस और टेक्नोलॉजी के वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह के साथ तबादला ख्याल किया। भारत के न्यूक्लियाई सेक्टर में प्राइवेट सरमायाकारी और सनती शराकत दारी के लिए उभरते हुए मौके पर गौर व खौस किया गया। इस वफद में अमरीकी न्यूक्लियाई सनत के सीनियर नुमाइंदे, कारोबार से वाबस्ता तरफैन और सिविल न्यूक्लियाई तवानाई और जदीद तरीन टेक्नोलॉजियों के शोबे में भारत अमरीका तआवुन के साथ वाबस्ता अहलकार शामिल हैं। इस मौके पर खिताब करते हुए डॉक्टर सिंह ने कहा कि भारत और अमरीका फिलवक्त साइंस, टेक्नोलॉजी, साफ तवानाई और उभरते हुए शोबों में एक मजबूत और मुस्तकबिल की जानिब गामजन शराकत दारी के सिलसिले में एक दूसरे से वाबस्ता हैं। विकसित भारत 2047 के विजन के तहत भारत के तवील मुद्दती साफ तवानाई के अहदाफ का हवाला देते हुए डॉक्टर सिंह ने कहा कि भारत 2047 तक न्यूक्लियाई बिजली की अपनी सलाहियत को मौजूदा 8.8 गीगावाट से बढ़ाकर 100 गीगावाट करने का इरादा रखता है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह वियतनाम और जनूबी कोरिया के 2 मुल्कों के दौरे पर आज सुपहर वियतनाम के शहर हनोई पहुंच गए हैं। वियतनाम में वजीर दिफा अपने हम मनसब जनरल फॉन वॉन ग्यांग के साथ बाहमी मुजाकरात करेंगे। जनाब सिंह का यह दौरा वियतनाम के साबिक सदर हू ची मिन के कल 136वें यौम पैदाइश के मौके पर हो रहा है। ये आकाशवाणी है। मगरबी बंगाल सरकार ने मुबैना इदारा जाती बदअनवानी और ख्वातीन के खिलाफ जुल्म व ज़्यादती की तहकीकात करने की गरज से 2 तहकीकाती कमीशन तश्कील दिए हैं। ये कमीशन भारतीय जनता पार्टी के जरिए किए गए इंतखाबी वादों के मुताबिक बनाए गए हैं। वजीर आला सुविंदो अधिकारी

आपकी पसंद एक ऐसा कार्यक्रम जहां हम आपके द्वारा भेजे गए पत्रों और ईमेल के जरिए चुनते हैं वो नगमे जो आपके दिल के सबसे करीब हैं। जहां कभी जज्बात लिफाफों में बंद होकर सफर करते थे और आज एक क्लिक में दिल से दिल तक पहुंच जाते हैं। इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं आपका रेडियो दोस्त पंकज शुक्ला।

आज के इस कार्यक्रम में हम आपको वो गीत सुनवाएंगे जो आप सुनना पसंद करेंगे और अपनी फरमाइश हम तक भेजेंगे। पहले आपको बता दें अपनी ईमेल आईडी जिस पर आप हमें अपनी फरमाइश भेजेंगे। हमारी ईमेल आईडी है आपके पत्र आपके मेल @gmail.com। खत भेजने के लिए पता हम कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे। तो आइए आज के इस संगीतमय सफर की शुरुआत करते हैं।

आज के कार्यक्रम में पहले आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में लव मैरिज फिल्म का गीत पसंद आप सबकी। ग्राम ललहुआ मितौली जिला खीरी से विजय पाल यादव, शुभम यादव, शिखा यादव, ऋचा यादव, गुड़िया यादव, सुरभि यादव, राजेश कुमार और विजय पांडे जी ने इस गाने की फरमाइश भेजी है। और इसी गाने के लिए एक और मेल हमें मिली है छत्रपति संभाजी नगर से, राजेश सांबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और श्रीमती शीतल राजेश की। एक और मेल हमें मिली है सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से, टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह और डॉक्टर अमनदीप। कालका से शुभचंद बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज की। तो आइए सुनते हैं आप सबकी पसंद का ये गीत लव मैरिज फिल्म से।

अखियों के झरोखों से इस फिल्म के गाने की फरमाइश अब हमारे पास आई है और ये फरमाइश भेजने वाले हमारे श्रोता हैं नेहा वर्मा, अर्पिता, हर्षिता, अंजलि, सुधाकर, कोमल, सियाराम, गौरपुर, बमनाखेड़ा ज़िला हरदोई से। इसी गाने के लिए एक और मेल हमें मिली है चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और विमला अनेजा जी की। भाटापारा छत्तीसगढ़ से हिमकेश्वर साहू, करण राहुल साहू और चंपा साहू जी की। इसी गाने के लिए एक और मेल हमें मिली है राहुल शाक्य जी की, रूप कुमार शाक्य, अजीत शर्मा। और आप सबने ये मेल हमें भेजी है पोस्ट औरंगाबाद ज़िला कासगंज उत्तर प्रदेश से। तो सुनिए आप सबकी पसंद का ये गीत हेमलता की आवाज़ में। फिल्म का नाम है अखियों के झरोखों से।

आपकी पसंद कार्यक्रम की अगली फरमाइश हमारे पास आई है ग्राम पहाड़ीपुर जिला रायबरेली से। लिखने वाले हैं रामराज राजू भानु रामशंकर पत्रकार बहाई वाले रक्षा मौर्या रामशंकर राम सागर साहू रसूलपुर वाले पवन कुमार यादव जी। इसी गाने के लिए एक और मेल हमें मिली है ग्राम व पोस्ट बिर खेरा हमीरपुर उत्तर प्रदेश से मनीराम पाल मलखान सिंह पाल सुधांशु पाल और हिमांशु पाल जी की। इसी गाने के लिए एक और मेल हमें पंजाब से मिली है ग्राम नगलखेड़ा फगवाड़ा पंजाब से बालकृष्ण शर्मा परवीन शर्मा और मुनीश शर्मा के साथ राहुल शर्मा जी की। तो सुनिए आप सबकी पसंद का ये गीत कुली फिल्म का है और ये

एक दूजे के लिए, ये नाम है उस फिल्म का जिसका गीत अब आप सुनेंगे लता मंगेशकर और अनूप जलोटा की आवाज़ में। पसंद करने वाले हमारे श्रोता हैं विजय लक्ष्मी कुशवाहा जी की, ये मेल आई है सांडी हरदोई से, जिन्होंने ये गीत सुनना चाहा है। और आपके साथ साथ ये गीत जो सुनना चाहा है वो है खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा, अंकुश अरोड़ा जी ने। और इन्हीं के साथ एक और मेल हमें मिली है, ये मेल हमें भेजी है दुर्गेश नागनपुरे राधेश्याम।

नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू, कुसुमबाई, बाबू दिव्यांश और सूरज कुमार ढाकसे जी ने ग्राम जसवाड़ी, खंडवा, मध्य प्रदेश से, ग्राम खैगांव, तहसील महेश्वर से प्रेम लाल वर्मा, वेदिका वंश, निकेश, धर्मेंद्र, मेघा, नंदिनी, हर्षिता और ममताबाई वर्मा ने, रिंग रोड नर्मदा नगर से सूरज वर्मा, नीरज, शिवम, धीरज, चिंता वर्मा, ऋषभ कनक और भावना वर्मा ने। तो आइए सुनते हैं आप सबकी पसंद का ये गीत एक दूजे के लिए फिल्म से। ये गीत आप सुनेंगे लता मंगेशकर और अनूप जलोटा की आवाज़ में।

आज के कार्यक्रम की ये अगली और अंतिम फरमाइश हमारे पास आई है रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा जी की। आपने सुनना चाहा है आकाशदीप फिल्म का गीत लता मंगेशकर जी की आवाज़ में। तो लीजिए सुनिए आपकी पसंद का ये गीत आकाशदीप फिल्म से।

कुछ नगमे दिल को छू जाते हैं, कुछ लम्हे आँखों में रह जाते हैं। हम चल तो दिए हैं वक्त के साथ, पर गीत पुराने दोस्ती निभा जाते हैं। तो साथियों, आज की ये संगीत यात्रा यहीं समाप्त होती है। आप सबके भेजी गई फरमाइशों ने इस कार्यक्रम को बेहद खास बना दिया। हम फिर मिलेंगे कुछ और यादों के साथ, कुछ और गीतों की मिठास के साथ। लेकिन जाने से पहले आपको बता दें, अपनी फरमाइश के खत भेजने के लिए हमारा पता, कार्यक्रम आपकी पसंद, द्वारा केंद्र निदेशक, आकाशवाणी लखनऊ, 18 विधानसभा मार्ग, लखनऊ, पिन कोड 226001। इस उम्मीद के साथ कि फिर किसी रोज होगी आपसे मुलाकात। तब तक के रखिए अपना खूब ख्याल, सुनते रहिए आकाशवाणी लखनऊ और दीजिए अपने रेडियो साथी पंकज शुक्ला को अनुमति। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे पत्र और ईमेल अनुरोध पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी पसंद। मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी लखनऊ है।
1: आइए सुन

सकते हैं नाटक मोक्ष, लेखक जितेंद्र कुमार, कलाकार डॉक्टर अनिल रस्तोगी, डॉक्टर कुमकुमधर, संध्या रस्तोगी, प्रेमकांत तिवारी, राघवेंद्र प्रताप सिंह, सुनील शुक्ला, सुस्मित त्रिपाठी, शिखा दुबे। संपादन एवं प्रस्तुति सहयोग कीर्ति श्रीवास्तव। निर्देशक एवं प्रस्तुतकर्ता आतिश कुमार श्रीवास्तव।

0: ये दुष्ट मेरा बाप न जाने कब मरेगा, जमीन भी मेरे नाम नहीं कर रहा है। क्यों ना आज ही मैं इसको मार डालूं। वैसे तो ये मरने वाला है नहीं बुड्ढा कहीं का।
1: तुम लोग तो बचपन से देख रहे हो इनको, कभी भी तुम लोगों से मतलब रहा ही नहीं इनका। बस पैसा दे दिया और सारी जिम्मेदारी खत्म। मैं तो कहती हूँ कि तुम अभी इनको निपटा ही दो, नहीं तो ये सारी जमीन अपनी संस्था के नाम पर कर देंगे और यहाँ बूढ़े लोगों की सेवा होगी। हम लोग जाकर फुटपाथ पर बैठेंगे, कब से यही तो रट लगा रहे हैं। देखो देखो सुन रहा है, कान लगा के सुन रहा है बुड्ढा।
2: हे भगवान, हे भगवान, कैसे कैसी बातें कर रहे हो, क्या करूं। रात का समय है, पैरों में भी भयंकर दर्द है, कहीं भाग भी तो नहीं सकता, और कल ही तो मेरी नौकरी का भी आखिरी दिन है। अगर कुछ बोलता हूँ तो ये लोग अनकंपा नौकरी पाने के लालच में मेरी जान भी ले सकते हैं। हे भगवान, हे भगवान, किस कर्म का फल दिखा रहे हो मुझे प्रभु।

0: ले ये ले और ले ले ले निकल निकल जा निकल जा तुम दोनों माँ बेटे मेरे घर से और अपनी लड़की से भी कह दो कि वो भी यहाँ से चली जाए।
1: छोड़ो छोड़ो मुझे
0: होने के बाद भी जब देखो यही घुसी बैठी रहती है, मेरे लड़के की शादी भी नहीं होने दे रही है जमीन की लालच पे कि कहीं कल बहू आ गई ना तो इसका इस घर से आना जाना भी बंद कर देगी। जिस लड़के को मैंने पाल पोस कर बड़ा किया जरा से जमीन के टुकड़े के लिए मुझे भद्दी भद्दी गालियां दे रहा है। हे भगवान मुझे अपने पास बुला लो, अपने पास बुला लो प्रभु।
1: पापा आप क्या रोज रोज ड्रामा करते रहते हो, आपको हम लोगों से इतनी परेशानी क्यों है?
0: परेशानी क्या पूछ रहे, परेशानी क्या? अरे यहाँ बैठकर बाप बेटे में झगड़ा लगा रही प्रॉपर्टी की लालच में। निकल निकल जाया, चल निकल
2: जाया।
0: लड़का मेरी हत्या ही कर देगा। अरे कोई तो मेरी आवाज सुनो, कोई तो सुनो भाई। किसी की चीख पुकार सुनकर आजकल आजकल अड़सड़ोस के लोग भी नहीं बोलते। घटना हो जाए तो बोलेंगे नहीं, उसका वीडियो बनाएंगे, उसको वायरल करेंगे ताकि उनका नाम हो। हे प्रभु कोई तो आओ।
1: हेलो हेलो पुलिस जी, मेरे पापा मुझे और मेरे भाई को मार डालना चाहते हैं, आप लोग जल्दी आ जाइए।

0: क्या चल रहा है यहाँ पर? किसने फोन किया था?
1: जी मैंने फोन किया था। ये मेरे पापा हम लोगों को मार डालना चाहते हैं, घर से बाहर भगा रहे हैं। ये देखिए घर के सारे बर्तन फेंक दिए।
2: हाँ इंस्पेक्टर साहब, आज ये बड़े गुस्से में हैं। आप लोग समय से ना आते तो ये हम लोगों को जान से ही मार देते। आप इनको तुरंत गिरफ्तार कीजिए। चलिए जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए।
0: क्यों, तुम्हारे कहने से?

0: इनको गोली मार दें और इनसे पूछे भी ना। और सर आप रोइए नहीं, मामला क्या है मुझे पूरा बताइए।
1: देखिए इंस्पेक्टर साहब, आपको मुझे देखकर ऐसा लगता है क्या मैं आपको ऐसा आदमी लग रहा हूँ? अरे मेरा परिवार है ये, जो आज इस जमीन के जरा से टुकड़े के लिए मेरी जान लेने पर तुला हुआ है, जबकि सबको एक न एक दिन इसी जमीन के नीचे जाना है। आप तो जानते हैं सब बातें।
0: क्यों मैडम, इनको देखकर तो ऐसा लगता नहीं कि ये कोई खतरनाक कदम उठा सकते हैं, और आप लोग बुढ़ापे में इनके पीछे क्यों पड़े हुए हैं?
1: जी देख लीजिए आप।
2: हाय राम इंस्पेक्टर साहब, फोन तो हमने आपको किया और पक्ष आप इनका ले रहे हैं, कहीं कोई घूस उस तो नहीं ले रखी है आपने इनसे? अनीता तुम एसपी का नंबर मिलाओ। चलो ये इंस्पेक्टर साहब तो बड़े अजीब आदमी लग रहे हैं।
0: मैडम हमें धमकी मत देना, हम पुलिस वाले हैं, दिन भर ना जाने इस तरह के कितने केस निपटाते हैं। आदमी का चेहरा देखकर उसके 7 जन्म का इतिहास बता देते हैं। आप सभी लोग थाने आकर अपनी अपनी तहरीर दीजिए, नहीं तो पुलिस का असली मतलब समझा दूंगा तुम लोगों को। और हाँ, ये एसपी साहब के फोन की धमकी ना देना मुझे।
3: माँ मैं अपने बच्चे को लेकर आज ही अपने घर जा रही हूँ, तुम ही लोग निपटाओ अपने इस घर का झगड़ा।

0: हाँ भाई, तो अब बताइए क्या बात है, क्या तकलीफ है आप लोगों को?
1: इंस्पेक्टर साहब, हम लोगों का जीना हराम कर रखा है इस आदमी ने। मुझे और मेरे बच्चे को मार कर घर से निकाल रहा था। देखिए, कुछ दिन पहले मेरी टांग तोड़ दी।
2: क्या कहा?
1: देखिए देखिए, मेरी टांग में रॉड पड़ा है।
2: क्या कहा? अरे दुष्टा, कुछ तो भगवान से डर, अपने आप गिर पड़ी थी। तेरा घुटना नीचे उतर गया था, 2 लाख डॉक्टर को देकर ऑपरेशन करवाया था, तब जाकर अपने पैरों पर खड़ी हुई थी, नहीं तो बिस्तर पर पड़ी पड़ी मर जाती, समझी?
0: क्या बात है सर, आप सब कुछ साफ साफ बताइए मुझे।
2: देखिए बात यह है इंस्पेक्टर साहब, आज मेरे रिटायरमेंट का दिन है और आज ही ये माँ बेटे और मेरी बेटी मुझकर मुझे मार डालना चाहते हैं, ताकि मेरे मरने के बाद मेरी नौकरी और मेरा मकान सब कुछ इनका हो जाए।
1: देखा देखा इंस्पेक्टर साहब, कितना झूठ बोल रहे हैं ये। हम लोगों को सुबह से मार मार कर गाली देकर घर से निकाल रहे थे और हम कैसा नाटक कर रहे हैं।
0: ओहो, क्यों भाई, ये क्या कह रही हैं?
2: इंस्पेक्टर साहब, आप लोग तो पुलिस वाले हैं, आप तो आदमी का चेहरा देखकर समझ जाते होंगे कि कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच बोल रहा है।
0: अरे भाई, हम पुलिस वाले हैं, कोई अंतर्यामी या भगवान नहीं। और क्यों भाई, तुम अपने पिता का गला दबा रहे थे नौकरी और जमीन की लालच में?
3: अरे साहब, आप मेरी पापा की बातों में ना आइए, ये बहुत बड़े नाटकबाज है।
2: क्या?
3: जरा जरा सी देर में नए नए ड्रामे रचते हैं। सुबह से सारे घर के बर्तन फेंक फेंक कर मार मार कर हम लोग घर से भगा रहे हैं। मेरी बड़ी बहन, उसे भी मारने के लिए दौड़े थे, उसका बच्चा उसकी गोद में था इंस्पेक्टर साहब, वो तो भगवान ने बचा लिया, वरना न जाने क्या हो जाता इंस्पेक्टर साहब।
0: अरे अरे रुकिए रुकिए, अब आपका इसके बारे में क्या कहना है?
2: देखिए इंस्पेक्टर साहब, मेरी लड़की अपनी ससुराल छोड़कर महीनों मेरे घर में अपना बच्चा लिए पड़ी रहती है, माँ बेटों को मेरे खिलाफ भड़काती रहती है। दरअसल उसकी भी नजर मेरी जमीन जायदाद पर है। मैंने तो बस उसको डराने के लिए डस्टबिन उठाया था, क्योंकि वो भी मुझसे लड़ रही थी और इन दोनों को मेरे खिलाफ भड़का रही थी, और उसी ने पुलिस को भी फोन किया था। अब आप ही बताइए, कोई अपनी बेटी को, अपने छोटे नाती को क्यों मारेगा, हा? बताइए आप भला।
0: अरे भाई, जब ऐसा ही था तो आपने पहले से इस झमेले को संभालने के लिए कोई कदम क्यों नहीं उठाया, पूरा मामला बताइए।
2: लेकिन इंस्पेक्टर साहब, मेरी शादी मेरी मर्जी के खिलाफ मेरे पिताजी की इच्छा से हुई थी। वह था कि मेरी माँ की मृत्यु हो चुकी थी और घर संभालने वाला कोई था नहीं। मैं तो शादी वाले दिन ही घर छोड़कर भाग जा रहा था, पर मेरे पिताजी मुझे देखकर रोने लगे। बस मैंने उनके आंसुओं को देखकर इस चुड़ैल से शादी कर ली, जो उम्र में भी मुझसे कम से कम 10 साल बड़ी। जब से इस घर में आई है झगड़ा करती रहती है। ये 2 बच्चे हो गए, अब इनके भविष्य की चिंता के बारे में मैं इसको छोड़ नहीं पाया कि ये कैसे पढ़ेंगे लिखेंगे, इनको कौन पालेगा। शुरू से ही इसका मेरे साथ झगड़ा होता रहा, इसलिए इसके दिल में मेरे लिए नफरत भर गई, और वही नफरत इसने बचपन से मेरे बच्चों के दिल में भी उतार दी। इंस्पेक्टर साहब, मैंने एक एक पैसा जोड़कर इन बच्चों को पढ़ा लिखा कर पाल पोस कर काबिल बनाया, जमीन जायदाद के लालच में आज यही बच्चे मेरी

0: इंसान के दुश्मन बने हुए।
1: मैंने जीवन में बहुत संघर्ष किया इंस्पेक्टर साहब, इस चुड़ैल औरत का मुझे कोई अफसोस नहीं है, पर बच्चों के लिए मुझे बहुत पीड़ा होती है, बहुत ही पीड़ा होती है मेरे मन में।
2: अरे फिर भी आपके मामले में तो गनीमत है, यहाँ तो आजकल लड़के अपने माँ बाप की जान ही ले लेते हैं।
1: सही कह रहे हैं आप इंस्पेक्टर साहब, ये तो कहिए भगवान की कृपा ने मुझे बचा लिया, नहीं तो मेरा भी वही हाल होने वाला था।
3: अरे इंस्पेक्टर साहब, इनकी बातों में ना आइए, ये देखने में बड़े भोले भाले हैं, पर छुपे रुस्तम हैं। इनका एक दूसरी औरत के साथ भी चक्कर है, इसी कारण इतना बवाल मचाए हुए हैं।
2: क्यों भाई, ये क्या कह रही हैं? क्या ये सच है?
1: नहीं इंस्पेक्टर साहब, इसकी बातों में ना आइएगा। इंस्पेक्टर साहब, मैंने बताया था ना, उम्र में मुझसे 10 साल बड़ी है और मुझे छोड़कर बच्चों के साथ रहती है। अब मुझे स्लिप डिस्क की बीमारी है, कोई देखभाल करने वाला नहीं था, इसी कारण अपनी देखभाल के लिए मैंने अपनी मित्र श्यामा को रखा था। उससे भी इसने इतना झगड़ा किया कि वो भी मुझे अकेला छोड़कर अपने घर चली गई, और अब शायद ही वापस आएगी। बिल्कुल अकेला पड़ा रहता हूँ, बहुत डर लगता है, अगर मुझे कुछ हो गया तो कौन करेगा मेरे लिए?
2: देखिए, ये आप लोगों का पारिवारिक मामला है, अच्छा होगा कि आप लोग अभी आपसी समझौता कर लें, वरना मैं भेज दूंगा सभी को जेल, फिर कराते रहना अपनी जमानत कोर्ट से।
1: ठीक है इंस्पेक्टर साहब, करा दीजिए आप हमारा समझौता।
2: देखो भाई, संतान का कर्तव्य है कि माँ बाप के झगड़े में किसी एक का पक्ष ना ले। जब दोनों एक दूसरे से झगड़ रहे हैं तो तुम्हें दोनों को समझाना चाहिए।
4: अरे सर, ये तो भले आदमी लग रहे हैं जो इस तरह की औरत के साथ पूरी जिंदगी गुजार दी। अरे नहीं तो आजकल लोग तो नौकरानी भी देख सुन कर रखते हैं।
2: तुम अपना काम करो समझे, पहले इनका समझौता तैयार करो।
1: अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं, कौन मुझे शांति देगा? दुख सहते सहते मेरी हिम्मत तो जवाब दे चुकी है, मन करता है कि अपने जीवन का अंत कर लूं। नहीं नहीं, गुरुजी कहते हैं कि आत्महत्या करना हत्या करने से भी बड़ा पाप है। ठीक है, गुरुजी के पास चलता हूँ, वहाँ जहाँ सारे संसार को शांति मिलती है, शमशान में।

0: अरे बेटा जय, तुम कब आए? अरे तुम तो काफी परेशान दिख रहे हो, क्या बात है? क्या आज फिर माया से झगड़ा हो गया?
1: आप तो अंतर्यामी हैं गुरुजी, सबके मन की बात जानते हैं। अगर आप मेरी जिंदगी में ना आए होते तो मैं तो कब का आत्महत्या कर चुका होता। आज तो माया ने सारी हदें पार कर दी गुरुजी। संजय को मेरे खिलाफ इतना भड़काया कि वो मेरा गला दबाने लगा। वो तो आपके आशीर्वाद से मैं बच गया। अभी सीधा पुलिस स्टेशन से समझौता करा रहा हूँ, फिर भी मेरे मन से उन लोगों का मोह नहीं जा रहा है, नहीं तो आज ही मैं संन्यास लेकर कहीं दूर चला जाता।
0: लेकिन ये वास्तविक संन्यास नहीं होगा, तुम्हें जंगल में भी जाकर उनकी याद सताएगी कि वे लोग मेरे बिना कैसे रहेंगे, किस हाल में रहेंगे, और तुम्हें शांति नहीं मिलेगी।
1: तो क्या करूं गुरुजी, अपने बाल बच्चों का पालन पोषण करना और अपना कर्तव्य निभाना ये भी पाप होता है क्या?
0: नहीं, अपना कर्तव्य निभाना और अपने परिवार का पालन पोषण करना पाप नहीं होता, परंतु ये सब अनासक्त भाव से परमेश्वर को समर्पित करते हुए किया जाना चाहिए।
1: तो क्या गुरुजी मेरी आसक्ति ही मुझे दुख दे रही है?
0: हाँ, यदि मेरे साथ रहकर तुमने साधना न की होती तो आज तुम बुरी तरह से आसक्त हो गए होते और इस आघात को सहन नहीं कर पाते। पर तुमने अपने कर्तव्य का पालन करने के साथ साथ अपने परम कर्तव्य परमार्थ की तरफ ध्यान दिया है, ईश्वर को भी अपना समय दिया है, इस कारण तुम बच गए हो। ओम ज्ञानिनाम चेतांसी देवी भगवती सा बलात् आकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति।
1: अब मैं क्या करूं गुरुदेव?
0: तुम्हारी ये जमीन जायदाद ही झगड़े की जड़ है, इसे दीन दुखियों की सहायता में समर्पित कर दो, तब सारा झगड़ा समाप्त हो जाएगा।
1: पर गुरुजी, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था जो मुझे ये सारे दिन देखना पड़े?

0: तुमने कोई पाप नहीं किया जय, अपने नियत कर्तव्य का पूर्ण रूप से पालन किया है, जिसे तुम अपना पुत्र, अपनी पुत्री और अपनी पत्नी मान रहे हो ना, वे सब तुम्हारे नहीं केवल अपने अपने स्वार्थ के हैं।
1: अब मैं क्या करूं गुरुदेव, मेरा मार्गदर्शन कीजिए।
0: सबसे पहले तुम अपने आप को इस दुख से उबारो, तुम वृंदावन जाओ, कृष्ण की शरण में जाओ और कृष्ण के रंग में रंग जाओ।
1: ठीक है गुरुदेव, जैसी आपकी आज्ञा।

0: तुम मुझे अपने साथ वृंदावन ले तो आए हो, पर अगर तुम्हारी चुड़ैल बीवी को पता लग गया ना तो तुम्हारा खून पी जाएगी।
1: देवी, मैं अपने परम पूज्य गुरुदेव का शिष्य हूँ। उन्होंने मुझे ब्रह्मचर्य की साधना सिखाई है। मेरा उस चुड़ैल के साथ अब कोई संबंध नहीं है, वो केवल मेरे नाम मात्र की ही पत्नी है। अब हम दोनों को एक दूसरे का सहारा बनकर ही रहना है। वो देखो, इस पवित्र स्थान में भी लोग महिलाओं के साथ कितना अभद्र व्यवहार कर रहे हैं।
2: ए, भगवान कृष्ण की नगरी में आकर भी महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार कर रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती?
1: तुमने देखा कैसे कलयुग ने सारे तीर्थों में भी अपना कब्जा जमा लिया है?
0: हाँ, वो तो सब ठीक है, पर आगे के लिए क्या सोचा है? वहाँ वापस जाकर क्या करोगे?
1: करना क्या है, अपनी संस्था समता सेवा संस्थान के नाम उस जमीन की वसीयत कर देता हूँ, और हम दोनों लोग मिलकर वहाँ दीन दुखियों की सेवा करेंगे। और यदि मेरे परिवार वाले वहाँ स्वेच्छा से रहना चाहेंगे तो जरूर रहेंगे, लेकिन ये झगड़ा लड़ाई की तो जमीन से बेदखल माने जाएंगे। मेरे वकील से मेरी बात हो गई है और उससे सारे कागजात भी तैयार कर लिए।
0: ये तुमने ठीक काम किया। अरे वो देखो, तुम देख रहे हो ना जो मैं देख रही हूँ?
1: हाँ हाँ।
0: भगवान कृष्ण बंसी बजाते हुए गुरुदेव के साथ हमें लोगों की तरफ बढ़े आ रहे हैं। देखो वो देखो।
1: अरे अब तो बड़ी मुश्किल हो गई, पहले गुरुदेव का स्वागत करूं ये भगवान कृष्ण का? आइए आइए प्रभु
0: प्रभु।
3: अरे अरे जय, ये क्या कर रहे हो तुम? मुझे पकड़कर अपने पास क्यों खींच रहे हो?
1: प्रभु, आपको मेरे साथ मेरे गुरुदेव का स्वागत करना है।
3: अरे मैं परमात्मा हूँ, सारे ब्रह्मांड का स्वामी हूँ, पूजा का प्रथम अधिकारी तो मैं ही हूँ, और मैंने ही तुम्हें ये जीवन दिया है।
1: पर इसका सही उपयोग करना तो हमारे गुरुदेव जी ने ही हमें सिखाया है ना?
4: अरे जय, भगवान का स्वागत करने के बजाय तुम तो इनके पास खड़े हो।
3: इसने सही किया, क्योंकि मैं भी यही करता हूँ, मैं भी तो संतों के पीछे चलता हूँ।
4: मेरे शिष्य को क्षमा कर दीजिए यदि उससे कोई भूल हो गई हो।
3: अरे कोई भूल नहीं हुई, तुम्हारा ये शिष्य तो बहुत बुद्धिमान है, जिसने इतनी विपत्ति आने पर भी अपने मन को वश में कर रखा है।
1: पर प्रभु, इस संसार के लोगों के कटु वचन विष के समान आघात करते हैं।
3: इस संसार में तुम्हारा अपना कोई नहीं है।
1: प्रभु आप ही बताइए, मैं आपके दिए हुए जीवन का सदुपयोग कैसे करूं?
3: तुम सबको समान दृष्टि से देखो और सुख दुख में समान रहना प्रारंभ करो। तुम्हारे पास जो साधन संपत्ति है उसे समस्त जीव मात्र की सेवा में लगा दो और अपना मन मुझे समर्पित कर दो।
1: जैसी आज्ञा प्रभु।

0: मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। लालच ने हम लोगों को अंधा बना दिया, हम लोगों को क्षमा कर दो।
1: हाँ पापा, प्लीज हम लोगों को माफ कर दीजिए। लालच में आकर हम भूल गए कि आपने कितनी मेहनत करी हम लोगों के साथ।
2: पापा, उस दिन शराब के नशे ने मुझे पिशाच बना दिया था, जो अपने ही जन्म देने वाले, अपने ही पालन पोषण करने वाले की जान लेने पर तुला हुआ था। पापा,
3: काश बच्चों ये सब तुम लोगों ने पहले ही सोचा होता तो आज मेरे प्यार और विश्वास के हकदार होते। आज जब तुम लोग जान गए हो कि मैंने सारी जमीन जायदाद दीन दुखियों की सेवा के लिए अपनी संस्था के नाम वसीयत कर दी है, तब आए हो माफी मांगने। जब तुम ये जान गए हो कि इस पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं रहा। हाँ, अगर तुम लोग सच्चे हृदय से पश्चाताप करना चाहते हो तो मेरी तरह मेरे साथ इन दीन दुखियों की सेवा में अपना सारा जीवन लगा दो।
1: आप सही कह रहे हैं पापा, आज से हम लोग भी अपना जीवन आपके साथ साथ दीन दुखियों की सेवा में समर्पित कर रहे हैं, पर हो सके तो हमें माफ कर दीजिएगा।
2: पापा, अगर आपने माफ नहीं किया ना तो हम लोग भी अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। पापा
3: देखो बच्चों, भगवान ने तो सबको बड़ी कृपा करके यह अमूल्य मनुष्य जीवन दिया है। यदि हम अपने जीवन के खेल को सुंदर ढंग से खेलेंगे तो सुख फल प्राप्त करेंगे। अगर तुम्हें क्षमा मांगनी है तो वो तुम्हें श्यामा से मांगनी चाहिए, जिसने कदम कदम पर मेरा साथ दिया। फिर भी तुम लोगों ने उसका भी बहुत अपमान किया, पर उसने अपने अपमान की परवाह न करके अगर मेरा साथ न दिया होता तो शायद मैं आज जीवित भी न होता।
4: अरे नहीं नहीं, मुझसे क्षमा मांगने की कोई जरूरत नहीं है। क्षमा ही मांगना है तो तुम लोग अपने पिता से मांगो, जिन्होंने संपूर्ण जीवन तुम लोगों के लिए समर्पित कर दिया।
3: ये तुम लोगों को सच्चे हृदय से अपने किए पर पश्चाताप है तो मेरे साथ निष्काम भाव से दीन दुखियों की सेवा में लग जाओ।
5: ठीक है, हम लोग ऐसा ही करेंगे।
6: अरे जय, तुम तो बड़े स्वार्थी निकले, सब काम बन जाने पर मुझे ही भूल गए। मत भूलो कि कर्म तुम्हारा अधिकार है और फल देना मेरा। और माया, तुम तो एक माँ हो जो प्रथम गुरु होती है। तुमने अपने बच्चों में गलत संस्कार डाले और यही बच्चे कल तुम्हारे साथ भी गलत व्यवहार करेंगे। अनीता और संजय, तुम लोग भी सुन लो, जिसने अपने माता पिता का दिल दुखाया उसकी पूजा को मैं कभी स्वीकार नहीं करता।
7: प्रभु हम लोगों को क्षमा कर दीजिए।
8: प्रभु, अपनी गलती मान लेने वालों को सुधर जाने का एक अवसर तो प्रदान कीजिए।
6: हाँ, पर केवल एक अवसर, दूसरा नहीं।

अभी आप सुन रहे थे नाटक मोक्ष। लेखक थे जितेंद्र कुमार, कलाकार थे डॉक्टर अनिल रस्तोगी, डॉक्टर कुमकुमधर, संध्या रस्तोगी, प्रेमकांत तिवारी, राघवेंद्र प्रताप सिंह, सुनील शुक्ला, सुस्मित त्रिपाठी, शिखा।

0: अभी आप सुन रहे थे नाटक मोक्ष। लेखक थे जितेंद्र कुमार, कलाकार थे डॉक्टर अनिल रस्तोगी, डॉक्टर कुमकुमधर, संध्या रस्तोगी, प्रेमकांत तिवारी, राघवेंद्र प्रताप सिंह, सुनील शुक्ला, सुस्मित त्रिपाठी, शिखा दुबे। संपादन एवं प्रस्तुति सहयोग था कीर्ति श्रीवास्तव का। निर्देशक एवं प्रस्तुतकर्ता अतिश कुमार श्रीवास्तव।
1: हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं।

हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। शास्त्रीय संगीत आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं पार्थ प्रतिम राय का राग बागेश्री में सितार वादन।

0: शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत अभी आप पार्थ प्रतिम राय का राग भाग्यश्री में सितार वादन सुन रहे थे। अब आज का शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम समाप्त होता है। हम आकाशवाणी लखनऊ से बोल रहे हैं।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
2: 8700001-4242।
0: हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 11 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार, पहले हिंदी में, उसके बाद अंग्रेजी में।

0: शिक्षा के क्षेत्र में विस्तार और गुणवत्ता दोनों स्तरों पर उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल कर रहा है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2017 से पूर्व जहां प्रदेश में केवल 16 राजकीय विश्वविद्यालय थे, वहीं अब इनकी संख्या बढ़कर 24 हो चुकी है। इसी प्रकार निजी विश्वविद्यालयों की संख्या 29 से बढ़कर 53 तक पहुंच गई है।
1: अनुकूल रणनीतिक साझेदारी में उन्नत करने की घोषणा की है। आज ओस्लो में प्रधानमंत्री योनस गौर स्टोर के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह साझेदारी स्वच्छ ऊर्जा से लेकर जलवायु लचीलापन, समुद्री अर्थव्यवस्था से लेकर शिपिंग तक के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देगी। प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ मजबूती से खड़े रहने के लिए नॉर्वे

0: का आभार व्यक्त किया।
1: मैं पिछले वर्ष नॉर्वे आने वाला था, लेकिन पहलगाम में हुए आतंकी हमले के कारण वह यात्रा स्थगित करनी पड़ी। उस कठिन समय में नॉर्वे ने आतंकवाद के विरुद्ध भारत के साथ मजबूती से खड़े होकर सच्ची मित्रता का परिचय दिया। आज जब मैं नॉर्वे आया हूँ तो मैं इस सॉलिडरिटी के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ।
0: हाल ही में लागू व्यापार और आर्थिक साझेदारी से परिणाम सुनिश्चित करने के लिए आज ठोस कदम उठाए गए। विशेष रूप से उच्च तकनीक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और स्टार्टअप के क्षेत्र में सहयोग की परिकल्पना की गई ताकि साझेदारी को भविष्य के लिए तैयार किया जा सके। द्विपक्षीय बैठक में एक त्रिकोणीय सहयोग समझौते सहित कई समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए गए। इसके अंतर्गत भारत और नॉर्वे संयुक्त रूप से भारत के डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का उपयोग करते हुए वैश्विक दक्षिण के देशों को मानव विकास समाधान प्रदान करेंगे। नॉर्वे के प्रधानमंत्री ने आज एक महत्वपूर्ण बयान में संघर्षों से घिरे विश्व में सहयोग बढ़ाने के महत्व पर जोर दिया। प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट का ग्रैंड क्रॉस प्रदान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में कल इटली पहुंचेंगे। ये यात्रा इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर हो रही है। श्री मोदी प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मैटारेले से भी मुलाकात करेंगे। श्री मोदी भारत और इटली के बीच व्यापार और निवेश को और बढ़ावा देने के लिए व्यापारिक प्रमुखों से भी बातचीत करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ने इस वर्ष $1 ट्रिलियन और अगले 5 वर्षों में $2 ट्रिलियन के निर्यात का लक्ष्य रखा है। श्री गोयल ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद इस वर्ष निर्यात $863 अरब तक पहुंच गया। यह पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 5% अधिक है। उन्होंने कहा कि वस्तुओं और सेवाओं दोनों के निर्यात में वृद्धि हुई है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत के उद्योगों, व्यापार समुदाय और लोगों में जो जोश है उसे दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। सरकार ने कहा कि पश्चिम एशिया संकट के कारण आयात में व्यवधान के बावजूद देश के तेल शोधक कारखाने सामान्य रूप से काम कर रहे हैं और भारत के पास कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार है। नई दिल्ली में आज अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए रसायन और उर्वरक मंत्रालय की संयुक्त सचिव अपर्णा एस शर्मा ने कहा कि खरीफ सीजन के लिए उर्वरक की उपलब्धता सभी राज्यों में 50% से अधिक है। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा से जुड़े आरोपों की जांच कर रही जज जांच समिति ने आज अपनी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को संसद भवन में सौंप दी। यह रिपोर्ट न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अंतर्गत निर्धारित प्रावधानों के अनुसार प्रस्तुत की गई है। रिपोर्ट को जल्द ही संसद के दोनों सदनों में पेश किया जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष ने पिछले वर्ष 12 अगस्त को इस समिति का गठन किया था। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारतीय जनता पार्टी के चुनावी वादों के अनुरूप संस्थागत भ्रष्टाचार और महिलाओं के साथ अत्याचारों की जांच के लिए 2 जांच आयोगों का गठन किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद आज इस फैसले की घोषणा की। संस्थागत भ्रष्टाचार के जांच आयोग की अध्यक्षता कलकत्ता उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश विश्वजीत बसु करेंगे। आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 181 रनों का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक सनराइजर्स हैदराबाद ने 15वें ओवर में 2 विकेट पर 131 रन बना लिए थे। चेन्नई की ओर से कार्तिक शर्मा ने 44 रनों की पारी खेली। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।